0: बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
0: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाम लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
0: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए, और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस 2.5 साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
0: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, और ये बयान सामने आते ही बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ चुकी है। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करने की बात कही है।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
1: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज करवाए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, साथ ही रोहन रॉय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी के साथ उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
9: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।
10: जो कंप्लेंट देने का था वो सब दे दिया, आपको कल मालूम पड़ेगा।
11: क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपका?
10: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
9: लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है इस पर सियासत भी तेज हो गई है। खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
12: तो स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में सीबीआई ने गैंगरेप, मर्डर, कवर अप, ये सब के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है, वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
13: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी।

0: सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन के मौत के केस में FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, उसका गैंगरेप किया गया है और इस पिटीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और बहुत से लोगों का उन्होंने नाम दिया है, बहुत से लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको बता दें कि सतीश सालियन के स्टेटमेंट में, और फिर इस बात को कहेंगे कि सतीश सालियन के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दिनो मोरिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियन का कहना है।
1: दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
2: अदालत ने यह भी देखा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, जैसे कि जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियन के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान कोई इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे और इसी वजह से अदालत ने कहा कि सतीश सालियन जो दिशा सालियन के पिता हैं उनको भी इतने साल बाद आखिर एक क्लोजर की जरूरत है, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में CBI के इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा कर दिया।
1: बीजेपी कह रही है कि वो पहले ही कह रही थी कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सच छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।
3: 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेबस पिता को अपने बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिल पाए, इस उम्मीद के साथ FIR हुआ है। सवाल ये उठता है कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है, क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आई।
1: बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI से कहा है कि वो FIR दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले CBI को इन्वेस्टिगेट करना है और इसीलिए CBI ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और FIR में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियन का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये FIR दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन बहादुर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
4: ईरान अमेरिका युद्ध में एक नया फ्रंट खुल चुका है, अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। बीते कुछ दिनों में हूती की मिसाइलें और ड्रोन्स सऊदी अरब में बारूद बनकर कहर बरपा रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिश को हूती अंजाम दे रहे हैं। हूतियों ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर

0: उनका कब्जा है।
1: ईरान से डरे ट्रंप का हुती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हुती के निशाने पर सऊदी। अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हुती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हुतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हुतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हुतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए दो बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही हमले हुतियों के ठिकाने पर करे। लेकिन ईरान के साथ साथ हुतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हुतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर दिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था कि मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हुतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
2: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इनका जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क है।
1: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हुती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
2: हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
1: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।
3: It's one of the weakest right now. It's our life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
4: Bad prognostic.
3: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
1: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनीश और लेसर हनीश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हुर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हूतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हूतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5-7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
0: Immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
4: एक और मुद्दा है सर जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
5: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
1: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साख पर पट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नकारात्मक ऊर्जा, क्या नकारात्मक ऊर्जा जीवन की उन्नति को रोक देती है? क्या नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत बीमार कर देती है? नकारात्मक ऊर्जा के आने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता। नतीजों के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू। यूसीसी पर एनडीए में हलचल। जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त। कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान ने कहा पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर रुख तय करेंगे। दिशा सालियान केस में सीबीआई की एंट्री। एफआईआर दर्ज। जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्यो, सूरज पंचोली। शक के घेरे में कई पुलिस। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। गुजरात में बारिश का कहर। अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार। कहीं सड़कें बने दरिया, कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद क्या इसका असर चुनावी होगा। उसका एक जवाब बीजेपी को लगता है कि राजस्थान से आई है, क्योंकि राजस्थान के शहरों में हुए चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद इन चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए शुभ माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजस्थान की जनता को बधाई देते हुए कहा कि झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता खड़ी है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजनलाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजनलाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजनलाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाम लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजनलाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजनलाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस 2.5 साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है, जोधपुर में या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: तो राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव ने बीजेपी को खुश होने के लिए कुछ वक्त तो दिया है, लेकिन वहां गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान ऐसा है जिसके बाद अब एनडीए में चिंता भी खड़ी हुई है। दरअसल अमित शाह ने दावा किया कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ये बयान सामने आया ही था कि बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ गई। जेडीयू की ओर से यह दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर हो गई। चिराग पासवान ने भी कह दिया है ड्राफ्ट देखने के बाद रुख तय करेंगे।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
1: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एक तरफ यूसीसी की सियासत है तो यूपी में भी सियासत है, क्योंकि अब तो आप चुनाव का समझिए कि मानिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5-6 महीने का वक्त बचा है। यूपी में चुनाव से पहले यूं तो पक्ष विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और योगी के लिए सनातन का मुद्दा बड़ा है। शायद वजह यह है कि जब रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे शिव महापुराण की कथा कराते हैं तो खुद योगी वहां जाते हैं, संदेश देते हैं कि सत्ता का रास्ता सिर्फ सनातन से होकर गुजरेगा।
9: सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
3: यूपी में जहां सनातन पर सियासत है, तो यूपी से आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। वहां मदरसों पर सियासत है, वो इसलिए क्योंकि नए मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने के आदेश दिए। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे शक के घेरे में हैं, इन मदरसों पर महाभारत मची है।
4: पश्चिम बंगाल के गैर मान्यता प्राप्त 252 मदरसों पर ताला लग गया है। सरकार ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान्यता की स्थिति और मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के लिए अहम कदम उठाए हैं। वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद 252 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
5: कुछ भी इनलीगल है, चाहे मदरसा हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के बाहर कुछ नहीं चलेगा। जहाँ सरकार की अनुमति नहीं है वहाँ नहीं चल सकता है। सरकार सारा स्क्रूटनी कर रही है, जो भी इनलीगल चल रहा है, मदरसा हो, दूसरा स्कूल, बिजनेस, सब बंद होने वाला है। उनको चलना है तो सरकार से अनुमति ले और चलाए।
4: दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसे के टीचर की भूमिका सामने आई है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी यहाँ पनाह लेते थे।
5: टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें कोई ना कोई मदरसा टीचर रहा है और आज भी है, संदेह के ऊपर नहीं है। जितना भी गड़बड़ होता है वहाँ के लोग जाए गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर वहीं पर पनाह लेते हैं, तो टारगेट में है।
4: बीजेपी के नेता कह रही हैं कि बंद किए गए मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि ट्रेनिंग दी जाती थी।
6: ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। जब हम लोग 15 साल में देखा था कि मदरसा में बम बना रहा है, मदरसा के आसपास में बहुत सारा कुछ इलीगल काम होते हैं, मदरसा में शिक्षा नहीं देते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देना जाते हैं, तो तब होने का था।
4: अब टीएमसी कह रही है कि मदरसों पर ताला लगाना गलत है,
7: इसे होना नहीं चाहिए, सब कुछ समझ बूझ के चलना चाहिए, और क्यों बंद करेगा उसका कारण नहीं बोलना चाहिए।
4: सिर्फ टीएमसी ही नहीं, भुरभुरा शरीफ के प्रमुख पीरजादा ताहा सिद्दीकी ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
8: और का ता ना बोले ये मदरसा गुनु के বন্ধ করে দিয়ে যে চক্রান্ত করছে, এটা কিনা মুসলিম বিরোধী, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার, মুসলিমদের প্রতি জুলুম, মুসলিমদের ছোটগুলো দেখা হচ্ছে বলে কি বাংলার মানুষ বুঝতে পারছে না?
4: আব মাদারসোঁ পর বঙ্গাল মে জবরদস্ত জঙ্গ ছিড়ি হুই হ্যায়। কলকাতা সে অনুপম মিশ্রা কে সাথ আজ তক ব্যুরো।
3: पूरे देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने सपरिवार लाल बागचा राजा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात विपक्ष को नागवार गुजरी। क्यों गुजरी, देखिए रिपोर्ट।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।
0: इसके बाद अमित शाह डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे। यहां भी गृहमंत्री ने विघ्नहर्ता के दर्शन कर बप्पा का पूजन किया। गणेश पूजन पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई में बप्पा के पूजन पर तंज कसा।
2: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद में जनता को दर्शन दूंगा? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव। लोग आते हैं, लोग गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं। चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
0: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाऊ साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
3: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
0: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपत्ति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
4: गणपति बप्पा चा आगमन झालाय आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा चोमर चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांच्या जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
0: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
5: उधर ईरान अमेरिका युद्ध में एक नया फ्रंट खुल चुका है। अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। बीते कुछ दिनों में हूती मिसाइलें, ड्रोन सऊदी अरब में बारूद कहर बरपा रही हैं। ईरान का दावा है कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिश को हूती अंदाज दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह ऐलान किया है कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर अब उनका कब्जा हो चुका है।
6: ईरान से डरे ट्रंप का हूती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हूती के निशाने पर सऊदी। अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हूती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हूतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हूतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए दो बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही हमले हूतियों के ठिकाने पर करे। लेकिन ईरान के साथ साथ हूतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था कि मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हूतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
7: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इंड का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
6: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
7: लाल, हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
6: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।
8: It's one of the weakest right now. It's our life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
9: Bad prognostic.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
6: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनिश और लेसर हनिश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हॉर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हूतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हूतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5-7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है। अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
9: Immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
6: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
10: एक और मुद्दा है सर, जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के, उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए, ये असली लीडर्स कौन हैं?
11: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
6: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साथ पर बट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: तो बुलेटिन में बिना ब्रेक की खबरें जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण, कहा डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता, नतीजों के बाद रिसॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनडीए में भी हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू, चिराग पासवान ने कहा पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर रुख तय करेंगे। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। और गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच तक, हिम्मतनगर तक जलभराव से कई इलाकों में हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया तो कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

0: तो आई हेडलाइन के बाद खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजस्थान के शहरों में जो अभी निकाय चुनाव हुए उसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हुए इन चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को उनके लिए तो शुभ माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बधाई दी और ये कहा कि झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ जनता खड़ी है।
1: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
2: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
1: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा।
3: 2.5 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए राहत भरी खबर आई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। अगर देखा जाए तो कम से कम 6 नगर निगमों में सीधे सीधे जीत हासिल की है। 1 नगर निगम बीकानेर केवल कांग्रेस को मिला है और बाकी के जो नगर निगम है 2 उसमें कांटे का मुकाबला है और कोशिश करेगी बीजेपी की वहां पर निर्दलियों के सहारे सरकार बना ले। अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में भी 47 जिला परिषदों में से 20 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलियों के सहारे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
1: बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था। यही वजह है कि भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में रोड शो कर निकाय चुनाव के लिए वोट मांगे। जयपुर की तरह उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में रोड शो किए। इस जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री अब पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
2: आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है और बाढ़ विकास है, निकाय में भी मोहर लगी है, आने वाले समय में पंचायतों में भी इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलेगा, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
3: अगर पिछली बार के अशोक गहलोत की सरकार से तुलना करें तो फिर जीते हुए पार्षदों की संख्या भजन लाल शर्मा की सरकार में बीजेपी की ज्यादा है। उस लिहाज से भजन लाल शर्मा की सरकार शहरी निकाय के चुनाव में सफल साबित हुई है।
1: तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है।
3: अशोक गहलोत सरकार के समय सरकार आते ही चुनाव हुए थे, मगर ये 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो होनी चाहिए उसे भजन लाल शर्मा ने कोशिश की है कि उसे कम किया जाए और इसीलिए शहर दर शहर ये रोड शो करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस 2.5 साल बाद भी अगर माहौल नहीं बना पाई है और छोटे छोटे कस्बों में भी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है तो सोचने का विषय है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं पाई है।
1: बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
3: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
1: राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी काफी सक्रिय रहे। बीजेपी सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के बाद इन चुनावों को पार्टी के लिए जनमत के रूप में देख रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वसुंधरा राजे की साख पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जिनके इलाकों में पार्टी पिछड़ गई, अगर पार्टी वहां कमजोर नहीं होती तो उसे और भी बड़ी जीत मिलती, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुनने के मोदी शाह के फैसले को सही ठहरा दिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2029 तक 21 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ये बयान सामने आया तो बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बचाव वाली मुद्रा में आ गई। जेडीयू की ओर से दावा हो रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन जेडीयू के रुख को देखते हुए आरजेडी हमलावर है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम पहले ड्राफ्ट देखेंगे, ड्राफ्ट के बाद रुख तय करेंगे कि यूसीसी पर उनका रुख क्या होगा।
4: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव, यानी अगले साल से शुरू हो रहे धुआंधार चुनावी समर से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साथ ही बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन भी दे दी है।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: यूसीसी पर गृह मंत्री के बयान ने चर्चा पकड़ी तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहली आवाज सहयोगी जेडीयू की तरफ से ही उठी।
5: देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान आया है वह बीजेपी शासित राज्यों के विषय में है। बिहार में तो एनडीए की सरकार है।
6: हम एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत कर और इसको हम लोग जहां जहां भाजपा शासित सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां इसे लागू करेंगे।
1: हालांकि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है।
7: जनता दल यू के नेता इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि यूसीसी का मतलब है कि संविधान और संविधान के अधिकारों को कमजोर करना।
8: यूसीसी देश के भले के लिए है और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए एक समान कानून हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है वह स्वागत योग्य है।
1: यूसीसी को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 के चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उधर गणेश चतुर्थी के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने सपरिवार लालबाग चौराहा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर भी अमित शाह ने बप्पा का पूजन किया, लेकिन ये बात विपक्ष को नागवार गुजरी।

0: मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा बंगले पर पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम आवास में आयोजित गणपति उत्सव में विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में भी बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उनके बेटे और आईसीसी चीफ जय शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी ने भी गजानन महाराज का पूजन किया।
1: विश्व के सभी गणेश भक्तों को आज गणेश पर्व की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश, इनसे इतनी ही प्रार्थना है कि वे सभी के दुखों को हरे, सभी के विघ्नों को हरे, हमारे देश के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे नागरिकों, किसानों, सभी के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों को हरने का आशीर्वाद और क्षमता और ताकत हमें विघ्नहर्ता दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। ये पर्व महाराष्ट्र और देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सबसे निवेदन इतना ही है कि हम लोग इसको मनाते हुए पर्यावरण का जितना ध्यान रख सकते हम ध्यान रखें और जितनी पारंपरिकता के साथ इस पर्व को मना सकते उतनी पारंपरिकता के साथ इसको मनाएं।

0: क्या हमारे भगवान का अमित शाह के लिए वेट कर रहे हैं क्या कि अमित शाह जी आएंगे उसके बाद मैं जनता को दर्शन दूंगा, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है सार्वजनिक गणेश उत्सव, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गणपति महाराज खड़े हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, लोकमान्य टिळक, पेशवा, सभी लोग बड़े बड़े उत्सव यहाँ मनाते रहे हैं। जहाँ जहाँ मराठा साम्राज्य गया है वहाँ गणपति उत्सव बहुत धूम से होते हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुजरात में बड़ौदा हो, बड़े बड़े उत्सव हमारे राजा महाराजा लोग करते आए हैं।
1: इधर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार गणेश चतुर्थी के मौके पर राज ठाकरे के घर पहुंचा। राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात रही कि राज, उद्धव और आदित्य सभी पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। वहीं एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी श्रीमंत भाव साहब रंगरी गणपति पंडाल पहुंची। उन्होंने बप्पा का पूजन और आरती की।
2: हमारे सारे किसान भाई जो है उनको इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं बाप्पा को इतनी ही उनके चरणों में मांग करती हूँ कि इस साल हमारे किसानों को न्याय मिले। और महाराष्ट्र और भारत में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से सबको राहत।
1: अमरावती में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अपने घर में गणपति पूजन किया। राणा दंपति पहले बप्पा को गाजे बाजे के साथ घर लाए, उसके बाद नवनीत राणा ने पति और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा के साथ विधि विधान से गणपति की आराधना की।
3: गणपति बप्पा चा आगमन झाला है आणि गणपति बप्पा विघ्न हरता है आणि बप्पा सोमवार चरणी एवढीच साकडा घालते की सगळ्यांचे जीवनातले विघ्न दूर झाले पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या शेतकरी राजा यांचे सगळे विघ्न हे दूर झाले पाहिजे एवढंच बप्पा चरणी प्रार्थना करते।
1: मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ धनंजय साबले, अमरावती आज तक।
4: अभी ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पश्चिम एशिया और एक वैश्विक संकट पूरा हुआ भी नहीं था, वहां पर अभी भी तनाव चल रहा है। ऐसे में अब एक और फ्रंट खुल चुका है, अब हूती और सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। बीते कुछ दिनों में हूती की मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब में कहर बरपा रही हैं। ईरान ने दावा किया कि सऊदी अरब पर हूती के हमलों का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की बारूदी साजिशों का जो अंदाज है वो बिल्कुल हूतियों के हमलों से मिल रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि लाल सागर के पूरे यमन तट पर अब उनका कब्जा है।
5: ईरान से डरे ट्रंप का हूती पर सीधा सरेंडर। सऊदी ने मांगी मदद तो फोन नहीं उठाया। ट्रंप के चलते हूती के निशाने पर सऊदी। अमेरिका ने सैन्य मदद से किया इनकार। पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पीछे हटा। हूती का बारूदी हाहाकार, सऊदी लाचार। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग में सऊदी अरब निशाने पर नहीं था। ईरान की मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब की सेना तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक हूतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। बड़ी बात यह है कि हूतियों से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए दो बार फोन किया, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस से बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है ठीक वैसे ही हमले हूतियों के ठिकाने पर करे, लेकिन ईरान के साथ साथ हूतियों के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोलने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। ये तब है जब हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वो हनिश द्वीपों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बाब अल मंदेब पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी को ट्रंप ने अपने हाल पर छोड़ा तो पाकिस्तान भी सऊदी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सऊदी ने सोचा था

0: की मक्का पैक के बाद पाकिस्तान युद्ध में उनकी मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान मदद करने के बजाय हूतियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पर रुका हुआ है।
1: देखिए, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हम इसको इंड का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
0: दरअसल मक्का पैक्ट सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है, जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए। मक्का पैक्ट का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे।
0: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।
2: It's one of the weakest right now. It's our life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
3: Diagnostic.
2: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
0: अमेरिका और पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, जबकि हूतियों ने लाल सागर के दो और अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि ग्रेटर हनीश और लेसर हनीश द्वीप पर हूती के लड़ाके तैनात हैं। ये द्वीप बाब अल मंदेब स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। बाब अल मंदेब एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से गुजरने के बाद जहाज स्वेज दहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हुर्मुज की तर्ज पर हूती इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं। बीते दिनों लाल सागर के पास हूतियों के ठिकाने पर सऊदी अरब और यमन की सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। हूतियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस रूट पर सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर अब सऊदी अरब के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी की अब कैक यानबू तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश भी की है। ये वही पाइपलाइन है जो खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। हूतियों के हमलों के बाद सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई थी। ये सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर स्थित यानबू तक कच्चा तेल पहुंचाती है। सऊदी अरब ने ये नहीं बताया है कि पाइपलाइन कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है या फिर इसे कब फिर से शुरू किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर सऊदी अरब ड्रोन हमलों से प्रभावित एक बड़ी पाइपलाइन को फिर से शुरू नहीं कर पाता है तो एक्सपोर्ट के लिए उसका तेल स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। इसका सीधा 4% असर अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पास रेड सी पोर्ट यानबू पर सिर्फ 5 से 7 दिनों का एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है, अगर पाइपलाइन बंद रहती है तो कच्चे तेल के दामों में उछाल आना तय है। मतलब यही है कि ट्रंप की बारूदी सनक की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। बावजूद इसके ट्रंप यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा।
3: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: दूसरी तरफ ईरान का यही कहना है कि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो जवाब में ईरानी सेना 10 हमले करेगी। ईरान के राष्ट्रपति का यही कहना है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना असंभव है क्योंकि ट्रंप के बयानों में कोई सच्चाई नहीं है।
4: एक और मुद्दा है सर जिसपे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि युद्ध रुका है या नहीं वो एक मुद्दा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब कहते हैं कि वो असल जो लीडर्स हैं ईरान के उनसे बात कर रहे हैं। अटैक के बाद लीडरशिप बदल चुका है। आप हमें बताइए ये असली लीडर्स कौन हैं?
5: मुझे लगता है कि यह सवाल आपको खुद ट्रंप से पूछना चाहिए क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक दिन वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं। तो हम नहीं कह सकते कि उनके किस बयान को हम गंभीरता से लें और उसी के हिसाब से काम करें।
0: अगर युद्ध के हालात देखें तो ईरान अपनी जगह पर खड़ा है, न तो अमेरिका के आगे झुका न ही युद्ध से पीछे हटा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की साथ पर बट्टा लगा और अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी भी हूती के हमलों से कराह रहा है। आज तक ब्यूरो
6: यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा? क्या नकारात्मक ऊर्जा जीवन की उन्नति को रोक देती है? क्या नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत बीमार कर देती है? नकारात्मक ऊर्जा के आने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के न हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज, सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने की नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात, बताया शिष्टाचार भेंट। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस अधिकारी। और गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे निगेटिव एनर्जी की, यानी नकारात्मक ऊर्जा की। नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी क्या होती है और ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2026, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:44 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 3:21 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा की, यानी निगेटिव एनर्जी की। क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा? हर व्यक्ति और वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं। व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, और एक साथ जब बहुत सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक ऊर्जा बन जाती हैं, एक एनर्जी बन जाती हैं। अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और खराब संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है। अगर आप निगेटिव एनर्जी के या नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो ये ऊर्जा आपके और आपके प्रगति के बीच में आ करके सब कुछ रोक डालती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सब कुछ अच्छा है, मेहनत भी ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपकी उन्नति को, आपके डेवलपमेंट को रोक डालती है। नकारात्मक ऊर्जा पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष
मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी है या नहीं है तो कैसे जानेंगे? अगर आपके घर में मीठी चीज लड्डू है, गुड़ है, चीनी है, ये खुला रहता है फिर भी उसमें चींटियां नहीं लगती तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर बार बार लगाने के बावजूद आप

सकारात्मक ऊर्जा है। अगर घर में काफी पैसा बीमारियों में और दवाइयों में खर्च होता है तो समझिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है और ये नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को बीमार कर रही है। बार बार घर की दीवारों पर अगर सीलन आ जाती है ठीक करने के बावजूद, तो ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिसका प्रभाव आपके घर के माहौल पर और आपके घर पर निगेटिवली बुरी तरीके से पड़ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ फायदा किस राशि को मिलेगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की

दान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गोपीनाथ जी ने हमें लिखा है और गोपीनाथ जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1992, जन्म का समय शाम के 5:45, जन्म स्थान है वाराणसी। गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो उसका विवाह कब होगा और जीवन कैसा रहेगा। गोपीनाथ जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और साल 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआती समय में इनके विवाह के योग बनते हैं। स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक से विवाह करेंगी। जब भी विवाह करें कुंडली एक बार मिला ली जाए, एक बार देख ली जाए, उसके बाद विवाह का निर्णय लिया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अपनी बेटी को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाएं और इनसे कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इनको लाभ होगा। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो उसके नुकसान क्या हैं? ये जीवन पर कैसे बुरा असर डाल देती है? देखिए, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है तो आप घर के बाहर बिल्कुल खुश रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन घर में प्रवेश करने के साथ आपका मन खराब हो जाएगा, मन में चिंताएं और नकारात्मकता आ जाएगी। अगर घर में निगेटिव एनर्जी है, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होगा और घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो बिना वजह के बीमारियों में,
और बेवजह के कारणों में पैसा खर्च होगा, पैसा बचा पाना, पैसे की सुरक्षा कर पाना कठिन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रहने वाले लोगों के महत्वपूर्ण काम नहीं बनेंगे, हर काम में लगातार अड़चन आएगी। और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अच्छा करने के बावजूद जीवन में अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगी, घर में अशांति होगी, लोगों के बीच में आपसी प्रेम और आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया, जीवन की घटनाओं से ये समझ लिया कि आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिए, ऐसे घर में रहिए

व्यवस्था करिएगा। अपने घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। घर में जब भी पोंछा होता है, पानी का पोंछा घर के फर्श पर लगाया जाता है, तो कोशिश करें कि उस पानी में एक चम्मच दो चम्मच नमक डाल दें। नमक मिले हुए पानी का पोंछा घर में लगाइए। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। हर अमावस्या को घर की सफाई करिएगा और जो वस्तु आपके काम की ना हो उस वस्तु को हटा दीजिएगा। अनुपयोगी वस्तुएं अपने घर से हटाते रहिएगा। सुबह के समय जब घर की सफाई हो जाए तो घर में मंत्र का जप करिए, चालीसा पढ़िए, स्तुति करिए भगवान की और तीन बार शंख बजाइएगा। अपने घर में नियमित रूप से सुबह और शाम गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुग्गल को लेकर के या तो गोबर के उपले पे डालें या गुग्गल पे जरा सा सरसों का तेल डालकर उसको जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा सप्ताह में एक या दो बार करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

ही भी ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज आने की संभावना तभी बनेगी जब उसके ऊपर मंगल का प्रभाव होगा। और अगर मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बनेगा तभी आप कर्ज लेंगे, और मंगल अगर खराब होगा तो कर्ज लेंगे और चुका नहीं पाएंगे। तो अगर आपके ऊपर कर्ज बन रहा है तो इसका मतलब मंगल अच्छा नहीं है। मंगलवार के दिन अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज का चुका पाना बहुत कठिन होता है, ऐसे में कर्ज चुक नहीं पाता। तो मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए या कर्ज के कागजों पर पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 3, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में

रहे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय है शाम के 7:35 और जन्म का स्थान है इंदौर। नवीन जी कह रहे हैं कि मैं अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में एक सामान्य सी नौकरी कर रहा हूं, क्या मुझे अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आगे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? नवीन जी, आपकी कुंडली वास्तव में मैनेजमेंट वाली ही है, तो अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं और बाद में उस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफी सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट का मामला आपके लिए बेहतर रहेगा। आप पढ़ाई पूरी कर पाएं, जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा पढ़ करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और आज शिक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करिएगा। पंचमी का प्रभाव है, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत, 10 नगर निगमों में 5 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस सिर्फ 1 मुस्लिम। राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा, पीएम मोदी ने जताया आभार। निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया, कहा झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय हुई है। निकाय चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद भी दिया, कहा राजस्थान से डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत। 47 नगर परिषदों के नतीजों में भी बीजेपी आ गई, बीजेपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की। निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, 4 नगर निगमों में त्रिशंकु नतीजों से सियासी गर्मी भी बढ़ गई। जोधपुर, अलवर, अजमेर और पाली में किसी को बहुमत नहीं मिला, बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ का दौर भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, मुख्यमंत्री के गढ़ में निर्दलियों ने चौंकाया। निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा आरोप, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे भी देखने को मिले, 12 में आम आदमी पार्टी को बहुमत तो नोखा में सीपीएम अपना बोर्ड बनाएगी। बंगाल में टीएमसी के भीतर फिर बगावत के संकेत, 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दावा। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बागी सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे, जगदीश बसुनिया ने दावा किया। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने दूरी साधी, बागी सांसद भी बोले कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल पर कानूनी पेंच, सुप्रीम कोर्ट ने मामला लंबित है, 22 सितंबर तक जवाब मांगा है। हुगली में कागजों पर मदरसा मिला, जमीन पर कुछ भी नहीं, 252 ऐसे अनाधिकृत मदरसों की सूची में शामिल किए गए। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है, टीएमसी विधायक और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने इसका विरोध जताया है। 252 मदरसों को बंद करने और 100 को नोटिस पर ताहा सिद्दीकी ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार से फैसला बदला जाए। नंदीग्राम फिर बना बंगाल की सियासत का केंद्र, उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बागी वोटा में सामने। नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी नहीं उतरेंगे, टीएमसी ने उम्मीदवार घोषित किया, सियासी अटकलों पर विराम लग चुका है। नंदीग्राम में फिर सियासी मुकाबले की तैयारी, बागी टीएमसी गुट ने नंदीग्राम और रजीनगर में उम्मीदवार उतारे। यूसीसी पर एनडीए में भी हलचल हो गई है, जेडीयू ने गृहमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है, कहा बिना चर्चा के यूनिफॉर्म सिविल कोड देशभर में लागू न हो। यूसीसी पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समानता के साथ विविधता का भी सम्मान जरूरी है। चिराग ने कहा कि पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे, फिर उसके बाद रुख तय करेंगे कि आखिर यूसीसी पर वो एनडीए के कितना साथ देंगे। राजस्थान में बीजेपी का जादू देखने को मिला, रुझानों में 10 में से 5 नगर निगमों में जीत मिली, 1 सीटों पर कांग्रेस सिमटी, बल्कि पार्टी दफ्तर में सीएम भजनलाल ने जश्न मनाया। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री हुई है, मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज मंचोली हैं और कई पुलिस अधिकारी भी जांच के दायरे में। दिशा सालियान केस पर वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का समर्थन दिया, कहा दिशा सालियान केस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। महंगाई ने टेंशन बढ़ाई, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82% रही, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज। पीयूष गोयल के घर गणेश पूजा में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बप्पा का आशीर्वाद दिया। मनोज जरांगे का मुंबई कूच का ऐलान, अंतरवाली सराठी से होंगे रवाना, 2 गाड़ियां 2 एम्बुलेंस, चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे जरांगे। मराठा समाज से जरांगे की अपील, जल्दबाजी ना करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान की अनुमति नहीं मिली है, फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम जरांगे। जरांगे को लेकर फडणवीस का दावा, लगभग सभी मांगे पूरी कर दी गई, न्यायालय के दायरे में वाली मांगों पर प्रक्रिया अब आगे जरूरी है। गणेशोत्सव में मुंबई में आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की अपील, लोगों को परेशानी में डालना उचित नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम फडणवीस ने कहा कि समिति की रिपोर्ट जल्दी आएगी, रिपोर्ट के बाद ही इस पर अमल किया जाएगा। विमल इलायची केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर को नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार की सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया। योगी सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस की योजना। एबीवीपी ने परीक्षा सुधार टास्क फोर्स को दिए सुझाव, नीट 2 चरणों में कराने की सिफारिश की गई है। एनटीए ने अब अपना दफ्तर बदल लिया, मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस भवन से होगा एनटीए का काम। दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल, कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम, सैलानियों के लिए भी सौगात। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है मेडिकल की टीमें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम हुआ सुहावना, डल झील में शिकारी का मजा ले रहे हैं सैलानी। राजौरी में इस बार अखरोट की शानदार पैदावार हुई है, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है, अहमदाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद में बारिश ने लोगों को परेशान किया, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा है। लातेहार में गहरे पानी में 2 8 साल के बच्चों की डूबने से मौत हो गई, हादसे में गांव में पसरा माता। महबूबाबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी भरा, कई जगह ट्रैफिक ठप पड़ा। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। लालबाग के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, अमित शाह ने की फडणवीस के आवास पर पूजा। मुंबई के महापौर ऋतु तावड़े ने भी गणपति की पूजा की, भक्तिभाव से विनायक की आरती। नवनीत राणा और अविनाना के घर भी गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली, बप्पा की भक्ति में लीन दिखा पूरा परिवार। गुजरात के जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी देखने को मिली, 40 सालों से गणेश जी के 3000 से अधिक स्वरूपों का संग्रह किया गया है। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर भी बप्पा पधारे, परिवार संग विधि विधान से की पूजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी बप्पा की स्थापना हुई, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते दिखे सचिन। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति के साथ बप्पा की आराधना करते दिखी, विधि विधान से की बप्पा की स्थापना। हर साल की तरह अभिनेता तुषार कपूर ने भी मुंबई में अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इंदौर में 7 करोड़ के आभूषणों से सजे खजराना गणेश, ध्वजा पूजन के साथ गणेश उत्सव शुरू। अमृतसर में जनरेटर से जहरीली गैस लीक हुई, 4 लोग बेहोश हुए, अस्पताल में 1 शख्स की मौत हो गई, मामले की जांच शुरू। इंदौर में साइबर ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, 4 लाख में बैंक अकाउंट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर में कार सवार युवकों ने घर के बाहर बैठे लोगों पर पत्थर बरसाए, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, पुलिस मामले की जांच। ग्वालियर में दतिया गैंगवार के मुख्य आरोपी महेश यादव की मौत, 11 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सहारनपुर में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, लोहे जस्ता की प्लेट पर पीतल की परत चढ़ाकर बनाते थे नकली सिक्के। गुरुग्राम हिट एंड रन पीड़ित ने जारी किया पहला वीडियो बयान, आज तक के इंटरव्यू में आरोपी के दावे पर पीड़ित का जवाब। पीड़ित ने आरोपी के दावे पर सवाल उठाया, पीड़ित का सवाल, अगर हम चुटकी काट रहे थे तो मेरा पीछा क्यों किया। इंदौर के होटल में महिला की संदिग्ध मौत हो गई, साथ मौजूद प्रेमी से पुलिस इस मामले की पूछताछ कर रही है। गया जंक्शन पर तस्करी के आरोप में एक युवती गिरफ्तार, 15 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया, उसे दिल्ली ले जाने की तैयारी थी।
पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत से आग बुझाई। हाथरस में नगर पालिका की जेसीबी के नीचे दबकर 11 साल के बच्चे की मौत। सोनभद्र में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के गहने चोरी हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच। जामनगर में पान की दुकान में घुसकर युवक की डंडे पाइप से हमला किया गया, सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया। सहारनपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उल्टा लटकाकर पीटा गया, युवक को छोड़ने के बदले 5 लाख के लेनदेन की चर्चा, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में डॉक्टर की सुसाइड की वजह का खुलासा हुआ है, घरेलू कलह और एनेस्थीसिया की ओवरडोज से जान गई। बलिया में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान की निर्मम हत्या की गई, परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई। फाजिलका में एक डॉक्टर का खून से लथपथ शव मिला है, सर और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचमहल से महाकाल दर्शन को जा रहे यात्री की सड़क हादसे में मौत हो गई, कालोल एक्सप्रेस पर भीषण टक्कर हुई। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक मौत का कुआं बन गया, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत, तीसरा शख्स बचाने गया था वो घायल हो गया। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे, पुणे में नाना पाटेकर के घर गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली, बाबा की भक्ति में डूबा परिवार। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बाबा

0: साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दुल्हन सिंह पहुंचे अयोध्या के राम मंदिर, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। बेतिया में ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में पहुंचे फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर, शहर में देखा ग्लैमर का रंग। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन ट्रेन पर हमले को लेकर के रूस पर भड़के नेटो महासचिव मार्क रूटे, कहा इस हमले से पुतिन की बेताबी और लापरवाही उजागर हुई। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हुए ट्रेन हमले को लेकर यूरोपीय संघ का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी देशों को डराने के लिए रूस ने यह हमला किया है। सऊदी अरब के खामीस मुशैत एयरबेस पर हूती का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। जॉर्डन में हुए जानलेवा हमले में मदद के दावों पर चीन ने जताया कड़ा विरोध, चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ओमान में ईरान और खाड़ी देशों के बीच होने वाली बैठक टल चुकी है, नई तारीख पर सहमति बनी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा सऊदी अरब के अनुरोध पर बैठक को टाला गया, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खाड़ी देशों की बैठक होनी। इराक ने ईरान के साथ तीन प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने का ऐलान किया, सुरक्षा और तकनीकी समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। जापान दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख बिरोल, राजधानी टोक्यो में जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम से मुलाकात की, दोनों देशों के व्यापार, निवेश, रक्षा, एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन से अलग हो सकते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, 319 साल बाद ब्रिटेन से अलग होने की मांग फिर से तेज हुई। सीरिया में ईंधन की कीमत बढ़ाने पर लोगों का गुस्सा भड़का, अलेप्पो में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, विरोध में टायर जलाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: आगे आगे।
4: अरे उधर उधर क्या?
3: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ओला, ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
7: वो तो चार्ज हुआ यार।
9: ओला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
20: सुंदर वादियों

0: पत्तों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
2: इसीलिए सेनको इंडिया का
5: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
3: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार, अटूट भरोसा,

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सो सॉरी।

0: va.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: अभी तो चार्ज हुआ यार।
5: ओ ला बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और भाई कहां गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला। पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक। पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
2: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के पहले शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है।
1: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
2: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे, और भी पार्किंग अटेंडेंट्स से किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
1: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
2: उन्होंने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस के साथ मिलकर एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
1: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
3: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है, और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार एफआईआर में हमने लॉज कर दी गई है, और उस एफआईआर के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वह लिया जा रहा है।
1: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लाने पर सियासी हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग पासवान बोले पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। यूपी चुनावों से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज, सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने की नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात, बताया शिष्टाचार भेंट। निशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले भी। गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं पर घर दुकानों में घुसा पानी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुपर एट में बात उन बड़ी और अहम खबरों की करेंगे जिस पर दिन भर आपकी नजर रहेगी। बुलेटिन में बात करेंगे गुरुग्राम में लेडी बाइकर को टक्कर के बाद जारी पुलिस जांच की। दरअसल पीड़ित बाइकर ने अब वीडियो जारी कर आरोपी के बचाव के लिए एक बयान को गलत बताया और कहा है कि एक दिन पहले आरोपी ने आज तक से खास बातचीत में उसने जानकर बाइक को टक्कर नहीं मारी। साथ ही बात करेंगे गुरुग्राम में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी से मारपीट मामले की भी। इस केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बुलेटिन में बात करेंगे सियासी खबरों की भी। राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही बात यूपी की राजनीति की भी करेंगे, जहां पर माता प्रसाद पांडे से संजय निषाद की मुलाकात ने सूबे में हलचल बढ़ा दी है। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। जयंत चौधरी ने एक बार फिर से अखिलेश पर करारा हमला बोला है। उधर दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई के एफआईआर में कई बड़े नाम सामने आए हैं। उसके बाद इस मामले पर फिर से एक बार ये मामला सुर्खियों में आ गया है। साथ ही इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी हमलों का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि गुजरात में भारी बारिश को चलते कहां कहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बुलेटिन में गणपति उत्सव की कुछ झलकियां भी आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणपति पूजा में पहुंचे और गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर गणपति उत्सव में शामिल हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुग्राम हिट एंड रन केस की, जिसमें दिल्ली से सटे गुरुग्राम बाइक टक्कर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बाइकर सिया का बयान सामने आया है और इसमें उसने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता के पिता ने पुलिस से एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़ने की मांग की है। दूसरी तरफ आरोपी से जानबूझकर टक्कर मारने से इनकार किया है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच अभी की जा रही है। तो गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पीड़ित ने पहली बार एक वीडियो बयान कर जारी कर आरोपी कल्याण बैसला के दावों पर सवाल उठाए हैं। आज तक के साथ आरोपी के इंटरव्यू के बाद पीड़ित सिया ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर उसने आरोपी को परेशान किया या पिंच किया था तो आरोपी ने उसका पीछा आखिर क्यों किया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर लेन बदली और उसे जानकर टक्कर मारी गई है, ऐसा सिया का कहना है। तो ये वीडियो जो तेजी से अब वायरल हो रहा है और पीड़िता ने आरोपी पर सवाल उठाए हैं कि आरोपी ने मेरा पीछा आखिर क्यों किया और उसके बाद एक लेन में जाके आरोपी ने अपनी गाड़ी से, आप ये तस्वीरें देखें, उसको टक्कर मारी है, जिसको पीड़िता कह रही है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई है और पिता का कहना है अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पर होना चाहिए। तो गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पीड़ित सिया उर्फ शिवानी चौहान के परिवार वालों ने पुलिस से मुलाकात की। परिवार ने मामले में दर्ज एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़ने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि बाइक सवार शिवानी को कार से टक्कर मारने की घटना गंभीर थी और इसे महज सड़क हादसा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एकदम से वो गाड़ी आती है, उसका पीछा कर रही है सिया का और एक लेन में जाकर उस बाइक को टक्कर मार देती है।
1: जी, आपने अभी थाने पे गए हैं आप गुरुग्राम में, क्या बात हुई है पुलिस से, क्या उनको आप लोगों ने कहा है?
2: हमने जब थाने पे गए थे तो ऑलरेडी पुलिस ने अपनी कंप्लेंट, उन्होंने एफआईआर काट रखी थी, फिर भी हमने एक अपनी तरफ से एक राइटिंग के अंदर कंप्लेंट दी है उन्हें, जिसमें उन्होंने रिसीविंग दी है, तो उसके अंदर यही कहा है हमने, जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है हिट एंड रन का और मर्डर का केस, तो उसके अंदर कोई नॉर्मल धाराएं ना लगाएं, क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं है। चलो, वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारी बेटी को कुछ हुआ नहीं, जिस प्रकार से इतनी दूर घसीटती हुई उसकी बाइक गई है, वो गिरी है भाई, रोड के ऊपर गिरी है, ये जानबूझ के एक प्लान करके मारा गया हिट है, तो ये क्राइम की उसमें आता है और बिल्कुल आपराधिक जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उन पे होनी चाहिए और वही धारा लगनी चाहिए।
0: और हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, देखिए, हम पीड़िता के पिता को सुन रहे थे जो कि कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर की वो मांग उठा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है हिमांशु?
3: देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने जब सिया के फादर पहुंचते हैं वकील के साथ कंप्लेन लेके गुड़गांव, तो उसके पहले पुलिस ने जो वायरल वीडियो था उसको संज्ञान में लेते हुए एक FIR दर्ज कर ली थी। अब जब पीड़ित के फैमिली के लोग पहुंचते हैं तो अभी जो हमने बात की सिया के फादर रोशन चौहान जी से, उनका कहना था कि उन्होंने अपनी रिटन कंप्लेन दी है जो रिसीव कर ली गई है, और साथ साथ उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर लगाने की मांग किया, हिट एंड रन दो धाराएं जोड़ने की मांग की है, जो रोशन चौहान जी हैं जिनसे हमारी अभी बात हुई, उनका कहना है ये उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा है। अब पुलिस किसी भी वक्त, गुड़गांव पुलिस जो है उसने टीम बनाई है जो सिया का स्टेटमेंट दर्ज करेगी, और सिया का स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए कालका जी जहां पर हम मौजूद हैं उनके घर पुलिस की टीम पहुंचेगी, यहां पर स्टेटमेंट रजिस्टर किया जाएगा। चूंकि दोनों तरफ का जो बयान है वो काफी कंट्राडिक्ट है, ऐसे में जो वीडियो एलिमेंट है वो पूजा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, और जो वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वायरल हिस्सा है वो देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। लेकिन अब यहां पर चूंकि कंप्लेन पुलिस के पास है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, और जैसा कि आरोपी लगातार ये कह रहा है कि पूरा वीडियो सीक्वेंस देखा जाना जरूरी है, तो पुलिस जाहिर तौर पर जो पूरा वीडियो सीक्वेंस है वो तो देखेगी, लेकिन वो वीडियो सीक्वेंस इस एक्सीडेंट का कारण कैसे हो सकते हैं ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वो जानबूझकर किया गया क्या, क्योंकि सिया और उनकी फैमिली का सीधा आरोप है कि जानबूझकर लेन बदली गई, लेन बदलने के बाद टक्कर मारी गई, वीडियो में ये पूरा सीक्वेंस नजर आ रहा है। बस यहां पर गनीमत ये रही कि सिया वहीं पर गिर जाती और बाइक घसीटते हुए दूर चली जाती है, और यही वजह शायद सिया को चोट कम लगी, यहां पर सिया को गंभीर चोटें भी लग सकती थी पूजा काफी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों गाड़ियां रफ्तार में थी, सड़क पर थी मेन, पीछे से भी गाड़ी आ सकती थी जिसकी वो चपेट में आ सकती थी, तो काफी कुछ यहाँ पे हो सकता था। अब जो मांग है सिया की फैमिली का अटेम्प्ट टू मर्डर का, देखते हैं कि पुलिस को इन तमाम वीडियोस के आधार पर कैसे आगे बढ़ती है और कब पहुंचती है, क्या स्टेटमेंट दर्ज करती है।
0: चलिए ठीक है मानशु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वहीं गुरुग्राम हिट एंड रन केस में पीड़ित महिला बाइकर ने हादसे का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई है। हालांकि आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है।
4: Hey guys, see other side and please watch this video till end.
5: गुरुग्राम से आई ये तस्वीरें खौफ ज़दा कर देती हैं।
4: Hey guys, see other side.
5: एक महिला बाइकर को कार सवार पहले धमकाता है, फिर टक्कर मारता है, महिला सड़क पर गिर जाती है। महिला बाइकर अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर निकली थी, तभी कार सवार मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वो महिला बाइकर को चेज करने की कोशिश कर रहा था।
4: वो मुझे स्टार्टिंग से चेज करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ, एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक।
5: ये सभी वीडियो बाइकर्स के हेलमेट और अन्य गियर्स में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार बेकाबू रफ्तार से महिला बाइकर की तरफ जाता है और उसे टक्कर मार देता है। हादसे के बाद पीड़िता का दोस्त कार वाले का पीछा करता है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताते हुए मौके से भाग जाता है। इसके बाद महिला बाइकर ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की और आरोपी को बेनकाब करने की कोशिश की।
4: कंटिन्यूसली वो चेस करता है, एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ऊपर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
5: गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर खुद संज्ञान लिया और सेक्टर 56 थाने में आरोपी कार चालक के खिलाफ पहले केस दर्ज किया और फिर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।
6: इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता केस मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो। उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी।
0: और एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी पर हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक और मामला गुरुग्राम से सामने आया है कि रिटायर्ड एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं उनके उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद अब उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैग्नम ग्लोबल पार्क से उसको गिरफ्तार किया गया है। मैग्नम ग्लोबल पार्क में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी पर हमला किया गया था और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
5: ये तस्वीरें कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की हैं, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। मामला गुरुवार रात करीब 8 बजे का है, जब अमित अपने परिवार के साथ मैग्नम ग्लोबल पार्क के गोंडो रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे थे, जहां कार पार्क करने को लेकर उनका पार्किंग अटेंडेंट से विवाद हो गया। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वे वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
7: उसमें हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे।
5: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
7: खाना खाने गए थे
8: जी,
7: तो वहां मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे, और भी पार्किंग अटेंडेंट्स थे, उन्हें किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी।
5: आखिर में एक शेफ ने बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया। अमित गुप्ता ने अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
7: हॉस्पिटल ने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
5: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।
9: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है।
5: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: तो वहीं राजस्थान में कल आए नगर निगम के नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी 5 नगर निगम में विजयी रही और कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से संतोष करना पड़ा है, जबकि 4 निगम जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में त्रिशंकु स्थिति है, और यानी कि किसी को बहुमत नहीं मिली। राजस्थान में हुए निकाय चुनावों में कहां पर किसको कितनी सीट मिली है, किसने जीत हासिल की है, बीजेपी ने बाजी मारी है। और वहीं आपको बताते हैं, बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस को 1 और त्रिशंकु यानी कि 4 यहां पर सीटें मिली है। और वहीं किसका कहां पर दबदबा है वो आप समझिए, बीजेपी का 5 जगह पे जीत हासिल हुई है, जिसमें जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा जगह है जहां पर बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं राजस्थान निकाय चुनाव में सीटों पर गणित आप समझिए, अजमेर में लगभग 80 सीट, अलवर में 65 और वहां पर बीजेपी की जीत उदयपुर में हासिल हुई है। वहीं बीजेपी ने कोटा में बाजी मारी है, जयपुर में भी बीजेपी की जीत, कांग्रेस की जीत बीकानेर और भीलवाड़ा में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो 5 जगहों पर बीजेपी ने विजय हासिल की है। अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
10: राजस्थान में बीजेपी के इस जश्न की कई वजह हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निकाय चुनाव के बाद राहत की सांस ली है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि राजस्थान के 10 नगर निगम में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और 4 में किसी को बहुमत नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस जीत से काफी उत्साहित दिखे और जनता का शुक्रिया अदा किया।
11: नगर निकाय के राजस्थान की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है।
10: निकाय चुनाव में बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसने अजमेर, बीकानेर को छोड़कर अधिकतर बड़े शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखा। तो निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली, क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके पार्टी ने उन्हें चुना। एक अनजान चेहरे पर दाव लगाने के बावजूद निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भजन लाल शर्मा की 2.5 साल की सरकार में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। बीजेपी के लिए चिंता की बात इस रिजल्ट में अजमेर को लेकर रही, जहां पिछले 36 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था। अर्जुन मेघवाल के गढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी की 10 साल पुरानी सत्ता ढहा दी।
8: केंद्रीय मंत्रियों के लिए जरूर ये सबक लेने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वहां बीकानेर में बीजेपी हारी है, या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वहां पर 44-44 कांग्रेस और बीजेपी रही है जोधपुर में, या फिर अजमेर में जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में सफल हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने इलाके में स्पष्ट जीत दिला पाए हैं और बूंदी में भी अब जिला परिषद में शहरी सरकार बना पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जहां जहां इनका प्रभाव रहा है वहां पर अच्छी जीत हासिल की है।
0: शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो 5 जगहों पर जीती है उसके उनके लिए ये जीत इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, इन 5 जगहों की बात करें तो?
8: देखिए, इस लिहाज से आप समझिए किसी भी चुनाव की तुलना पिछले चुनाव से होती है। पिछले चुनाव में अगर देखें आप तो परिसीमन से पहले 196 निकाय थे, उसमें से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। 125 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और केवल बीजेपी 61 पर रह गई थी। यहां पर तस्वीर पलट दी है बीजेपी ने और जो पिछली बार उसे हार मिली थी उसे उन्होंने जीत में बदला है। किसी भी चुनाव की तुलना आप पिछले चुनाव से ही करेंगे और इसी तरह से अगर आप इस वोट शेयर के हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस का पिछले चुनाव में वोट शेयर 40% के ऊपर था, जो कि इस बार 34% पर आया है। निर्दलीय 2.5% इस बार ज्यादा गए हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात अजमेर और बीकानेर जैसे बड़े शहर रहे हैं। अजमेर अगर नगर निगम को छोड़ दें तो आसपास के सारे वहां पर इलाके में बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। पुष्कर में क्लीन स्वीप हुआ है, किशनगढ़ में जीत मिली है, तो अजमेर शहर उनके लिए चिंता की बात है और एक बीकानेर का इलाका है जहां पर बीजेपी के लिए चिंता की बात है। जोधपुर में भी बराबरी का टक्कर है। बाकी अगर छोटे निकाय चुनाव देखें, नगर पालिका और जिला परिषद, उनमें बीजेपी ने काफी अच्छा किया है। पिछली बार कांग्रेस की तुलना में अगर देखें तो
0: ठीक है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने इस जनादेश को झूठ के सामने सत्य की जीत बताया है और कहा है कि जनता ने डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों पर मुहर लगाई है। पीएम ने विजयी प्रत्याशियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिशा सालिन संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कही है। आज तक को सीबीआई की एफआईआर की कॉपी मिली जिसमें जिन लोगों की भूमिका की जांच की बात कही जा रही है उनमें आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनू मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है जिसमें सचिन बाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की गई थी। तो दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात तो कही है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज किए गए बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनू मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती और रोहन रॉय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका की भी जांच दायरे में है। तो वहीं देश भर में इस वक्त एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मोरिया। पंडालों में यही आवाज सुनाई दे रही है। घरों में बप्पा का आगमन हुआ है। खासकर महाराष्ट्र और मुंबई में पंडालों की रौनक देखने लायक है। भक्तों की भीड़ जिसमें सामान्य लोगों के साथ राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी सितारों ने बप्पा को जोरों शोरों से स्वागत किया है और अपने यहां पर बुलाया है। तो वही देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। वहीं महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह लालबाग चौराजा के दरबार में पहुंचे। यहां पर उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना उन्होंने की। तो मुंबई में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ चुका है और इस भक्ति में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक के सितारे भी पूरी आस्था के साथ शामिल हुए हैं।

0: मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: सुपर 8 में आ वक्त का एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
10: टाटा ए आई जी है तो भरोसा है।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
0: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
7: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हिट एंड रन केस में आरोपी के बयान के बाद सामने आई लेडी बाइकर सिया, कहा शुरू से ही पीछा कर रहा था, जानबूझकर मारी टक्कर, एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। शसालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले में आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर करेंगे प्रदर्शन, सचिन पायलट भी सड़क पर उतरेंगे, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवान। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण, कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया तो कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 10 नगर निगमों में 5 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस सिर्फ 1 में सिमट। राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा, निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा, पीएम मोदी ने जताया आभार। राजस्थान निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय। निकाय चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा राजस्थान में डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत। 47 नगर परिषदों के नतीजों में भी बीजेपी आगे, बीजेपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर दर्ज की जीत। निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, 4 नगर निगमों में त्रिशंकु नतीजों में बढ़ी सियासी गति। जोधपुर, अलवर, अजमेर और पाली में किसी को बहुमत नहीं मिली, बोर्ड बनाने के लिए जी तोड़ दौड़ जारी। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, मुख्यमंत्री के गढ़ में निर्दलीयों ने चौंकाया। निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा आरोप, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया गया आरोप। राजस्थान निकाय चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे, 12 में आम आदमी पार्टी को बहुमत तो नोखा में सीपीएम बनाएगी बोर्ड। बंगाल में टीएमसी के भीतर फिर से बगावत के संकेत, 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दाव। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बागी सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे, जगदीश बसुनिया का दावा। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने साधी दूरी, वहीं बागी सांसद भी बोले कोई भी फैसला नहीं। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल पर कानूनी पेच, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, 22 सितंबर तक जवाब। हुगली में कागजों में मदरसा, जमीन पर कुछ नहीं, 252 अनधिकृत मदरसों की सूची में शामिल। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत तेज, टीएमसी विधायक और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने जताया विरोध। 252 मदरसों को बंद करने और 100 को नोटिस पर ताहा सिद्दीकी का विरोध, सरकार से फैसला बदलने की मांग की गई। नंदीग्राम फिर से बना बंगाल की सियासत का केंद्र, उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बागी गुट आमने सामने। नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी नहीं उतरेंगी, टीएमसी ने उम्मीदवार घोषित किया, सियासी अटकलों पर लगा विराम। नंदीग्राम में फिर से सियासी मुकाबले की तैयारी, बागी टीएमसी गुट ने नंदीग्राम और रेजीनगर में उम्मीदवार उतारे। यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले समानता के साथ विविधता का भी सम्मान जरूरी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर तय करेंगे रुख। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर और अन्य सामान जब्त करने का आरोप। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपेंद्र सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल हुए, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ली गई सदस्यता। दशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या और सूरज मंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। दशा सालियान केस पर वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का किया समर्थन, कहा दशा सालियान केस का राजनीतिकरण ना हो। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने की वजह से 7 घंटे के भीतर पार्टी का अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर से बढ़ाई लोगों की टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% हुई थी दर्ज। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज। मनोज जारांगे का मुंबई कूच का ऐलान, अंतरवाली सराटी से होंगे रवाना, 2 गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे जरांगे। मराठा समाज से जरांगे की अपील, जल्दबाजी ना करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान की अनुमति नहीं मिली फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम जरांगे। जरांगे को लेकर फडणवीस का दावा, लगभग सभी मांगे पूरी, न्यायालय के दायरे वाली मांगों पर प्रक्रिया जरूर। गणेशोत्सव में मुंबई में आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की अपील, लोगों को परेशानी में डालना उचित नहीं। यूपी चुनावों से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल, सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने की नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात, बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच होगा बड़ा एमओयू। कर्तव्य भवन में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की होगी सिंचाई। कर्तव्य भवन में यूपी समेत दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम मौजूद रहेंगे। टोंस नदी पर बनने वाले किशाऊ परियोजना से 6 राज्यों को पानी बिजली का लाभ मिलेगा। परियोजना से 97,000 हेक्टेयर के ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी। दशकों से लंबित परियोजना पर समझौते से दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों के जल संकट का समाधान होगा। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार की सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता निलंबित।
योगी सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। राजा भैया का जेंजी आंदोलन पर बड़ा बयान, बोले आंदोलन को विदेश से मिल रही है फंडिंग, बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज। वेल्लोर में मंत्री की प्रेस मीट के दौरान बिजली गुल हुई, मोबाइल की रोशनी में देना पड़ा इंटरव्यू, पीएमके ने पावर कट पर सरकार को घेरा। आईयूएमएल मंत्री शाहजहां का डीएमके पर हमला, राजा और शेखर बाबू के बयानों को बताया बेहद ही दुखद, बोले महिलाओं और परिवार को निशाना बनाना डीएमके के लिए आत्मघाती। दिल्ली में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में सीजीआई सूर्यकांत बोले कि अदालतों को सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर रखना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल, कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ माहौल, सैलानियों के लिए सौगात। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है मेडिकल टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम हुआ सुहावना, डल झील में शिकारी का मजा ले रहे हैं सैलानी। राजौरी में इस बार हुई अखरोट की शानदार पैदावार, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, अहमदाबाद समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में बारिश ने किया लोगों को काफी ज्यादा परेशान, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। लातेहार में गहरे पानी में 2 8 साल की बच्चियों की डूबने की वजह से मौत हुई, हादसे से गांव में पसरा सन्नाटा। महबूबाबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर भरा पानी, कई जगह ट्रैफिक ठप। नवसारी में डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। लालबाग के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, अमित शाह ने की फडणवीस के आवास पर पूजा। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी गणपति की पूजा, भक्तिभाव से की विनायक की आरती। नवनीत राणा और रवि राणा के घर गणेश उत्सव की धूम, पप्पा की भक्ति में लीन दिख रहा है परिवार। जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी, 40 वर्षों से गणेश जी के 3000 से अधिक स्वरूपों का संग्रह। अभिनेता अनिल नितिन मुकेश के घर भी पधारे बप्पा, परिवार संग विधि विधान से की पूजा अर्चना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की गई साझा। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी बप्पा की स्थापना हुई, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते दिखे सचिन। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति के साथ बप्पा की आराधना करती दिखी, विधि विधान से की गई बप्पा की स्थापना। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इंदौर में 7 करोड़ के आभूषणों से सजे खजुराना गणेश, ध्वजा पूजन के साथ गणेश उत्सव शुरू। अमृतसर में जनरेटर से जहरीली गैस लीक हुई, 4 लोग बेहोश, अस्पताल में 1 की मौत। इंदौर में साइबर ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लाख में बैंक अकाउंट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार सवार युवकों ने घर के बाहर बैठे लोगों पर बरसाए पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में दतिया गैंगवार के मुख्य आरोपी महेश यादव की मौत हुई, 11 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं सहारनपुर में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का खुलासा, लोहे जस्ता की प्लेट पर पीतल की परत चढ़ाकर बनाते थे सिक्के। गुरुग्राम हिट एंड रन पीड़ित ने जारी किया पहला वीडियो बयान, आज तक के इंटरव्यू में आरोपी के दावे पर पीड़ित का जवाब। पीड़ित ने आरोपी के दावे पर उठाए सवाल, पीड़ित का सवाल कि अगर हम चुटकी काट रहे थे तो मेरा पीछा क्यों किया। इंदौर के होटल में महिला की संदिग्ध मौत, साथ में मौजूद प्रेमी से पुलिस कर रही है पूछताछ। गया जंक्शन पर तस्करी के आरोप में युवती गिरफ्तार, 15 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ, दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ में छात्राओं के समर्थन में एएमयू छात्रों का प्रदर्शन, भोजन की गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता, प्रोक्टोरियल टीम पर कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हाथरस में नगर पालिका की जेसीबी के नीचे दबकर 11 साल की बच्ची की मौत हुई। सोनभद्र में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के गहने चोरी हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, वीडियो हुआ तेजी से वायरल। सहारनपुर में प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचे युवक की उल्टा लटका कर उसको पीटा गया, युवक को छोड़ने के बदले 5 लाख के लेन देन की चर्चा हुई, पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग की चपेट में आया मदरसा, पूरी इमारत जलकर खाक। बलिया में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान की निर्मम हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। फाजिलका में एक डॉक्टर का खून से लथपथ मिला शव, सर और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान, पुलिस की जांच जारी। पंचमहल से महाकाल दर्शन जा रहे यात्री की सड़क हादसे में मौत हुई, कालोल एक्सप्रेस वे पर भीषण टक्कर,
मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बना, मौत का कुआं, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत हुई, बचाने गया तीसरा शख्स हुआ घायल। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे, पुणे में नाना पाटेकर के घर गणेशोत्सव की धूम, बापा की भक्ति में डूबा परिवार। बॉलीवुड की मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बापा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। गणेश चतुर्थी पर सुनीता आहूजा ने बापा की पूजा की, परिवार की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दोहन सिंह पहुंचे अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। बेतिया में एक ज्वेलरी शोरूम में उद्घाटन में पहुंची फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर, शहर में दिखा ग्लैमर का रंग। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी ट्रेन पर हमले को लेकर रूस पर भड़के नेटो महासचिव मार्क रूटे, कहा इस हमले से पुतिन की बेताबी और लापरवाही उजागर। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हुए ट्रेन हमले को लेकर यूरोपीय संघ का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी देशों को डराने के लिए रूस ने किया हमला। सऊदी अरब के खमीस मुशैत एयरबेस पर हूती का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बनाया गया निशाना। जॉर्डन में हुए जानलेवा हमले पर मदद के दावों पर चीन ने जताया कड़ा विरोध, चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बताया बेबुनियाद। ओमान में ईरान और खाड़ी देशों के बीच होने वाली बैठक टली, नई तारीख पर बनी सहमति, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा सऊदी अरब के अनुरोध पर बैठक को टाला गया, हुर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर खाड़ी देशों की होनी बैठक।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:44 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:21 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन

कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

दान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि,

शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो

होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cold.

0: क्या 2027 में यूपी की दलित राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद अपनी बुआ यानी मायावती के विरुद्ध जाकर राजनीति करेंगे? यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मायावती ने पहले अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को साइड किया, फिर छोटे भतीजे ईशान आनंद का नाम चर्चा में आया, फिर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का इस्तीफा हुआ और अब भतीजी दीपिका आनंद का नाम सबसे आगे है। मायावती तय नहीं कर पा रही हैं कि किसे बनाएं किसे हटाएं। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपना समीकरण साधने में जुटे हैं। जो आकाश आनंद चंद्रशेखर को दिन रात कोसते थे, आज वही चंद्रशेखर आकाश को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दे रहे हैं।
1: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुष के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए हैं। वो आए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बहुजन समाज के जो महापुरुष से अधूरे काम को पूरा करेंगे। मैं उनको जो है, मैंने हमेशा उन्होंने कहा, उन्होंने भले मेरी कितनी आलोचना की हो सब पहले, लेकिन वो मैंने हमेशा उनको छोटा भाई माना है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी में हर व्यक्ति जो बहुजन समाज का और अपने महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते खुले कहने की बात।
0: यूपी की राजनीति में किंग मेकर बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर की बीएसपी से पुरानी अदावत है। वो बीएसपी की इस कलह का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। इधर मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि लोग पार्टी से निकाले गए वो बीएसपी अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में भ्रम फैला रहे हैं।
2: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में ना आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है, क्योंकि अभी भी ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि श्री अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है।
0: यूपी में बीएसपी के पतन के बाद दलित राजनीति में जो शून्य बना, उसे भुनाने की कोशिश बीजेपी कांग्रेस समाजवादियों ने की। 2024 में समाजवादी पार्टी को इसमें सफलता भी मिली, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया खुले तौर पर मायावती के भतीजे पर डोरे डाल रहे हैं। आकाश आनंद चुनावी राजनीति में अभी अनटेस्टेड हैं, लेकिन मायावती का भतीजा होने के नाते यूपी के दलित समाज में उनकी पहुंच है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आत्महत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। ऋषा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगालेगी सीबीआई। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डिडो मौर्य और सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर शक।

करेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भगवंत मान। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण, कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की अहम झलक के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। गुरुग्राम हिटन रन मामले में क्या है सच आज तक, देखिए पूरी कहानी। बाइकर शिवानी चौहान और कार से टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैसला की जुबानी। यूसीसी पर बिहार में घमासान, अमित शाह से मिलेंगे जेडीयू के संजय झा, चिराग ने भी उठाए सवाल। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। गुजरात में आ रही है आफत की बारिश, कल कैसे गुजरात के कई शहर बन गए समंदर। बुलेटिन के एक हिस्से में यह भी खबर प्रमुखता से होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं गुरुग्राम हिट एंड रन मामले के साथ, क्योंकि बाइकर शिवानी चौहान और सिया अब सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर शिवानी ने एक वीडियो जारी किया। शिवानी की बाइक को टक्कर मारने के आरोपी कार सवार कल्याण बैसला ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवानी के आरोपों को खारिज किया है और साथ ही शिवानी पर ही उकसाने का आरोप लगाया था। आज तक पर कल्याण का बयान आने के बाद शिवानी ने वीडियो जारी कर कल्याण के हर दावे पर सवाल उठाए। शिवानी ने आरोप लगाया कि कल्याण बैसला ने जानबूझकर लेन बदलकर चक्कर मारने की कोशिश की, इस टक्कर में उनकी जान भी जा सकती थी। आइए आपको दिखाते हैं कल्याण बैसला ने क्या कुछ कहा, उसके जवाब में शिवानी क्या कुछ कह रही है। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बैसला को किस तरीके से शिवानी के ही एक दोस्त ने रोका, लेकिन वो वहां से भाग निकला।
1: गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहां से भाग गया एंड आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की,
2: ये साइड में से बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे खींच रहे, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कहा। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल।
3: ये इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे, बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला।
2: इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में।
3: दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है। एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं, एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ, क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है।
2: कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे, मैंने भाई से बोला भी कि बल्कि यार दुख हो रहा मुझे।
3: अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं। आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है। व्हाट इफ कि अगर वो 2-3 सेकंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियां टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सूट हो रहा है।
0: इस बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है, बाइक राइडर शिवानी चौहान का परिवार सोमवार शाम गुरुग्राम पुलिस से मिला और दर्ज एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़ने की मांग की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।
4: जी, आपने अभी थाने पे गए हैं आप गुरुग्राम में, क्या बात हुई है पुलिस से, क्या उनको आप लोगों ने कहा है?
5: हमने जब थाने पे गए थे तो ऑलरेडी पुलिस ने अपनी कंप्लेंट, उन्होंने FRI काट रखी थी, फिर भी हमने एक अपनी तरफ से एक राइटिंग के अंदर कंप्लेंट दिए उन्हें, जिसमें उन्होंने रिसीविंग दी है, तो उसके अंदर यही कहा है हमने, जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है हिट एंड रन का और मर्डर का केस, तो उसके अंदर कोई नॉर्मल धाराएं ना लगाएं, क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं है। चलो वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारी बेटी को कुछ हुआ नहीं, जिस प्रकार से इतनी दूर घसीटती उसकी बाइक गई है, वो गिरी है भाई, रोड के ऊपर गिरी है, ये जानबूझ के एक प्लान करके मारा गया हिट है, तो ये क्राइम की उसमें आता है और बिल्कुल आपराधिक जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उन पे होनी चाहिए और वही धारा लगनी चाहिए।
0: हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जैसा कि पिता कह रहे हैं, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं जोड़ी जाएंगी? और दूसरा ये कि आरोपी कहाँ है? वीडियो तो जारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, वो कहाँ है इस वक्त?
6: देखिए, आरोपी के बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की टीम गांव पहुंची थी लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं जहां पर मैं मौजूद हूं, जो जानकारी है, क्योंकि कल एफआईआर तो पुलिस ने पहली एफआईआर स्वतः संज्ञान पे दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके बाद यहां से जो सिया है, सिया के फादर अपने एडवोकेट के पास साथ पहुंचे वहां पर थाने में, और थाने में पहुंचकर उन्होंने एक शिकायत दी। अब उस शिकायत के बाद पुलिस स्टेटमेंट दर्ज करने, जो लोकल पुलिस है वो स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए यहाँ पर आने वाली है। जो हमें जानकारी मिली है कि पुलिस की एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वही टीम स्टेटमेंट सिया का दर्ज करने के लिए दिल्ली कालका जी पहुंचेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी, तमाम जो वीडियो सबूत है वो पुलिस यहां पर लेगी, और उस वीडियो सबूत के बाद, जैसा कि आरोपी की तरफ से लगातार कहा गया कि भाई पूरा वीडियो अगर सिक्वेंस देखा जाए तो कहानी और निकले, क्योंकि उसका यह आरोप है कि सिर्फ दो वीडियो वायरल हो रहा है, और जो पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया। ये जो सिया के पिता, उनका भी कहना है कि जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़े। तो पुलिस अब पूरे इस मामले में एक्शन में है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, एक तो स्टेटमेंट के बाद, तमाम वीडियोस के बाद धाराएं और संगीन हो सकती हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम है वो लगातार सर्च कर रही है ताकि जल्द से जल्द कल्याण बैसला को पकड़ा जा सके और इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात राजस्थान में कल आए निकाय चुनाव के नतीजों की करेंगे। राजस्थान के 10 निगमों में से 5 पर जीतकर बीजेपी ने चुनावी परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन नीट पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन के बाद राजस्थान में मिली इस जीत से बीजेपी के जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस धांधली का आरोप लगाकर सवाल खड़े कर रही।
7: मिठाइयां बट रही हैं, आतिशबाजी हो रही है। गुलाबी शहर जयपुर में केसरिया परचम लहरा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के चेहरे का भाव बता रहा है कि चुनावी नतीजों ने उन्हें कितनी राहत दी है।
8: सभी कार्यकर्ताओं को यह जीत उनके लिए समर्पित करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है, उन तमाम युवाओं की जीत है जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और आज भी उनका भरोसा कायम है। मैं ये जीत उन सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को मैं समर्पित करता हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है।
7: राजस्थान में कल आए नगर निगम के नतीजों में बीजेपी 5 नगर निगम में विजयी रही है। कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से संतोष करना पड़ा, जबकि 4 नगर निगम जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में त्रिशंकु स्थिति है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिला।
9: ये मतदान का रिजल्ट आदरणीय मोदी जी को और हमारे साथ में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नेतृत्व को, जिस प्रकार से काम किया ऐतिहासिक हमारी सरकार ने, उसको जाता है। और कांग्रेस जिस प्रकार की मिथ्याएं फैला रही है, उस मिथ्याओं पर ये मतदान, ये जनता का आशीर्वाद, ये जनादेश एक करारा थप्पड़ है।
7: राजस्थान निकाय चुनाव के परिणाम से जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। यहाँ के मेरे परिवारजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर संदेश देखिए, घनी घनी बधाइयां राजस्थान। राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पीएम मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा के सुशासन और नीति पर जनता की मुहर बताया। बीजेपी में जश्न है और उधर कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा रही है।
10: वीवीपैट नहीं लगाई वीवीपैट, फिर भी हम तो चलो जो बेईमानी ये कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ये तो सरेआम चोड़ा दाढ़ी कर रहे हैं दिन दहाड़े, ये पुलिस का काम रह गया। आज 3 साल में मुझे इस ऑफिस में आना पड़ा, मैं आज तक नहीं आया एसपी ऑफिस, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों ने जो तानाशाही कर रखी है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी कर रखी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मैं इनको आगाह करने के लिए आया हूं, अगर ऐसा करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है।
7: जाहिर है अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन परिणाम तो परिणाम है। बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में सफलता इसलिए भी अहम है क्योंकि सीजेपी के दिल्ली आंदोलन के बाद राजस्थान में ये पहला चुनाव था। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये तो अब साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए जीत और जश्न का माहौल है, लेकिन कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं?
11: बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, वहाँ अलवर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नगर निगम क्या 10 निकायों में से 10 को नुकसान हुआ है बीजेपी को। अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर हारा है। भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अजमेर फंस गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत इतने दिन तक कैंपेन किए वहाँ पर, जोधपुर में, वहाँ पर भी जीत नहीं दिला पाए। तो जो बड़े नेता थे, या वसुंधरा राजे के यहाँ झालावाड़ हारी है बीजेपी, तो बड़े जो नेता हैं वो जीत नहीं दिला पाए हैं, ये सच्चाई है। केवल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में स्पष्ट बहुमत दिलाया है और बूंदी नगर परिषद में भी बहुमत दिलाया है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता नाकामयाब रहे हैं। टीम मोदी के जो सदस्य थे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है निकाय चुनाव में। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी यही स्थिति है। अशोक गहलोत जोधपुर में अच्छा नहीं कर पाए अपने, न विधानसभा क्षेत्र में न लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में। केवल एक सचिन पायलट टोंक में स्पष्ट बहुमत दिला पाए हैं कांग्रेस को। जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो भी मालाखेड़ा में निर्दलियों के भरोसे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी निर्दलियों के भरोसे हैं लक्ष्मणगढ़ में, जबकि वो लगातार राजस्थान छोड़कर लक्ष्मणगढ़ में ही बैठे थे। तो बड़े नेताओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। अब ये बड़े नेताओं के लिए सोचने की बात है दोनों ही पार्टियों में। बीजेपी के लिए सोचने के लिए बात है कि बड़े शहरों में उनका जनाधार यूजीसी के वजह से कम हुआ है, तो इस मुद्दे को कैसे ठीक किया जाए। मोहन भागवत ने बयान दिया है कि यूजीसी को लेकर अभी फाइनल नहीं है, अभी ये कानून नहीं बना है, इसे अभी लागू नहीं किया गया। तो समझिए कि आरएसएस प्रमुख को इस पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखिएगा कि 2.5% निर्दलीय गया है, वो कांग्रेस में नहीं गया है, वो निर्दलीय गया है। पिछली बार से तुलना करें तो इस बार 27% से ज़्यादा लोगों ने निर्दलीयों को वोट दिया है, कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प को छोड़कर। कांग्रेस 40% से सीधे 34% आई है, बड़ा नुकसान है, बीजेपी बड़ा नहीं कर पाई है। तो
0: लेकिन शरद, जो 4 नगर निगम है जहां पर त्रिशंकु की स्थिति है, त्रिशंकु की स्थिति से बचने के लिए और पार्षदों को टूट से बचाने के लिए क्या वहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है?
11: ये नेहा, आपने अच्छी बात की। 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और 14 सितंबर को दूसरे चरण का। उसके बाद वहीं से सारे पार्षदों को उठा लिया गया और अपने अपने रिजॉर्ट में लेकर चले गए। कमाल की बात है, आपने एक दृश्य नहीं देखा होगा कहीं कल कि कोई पार्षद जीत का जश्न मना रहा हो, उस सर्टिफिकेट लेने तक के लिए मतगणना स्थल में नहीं भेजा गया, एजेंट ने लिया ताकि कोई लूट न ले जाए। ऐसे निर्दलियों का खौफ है दोनों दलों में। हालांकि जो हारे थे उन्हें रिजॉर्ट से बाहर कर दिया गया है, मगर जो जीते हैं वो सारे के सारे रिजॉर्ट में बंद है। अब खबर आ रही है कांग्रेस जो है अब दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की सोच रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है यहां से ले जाकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है खरीद फरोख्त हो सकती है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो आज नहीं, 14 तारीख को शुरू हो गया था। सारे पार्षदों को बंद कर दिया गया है, किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, फोन भी उनके रख लिए गए हैं जहां जहां पर निर्दलीय फैक्टर हैं। अब भरतपुर का इलाका है, नया भरतपुर के इलाके में मैं इतने सालों से देख रहा हूं, वहां तो कांग्रेस बीजेपी का टिकट ही नहीं लेते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं कि उसके बाद तोल मोल करेंगे और जो ज्यादा कीमत देगा उसके साथ जाएंगे। तो ये भी एक टेंडेंसी रही है कांग्रेस के लिए। बड़ा फैक्टर किसान बेल्ट रहा है हनुमानगढ़ से गंगानगर का, वहां पर निर्दलीय सबसे ज्यादा जीते हैं नेहा।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और प्रशासन पर आरोपों की एक झड़ी सी लगाती है, वो क्या कुछ कह रहे हैं देखिए।
12: मैं डीजीपी साहब से कहना चाहता हूं, सीए से कहना चाहता हूं, राज्य निर्वाचन आयुक्त से मैं कहना चाहता हूं कि इस बेईमानी में, इस पाप में आप भागीदार मत बनो। भजनलाल जी की कुर्सी तो जाएगी, लेकिन आपकी कुर्सी के भी आंच आने वाली है। अगर आप बेईमानी करोगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये जनता चुप नहीं बैठने वाली है। आप ब्यूरोक्रेसी से डरा करके, पूछ पूछ के कलेक्टरों से, मैंने पहले भी ट्वीट भी किया है, मैंने बोला भी है, हर कलेक्टर को यह दबाया गया, कौन जीत सकता है, किसको खरीद सकते हैं। 1000 के लगभग रूम बुक कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 1000 से ज्यादा। बाड़ेबंदी, पहले दिन से बाड़ेबंदी। अरे सरकार है आपकी, आप पे अपने कार्यकर्ताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर किस पे होगा। और पहले दिन से यह चला रखा है, निर्दलियों को पकड़ो, जो पैसा ले रहे दे दो। मैं डीजीपी साहब से कहना चाहता
0: हूं। इस बीच यूसीसी पर घमासान भी तेज हो गया है। खबर यह आई है कि जेडीयू के संजय झा इस मसले पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। एक दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2029 से पहले सभी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। खबर यह है कि यूसीसी के मुद्दे पर जेडीयू बहुत सहज नहीं है। इसी क्रम में संजय झा अब अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं।
13: यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय झा जी ने स्वयं ये जानकारी भी दी है।
14: जनता दल यूनाइटेड से पूछिए उनका क्या स्टैंड है, ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है। सरकार के पार्ट तो वो हैं बिहार में, तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, ये जो मुलाकात होने वाली है इसमें दरअसल मुद्दा ये है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं यूसीसी के जिससे सहज नहीं हो पा रही है जेडीयू।
15: नेहा देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड ने पहले से साफ कर रखा है कि यूसीसी का जो मुद्दा है उस पर वो आम सहमति से ही इसे लागू करने के पक्ष में है। नीतीश कुमार शुरू से इस मसले पर इसी लाइन पे रहे हैं। उन्होंने विधि आयोग को जब लेटर लिखा था यूसीसी के सवाल पे, तब भी इन्हीं बातों को रखा था, और अभी भी जेडीयू लगभग उसी स्टैंड पे कायम है। लेकिन कल जब ये चर्चा छिड़ी कि अमित शाह का बयान आया और उन्होंने जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में से एक टाइम फ्रेम में लागू करने की बात कही, तो उसके बाद एक बहस छिड़ी बिहार में। और जेडीयू ने यहां तक कहा कि बिहार में अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है, यहां एनडीए की सरकार है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे थे और यही वजह रही कि कल दोपहर ही जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया राजीव रंजन की तरफ से कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जल्द ही इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। मतलब अब जो भी होगा वो डायलॉग फोरम पे होगा, कहाँ आपत्तियां हैं, कैसे इसको केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, केंद्रीय गृह मंत्री का क्या प्लान है, उस पर जब संजय झा बैठकर बात करेंगे तो हो सकता है आगे का रास्ता भी बने। लेकिन सवाल केवल जेडीयू का नहीं है नेहा, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि वो पहले ड्राफ्ट देखेंगे।
0: तो चिराग पासवान ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दिशा सालियान मौत मिस्ट्री की अब बात करेंगे, जिसमें दिशा सालियान के को लेकर सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की बात कह दी है। दिशा के पिता ने अपने दर्ज के बयान में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और रोहन रॉय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की भूमिका की जांच भी दायरे में।
16: क्या 6 साल बाद दिशा सालियान के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या दिशा की मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझा पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही दिशा सालियान की संदिग्ध मौत मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन जब से सीबीआई ने जांच की कमान संभाली है, इस पर सियासत भी तेज हो गई है।
17: खास बात है कि सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाझे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है।
18: जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर वन आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक, और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और गैंगरेप के रिकॉर्ड बदले, बाद में फोरेंसिक लैब का वो अधिकारी, उसके बाद में इसमें जितने पुलिस अधिकारी ने सारे झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो, और एसआईटी के मेंबर्स और जिन जिन सीनियर के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सारे अधिकारी इसमें आरोपी है।
17: दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। उस समय से आत्महत्या का मामला बताकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत से जुड़े तथ्यों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
19: कि स्वयं दिशा के पिता कह रहे थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसे पीड़ित प्रताड़ित करके अत्याचारित करके उसका मर्डर हुआ है। क्या एक बाप का सुनना नहीं चाहिए था उद्धव ठाकरे सरकार ने? पर उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार जानबूझकर इस पूरे मामले में लीपाभूति करते नजर आई।
17: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन आरोपियों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
20: बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन है इस पूरे पिटीशन में? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए। पर पहले सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है और इसीलिए सीबीआई ने जो आरोपी के नाम है वो सूत्रों के मुताबिक आरोपी के नाम जाहिर नहीं किए हैं और एफआईआर में भी इस ऑफेंस को सस्पेक्टेड ऑफेंस के तौर पर कहा है। सतीश सालियान का स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया और उस बेसिस पर ये एफआईआर दर्ज की गई। कैमरा पर्सन बहादत के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और अब बात बारिश की करेंगे कि गुजरात में बारिश ने एक बार फिर जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। अहमदाबाद से लेकर आणंद, भरूच और साबरकांठा तक भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आई हैं। कहीं सड़कें तालाब बन गईं तो कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया।

0: बारिश की बौछारें, सड़कों पर पानी, पानी के बीच फंसे वाहन और मदद के लिए आगे आते लोग। गुजरात में बारिश ने एक साथ कई शहरों और गांवों की मुश्किलें बढ़ा दी। सबसे पहले तस्वीरें अहमदाबाद की। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग देखने को मिला। सड़कों पर पानी जमा हुआ और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद के शैला इलाके में हालात और भी ज्यादा बिगड़े। VVIP रोड पर इतना पानी भर गया कि सड़क पूरी तरह जलमग्न नजर आई। पानी के बीच से वाहन गुजरते दिखाई दिए। अब तस्वीर आनंद के बोरसद की। महज कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। गांव का मुख्य प्रवेश मार्ग हो या डेरी चौक, हर तरफ घुटनों तक पानी नजर आया। पानी की गहराई ने वाहनों की रफ्तार भी रोक दी। कई वाहन बीच रास्ते में ही बंद पड़ गए। इंदिरा नगरी में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। तालाब का पानी 20 से ज्यादा मकानों में घुस गया। घर के अंदर पानी भरने के बाद लोगों ने सामान और अनाज को बचाने के लिए उन्हें खाट और पलंग के ऊपर रख दिया। डेयरी चौक की 5 से ज्यादा दुकानों में भी पानी घुस गया। वहीं भेरा हाई स्कूल परिसर में भी भारी जलभराव रहा। बारिश जहां आफत लेकर आई, वहीं किसानों के लिए राहत की खबर भी बनी। खेड़ा और आनंद में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने सूखने की कगार पर पहुंच चुकी फसलों को संजीवनी दी। बौरसद में करीब 5 से 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि तारापुर में करीब 5 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। खेड़ा जिले में भी बारिश ने जोर पकड़ा। नडियाद, कपड़वंज, कटलाल और फागवेल समेत कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं का असर देखने को मिला। मात्र में करीब 3 इंच, नडियाद में 3.5 इंच, वसो में 2.25 इंच, जबकि खेड़ा में करीब 1 इंच बारिश दर्ज की गई। अब चलते हैं भरूच, जहां करीब 4 इंच भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। अपार्टमेंट की पार्किंग धस गई और 7 से 8 कारें नाले में जा गिरी। पूर्व और पश्चिम भरूच को जोड़ने वाले प्रमुख स्वामी मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया। झाड़ेश्वर से कसक और स्टेशन रोड पर यातायात ठप हो गया। अंकलेश्वर में डायवर्जन पर भी पानी भरने से आवाजाही बंद करनी पड़ी। अब साबरकांठा के हिम्मत नगर की तस्वीर। महज करीब 3 इंच बारिश के बाद हिम्मत नगर धनसूरा रोड तालाब में तब्दील हो गया। ये कोई तालाब नहीं, बल्कि साबरकांठा और अरावली को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। अहमदाबाद से लेकर बोरसद, भरूच से हिम्मत नगर तक जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गुजरात से अतुल तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक दिखाई दे रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे। यहां उन्हें बप्पा से देश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुंबई में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ चुका है। भक्ति में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के तमाम सितारे पूरी आस्था के साथ शामिल हो गए।

0: मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गुरुग्राम में टेरर मामले में सामने आई पीड़ित लेडी बाइकर सिया का पीछा कर रहा था आरोपी, जानबूझकर मारी टक्कर, एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। दिशा सालियान के

0: पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण। कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। गुजरात में बारिश का कहर। अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जलभराव से हाहाकार। कई सड़कें बनी दरिया, कई घर दुकानों में घुसा पानी। और गुरुग्राम हिट एंड रन मामले से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर पीड़ित बाइकर सिया ने कहा है कि जानबूझकर उसे टक्कर मारी गई और ये टक्कर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
1: जो मुझे चेस कर रहा था और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वॉज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए। उस तब मैं डर जाती हूँ। सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है। उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक उसके पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे। सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तो तेज चल रही है। और फिर उसके बाद जब मुझे ये लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे। एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है। एंड इसी हफड़ा तपड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से, जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
0: और रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ट्रेन में फंसे यात्री की हेड कांस्टेबल ने बचाई जान, जोखिम में डालकर कोच के नीचे घुसकर किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग की चपेट में आया मदरसा, पूरी इमारत जलकर खाक। हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया मेडिकल लापरवाही का आरोप। एआईएमआईएम विधायक ने कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, नकाबपोश हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत, बचाने गया तीसरा शख्स घायल। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 10 नगर निगमों में 5 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस सिमटी सिर्फ 1 पर। राजस्थान का जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा, निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा, पीएम मोदी ने जताया आभार। राजस्थान निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय हुई है। निकाय चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने जनता को किया धन्यवाद, कहा राजस्थान की डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत हुई है। 47 नगर परिषदों के नतीजों में बीजेपी आगे, बीजेपी ने 21 और कांग्रेस 17 सीटों पर दर्ज की जीत। निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, 4 नगर निगमों में त्रिशंकु नतीजों से बढ़ी सियासी गर्मी। जोधपुर, अलवर, अजमेर और पाली में किसी को बहुमत नहीं, बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ का दौर शुरू। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, मुख्यमंत्री के गढ़ में निर्दलियों ने चौंकाया। निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा आरोप, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। राजस्थान निकाय चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे, 12 में आपको बहुमत तो नोखा में सीपीएम बनाएगी बोर्ड। बंगाल में टीएमसी भीतर फिर बगावत के संकेत, 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दावा। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बागी सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे, जगदीश बसुनिया का दावा। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने साधी दूरी, बागी सांसद ही बोले कोई फैसला नहीं। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल पर कानूनी पेच, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित। हुगली में कागजों में मदरसा, जमीन पर कुछ नहीं, 252 अनधिकृत मदरसों की सूची में शामिल। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत तेज, टीएमसी विधायक और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने जताया विरोध। 252 मदरसों को बंद करने और 100 को नोटिस पर ताहा सिद्दीकी का विरोध, सरकार से फैसला बदलने की मांग। नंदीग्राम फिर बना बंगाल की सियासत का केंद्र, उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बागी गुट आमने सामने। नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बैनर्जी नहीं उतरेंगी, टीएमसी ने उम्मीदवार घोषित किया। नंदीग्राम में फिर सियासी मुकाबले की तैयारी, बागी टीएमसी गुट ने नंदीग्राम और एजी नगर में उम्मीदवार उतारे। यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले समानता के साथ विविधता जरूरी। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर और अन्य सामान जब्त करने का आरोप। अमृतसर में किसानों की मांग को लेकर बीकेयू उग्राह का डीसी कार्यालय का घेराव, सभी गेट किए गए बंद। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी मिली सदस्यता। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। दिशा सालियान केस पर वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का किया समर्थन, कहा दिशा सालियान मामले का राजनीतिकरण न हो। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाया टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82%। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज। मनोज जरांगे का मुंबई कूच का ऐलान, अंतरवाली सराटी से होंगे रवाना, 2 गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे। मराठा समाज से जरांगे की अपील, जल्दबाजी ना करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान में अनुमति नहीं मिली फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम है जरांगे। जरांगे को लेकर फडणवीस का दावा, लगभग सभी मांगे पूरी, न्यायालय के दायरे में सभी मांगों पर प्रक्रिया जरूरी। गणेशोत्सव में मुंबई में आंदोलन पर महाराष्ट्र। गणेशोत्सव में मुंबई में आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की अपील, लोगों को परेशानी में डालना उचित नहीं है। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में सियासी गलियारों में हलचल, सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से की मुलाकात, बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच होगा बड़ा एमओयू। कर्तव्य भवन में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की होगी सिंचाई। कर्तव्य भवन में यूपी समेत दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम मौजूद रहेंगे। टोंस नदी पर बनने वाली किशाऊ परियोजना से 6 राज्यों को पानी बिजली का लाभ मिलेगा। परियोजना से 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी। दशकों से लंबित परियोजना पर समझौते से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के जल संकट का समाधान होगा। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार की सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता निलंबित। योगी सरकार के वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5,00,000 तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। राजा भैया का जेएनसी आंदोलन पर बड़ा बयान, बोले आंदोलन को विदेश से मिल रही है फंडिंग, बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बिल्लौर मंत्री सेंगोटैयन की प्रेस मीट के दौरान बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में देना पड़ा इंटरव्यू। IUML मंत्री शाहजहां का DMK पर हमला, राजा और शेखर बाबू के बयानों को बताया बेहद दुखद। दिल्ली में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में CJI सूर्यकांत बोले अदालतों को सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर रखना चाहिए। दिल्ली NCR में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल, कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ माहौल, सैलानियों के लिए सौगात। कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता, मदद के लिए गांव-गांव पहुंच रही है मेडिकल की टीमें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम सुहाना, डल झील में शिकारे का मजा ले रहे हैं सैलानी। रजौरी में इस बार हुई अखरोट की शानदार पैदावार, किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, अहमदाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट। अहमदाबाद में बारिश ने किया परेशान, कई इलाकों में भर गया है बारिश का पानी। लातेहार में गहरे पानी में दो आठ साल की बच्चों की डूबने से मौत, हादसे में गांव में पसरा मातम। महबूबाबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर ट्रैफिक ठप। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। अलीगढ़ में छात्राओं के समर्थन में AMU छात्रों का प्रदर्शन, भोजन की गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता, प्रोक्टोरियल टीम पर कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। हाथरस में नगर पालिका की JCB के नीचे दबकर 11 साल की बच्ची की मौत। सोनभद्र में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के गहने चोरी, CCTV में कैद हुआ घटना, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में प्रेम का संबंध पहुंचे युवक को उल्टा लटकाकर पीटा गया, युवक को छोड़ने के बदले 5 लाख के लेन देन की चर्चा। अमृतसर में जनरेटर से जहरीली गैस लीक, 4 लोग बेहोश, अस्पताल में 1 की मौत। इंदौर में साइबर ठगी पर पुलिस की कार्रवाई, 4 लाख में बैंक अकाउंट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार सवार युवकों ने घर के बाहर बैठे लोगों पर बरसाए पत्थर, CCTV में कैद हुई घटना। ग्वालियर में दतिया गैंग वॉर के मुख्य आरोपी महेश यादव की मौत, 11 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सहारनपुर में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लोहे जस्ता की प्लेट पर पीतल की परत चढ़ाकर बनाते सिक्के। गुरुग्राम हिट एंड रन पीड़ित ने जारी किया पहला बयान वीडियो द्वारा, आज तक के इंटरव्यू में आरोपी के दावे पर पीड़ित का जवाब। पीड़ित ने आरोपी के दावे पर उठाए सवाल, पीड़ित का सवाल, अगर हम चुटकी काट रहे थे तो मेरा पीछा क्यों किया। इंदौर के होटल में महिला की संदिग्ध मौत, 7 मौजूद प्रेमी से पुलिस कर रही है पूछताछ। गया जंक्शन पर तस्करी के आरोप में युवती गिरफ्तार, 15 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद, दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद। लालबाग के राजा को आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का समर्थन। राष्ट्र के CM फडणवीस ने अपनी सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, अमित शाह ने की फडणवीस के आवास पर पूजा अर्चना। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने गणपति की पूजा की भक्तिभाव से विनायक की आरती। नवनीत राणा और रवि राणा के घर गणेशोत्सव की धूम, बाप्पा की भक्ति में लीन दिखा परिवार। जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी, 40 वर्ष से गणेश जी के 3000 से अधिक स्वरूपों का संग्रह। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर पधारे बप्पा, परिवार संग विधि विधान से पूजा अर्चना। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहाँ बप्पा की स्थापना, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते दिखे सचिन। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने पूरी भक्ति के साथ बप्पा की आराधना की, विधि विधान से की बप्पा की स्थापना। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई अपने घर में पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इंदौर में 7 करोड़ के आभूषण सजे खजराना गणेश, ध्वजा पूजन के साथ गणेश उत्सव शुरू।

0: ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। सुनीता आहूजा ने बप्पा की पूजा अर्चना की, परिवार खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दुहान पहुंचे अयोध्या के राम मंदिर, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। बेतिया में ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन में पहुंची फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर, शहर में दिखा ग्लैमर का रंग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
12: Aur bhai kahan gaye the ghumne?
13: GK Max.
14: Waise Rohan, padhai mein kaisa hai?
13: GK Max. Best putti?
15: JK Wall Max.
13: Best paint?
15: JK Max.
13: Baaki sab sawalon ka pata nahi, lekin most beautiful walls ke liye sirf JK Max paints. JK Max paints. Khushiyon ke rang.

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
4: Ye pillar kabhi nahi tootega.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
6: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला, पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक, पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
7: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी, फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है।
6: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
7: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे, और भी पार्किंग अटेंडेंट्स थे, किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
6: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
7: उन्होंने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
6: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
8: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है, और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार एफआईआर में हमने लॉज कर दी गई है, और उस एफआईआर के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वह लिया जा रहा है।
6: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में सामने आई पीड़ित लेडी बाइकर सिया, कहा पीछा कर रहा था आरोपी, जानबूझकर मारी टक्कर, एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। दिशा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगालेगी सीबीआई, जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर भी शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत मान। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, पीएम मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण, कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद से भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जल भराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। इस बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का विजय अभियान, कांग्रेस को क्यों लगा झटका। साथ ही बताएंगे कि कैसे यूसीसी पर बिहार में घमासान मचा है, एनडीए की सहयोगी जेडीयू और एलजेपीआर ने क्या संकेत दिए हैं, और इस सब पर हम आपको जानकारी देंगे। गुरुग्राम हिट एंड रन केस में क्या नए आरोप लगे हैं और कैसे नया सस्पेंस गहराया है। पीड़ित बाइकर के नए खुलासे पर भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो इस वक्त आ रही है। एयर इंडिया से जुड़ी हुई एक खबर है। एयर इंडिया फ्लाइट से 3 विदेशी नागरिकों के बिना इमिग्रेशन जांच पूरी किए म्यूनिख पहुंचने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने आज शाम अहम बैठक बुलाई है। बैठक में एमएचए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। एमएचए के विदेशियों से जुड़े मामलों के अतिरिक्त सचिव, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी, एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट के सीनियर अधिकारी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले ही एयर इंडिया से मामले में जवाब मांग चुका है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में घटना की पूरी प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने को लेकर चर्चा होगी। ये मामला इस महीने के पहले हफ्ते का बताया जा रहा है, जिसमें इमिग्रेशन प्रक्रिया में लापरवाही बताई गई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, गृह मंत्रालय के बाहर ही मौजूद है वो। जितेंद्र, आखिर ये जो मामला है ये हुआ कैसे, और अब ये जो बैठक है वो किन किन बिंदुओं पर खास तौर पर गौर करेगी?
1: और देखिए अंजलि, आज इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में की जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या हुआ था। 4 सितंबर को जिस तरीके से 3 इटली के जो यात्री हैं वो अमृतसर से दिल्ली के लिए आते हैं, और उसके बाद दिल्ली से उनको म्यूनिख के लिए रवाना होना था। उसके लिए इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल फ्लाइट में उनको चेंज करना था, और उसमें बिना इमिग्रेशन हुए उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। इस बात को लेकर के कई सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको की लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज उस स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं। जिस फ्लाइट के जरिए वो लोग गए हैं, यानी कि एयर इंडिया फ्लाइट से वो लोग लुफ्थांसा फ्लाइट में गए, उसके बाद म्यूनिख के लिए वो लोग रवाना हुए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के किस आधार पर और कहां पर गड़बड़ी हुई उसको लेकर के तमाम स्टेक होल्डर के साथ एक केंद्रीय गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी शामिल होंगे, और इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही सिविल एविएशन मंत्रालय और जो एयर इंडिया के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ये तय किया जाएगा कि इस तरीके की जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें आखिर चूक कहां पर और किस लेवल में हुई है उसको तय किया जाएगा, और उसके बाद एक नए तरीके के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कतें ना हो।
0: जी जितेंद्र, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं राजस्थान में कल आए निकाय चुनाव के नतीजों की। राजस्थान के 10 निगम में 5 पर जीत कर बीजेपी ने चुनावी परीक्षा एक तरीके से पास कर ली है। नीट पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन के बाद राजस्थान में मिली इस जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस धांधली का आरोप लगाकर सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में कल आए नगर निगम के नतीजों में बीजेपी 5 नगर निगम में विजयी रही है। कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से संतोष करना पड़ा है, जबकि 4 निगम यानी कि जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में त्रिशंकु स्थिति है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गजों के गढ़ में कैसे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के क्षेत्र बीकानेर में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अजमेर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और अब बात कांग्रेस की करें तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के इलाके मालाखेड़ा और बहादुरपुर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के इलाके में टोंक और पुराने इलाके दौसा में कांग्रेस की हालांकि शानदार जीत हुई है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं।
2: मैं डीजीपी साहब से कहना चाहता हूं, सीए से कहना चाहता हूं, राज्य निर्वाचन आयुक्त से मैं कहना चाहता हूं कि इस बेईमानी में, इस पाप में आप भागीदार मत बनो। भजन लाल जी की कुर्सी तो जाएगी लेकिन आपकी कुर्सी के भी आंच आने वाली है। अगर आप बेईमानी करोगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये जनता चुप नहीं बैठने वाली है। आप ब्यूरोक्रेसी से ड्रा करके पूछ पूछ के कलेक्टरों से, मैंने पहले भी ट्वीट भी किया है, मैंने बोला भी है, हर कलेक्टर को ये दबाया गया कौन जीत सकता है, किसको खरीद सकते हैं। 1000 के लगभग रूम बुक कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 1000 से ज्यादा। बाड़ेबंदी, पहले दिन से बाड़ेबंदी। अरे सरकार है आपकी, आप पे अपने कार्यकर्ताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर किस पे होगा। और पहले दिन से ये चला रखा है, निर्दलियों को पकड़ो, जो पैसा ले रहे दे दो।
0: हमारे सहयोगी शरद कुमार का, शरद ये जो नतीजे आए इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए, क्योंकि बीजेपी भले ही इसे अपनी जीत बता रही हो लेकिन बड़े बड़े नेताओं के इलाकों में त्रिशंकु स्थिति देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस को अपने लोगों को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, तो जरा समझाएं हुआ क्या है।
1: देखिए अब अंजलि, पिछले नतीजे को अगर देखें तो पिछली बार परिसीमन से पहले 196 वार्ड थे जिसमें से 105 निकाय थे, जिसमें से 125 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और केवल 61 में बीजेपी रह गई थी। 300 जो पार्षद हैं उनकी संख्या कांग्रेस की ज्यादा थी। इस बार 600 से ज्यादा पार्षद जो हैं वो बीजेपी के जीते हैं, इस लिहाज से बीजेपी अपना जीत मान रही है। मगर बड़े शहरों में झटका लगा है। अजमेर में 36 साल का शासन था वसुंधरा राजे के यहाँ, झालावाड़ का था। इसके अलावा अलवर और बीकानेर में पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला, बीकानेर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। तो इस तरह से पाली का इलाका है जहां पर पाली नगर निगम में पूर्ण बहुमत नहीं मिला मगर पाली के आसपास के सारे नगर पालिका बीजेपी जीत गई। तो बड़े शहरों में यूजीसी का इफेक्ट पड़ा है। बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि जो नगर निकाय है, नगर पालिका है, वहां पर उन्होंने अच्छी दर्ज की है। जो ग्रामीण इलाकों से बने हैं, छोटे कस्बे हैं और आदिवासी इलाकों में जबरदस्त वापसी की है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाके में। किसान बेल्ट जो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, वहां पर निर्दलीय के साथ चले गए हैं लोग मगर कांग्रेस के साथ नहीं गए हैं, अगर बीजेपी के साथ भी नहीं गए हैं। तो भजन लाल शर्मा के लिए संतोष की बात यह है कि पिछले चुनाव के नतीजे जो थे उसके बनस्पत इस बार दुगने पार्षद जिता के लाए हैं और दुगने से ज्यादा निकाय में वोट बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए निर्दलीय, देखिए निर्दलीय पिछली बार 24.59% जीते थे और इस बार 27% के आसपास है। तो निर्दलीय में जो 2.5-3% का इजाफा हुआ है वो कांग्रेस के वोट शेयर से गया है। बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हासिल की है तो कम भी नहीं हुई है, ये संतोष की बात है भजन लाल शर्मा के। 2.5 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। ऐसा डर लग रहा था बीजेपी को कि ये चुनाव खराब जाएगा, तभी हरीश द्विवेदी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो 25 दिन से यहीं बैठे हुए थे। महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री, 2 दिन तक कैंप करके गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार रोड शो कर रहे थे कि जेएनजी का इफेक्ट, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का इफेक्ट कहीं शहरों में नहीं दिखे, उसे निगेट करने की खुशी है बीजेपी के पास। और कांग्रेस से छीने हैं बहुत सारे वार्ड जो छोटे शहर में थे। अब सोचिए 196 में 125 वार्ड कांग्रेस के पास थे निकाय के, तो कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास ये निकाय थे, उससे इन्होंने छीना है, उसके हिसाब से अपनी जीत बता रहे हैं। मगर बड़े शहरों में चिंता की बात है कि अपने जो कोर वोटर हैं, जो यूजीसी के मामले में इनसे खफा हैं, उनसे कैसे वापस लाएं।
0: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से ऐतिहासिक लोहिया ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। शिवपाल यादव की जगह अब अखिलेश यादव को लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 2017 से लगातार शिवपाल सिंह यादव ट्रस्ट की कमान संभाल रहे थे। अब अखिलेश यादव के पास पार्टी के साथ साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर ट्रस्ट की भी पूरी कमान है। 2017 में परिवार में हुए विवाद के दौरान मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी पहले हुआ था। समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना इसका मूल उद्देश्य है। इस बदलाव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं।
3: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिवारवाद की राजनीति के कभी समर्थक नहीं थे। उनका अपना परिवार राजनीति में नहीं रहा, लेकिन उनके नाम पर बनाए गए ट्रस्ट को कैसे परिवार की संपत्ति बना लिया गया, कैसे फिर चाचा को हटा करके भतीजे ने कब्जा कर लिया। भतीजे ने वैसे पार्टी पर भी ऐसे ही कब्जा कर लिया था। चाचा भतीजे का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, ये पार्टी में के भीतर उनके यहाँ सामान्य बात है और हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवार की आपसी लूट से दूर रहने वाली है। ये ट्रस्ट की लूट करेंगे, पार्टी में लूट करेंगे, सत्ता आ जाएंगी तो सत्ता के माध्यम से प्रदेश की जनता में लूट करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहेगी।
0: यूसीसी पर घमासान शुरू हो गया है। खबर आई है कि जेडीयू के संजय झा इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित सूबों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। अब खबर है कि यूसीसी के मुद्दे पर जेडीयू बहुत सहज नहीं है। इसी क्रम में संजय झा अब अमित शाह से मिलने वाले हैं, तो जेडीयू का नेतृत्व ज्यादा सहज नहीं है इस बात से।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय झा जी ने स्वयं ये जानकारी भी दी है।
5: जनता दल यूनाइटेड से पूछिए उनका क्या स्टैंड है, ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है। सरकार के पार्ट तो वो हैं बिहार में, तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना।
0: और अब खबर गुरुग्राम के हिट एंड रन मामले की। अब बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया सामने आए। सोशल मीडिया में शिवानी ने एक वीडियो जारी किया है। दरअसल शिवानी की बाइक को टक्कर मारने के आरोपी कार सवार कल्याण बैसला ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवानी के आरोपों को खारिज कर दिया था और शिवानी पर ही उकसाने का आरोप लगाया था। आज तक पर कल्याण का बयान आने के बाद शिवानी वीडियो जारी कर कल्याण के हर दावे पर सवाल उठा रही है। शिवानी ने आरोप लगाया है कि कल्याण बैसला ने जानबूझकर लेन बदलकर टक्कर मारी थी, इस टक्कर में उनकी जान भी जा सकती थी। आइए आपको दिखाते हैं कि कल्याण बैसला ने आखिर क्या कहा था और उसके जवाब में शिवानी क्या कह रही है।
6: देखो इतना इंसिडेंट कल से चल रहा है, लोग इतना मतलब बोल रहे हैं कि साफ दिख रहा है उस बंदे ने क्या किया है। वो किसी एक इंसान को मार के रोड पे मरने के लिए छोड़ के चला गया एंड अभी भी वो इंसान फ्रीली घूम रहा है, वो न्यूज़ रिपोर्टर को बाइट दे रहा है, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है। उसको इतना टाइम कैसे मिल रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। अब तो सारी डिटेल्स उसके पास है, बकायदा मैंने गाड़ी का नंबर वगैरह उसमें डाला अपने कैप्शन में एंड उसके बाद भी पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो यही एक मतलब निग्लिजेंस है डिपार्टमेंट की, तभी तो लोग इतना फ्रीली सब रोड पे कर पा रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं पिंच कर रही थी, देखो मुझे कोई शौक नहीं है किसी गाड़ी वाले को पिंच करने का, ठीक है। मैं बाइक आज से नहीं, मैं एक साल से चला रही हूँ। आई नो कि मैं राइड कर रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, तो मैं किसी से फालतू में रोड पे क्यों पंगे लूंगी। एंड जैसे वो बोल रहे हैं पिंच कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, वो देखिए वीडियो में शो हो रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई भी सफाई काम आएगी कि जैसे उनका लॉयर या वो बयान देने की कोशिश कर रहे कि मेरी गलती नहीं है। आज से सारे देश के पास वो वीडियो है कि किसने क्या इंसिडेंट करा एंड ऑब्वियसली वो गुनाहगार है, हिट एंड रन का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इंटेंशनली वो हिट करके गए हैं जैसे वीडियो में शो हुआ है। जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
0: तो महिला बाइकर और कार चालक के बीच में आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है।
7: ये साइड में से बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल।
6: रेस में मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें? और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला।
0: इस बीच महिला बाइकर शिवानी चौहान का परिवार सोमवार शाम गुरुग्राम पुलिस से मिला और दर्ज FIR में उन्होंने अब अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की है। पुलिस आरोपी की तलाश में हालांकि कहती है कि वो जुटी हुई है, मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
8: जी आपने अभी थाने पे गए हैं आप गुरुग्राम में, क्या बात हुई है पुलिस से, क्या उनको आप लोगों ने कहा है?
9: हमने जब थाने पे गए थे तो ऑलरेडी पुलिस ने अपनी कंप्लेंट, उन्होंने FIR काट रखी थी, फिर भी हमने एक अपनी तरफ से एक राइटिंग के अंदर कंप्लेंट दिए उन्हें, जिसमें उन्होंने रिसीविंग दी है, तो उसके अंदर यही कहा है हमने, जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है हिट एंड रन का और मर्डर का केस, तो उसके अंदर कोई नॉर्मल धाराएं ना लगाए क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं है। चलो वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारी बेटी को कुछ हुआ नहीं, जिस प्रकार से इतनी दूर घसीटती उसकी बाइक गई है, वो गिरी है भाई रोड के ऊपर गिरी है, ये जानबूझ के एक प्लान करके मारा गया हिट है, तो ये क्राइम की उसमें आता है और बिल्कुल आपराधिक जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उन पे होनी चाहिए और वही धारा लगनी चाहिए।
0: और अब खबर पंजाब के संगरूर में हुए सुसाइड केस की। इसे लेकर आज पंजाब कांग्रेस चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि पंजाब में नशे का बढ़ता कहर आज हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता ने इस संकट को अधिक गंभीर और भयावह बना दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मांग की है कि मंत्री हरपाल चीमा को बर्खास्त किया जाए और FIR भी दर्ज की जाए। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी असीम बसी का। असीम, जो गुलजार सिंह का सुसाइड का मामला था उसमें परिवार ने आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद ये मामला सियासी भी हो गया, तो अब कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी भी इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है, उसमें यह प्रदर्शन कितना आगे ले जाएगा बात को?
10: जी हाँ, डेफिनेटली जब से गुलजार सिंह का सुसाइड केस हुआ है तब से जो है फैमिली ने उसके बाद आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो है प्रेशराइज उनको किया गया, क्रिमेशन भी फोर्सिबली किया गया, और उन्होंने डिमांड की थी कि जिन जिन को लोगों के उनके पिता ने जो गुलजार सिंह ने नाम लिया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और सारा जो उस पर फोकस था वो हरपाल चीमा के ऊपर था, और अपोजिशन भी डिमांड कर रही है कि हरपाल चीमा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, हालांकि उनका FIR में नाम नहीं है। लेकिन आज पंजाब कांग्रेस जो है बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, और बड़ी बात यह है कि पंजाब कांग्रेस के जो नए इंचार्ज लगे हैं सचिन पायलट, वो पहली विजिट पे आ रहे हैं और पहले दिन ये धरना यहां पर चंडीगढ़ में दिया जाएगा, और जो चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन है 15 सेक्टर में, वहां से ये जाएंगे हरपाल चीमा के घर की तरफ, हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए भी है कि इसमें बड़ी तादाद में लीडर पहुंच रहे हैं, यूनाइटेड शो भी कांग्रेस में दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो नाराज नेता थे वो भी आ जाए। लेकिन जहां तक गुलजार सिंह सुसाइड का केस है, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन संगरूर गया था, मिलके आए थे, निष्पक्ष जांच की जो है वो उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, और अब कांग्रेस कर रही है, तो डेफिनेटली गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर सरकार के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बनेगा।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की, जहां देश भर में पूरी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास के साथ उसे मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के दरबार में नतमस्तक नजर आ रहा है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर धूमधाम से भगवान गजानन की स्थापना की गई। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें बप्पा से देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना उन्होंने की। तो मुंबई में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ चुका है और इस भक्ति में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक के सितारे भी पूरी आस्था के साथ शामिल हुए हैं।

0: मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एक तो एक
5: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
9: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
10: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
11: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
12: अब मैं क्या ही बोलूं?
13: परिवार अटूट भरोसा।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: JK Maxx Paints.
9: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
7: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: गुरुग्राम हिट एंड रन केस में सामने आई पीड़ित लेडी बाइकर सिया, कहा पीछा कर रहा था आरोपी, जान बूझ कर मारी टक्कर, FIR में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। ऋषा सालियान केस में दर्ज हुई FIR, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगालेगी CBI। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर भी शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत मान। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, PM मोदी ने बताया झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण, कांग्रेस बोली नतीजों से खुली बीजेपी की पोल। गुजरात में बारिश का कहर, अहमदाबाद में भरूच, बोरसद और हिम्मतनगर तक जल भराव से हाहाकार, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं घर दुकानों में घुसा पानी।

0: सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात यूपी की सियासत की, जहां विधानसभा चुनावों में बस कुछ ही महीनों का इंतजार बचा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी पिच तय कर रही हैं। बीजेपी जहां सनातन के सहारे तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर यूपी के सियासी मैदान में और फिर से सत्ता पाने की चाहत में है। इसके अलावा रायबरेली में महाशिव पुराण के चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी की। विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी की दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी पिच तय कर दी है। बीजेपी सनातन के सहारे तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को लगता है कि अगर वोट जातियों में बंट गया तो उनके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। जाति वर्सेस सनातन, वोटर क्या चुनेगा, हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: यूपी में 2027 के लिए बीजेपी का फॉर्मूला हिट, सनातन पूरी तरह फिट। बीजेपी के लिए चुनावों में हिंदू तो ही चलेगा, विपक्ष जाति पर खेलेगा। 2027 में यूपी की चुनावी बिसात बहुत कुछ तय करेगी। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिनकी पूरी कोशिश है कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर यूपी में नया रिकॉर्ड बनाया जाए, और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, और उनकी भी कोशिश है कि तीसरी बार सत्ता से बाहर नहीं रहना है। इसीलिए दोनों अपने अपने मजबूत आजमाए हुए फॉर्मूले अपना रहे हैं। यूपी में बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है हिंदुत्व और सनातन। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने इसी सनातन के दम पर जीता। दूसरी तरफ विपक्ष ने पहले लगातार 4 चुनाव हारे और फिर 2024 में जातियों का सहारा लिया, और 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जातियों के इसी समीकरण से बीजेपी को यूपी में हराने में सफल रहा। लेकिन सवाल है कि 27 में क्या होगा? क्या अखिलेश यादव 10 साल के बाद वापसी कर पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? चुनावों में बस कुछ ही महीनों का वक्त है, ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने आजमाए हुए फॉर्मूलों पर चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सनातन की टोन पकड़ ली है, क्योंकि इसी सनातन और हिंदू वोट ने बीजेपी को अब तक सफल बनाया है।
0: ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
1: योगी जानते हैं कि अगर इन सनातनी वोटों को बिखरने से बचा लिया तो 27 की बाजी पार लग जाएगी। यूपी में बीजेपी के लिए हिंदू वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोकनीति सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2017 में 47% हिंदू मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2022 में बढ़कर 54% हो गया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 3-4 दशकों से जाति और धर्म दो प्रमुख आधार रहे हैं। 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक करने का काम किया, जिसमें वो सफल भी रही और उसे इसका लाभ भी मिला। इसीलिए विपक्ष की पूरी कोशिश ये रहती है कि चुनाव धर्म से हटकर जाति पर चला जाए, और यही बीजेपी नहीं चाहती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हिंदुत्व की तोड़ के लिए ही पीडीए का नारा दिया है। हालांकि मौके के हिसाब से अखिलेश यादव इसे बदलते रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली पीडीए में पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़ा वोट है, बताया जाता है कि करीब 52% पिछड़ा वोट है, और अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें यादवों का तो पूरा वोट मिलता ही है, और पिछड़ों की बाकी जातियों के वोट में भी वो सेंध लगाते हैं। लेकिन अखिलेश की असली कोशिश है दलित वोट लेने की, जो मायावती की गैर सक्रियता से थोड़ा कंफ्यूज भी है और नाराज भी। 2024 के चुनावों में यह दिखा भी। लोकनीति सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला कि इंडिया गठबंधन को 25%, एनडीए को 24% और बीएसपी को 44% जाटव वोट मिला, जबकि नॉन जाटव वोट इंडिया गठबंधन को 56%, एनडीए को 29 और बीएसपी को सिर्फ 15% मिला। यानी जाटव वोट तो मायावती के पास अभी भी है, लेकिन बाकी दलित वोट उनके हाथ से खिसक कर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट है। अब अखिलेश यादव की कोशिश है मायावती के पास मौजूद जाटव वोट को भी अपनी तरफ करने की।
2: इसीलिए अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को अपने पाले में करना चाहते हैं। नतीजा 15 नवंबर को समाजवादी पार्टी आगरा में एक दलितों का महासम्मेलन करने जा रही है। अखिलेश यादव खुद उस सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। यानी कि सियासी संदेश साफ है कि 2024 में मायावती को जो बचा कुचा दलित वोट मिला था, अखिलेश यादव उस वोट को भी समाजवादी पार्टी के पाले में करना चाहते हैं, और उसी रणनीति का हिस्सा है और उसी रणनीति का नाम है पीडीए, जिसको लेकर अखिलेश यादव सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं।
1: अगर यूपी का दलित वोट मायावती से खिसक कर अखिलेश यादव के पास आ जाएगा तो उनके लिए यूपी जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि करीब 20% मुस्लिम वोट तो उनके पाले में पहले से ही है। 2022 में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, जो 2017 में सिर्फ 46% था। समाजवादी पार्टी ने यह मुस्लिम वोट बीएसपी और कांग्रेस से लिया है। बीएसपी का मुस्लिम वोट घटा है, 2017 में 19% मिला था, जो 2022 में सिर्फ 6% रह गया। कांग्रेस को भी 2017 में 19% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2022 में 3% रह गया। यूपी में 34 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 31 अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। इसीलिए अखिलेश बार बार पीडीए की बात करते हैं और अखिलेश के इसी पीडीए का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले से ही हिट फॉर्मूले हिंदुत्व और सनातन पर आ गए हैं।
0: सनातन धर्म की परंपरा में शिव की भक्ति भी हम सब के लिए वही है। जब हम भारत की बात करते हैं, शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनके पवित्र ज्योतिर्लिंग हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, रामेश्वरम तक, इस सांस्कृतिक एकता उन पावन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत की राजनीतिक सीमाओं को भी तय करती है। शिव की भक्ति जो तमिलनाडु के नागरिकों में है, वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी श्रद्धालु जनों के मन में है।
1: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: सनातन का एक कुंभ इस वक्त रायबरेली जिले में भी चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का महाशिवपुराण हो रहा है और इसी शिवपुराण में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। भले ही ये शिवपुराण कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में हो रहा हो, लेकिन इससे अवध बेल्ट की कम से कम 45 सीटों को साधने की पूरी योजना है।
1: कांग्रेस के गढ़ में समाजवादी पार्टी से आए नेता मनोज पांडे बीजेपी के लिए सनातन के वोट बटोर रहे हैं। ये रायबरेली है, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का महाशिवपुराण चल रहा है, यानी कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है। यहीं से योगी ने सनातन का महत्व प्रदेश और देश को बताया।
0: हमने धर्म को केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रखा, हमने उसे समाज की जीवन शक्ति के रूप में माना है, हमने उसको अपने कर्तव्य के साथ जोड़ा है, राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में उसको जोड़ा है। और यही कारण है कि राजनीतिक कमजोरियों के कारण मध्यकाल में भले ही यह देश विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए मजबूर हुआ हो, उस कालखंड में भी जब विदेशी आक्रांता भारत के धर्मस्थलों को, भारत की आस्था को रौंदने का कार्य करते थे, इन पावन कथा के माध्यम से, हमारे व्यास पीठ से सदैव जो धारा प्रस्फुटित होती थी, वह सामाजिक एकता के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकता को और आध्यात्मिक उन्नयन को आगे बढ़ाती रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही काम किया मध्यकाल में रामकथा के माध्यम से। उनको भी बहुत सारे प्रस्ताव आए कि अकबर के दरबार में आप भी चलिए, आपको भी नौ रत्नों में से सम्मान मिल जाएगा। जब उनके सामने प्रस्ताव आए, उन्होंने कहा अकबर कौन है? लोगों ने कहा दिल्ली का बादशाह है, भारत का बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होता है? तो उन्हें समझाया कि बादशाह का मतलब राजा होता है। उन्होंने कहा भाई देखो, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे तो मान्यता है कि भारत का एक ही बादशाह है। उस समय भी उन्होंने कहा था मेरा तो एक ही राजा है, वह राम है।
1: रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के लिए ये आयोजन अपनी जमीनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। रायबरेली और आसपास के अवध के क्षेत्र में ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति हमेशा से सत्ता की दिशा तय करती रही है। ब्राह्मण चेहरे के बुलावे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कथा पंडाल में पहुंचना न केवल मंत्री के कद पर मोहर लगाता है बल्कि सवर्ण और कोर हिंदू मतदाताओं के बीच एकजुटता का भी सीधा संदेश देता है।
4: और इसलिए मैं आपसे करवट आज कुछ नहीं कहूंगा, आप आ गए, इससे बड़ा कुछ हमें नहीं मिल सकता। ऊंचा हार को इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता, सनातन को इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता, एक एक हिंदू प्रेमियों को कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन आपने तो पूरे प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है, थोड़ा से ऊंचा हार के ऊपर और आशीर्वाद हो जाएगा, इसका करंट अपने आप बढ़ जाएगा। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं और इस पीठ से और भगवान प्रभु से ये कामना करता हूं जिस विकास की एक लंबी लकीर आपने खींच करके पूरे देश में बता दिया है कि कानून व्यवस्था देखना है तो उत्तर प्रदेश में जाइए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विकास का अनुसरण आज देश के अन्य राज्य कर रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी कैबिनेट में मनोज कुमार पांडे की एंट्री सीधे दिल्ली से करवाई गई, लेकिन चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ का उनके मंच पर जाकर सनातन और हिंदू एकता का संदेश देना बताता है कि बीजेपी अंदर खाने के सारे मतभेद भुलाकर चुनाव लड़ना चाहती है।
2: गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? रायबरेली के ऊंचा हार में आस्था और सियासत का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे महाशिव पुराण करा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सियासी संदेश दिए जा रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो विपक्ष की जातीय गोलबंदी को भेदने की कवायद भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व आउटरीच के जरिए करने की कोशिश कर रही है। यूं तो ये एक महाशिव पुराण है लेकिन भारी संख्या में उमड़ी महिलाएं, कलश यात्रा और सनातन के जरिए सियासी संदेश एक बात साफ करता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है और विपक्ष को सनातन का पाठ पढ़ाती फिलहाल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस सनातनी पाठ को लेकर पलटवार क्या होता है।
1: लेकिन विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि ये बीजेपी की वो पिच है जिस पर उतरकर वो अपना फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान जरूर करवा देंगे।

0: नहीं देखिए, कहीं भी कथा होती है, मुख्यमंत्री जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां भक्तों की बात करनी चाहिए, भक्ति की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर उस मंच को भी वो राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म को राजनीति में लाना भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। भगवान के मंदिर पे पिच नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी यही करती है। राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनका अयोध्या में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका मथुरा में क्या हुआ आपको समझ में आ गया, उनका काशी में क्या होने वाला था ये भी समझ में आ गया। तो भगवान महादेव ने बताया था कि सुधर जाओ, 5 राउंड तक हराया है, ज्यादा करोगे तो अगले 15 राउंड भी हराए जाएंगे।
1: मंच से कोई चुनावी भाषण तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति, राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रही है।
2: सनातन संस्कृति का फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से है सनातन संस्कृति का एक हिस्सा।
1: भले ही मौका शिवपुराण का हो, लेकिन बीजेपी इस बहाने से सनातन की लहर उठाना चाहती है। इस शिवपुराण के बहाने कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर, उन्नाव और बारामकी के हिंदू वोटों को एक करने की कोशिश है। गौर करने वाली बात यह है कि इन जिलों में कुल 45 विधानसभा सीटें हैं।
3: सनातन पर टिप्पणी करते हैं और कभी कभी नकली सनातनी बन जाने का काम करते हैं। सनातन क्या होता है, आस्था क्या होती है, धर्म क्या होती है, अगर इसे देखना है आए इस महाशिव पुराण कथा में, जहां राकेश पासी भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो हमारे शिवलाल गौतम भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो देवेश लोधी भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो रामकृष्ण विश्वकर्मा से लेकर के और हमारे शिवनारायण सिंह से लेकर के आज सारे लोगों का संगम है। यही शैव वास्तविकता का संगम है, यही सनातन है, यही आस्था है, यही भारत की परंपरा है और यही भारत का इतिहास है। जिन जिन लोगों ने कभी इस इतिहास पर उंगली उठाने का काम किया और इतिहास को तोड़ने का काम किया, इतिहास में कभी उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा।
1: रायबरेली का ये आयोजन साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में किसी तरह के ढिलाई के मूड में नहीं है। विपक्ष अपने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर भरोसा जता रहा है, तो बीजेपी सीधे सनातनी वोटों को एक कर रही है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
5: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
10: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
11: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
12: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
13: अंडमान निकोबार आइलैंड, तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
14: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
15: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
10: आज तक, देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। ये मामला है गुड़गांव का हिट एंड रन केस। दरअसल इस मामले में अब खबर आ रही है कि गुड़गांव की पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला, उसकी धारा को भी केस में दर्ज कर लिया है। जो कि मांग थी सिया, जो महिला बाइकर थी, उनके परिवार की, वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। सिया भी इसकी मांग कर रही थी। आज सुबह ही उन्होंने प्रेस को कई बाइट्स दी हैं, जिसके बाद ये खबर आ रही है कि गुरुग्राम पुलिस ने अब इस धारा को भी FIR में शामिल कर दिया है। उनके पिता ने भी कल इसकी मांग की थी। और ये पूरा मामला तब सामने आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा रहा था कि एक सफेद गाड़ी ने आकर सिया को, जब वो बाइक चला रही थी, आकर टक्कर मार दी थी। और सिया का ये आरोप था कि ये जानबूझकर मारी गई टक्कर है, जिसकी वजह से अब पुलिस ने धारा 307 दर्ज कर लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या 2027 में यूपी की दलित राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद अपनी बुआ यानी मायावती के विरुद्ध जाकर राजनीति करेंगे? यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मायावती ने पहले अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को साइड किया, फिर छोटे भतीजे ईशान आनंद का नाम चर्चा में आया, फिर आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का इस्तीफा हुआ और अब भतीजी दीपिका आनंद का नाम सबसे आगे है। मायावती तय नहीं कर पा रही हैं कि किसे बनाएं किसे हटाएं। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपना समीकरण साधने में जुटे हैं। जो आकाश आनंद चंद्रशेखर को दिन रात कोसते थे, आज वही चंद्रशेखर आकाश को अपनी पार्टी में आने का खुला ऑफर दे रहे हैं।
1: मेरे दरवाजे तो वहाँ बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के दरवाजे बंद नहीं। अगर वो मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुष के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए। वो आए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बहुजन समाज के जो महापुरुष से अधूरे काम को पूरा करेंगे। मैं उनको जो है, मैंने हमेशा उन्होंने कहा, उन्होंने भले मेरी कितनी आलोचना की हो सब पहले, कि वो मैंने हमेशा उनको छोटा भाई माना है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी में हर व्यक्ति जो बहुजन समाज का और अपने महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते खुले कहने की बात।
0: यूपी की राजनीति में किंग मेकर बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर की बीएसपी से पुरानी अदावत है। वो बीएसपी की इस कलह का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। इधर मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि लोग पार्टी से निकाले गए वो बीएसपी अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में भ्रम फैला रहे हैं।
2: ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक दो दिनों से पार्टी के लोगों में ये भ्रम फैलाया हुआ है कि बहन जी काफी बीमार चल रही है, इसलिए वह मीडिया में ना आकर बड़े बड़े मामले भी सीधे ही ट्वीट के जरिए भेज रही है, क्योंकि अभी भी ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि श्री अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है।
0: यूपी में बीएसपी के पतन के बाद दलित राजनीति में जो शून्य बना, उसे भुनाने की कोशिश बीजेपी कांग्रेस समाजवादियों ने की। 2024 में समाजवादी पार्टी को इसमें सफलता भी मिली, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया खुले तौर पर मायावती के भतीजे पर डोरे डाल रहे हैं। आकाश आनंद चुनावी राजनीति में अभी अनटेस्टेड हैं, लेकिन मायावती का भतीजा होने के नाते यूपी के दलित समाज में उनकी पहुंच है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: महिला ने कहा काफी देर से पीछा कर रहा था आरोपी, जानबूझकर मारी टक्कर।
1: एनडीए शासित राज्य में यूसीसी लाने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से मिले जेडीयू नेता, गृहमंत्री से भी मिलने का मंगा समय कहा, बिना चर्चा के ना हो लागू, चिराग बोले ड्राफ्ट देखकर तय करेंगे रुख।

0: लाया लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी।
1: दिशा सलियम केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगालेगी सीबीआई। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, जिनो मोरिया और सूरज पंचोली, कई पुलिस अधिकारियों पर भी शक।
0: पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया सामने आए और कहा कि कल्याण बैंसला ने जानबूझकर लेन बदलकर टक्कर मारने की कोशिश की थी। शिवानी ने आरोप लगाया था कि इस टक्कर में उसकी जान भी जा सकते थे। शिवानी ने एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की। वही कल्याण बैंसला ने शिवानी के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, जांच दोनों ओर से होनी चाहिए। गुरुग्राम हिट एंड रन पीड़ित ने जारी किया एक वीडियो बयान आज तक के साथ इंटरव्यू में आरोपी के दावों पर पीड़ित का जवाब। पीड़ित ने आरोपी के तमाम दावों पर उठाए सवाल। पीड़िता का सवाल है कि अगर हम चुटकी काट रहे थे तो मेरा पीछा क्यों किया। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को आज आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित हर एक परिवार को 7,000 रुपए उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। कुल 8,27,472 परिवारों को मदद पहुंचाएगी सरकार। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और दूसरी नदियों में आए बाढ़ से 15 जिलों के 88 प्रखंड प्रभावित। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बाढ़ का जायजा लेने आएगी केंद्रीय टीम, शिवराज सिंह चौहान करेंगे नेतृत्व। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। बाढ़ प्रभावितों के साथ मेरी सहानुभूति।
0: बिहार बाढ़ पर खड़गे का बयान, बोले 15 जिलों में 50 लाख लोग प्रभावित, सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की अपील। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी ने सरकार से तत्काल बाढ़ राहत पैकेज का आग्रह किया। कटिहार में बाढ़ के बीच नाव पर लगी पाठशाला, डूबे स्कूल के बावजूद बच्चों की पढ़ाई जारी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी भी मिलने पहुंचे। 18 सितंबर को जेडीयू का प्रबोधन कार्यक्रम और यूसीसी मसले पर चर्चा के बीच इन नेताओं का नीतीश कुमार से मिलना अहम माना जा रहा है। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 10 नगर निगमों में 5 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस 1 पर सिमटी। राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा, निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा, पीएम मोदी ने जताया आभार। राजस्थान निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय हुई। निकाय चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा राजस्थान डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत हुई है। 47 नगर परिषद के नतीजों में बीजेपी आगे, बीजेपी ने 21, कांग्रेस ने 17 सीटों पर दर्ज की जीत।
1: बंगाल में टीएमसी के भीतर फिर से बगावत के संकेत, 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दावा। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बाकी सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे, जगदीश बसुनिया का यह दावा है। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने साधी दूरी, अभी बागी सांसद भी बोले कोई फैसला नहीं। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल पर कानूनी पेश, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, 22 सितंबर तक जमा। हुगली में कागजों में मदरसा, जमीन पर कुछ भी नहीं, 252 अनाधिकृत मदरसों की सूची में शामिल। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत तेज, टीएमसी विधायक और फुरपुरा शरीफ के पीरजादा ने जताया विरोध। 252 मदरसों को बंद करने और 100 को नोटिस देने पर ताहा सिद्दीकी का विरोध, सरकार से फैसला बदलने की मांग। नंदीग्राम फिर से बना बंगाल के सियासत का केंद्र, उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बागी गुट आमने सामने। नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बैनर्जी नहीं उतरेंगे, टीएमसी ने उम्मीदवार घोषित किया, सियासी अटकलों पर विराम। नंदीग्राम में फिर से सियासी मुकाबले की तैयारियां, बागी टीएमसी गुट ने नंदीग्राम और रिजी नगर में उम्मीदवार उतारे।
0: यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले समानता के साथ विविधता का सम्मान जरूरी। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर किसानों के प्रदर्शन, ट्रैक्टर और अन्य सामान जब्त करने का आरोप। अमृतसर में किसानों की मांग को लेकर बीकेयू उग्राहा का डीसी कार्यालय पर घिरा, सभी गेट किए गए बंद। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी मिली सदस्यता। दिशा सालियान केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली। दिशा सालियान केस पर वारिस प्रधान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का किया समर्थन, का दिशा सालियान केस का राजनीतिकरण ना हो। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाया टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82%, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% दर्ज हुई थी महंगाई दर। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज।
1: मनोज जलांगे बांडल का मुंबई कोच का ऐलान, अंतर वाली सराटे से होंगे रवाना, 2 गाड़ियों और 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे जलांगे। मराठा समाज से जलांगे की अपील, जल्दबाजी न करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान ही अनुमति नहीं यहां पर मिली, फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम जलांगे। जलांगे को लेकर फडणवीस का दावा, लगभग सभी मांगे पूरी, न्यायालय के दायरे वाली मांगों पर प्रक्रिया जरूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज भीलवाड़ा पहुंचकर जैन संत आचार्य पुलक सागर के चतुर्मास में शिरकत की, आचार्य सागर से आशीर्वाद लिया। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में सियासी गलियारों में हलचल, मुख्यमंत्री योगी के मंत्री संजय निषाद ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी का आज दिल्ली का दौरा और केशाओ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच में बड़ा एमओयू होगा। कर्तव्य भवन में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई होगी। कर्तव्य भवन में यूपी समेत दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम रहेंगे मौजूद, और टॉन्स नदी पर बनने वाले किसाऊ परियोजना से 6 राज्यों को पानी बिजली का सीधा लाभ। परियोजना से 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई होगी। दशकों से लंबित परियोजना पर समझौते से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के जल संकट का समाधान होगा। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार के सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता सस्पेंड।
0: योगी सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। राजा भैया का जेएनजी आंदोलन पर बड़ा बयान, बोले आंदोलन को विदेश से मिल रही है फंडिंग, बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बिल और मंत्री सेंगोटैयन की प्रेस मीट के दौरान बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में देना पड़ा इंटरव्यू, पीएमके ने पावर कट पर सरकार को घेरा। आईयूएमएल मंत्री शाहजहां का डीएमके पर हमला, राजा और शेखर बाबू के बयानों को बताया बेहद दुखद, बोले महिलाओं और परिवार को निशाना बनाना डीएमके के लिए आत्मघाती। दिल्ली में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में सीजेआई सूर्यकांत, बोले अदालतों को सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर रखना चाहिए। अलीगढ़ में छात्राओं के समर्थन में एमयू छात्रों का प्रदर्शन, भोजन की गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता, प्रोक्टोरियल टीम पर कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत से बुझाई आग। इंदौर के होटल में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, साथ मौजूद प्रेमी से पुलिस कर रही है पूछताछ। गया जंक्शन पर तस्करी के आरोप में युवती गिरफ्तार, 15 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद, दिल्ली ले जाने की तैयारी। पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद।
1: गाजियाबाद के लोने में विधायक नंद किशोर गुर्जर को गाली देने का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर अब चला बुलडोजर, तस्वीरें हैं सामने। आगरमालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई, जेसीबी से दुकानें तोड़ दी गई। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र की घेर कर हुई पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया गया, 3 पर अब केस। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का घर तोड़ दिया, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया गया। कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगूर मछली 50 क्विंटल की खेप यहां जब्त की गई, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ट्रेन में फंसे यात्री की हेड कांस्टेबल ने जान बचाई, जोखिम में डालकर कोच के नीचे घुसकर रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग नाग की चपेट में आए एक मदरसा इमारत जलकर राख। हैदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने मेडिकल लापरवाही का लगाया आरोप, AIMIM विधायक ने कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, नकाबपोश हमलावरों ने इस वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत, बचाने गया तीसरा घायल हो गया।
0: अमृतसर में जनरेटर से जहरीली गैस लीक, चार लोग बेहोश, अस्पताल में एक की मौत। इंदौर में साइबर ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लाख में बैंक अकाउंट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार सवार युवकों ने घर के बाहर बैठे लोगों पर बरसाए पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर के दतिया में गैंग वॉर में मुख्य आरोपी महेश यादव की मौत, 11 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सहारनपुर में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लोहे जस्ता की प्लेट पर पीतल की परत चढ़ाकर बनाते थे सिक्के। लालबाग के राजा में आज भक्तों ने पहनाई अमेरिकी डॉलर की माला, अनोखा श्रृंगार देखने के उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने सरकारी बंगले वर्षा में की गणपति की स्थापना, अमित शाह ने की फडणवीस के आवास पर पूजा अर्चना। मुंबई की बेहद ऋतु तावे की गणपति की पूजा, भक्तिभाव से की विनायक की आरती। रंजीत राणा और रवि राणा के घर गणेश उत्सव की धूम, पप्पा की भक्ति में लीन दिखा परिवार। जामनगर में अनोखी गणेश गैलरी, 40 वर्ष से गणेश जी के 3000 से अधिक स्वरूपों का संग्रह।
1: अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर पर भी पधारे बाप्पा, परिवार के साथ विधि विधान के साथ की पूजा, तस्वीरें सोशल मीडिया पर की साझा। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां बाप्पा की स्थापना, तस्वीरों में बाप्पा की आरती दिखाई करते हुए दिखाई दिए सचिन। एक्ट्रेस सना ने पांडे भी पूरी भक्ति के साथ बाप्पा की आराधना करते हुए दिखाई दी, विधि विधान के साथ स्थापना की। एक्टर तुषार कपूर भी मुंबई में अपने घर पर पारंपरिक तरीके से बाप्पा का स्वागत करते दिखे। इंदौर में 7 करोड़ के आभूषणों से सजे खजराना गणेश, ध्वज पूजन के साथ गणेश उत्सव शुरू। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे, पुणे में नाना पांडे के घर पे गणेश उत्सव की धूम, बाप्पा की भक्ति में पूरा परिवार डूबा दिखा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बाप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। गणेश चतुर्थी पर सुनीता आहूजा ने बाप्पा की पूजा के, परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। साउथ फिल्म अभिनेता कबीर दोहन अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे और हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। बेतिया में एक ज्वेलरी शोरूम में उद्घाटन में पहुंची एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, शहर में उनके ग्लैमर का ही रंग देखा। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी ट्रेन पर हमले को लेकर रूस पर भड़के नेटो महासचिव मार्क रूटे, कहा कि इस हमले से पुतिन की बेताबी और लापरवाही उजागर। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हुए ट्रेन हमले को लेकर यूरोपीय संघ ने बड़ा बयान दिया, कहा कि पश्चिमी देशों को डराने के लिए रूस ने किया हमला। सऊदी अरब के हुमीस मुशैद एयरबेस पर हुती का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य सुविधाओं बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान। जॉर्डन में हुए जानलेवा हमले में मदद के दावों पर चीन का कड़ा विरोध, चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ओमान में ईरान और खाड़ी के देशों के बीच में होने वाली बैठक टली, नई तारीख पर बनी सहमति, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा सऊदी अरब के अनुरोध पर बैठक को टाला गया।

0: गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस ने सिया के बयान और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। FIR में धारा 307 जोड़ दी गई है। इस मामले में आज तक ने सिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान बात की और पूरी घटना तफसील से सिया ने बताई।
1: तो सिया के बयान के बाद से FIR में अब धारा 307 जोड़ दी गई है। BNS की धाराएं 307 जोड़ी गई है। क्या हुआ था वो तो सब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और जो सफेद रंग की गाड़ी है वो अपनी लेन बदलकर जहां सिया मोटरसाइकिल चला रही थी वहां पर आकर टक्कर मारकर आगे भाग जाती है और अब हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज हुआ।
2: लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिराना थे। इसी चीज को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, 3-4 गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में एक गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा कि गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही, जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है बॉल कोर्ट रोड पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं, जो बाइक पे जाते हैं।
3: बड़ी छोटा
4: पीछे कौन था बाइक कार में, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी, आप देख पाई वो
3: गाड़ी
4: जो गाड़ी के अंदर कल्याण बैसला क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी?
2: नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें लड़की थी। और प्लस एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही वो एक रूल वायलेट कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मेरे पीछे जो मेरा फेलो राइडर चल रहा था उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरी वीडियोस में दिख रहा है कि मैं हूँ और वो मेरे साइड में चल रहा है, उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना आए, उसने देख लिया था कि वो लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गाड़ी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि वो लड़के हैं या मैं लड़की हूँ, या वो मुझे डरा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, क्या चीज़ करना चाह रहे थे, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो जल्दी जल्दी में आए, अपनी गाड़ी कट मारा, ठोका और भाग गए।
4: इंटेंशन कब क्लियर हुई, कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है?
2: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके जब वो इशारे कर रहे थे।
4: क्या इशारा कर रहा था, कुछ और बोला भी?
2: कुछ वो बोल रहा था और मैंने हेलमेट पहन रखा था, इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और वो इशारा कर रहे थे, साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे, और मैं उनको बोल रही थी आप साइड हो जाओ, वो दूर ही नहीं हो रहे थे। अगर आपको कोई बोलता है आप साइड हो जाओ, तो आप पहली चीज़ क्या बोलोगे, साइड हो जाओगे ना, वो साइड ही नहीं हो रहे थे। और उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पीछे लगा के घूम रहे हैं, चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे को तो पहले ही उसी टाइम डर लग गया था, तभी मैं आगे चलने की कोशिश कर रही।
3: मिश्रा जी ऑडियो गया हाँ जी।
4: तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव पुलिस ने सू मोटो लेकर के FIR दर्ज की, आप कब पुलिस के पास पहुंची और कब कंप्लेन दिया?
2: पुलिस के पास मेरे फादर गए थे, हमारा लॉयर गया था, वो कल FIR दर्ज करवा के आए हैं, अभी पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैं
3: ठीक।
4: तो किन धाराओं में FIR दर्ज हुई और आपकी डिमांड क्या है?
2: अभी धाराएं लगेंगी, वो पुलिस स्टेटमेंट देंगे, और क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट।
4: आप लड़की हैं, आप बाइकर, वैसे भी कम लड़कियां दिखती हैं जिन्हें बाइक का शौक हो और ऐसे ग्रुप्स में बाइक चलाएं, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं और कब से आप बाइक चला रही हैं?
2: सी, मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, मैं कभी अकेले भी जाती हूँ, मेरा एक कज़न ब्रदर है उसके पास भी है, कभी मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलरली ग्रुप नहीं है। और मैं ये एक साल से कर रही हूँ बाइकिंग, एंड जो बाकी फीमेल राइडर्स हैं, मतलब हाँ हम काफ़ी सी बहुत छोटा कम्युनिटी है और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कि इसकी कौन सी बाइक है।
4: के बाद क्या डर लगा आपको?
2: ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगा।
4: दोबारा बाइक चला पाएंगी?
2: सी, मैं बाइक तो चला पाऊंगी, पर मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊं रोड पे।
4: अकेले जाओ, ग्रुप में जाने में डर लगेगा?
2: ग्रुप में क्या, मुझे गुड़गांव दिल्ली के रोड पे ही जाने में डर लगेगा।
4: तो देखिए, ये शिवानी चौहान
2: और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे।
1: तो हमारे संवाददाता हिमांशु ने खास बातचीत की जिसमें सिया ने क्या क्या हुआ वो सब बताया और उसमें जो तस्वीरें सामने आए हैं विजुअल में कुछ भी छुपा नहीं, उसमें सब दिखाई दे रहा कि सिया की जान जा सकती थी जितनी जिस रफ्तार से वो टक्कर मार कर गया, जिस इंटेंशन से टक्कर मार कर गया वो तो गनीमत रही कि सिया की जान बच गई, हेलमेट पहने हुए थी और हेलमेट जब वो गिरी तो छूटा नहीं टूटा नहीं, इस वजह से वरना सर पर बहुत गंभीर चोट आ सकती थी। और
2: गाड़ी वाले ने
1: और इस मामले में पुलिस की तरफ से भी बयान है, पुलिस क्या कह रहे वो भी आपको सुना देते हैं।
2: वो मुझे स्टार्टिंग
5: आरोपी मिला अभी तक, अभी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं फिर आपको बैठ दे देंगे।
6: सर नई धारा जोड़े हैं
5: सर, किसी को नहीं स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं फिर उसके बाद
6: एफआईआर दर्ज होगी। सर एफआईआर नई धारा जोड़ दी है सर,
5: सब जोड़ चुके हैं,
6: सब जोड़ चुके हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या किसी को डिटेन भी किया है सर, किसी को डिटेन किया है?
7: देखिए बिल्कुल यहां पर इस वक्त गुड़गांव पुलिस जो है वो पहुंची है।
0: तो आपने सुना पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पीएनएस की धारा जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला अब एफआईआर में जोड़ दिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अभी तक आरोपी कहाँ है, क्या किसी को डिटेन किया गया है? सवाल पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है क्योंकि खुद आरोपी ने आकर अपना पक्ष रखा है, बाकायदा इंटरव्यू दिया है, उसके बावजूद अभी तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है।
1: और आरोपी की जो हौसले बुलंद है वो अपने आप को अभी पाक साफ बता रहा है और कह रहा है कि हमारा पक्ष भी आपको सुनना चाहिए, जबकि उनका पक्ष जो है वो तो तस्वीरें अगर नहीं होती तब क्या होता, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं है, पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आज तक संवाददाता ने पुलिस के अधिकारी से इस बारे में सवाल पूछा था, अभी तक उन्होंने इस पर जवाब दिया नहीं है। लेकिन सिया दूसरी तरफ कह रही है कि उन्हें अब डर लगेगा इस तरह से मोटरसाइकिल चलाने में, और बहुत कम संख्या है जो महिलाएं इस तरह से मोटरसाइकिल चलाती हैं, और जो कुछ चलाती भी हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अब ऐसे डर लगेगा। सिया ने आज तक से ये तमाम बातें कही हैं कि उसने पीछे से आकर टक्कर मारी और पहले भी उसने कुछ कमेंट वो लगातार कर रहा था। तो ये बाइकर मामले में पुलिस क्या एक्शन ले रही है इस पर लगातार हमारी निगाह है, हम लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं कि कब इस मामले में सख्त एक्शन होगा।
0: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु बड़ा सवाल यही कि कहां है आरोपी और अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है, तमाम सबूत जो पीड़ित है उसका बयान है, वीडियो साक्ष्य है, इसके बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है?
8: जी अगर मैं अभी बात करूं तो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि जो दौसा इलाका है, दौसा इलाके से हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी आ रही है कि जो कल्याण बैसला था उसको दौसा इलाके से डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस ने इस मामले में टीम बनाई हुई थी जो लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी कल्याण बैसला को। और अभी कुछ ही देर पहले यहां पर जो सेक्टर 56 की पुलिस है, खुद इंस्पेक्टर मनोज कुमार जो थाने के SHO है, वो यहां पर बयान दर्ज करने आए हुए हैं। और इसी दौरान ये खबर आई, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिल रही थी सूत्रों से नेहा कि दो और लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन जब यहां पर पुलिस पहुंची तो उनका ये कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि नेहा सिया का जल्दी से जल्दी बयान दर्ज हो। और इसी दौरान खबर आ रही है कि जो दौसा इलाका है, दौसा इलाके से डिटेन किया गया है इनको कल्याण बैसला को, और अब पुलिस की टीम वापस लेकर आएगी। तो हम लगातार पुलिस के संपर्क में, गुड़गांव पुलिस के संपर्क में है, गुड़गांव पुलिस यहाँ।
1: तो हिमांशु क्या वो दौसा यानी कि वो भाग गया था इस घटना के बाद से, वो भाग गया था और दौसा से पकड़ा गया उसको?
8: जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि जो जान देखिए जैसे ही आज तक ने बात की थी, आपने देखा होगा कि कल्याण बनर्जी ने सिर्फ आज तक इंडिया टुडे से बात की थी और उसके बाद वो बात होती है और उसके कुछ ही देर बाद किसी से संपर्क नहीं हो पाया कल्याण बैसला का। लगातार कोशिशें जारी थी, खुद पुलिस लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल्याण बैसला का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान पता चला कि वो दौसा की तरफ है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और खबर आ रही है कि वहां से डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करके उसको वापस गुड़गांव लाया जाएगा। अब देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू हैं जिसमें यहां पर राजीव आगे बढ़ रही है पुलिस। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जो एंगल एक्सीडेंट के पहले का वीडियो, एक एक्सीडेंट के बाद का जो घटनाक्रम है। अब जो वीडियो प्रोवाइड कराए गए इसके अलावा जो CCTV फुटेज है, CCTV फुटेज भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि वो पूरा जो सीक्वेंस है सीसीटीवी का उसको भी प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सुराग बनने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से बयान अलग है। यहां पर जब हमने सिया से बात की तो सिया ने कहा नंबर एक कानून कहां टूटा कि गाड़ी के शीशे काले थे और वो देख नहीं पाए कि पीछे कौन बैठा था, क्योंकि लगातार क्लेम किया जा रहा था कल्याण बनर्जी से, कल्याण बैसला की तरफ से, कि उनकी बहन पीछे थी और आगे उनसे उम्र में बड़ा।
0: और ताजा जानकारी ये है कि दौसा में शायद इसे हिरासत में ले लिया गया है जो मुख्य आरोपी है। वक्त एक ब्रेक का उछला, दिखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुराम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। आज तक पलेरी बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का केस।
1: एनडीए शासित राज्य में यूसीसी लाने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से मिले जेडीयू नेता, गृहमंत्री से भी मिलने का मांगा समय, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग बोले ड्राफ्ट देखकर तय करेंगे रुख।

0: पैरों की भूमिका खंगालेगी सीबीआई। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पंचोली और कई पुलिस अधिकारियों पर भी शक।
1: पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट। बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत।

0: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा दांव खेला है। नंदीग्राम सीट पर हो रहे उपचुनाव बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को टिकट दे दिया है। चंद्रनाथ रथ की 6 मई 2026 को हत्या कर दी गई थी, तब विधानसभा चुनाव चल ही रहा था।
1: तो नंदीग्राम उपचुनाव पर ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर है। बीजेपी ने अनाउंसमेंट कर दी है और चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को टिकट दिया गया है। दोनों ही सीटों पर जो नाम है बीजेपी ने उनका ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चंद्रनाथ रथ जिनकी हत्या हुई थी और ये बहुत बहुत बड़ी खबर बनी भी थी। तो जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, रेजी नगर से शाखा रव सरकार को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो नंदीग्राम सीट है, शुभेंदु अधिकारी के पीए थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी हत्या हुई, जिनका कत्ल हुआ था, उन्हीं की मां को हासीरानी रथ को नंदीग्राम से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है।
0: तो ये उपचुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर यह हत्या का मामला बड़ा मुद्दा बना था। इस पूरे चुनाव के दौरान ही यह हत्या की गई थी शुभेंदु अधिकारी के पीए की, और अब उनकी मां को टिकट दे दिया गया है।
2: आशा प्रत्याशा दिखे যেটা এলাকার মানুষ চাইছেন তার বেশিরভাগ কাজই আমাদের দুবারের বিধায়ক, এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র, আমাদের দলের সারথি, তিনি বেশিরভাগ কাজটাই করে ফেলেছেন। এবং তিনি আমার সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। নন্দীগ্রামের কোনো কাজই বাকি থাকবে না। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে নন্দীগ্রামকে কিভাবে খুশি করা যায়।
1: The UCC को लेकर JDU में जबरदस्त हलचल है। जब से गृहमंत्री अमित शाह ने 2029 तक सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात कही है, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी में काफी बेचैनी देखी जा रही है।
0: जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो यूसीसी के खिलाफ है, लेकिन आगे क्या करना है इस पर पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। पटना में नीतीश कुमार की आवाज़ पर बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ललन सिंह और अशोक चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे।
1: तो ये बड़ी हलचल है, बड़ी खबर है। और पटना में नीतीश कुमार की आवाज पर जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा, जिसमें ललन सिंह समेत तमाम दूसरे बड़े नेता है। यूसीसी को लेकर जेडीयू की तरफ से पहले ही प्रतिक्रिया आ चुकी है और अब चिंतन मंथन। और
0: इस बीच यूसीसी पर जेडीयू में इस कदर खलबली है कि संजय झा जल्द अमित शाह से मिलने वाले हैं। उधर चिराग पासवान ने भी कह दिया कि ड्राफ्ट देखने के बाद ही वो तय करेंगे कि वो समर्थन में है या फिर विरोध में।
3: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
4: यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान करते ही सहयोगियों ने सावधान करना शुरू कर दिया है। किसी ने कहा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में लागू होगा, कोई बोला ड्राफ्ट सामने आने के बाद फैसला होगा, किसी सहयोगी ने अभी चुप्पी साध रखी है, तो किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तैयारी कर ली है। तो क्या यूसीसी को लेकर एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है? क्या यूसीसी के मुद्दे पर एनडीए में एक राय नहीं है? और ऐसे में अगर गृह मंत्री के बयान के आधार पर तमाम राज्यों में यूसीसी लागू करने की कोशिश होती है, तो क्या सहयोगी पार्टियों में तलखी बढ़ती दिखेगी? यूसीसी पर गृह मंत्री की घोषणा का असर सबसे ज्यादा बिहार में दिख रहा है। जेडीयू नेताओं की ओर से सवाल उठा तो हलचल तेज हो गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूसीसी को लेकर जेडीयू की आपत्तियों और एनडीए सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।
5: हम उसका समर्थन किए।
4: हालांकि इस बीच जेडीयू महासचिव श्याम रजक के बयान ने एनडीए के भीतर मतभेद की चर्चा को और हवा दे दी है।
5: लोग लगातार उसके विरोध में हमने पहले भी जब ये संसद में पास हो रहा था, हमने उसी समय कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हम उसका समर्थन किए थे उस बिल का, लेकिन बिल के समर्थन के साथ साथ हमने कहा था कि बिहार राज्य में लागू नहीं होगा, और आज तक हम उसी पर कायम।
6: यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय झा जी ने स्वयं ये जानकारी भी दी।
4: गृहमंत्री अमित शाह अपने बयान में साफ साफ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रही, जिसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही साझा सहमति से यूसीसी लागू करने की वकालत करते रहे हैं।
7: हम लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसको तो हम लोगों ने शुरू से कहा, चाहे धारा 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए या फिर कॉमन सिविल कोड को नहीं थोपना चाहिए।
4: यही वजह है कि अब अमित शाह के बयान के बाद आरजेडी ने यूसीसी को लेकर जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है।
8: जनता दल यूनाइटेड से पूछिए उनका क्या स्टैंड है, ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है। सरकार के पार्ट तो वो हैं बिहार में, तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना।
4: यूसीसी पर खींचतान सिर्फ बीजेपी जेडीयू के बीच नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पोस्ट ने भी इसे लेकर सस्पेंस पैदा कर दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत का सामाजिक तानाबाना विविधतापूर्ण है, हर वर्ग की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं। संविधान ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। पांचवीं छठी अनुसूची अनुच्छेद 371 ए व वो 371 जी और अब तक की हर संहिता में अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट इसका प्रमाण है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रारूप सार्वजनिक हो, सभी हितधारकों के हितों का अवलोकन हो, व्यापक विचार विमर्श हो, तत्पश्चात अवलोकन उपरांत पार्टी अपना मत रखेगी। यूसीसी पर बिहार में बीजेपी को दो बड़े सहयोगियों का रुख जुदा है, वहीं टीडीपी के चुप्पी के लेकर भी सवाल उठा रहा है। यूसीसी को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही इसका असर देश के और राज्यों में भी नजर आ सकता है। 2027 की चुनावी जंग में फिर यूसीसी का मुद्दा गूंज सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, जेडीयू में क्या चिंतन मंथन चल रहा है, मतलब जो यूसीसी है वो हर राज्य में एक जैसा ही होगा, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है, उसके प्रोविजन सबके सामने है, तो क्या जेडीयू को ये लग रहा है कि बिहार में जब आएगा तो उसके प्रोविजन उसका ड्राफ्ट अलग हो सकता है, या जेडीयू में एग्जैक्टली किस बात को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है और किस पर मसला हो सकता है उनको?
9: राजीव, देखिए जनता दल यूनाइटेड का शुरू से स्टैंड रहा है कि यूसीसी जब भी लागू हो तो उसमें आम सहमति, मतलब सभी लोगों की जो सहमति है ना, उस पर उसके साथ उस पर आगे बढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि कोई पक्ष विरोध करे, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए या किसी अलग धर्म संप्रदाय की बात कर लीजिए। तो जेडीयू को लेकर के उनके पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने पहले भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, हमने देखा है विधि आयोग को वो पहले के दिनों में लेटर भी लिख चुके हैं। वही स्टैंड इस वक्त जेडीयू आगे लेकर के बढ़ रही है। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, वो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे, और खुद जनता दल यूनाइटेड ने आधिकारिक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। मतलब एक मैसेजिंग भी साफ है कि अगर यूसीसी को लागू करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के लिए एक टाइम फ्रेम तय किया है तो उसकी कैटेगरी में तो बिहार भी आता है, क्योंकि यहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो उन परिस्थितियों में अगर बिहार में यूसीसी लागू होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें जो आशंकाएं हैं जेडीयू की, जो पुराना स्टैंड रहा है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है, अगर कहीं कोई संशय है तो उस
0: तमाम जानकारी के लिए आपका बात राजस्थान के नगर निकाय चुनाव की करेंगे, जिसमें जीत को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, और इसीलिए नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में जबरदस्त खलबली है।
1: कांग्रेस में खलबली इसलिए क्योंकि यह कहा जा रहा था कि इन चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, कमबैक की उम्मीद कर रही कांग्रेस को, इन नतीजों से एक झटका लगा है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये नतीजे अलर्ट का ही सिग्नल है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के इलाके में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।
10: बड़ी चुनौती थी भजनलाल शर्मा के सामने, उनके सीएम बनने के 2.5 साल बाद पहला चुनाव हुआ और इस अग्नि परीक्षा में आखिरकार भजनलाल शर्मा उत्तीर्ण रहे। कितने अंकों से किस श्रेणी में, यह अलग बात है,
11: सभी कार्यकर्ताओं को यह जीत उनके लिए समर्पित करता हूं। यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है, उन तमाम युवाओं की जीत है जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और आज भी उनका भरोसा कायम है। मैं ये जीत उन सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को मैं समर्पित करता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं, जो हमारा ग्राम विकास है,
10: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के चेहरे का भाव बता रहा है कि चुनावी नतीजों ने उन्हें कितनी राहत दी है। उन्हें मालूम था कि इस चुनाव में बीजेपी की नैया भंवर में फंस सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार नगर निगम जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा में बीजेपी विजयी रही। भरतपुर में निर्दलीय आगे रहे, लेकिन वो पहले फेज में ही बीजेपी के साथ चले गए थे, यानी ये सीट भी बीजेपी की ही मानी जा रही है। कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से संतोष करना पड़ा, जबकि चार निगम जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में त्रिशंकु स्थिति है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिला है।
12: मतदान का रिजल्ट आदरणीय मोदी जी को और हमारे साथ में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नेतृत्व को, जिस प्रकार से काम किया ऐतिहासिक हमारी सरकार ने, उसको जाता है। और कांग्रेस जिस प्रकार की मिथ्याएं फैला रही है, उस मिथ्याओं पर ये मतदान, ये जनता का आशीर्वाद, ये जनादेश एक करारा थप्पड़ है।
10: राजस्थान निकाय चुनाव के परिणाम से जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। यहाँ के मेरे परिजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर संदेश देखिए, घड़ी घड़ी बधाइयां राजस्थान। राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पीएम मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा के सुशासन और नीति पर जनता की मुहर बताया। बीजेपी में जश्न है और उधर कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा रही है।
13: वीवीपैट नहीं लगाई वीवीपैट, फिर भी हम तो चलो जो बेईमानी ये कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ये तो सरेआम चोड़ा दाढ़ी कर रहे हैं दिन दहाड़े। ये पुलिस का काम रह गया? आज तीन साल में मुझे इस ऑफिस में आना पड़ा, मैं आज तक नहीं आया एसपी ऑफिस, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों ने जो तानाशाही कर रखी है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी कर रखी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मैं इनको आगाह करने के लिए आया हूं, अगर ऐसा करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है।
10: तो पहली नजर में बीजेपी विजय जरूर दिख रही, लेकिन उसके लिए इस चुनाव से कुछ चिंता बढ़ाने वाले संकेत भी आए हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के क्षेत्र बीकानेर में बीजेपी हार गई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ में भी बीजेपी हार गई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र जोधपुर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के क्षेत्र अलवर में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ के क्षेत्र अजमेर भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से दूर ही रही। गौर करने वाली बात यह भी है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों का अंतर 1% से भी कम रहा, तो सवाल यही है कि क्या अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से चुनाव लड़ी होती तो तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: तो निकाय चुनावों के नतीजों को बीजेपी बड़ी जीत बता रही है, तो कांग्रेस धांधली का सीधा सीधा आरोप लगा रही है।
14: बहुत आशीर्वाद दिया, पिछली बार की तुलना में यदि हम देखें तो हमने जस्ट 2.5 से 3 गुना सफलता प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे निगम का मामला हो, नगर परिषद का मामला हो, या नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का मामला हो, उन सब में हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, जनता का हमको आशीर्वाद मिला।
15: मैं डीजीपी साहब से कहना चाहता हूँ, सीए से कहना चाहता हूँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बेईमानी में, इस पाप में आप भागीदार मत बनो। भजन लाल जी की कुर्सी तो जाएगी, लेकिन आपकी कुर्सी के भी आंच आने वाली है अगर आप बेईमानी करोगे तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये जनता चुप नहीं बैठने वाली है। आप ब्यूरोक्रेसी से डरा करके पूछ पूछ के

0: अरे सरकार है आपकी, आप पे अपने कार्यकर्ताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर किस पे होगा? और पहले दिन से ये चला रखा है, निर्दलियों को पकड़ो, जो पैसा ले रहे दे दो।
1: शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, जाहिर तौर पर बीजेपी जीत का जश्न तो बना ही रही है, लेकिन क्या अपनी सफलता का वो जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन नहीं कर रही?
2: देखिए, अगर नेहा चुनाव परिणाम को देखें तो पिछली बार से तुलना की जाती है, पिछली बार की तुलना में बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में 1% का इजाफा किया है, जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत करीब 5% घटे हैं। अब उसको लेकर वो ज्यादा 3.5% चला गया है उसमें, तो ये कहा जा सकता है 3.5% चला गया है उसमें तो, कि निर्दलीय में कि कांग्रेस को उसका फायदा नहीं मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ है। अगर सत्ता में रहते हैं तो आप शहरी इलाकों में 1% वोट बढ़ा पाए हैं, तो इसे अपनी जीत कहना ना कहना ये अलग बात है, मगर कांग्रेस 5% कम हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें ज्यादा दिखाई दे रही है। बड़े शहरों में बीजेपी के लिए परेशानी है, जहां पर अजमेर में हो, जोधपुर में हो, वहां पर ये अपनी सरकार नहीं बना पाए, शहरी सरकार। मगर छोटे नगर पालिकाओं में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2.5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, उसे भी शहरों में काट कर रखा है। ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में राजस्थान में सड़कें टूटी हुई रहती है, और उसमें भी ये अगर शहरों में ये चुनाव जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमी है। ठीक है, जिसकी सत्ता रहती है वो इसे भुनाता है। अभी हम बात सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आई, बीजेपी के बाड़ेबंदी से रिजॉर्ट से एक मेयर प्रत्याशी को कुदा लाए, और इतना ऊंचाई से कूदे थे कि टांग टूट गई थी, और जयपुर का मेयर स्ट्रेचर पर टूटे हुए टांग के साथ बीजेपी का जीता हुआ कांग्रेस का मेयर बना था विष्णु लाटा। तो जिसकी सत्ता होती है इस तरह काम करता है।
3: आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, जहां प्रमुख अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से ऐतिहासिक लोहिया ट्रस्ट का नया अध्यक्ष लिया गया। शिवपाल यादव की जगह अखिलेश यादव को लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह आपको बता दें कि 2017 से लगातार शिवपाल यादव इस ट्रस्ट की कमान संभाल रहे थे।
1: अब अखिलेश यादव के पास पार्टी के साथ साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर ट्रस्ट की पूरी कमान है। 2017 में परिवार में हुए विवाद के दौरान मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी थी। लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी पहले हुआ था। समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना भी है। इस बदलाव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में एक नई चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वहीं कनाडा से भारत डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर करमवीर देव को पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। करमवीर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद करीबी माना जाता है। आरोप यह है कि गैंगस्टर करमवीर देव विदेश में रहकर बिश्नोई गैंग के गुर्गों की मदद करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। करमवीर देव पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से फरार होने में मदद की। आरोपी है कि करमवीर अमेरिका पहुंचने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को शेल्टर देता था, कानूनी मदद भी उपलब्ध कराता था।
3: हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, पूरी जानकारी इसके बारे में तो दें और किस तरह का एक्शन अब होने वाला है इस पर? अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? लगता है तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा रुक करेंगे। लेकिन कनाडा से डिपोर्ट हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का, उस गैंग का करीबी है, और इसको डिपोर्ट किया गया गैंगस्टर करमवीर देव, और इसके बाद उसको दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी पंजाब में इस पर कार्रवाइयां होंगी। एपी ढिलोंग के घर के बाहर भी फायरिंग का मामला सामने आया था, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, उसमें भी इसके इन्वॉल्वमेंट के आरोप हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई को फरार होने में भी इसने मदद की थी। तो कुल मिला के लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लगातार अलग अलग मामलों में मदद कर रहा था, उसके लिए काम भी कर रहा था। इसको डिपोर्ट किया गया और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कनाडा में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उन पर कार्रवाइयां अब देखने को मिल रही।
1: अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई?
4: देखिए कनाडा ने इसे डिपोर्ट किया है और जैसे ही ये कर्मवीर देव ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा पंजाब पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और अब आधिकारिक तौर पर इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में जितने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे या शूटर पहुंचते थे उनको शेल्टर यही देता था, उसके अलावा लॉरेंस

0: का भाई अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका पहुंचा था तो कर्मवीर के घर पर ही रुका था। अनमोल बिश्नोई का पंजाबी सिंगर के साथ डांस करते का एक वीडियो अमेरिका का जो वायरल हुआ था, अब जानकारी में आया है कि वो कर्मवीर के
1: जी
0: घर का ही था।
1: अरविंद,
0: साथ ही साथ कनाडा में एपी ढिल्लन के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इसकी भूमिका है, तो
1: लेकिन
0: एक
1: ये
0: बड़ी
1: बड़ी
0: कामयाबी के तौर
1: कामयाबी,
0: पर
1: इसमें तो
0: दिखाई।
1: कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और 11 में आप रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
5: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी।
6: इसमें कहीं दो मत नहीं है आज तक का, यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: तो भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
1: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं।
1: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: गुरुग्राम में कारगिल जंग के हीरो पर जानलेवा हमला। पार्किंग विवाद में लोहे रॉड से किया अटैक। पार्किंग अटेंडेंट ने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को किया घायल। ये तस्वीर कारगिल युद्ध के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता की है, जिन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी अटेंडेंट ने अचानक लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक वार उनके सिर पर और दूसरा हाथ पर लगा, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।
1: हम पार्किंग के लिए जा रहे थे मॉल में, और पता नहीं क्यों पार्किंग अलाउ नहीं करने दे रहे थे जी। और फिर भी उसके बाद मैं तो अपनी गाड़ी रिवर्स करके जा रहा था, फिर उन्होंने गाड़ी को रोक के मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो सडनली अटैक कर दिया और मारा मुझे, और मेरे एल्बो पूरा फ्रैक्चर था और सिर पे चोट लगी है।
0: सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और अन्य पार्किंग स्टाफ में से कोई भी अमित कुमार गुप्ता की मदद के लिए आगे नहीं आया।
1: मॉल के स्टाफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली हमें, वो सब खड़े हुए देखते रहे, और भी पार्किंग अटेंडेंट से किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। मतलब बिल्कुल ही वेरी पुअर हेल्प रिएक्शन फ्रॉम मॉल स्टाफ एंड पुलिस एंड एवरीवन।
0: आखिर में एक शेफ के बीच बचाव करने से अधिकारी की जान बच सकी और लहूलुहान और गंभीर हालत में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन गुप्ता को एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जटिल सर्जरी कर प्लेट्स डाली गईं।
1: उन्होंने तो केयर तो ठीक करी है, लेकिन इन्होंने भी कुछ पुलिस के साथ मिलकर एमएलसी जो रिपोर्ट इनिशियल बनाई वो गलत बनाई, सारी जो मेजर इंजरीज थी वो इंडिकेट नहीं करी।
0: वहीं अमित कुमार गुप्ता के आरोपों के बीच गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
2: रिटायर्ड कैप्टन गुप्ता जी के साथ जो झगड़ा पार्किंग स्टाफ के द्वारा किया गया है, उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई अभी की जा रही है जी। इसमें यह बात है कि 10 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके बाद कैप्टन साहब द्वारा रिटर्न में यह दिया गया था कि इस पर वे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अभी 13 तारीख को उनके द्वारा फिर से एक कंप्लेंट दी गई है, और उस कंप्लेंट के अवलोकन से अन्य जो एविडेंस है उसके अवलोकन से जो नियमानुसार एफआईआर में हमने लॉज कर दी गई है, और उस एफआईआर के अंदर कंसर्न जो एक्शन है वह लिया जा रहा है।
0: लेकिन सवाल अभी ये उठ रहा है कि कारगिल युद्ध के हीरो की शिकायत पर पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। आज तक पर लेडी बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का केस। एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लाने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से मिले जेडीयू नेता, गृह मंत्री से भी मिलने का मांगा समय, कहा बिना चर्चा के लागू ना हो। चिराग बोले ड्राफ्ट देखेंगे तब तय करेंगे रुख। बिना इमिग्रेशन जांच पूरी किए एयर इंडिया की फ्लाइट से कैसे म्यूनिख गए तीन विदेशी नागरिक, सिविल एविएशन के अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने बुलाया, लापरवाही पर तय भी होगी जिम्मेदारी। दिशा सालियन केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका, खंगालेगी सीबीआई। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पांचोली और कई पुलिस अधिकारियों पर शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूरू सुसाइड के मामले पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भगवंत मान।

0: नमस्कार 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम के हिटनन केस से करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया है और कल्याण बैसला की गिरफ्तारी राजस्थान के दौसा से हुई है। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया के परिवार की, उनके परिजनों की शिकायत और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। कल देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना में पीड़ित सिया के पिता, भाई और अन्य लोग पहुंचे थे और अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की उनकी मांग थी। संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, ये दौसा कैसे पहुंच गया? पहले आज तक वो इंटरव्यू दे रहा था, तो इसका मतलब ये भाग रहा था।
1: देखिए, जब ये फरार हो रहा था उसी दौरान आज तक की टीम ने इसे दबोचा था और उसके बाद इंटरव्यू के बाद ये तुरंत वहां से फरार हो गया था। उसके बाद गुरुग्राम की मल्टीपल टीमें लगी हुई थी उसको तलाशने के लिए और उसके बाद राजस्थान के दौसा से गुरुग्राम पुलिस की टीम ने इसको हिरासत में लिया और अब आधिकारिक तौर पर पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। जो शिवानी चौहान है उसके पिता और उनके वकील गुरुग्राम कल पहुंचे थे, शिकायत दी और शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जो वीडियो आए हैं उसमें दिखता है कि जानबूझकर जो बाइक है उसको टक्कर मारी थी कार ने, इस वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन भी एफआईआर में ऐड कर लिया गया है। इधर विक्टिम का बयान लेने के लिए गुरुग्राम पुलिस वो शिवानी चौहान के दिल्ली के घर पर पहुंची है, वहां पर उसका स्टेटमेंट ले रही है, जबकि दूसरी तरफ जो कल्याण बैसला है उस पर शिकंजा कसा गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर बाद गुरुग्राम पुलिस इस मामले में आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देगी। राजीव,
0: अरविंद बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम हिट रन केस में पीड़िता शिवानी चौहान उर्फ सिया पहली बार मीडिया के सामने आई। आज तक ने सिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब तक सोशल मीडिया के जरिए शिवानी अपनी बात रख रही थी। आज तक से बातचीत में कार चालक कल्याण बैसला पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए। सिया ने आरोप लगाया कि कल्याण बैसला ने जानबूझकर लेन बदली और टक्कर मारने की कोशिश की और फिर टक्कर मारकर वो फरार भी हुआ और उस टक्कर में सिया की जान भी जा सकती थी।
2: ये शुरू हुआ था गोल्फ कोर्स रोड से ही और गोल्फ कोर्स रोड से हमारा एक कैफ़े, मैं जा रही थी बाइकर वन कैफ़े जिसे हम कहते हैं, और वो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे। मैंने उसको बहुत बाद में नोटिस करा कि वो मेरे आसपास चल रही है। पहला इंसिडेंट था कि जब वो गाड़ी मेरे साइड से बहुत तेज़ी से निकली थी और तब मैंने इतना नोटिस नहीं करा, मुझे लगा कि कहीं पे भाई कोई गाड़ी होगी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट था, जब वो मेरे साइड में आके जब वो कुछ मतलब एक बार उन्होंने थम्स अप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे। उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कुछ इशारे कर रहा था और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे। तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे। इसी चीज़ को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा है कि वो गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही है। जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज़ आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं, जो बाइक पे जाते हैं।
3: पीछे कौन था कार में? क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी, आप देख पाई?
2: बहन पीछे थी
3: वो जो गाड़ी के अंदर, कल्याण बैसला क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी।
2: नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें लड़की थी। और प्लस एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही वो एक रूल वायलेट कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मेरे पीछे जो मेरा फेलो राइडर चल रहा था उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरी वीडियोस में दिख रहा है कि मैं हूँ और वो मेरे साइड में चल रहा है, उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना आए, उसने देख लिया था कि वो लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गाड़ी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि वो लड़के हैं या मैं लड़की हूँ, या वो मुझे डरा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, क्या चीज करना चाह रहे थे, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो जल्दी जल्दी में आए, अपनी गाड़ी कट मारा, ठोका और भाग गए।
0: इससे पहले आज तक ने आरोपी कल्याण बैंसले से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की और कल्याण ने तब दावा किया था कि उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारे, उसने उल्टा शिवानी चौहान पर आरोप लगाया कि वो बाइक बार बार तेज और स्लो करके टीज कर रही थी।
4: ये साइड में से बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाए, दो क्यों दिखा रहे, अब दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा दिखाओ ना, उसको फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ, वैसे मैंने भाई से बोला भी कि मैंने कहा यार दुख हो रहा मुझे, ध्यान से उस वीडियो को देखना, इस तरह कस्टमाइज कल की बात है, कल ही डाल देते ना साथ साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारी गलती है, ठीक है जी, हमने लग गई हमसे, रोड पे लग जाती, चलो अब उसकी लड़के ही बता देता हूँ, वो पीछे से आ रहे थे, आगे ले गए, ठीक है जी, मैं आगे आ गया, अब जो वीडियो हो जिसमें उससे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हाथ निकाल के बोल रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ उससे, मैं उससे कह रहा था आप अच्छा चलाते हो, बढ़िया है, मतलब पर स्लो चलाओ, क्योंकि उस लड़की पे ना तो किट थी, क्योंकि मैं भी बाइक करूँ छोटा मोटा, मेरे पास भी है रेसिंग बाइक, मैंने उससे ये बोला था, और उसके साइड में लड़का दोनों से बोला था मैंने, एक से नहीं, पूरी वीडियो डलवाओ ना जी।
5: FIR जोड़ने के बाद गुड़गांव पुलिस की एक टीम कालकाजी में शिवानी चौहान के घर पहुंची है, यहां पर शिवानी चौहान का बयान पुलिस के द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस मामले में पुलिस दो तरीके से जांच कर रही है, एक जो जांच का एंगल है वो एक्सीडेंट के पहले पूरे सीक्वेंस को पुलिस फ्रेम दर फ्रेम देख रही है, सिर्फ बाइक के फुटेज को नहीं बल्कि रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि ये पता चले कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, और दूसरा एक्सीडेंट होने से लेकर के कल्याण बैसला के भागने तक का पूरा सीक्वेंस पुलिस देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि अचानक से गाड़ी जिस तरीके से लेफ्ट की तरफ घूमी उसके पीछे की इंटेंशन या मंशा क्या थी पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट दिल्ली से है। दिल्ली में एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, और दिल्ली के आया नगर में जिस कल जिम ट्रेनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। एक महीने के अंदर हिमांशु भाव गैंग ने दिल्ली में दो हत्याकांड को अंजाम दिया है। सितंबर के शुरुआती हफ्तों में नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के पीछे भी इसी हिमांशु भाव गैंग का नाम बताया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट से 3 विदेशी नागरिकों के विदेश जाने का मामला है, और बिना इमिग्रेशन जांच पूरी किए म्यूनिक पहुंचने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने आज शाम अहम बैठक बुलाई है। बैठक में MHA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। MHA के विदेशियों से जुड़े हुए मामलों के अतिरिक्त सचिव, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी, एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट के सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पूरी खबर बता रहे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
6: एयर इंडिया फ्लाइट के जरिए 3 यात्री जो इटली के हैं वो म्यूनिख पहुंच गए, इसमें इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसको की लेकर के सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जो आज शाम को हो रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा किया जा रहा है। इस बैठक में IB के अधिकारी के साथ साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही सिविल एवियशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधिकारी और इसके अलावा एयर इंडिया के अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, इस बैठक में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आखिर इन यात्रियों का इमिग्रेशन क्यों नहीं हुआ, और इमिग्रेशन नहीं हुआ तो किस तरीके के सुरक्षा के सवाल खड़े हुए हैं, इसको लेकर के आने वाले दिनों में किसी भी तरीके की घटना न हो इसको लेकर तमाम तरीके के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। और बैठक में ये तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है उस पर इसको देखा जाएगा।
0: अब खबर पटना से, जहां पर यूसीसी पर घमासान शुरू हो गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज जेडीयू के कई नेता मिलने पहुंचे गए और कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इसमें आज जो है ललन सिंह बिहार के मंत्री अशोक चौधरी भी बताया जा रहा है कि बैठक में पहुंचे, कई दूसरे लीडर्स भी हैं। यूसीसी के मसले पर चर्चा के बीच में इन नेताओं का नीतीश कुमार से मिलना अहम माना जा रहा है। जेडीयू के संजय झा तो इस मसले पर गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में यूसीसी लागू करने की जो बात कही है उसके बाद अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से अपने पुराने स्टैंड को दोहरा दिया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बार फिर यह कहा गया है कि नीतीश कुमार ने इस मसले पर आम सहमति से ही आगे बढ़ने की बात कही थी। हालांकि अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच यूसीसी के सवाल पर चर्चा भी होगी। जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर यह कहा है कि संजय झा जल्द ही अमित शाह से बातचीत करेंगे।
0: कल जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि संजय झा गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यूसीसी पर कोई भी मतभेद नहीं है।
8: यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी शीघ्र ही बातचीत करेंगे।
9: निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता सबके लिए एक संहिता बने ये तो होना ही चाहिए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है और सब लोगों से मिलकर और सब लोगों के सहयोग से और सभी लोगों की सहमति से इसको करेंगे। कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद रहते तो पार्लियामेंट में ही सब लोग का समर्थन नहीं मिलता, सभी लोगों का समर्थन मिला है तो आने वाले समय में सब लोग बैठकर हम लोग तय करेंगे।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगले रिपोर्ट। राजस्थान से निकाय चुनाव के नतीजे आ गए और 5 नगर निगम में जीत करके एक बार फिर से बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया है। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि 4 नगर निगम में त्रिशंकु स्थिति है।
10: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए राहत देने वाले परिणाम इस लिहाज से आए हैं कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में पिछले चुनाव के मुकाबले 1% का इजाफा हुआ है, तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 5% का नुकसान हुआ है। निर्दलीय 3.5% से ज्यादा पिछले चुनाव से वोट लेकर गए हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी खुद को जीती हुई मान सकती है, मगर बड़े नेताओं के इलाके में बीजेपी हारी है, बड़े शहरों में फंसी है, ये बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द है।
0: राजस्थान के नतीजों पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जहां खुशी जाहिर की तो वहीं कांग्रेस ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया है।
11: यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जीत है, उन तमाम युवाओं की जीत है जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और आज भी उनका भरोसा कायम है। मैं ये जीत उन सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को मैं समर्पित करता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जिस मॉडल को लेकर के हम आए हैं,
12: आप ब्यूरोक्रेसी से डरा करके उच्च के कलेक्टरों से, मैंने पहले भी ट्वीट भी किया है, मैंने बोला भी है, हर कलेक्टर को यह दबाया गया कौन जीत सकता है, किसको खरीद सकते हैं। 1000 के लगभग रूम बुक कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 1000 से ज्यादा। बाड़ेबंदी, पहले दिन से बाड़ेबंदी, अरे सरकार है आपकी, आप पे अपने कार्यकर्ताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर किस पे होगा। और पहले दिन से ये चला रखा है, निर्दलियों को पकड़ो, जो पैसा ले रहे दे दो।
0: यूपी में चुनावी माहौल के बीच में हलचल भी बढ़ गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के नेता अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से मुलाकात की है। मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो कई मायने भी निकल गए। मुलाकात दरअसल ऐसे समय में हुई है जब संजय निषाद को लेकर पहले तमाम राजनीतिक अटकलें चल रही हैं। हाल के दिनों में उनके कुछ बयानों को बीजेपी उनकी नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया था, तब मैं बीजेपी में गया था। बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो उस बारे में सोचा जाएगा। माता प्रसाद पांडे के इस बयान से सियासी चर्चाओं को एक बार फिर से गर्म कर दिया है।

0: बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि पिछले 2 से 3 महीने में उन्होंने पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों के 14 ठिकानों को पहले कब्जे में लिया और उसके बाद उनको जो है नष्ट कर दिया। इस दावे के सबूत के तौर पे उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें BLA के जो फाइटर्स हैं ऐसे ठिकानों पे दिख रहे हैं और कई सारे पाकिस्तान सेना के पोस्ट तबाह भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक स्वतंत्र तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं मिली है, ना ही इन वीडियोस पे कोई डेट या कोई टाइम का स्टैंप है। लेकिन ऐसा पहला दावा नहीं है, इससे पहले BLA ने पाकिस्तान सेना की कॉन्वॉयज के खिलाफ कई बार छापामार कार्रवाई की है, लेकिन ये दावा अलग है क्योंकि बहुत बड़ा है, जहां 14 पोस्ट को कब्जे में लेके तबाह करने की बात है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सेना या फिर सरकार की तरफ से अभी इन दावों पे कोई टिप्पणी या रिएक्शन नहीं आई है।
1: खबर अब मुंबई से। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम है और गणेश पांडालों में तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं गणपति पांडाल में ब्रिक्स वाला रंग।
2: महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका है और इसी तरीके से अपने विचार जो हैं या क्या इस समाज में चल रहा है गणपति बप्पा के माध्यम से दिखाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं जहां पर गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहां पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहां पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: हर ईयर मैं रिसर्च करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिया में जो घटित होते हैं घटना उनके ऊपर ही बनाता हूँ ताकि मतलब लोगों को मतलब जानकारी हो सके, मतलब जो भी इंडिया में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी घटना है उसके बारे में जो भी मतलब डिवोटीज आएंगे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले इसके रिगार्डिंग।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में जो भारत में चल रहा है उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनवाला कर रहे हैं और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहां पर बनाया गया था।
1: अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
7: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA। अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार अटूट भरोसा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with
5: Signature Finest Cardamom Seeds,
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
8: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
9: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
10: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
11: है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
12: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
13: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
8: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

सहयोगी काज दिल्ली का दौरा, यूसीसी पर बड़ी रणनीति और किसाऊ परियोजना पर अहम समझौतों की तैयारी। अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, यूसीसी लागू करने की रणनीति पर भी मंथन की संभावना। किसाऊ बांध परियोजना पर आज 6 राज्यों के साथ बड़ा एमओयू, अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर होंगे। 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई, बिजली उत्पादन भी इस पर होगा। यूसीसी को लेकर यूपी के मंत्री असीम अरुण का बाया बयान का, 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। यूसीसी पर बोले भूपेंद्र चौधरी का, यूसीसी लागू करने की यूपी सरकार की पूरी तरह तैयारी है और महिलाओं के अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए यूसीसी जरूरी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक, नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय के विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर चर्चा। आरएलडी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, यूपी का असली मुद्दा खेती, किसानी, युवा और शिक्षा है, जनता समय आने पर जवाब दे देगी। आरएलडी का बड़ा दावा, यूपी की सभी 403 सीटों पर एनडीए और सहयोगी दल मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, विकास की गति रुकने जो है ना रुके ये कोशिश। मुजफ्फरनगर में यूजीसी लागू के बाद हंगामा हुआ और दिल्ली जा रहे त्यागी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में रोक दिया। सुल्तानपुर मानहानि केस में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, वॉइस सैंपल जांच की याचिका खारिज। संजय निषाद की सपा नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात, चुनावों से पहले सियासी चर्चाएं तेज। संजय निषाद का बड़ा बयान, बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो दूसरे विकल्प पर करेंगे विचार, 2024 में निषादों की अनदेखी से बीजेपी हारी। शिवपाल यादव की जगह अब अखिलेश यादव बने लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष, सभी 8 सदस्यों की मंजूरी। 2017 से शिवपाल यादव संभाल रहे थे ट्रस्ट के कमान, अब अखिलेश यादव के हाथों में जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में अखिलेश यादव अपनी बेटी को दे सकते हैं ट्रस्ट की जिम्मेदारी। यूपी सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाया, बटाईदार, पट्टेदार और भूमिहीन कृषि श्रमिक भी इसमें शामिल। नोएडा में सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान, प्रवक्ता सौरभ दास ने शुरू किया स्कूल ऑडिट। यूपी के विश्वविद्यालयों में जल्द ही लागू होगी एआई नीति, नीति बनाने और लागू करने के लिए 2 कमेटियां गठित। कौशाम्बी जिला अस्पताल में सोने के लॉकेट गायब होने का आरोप है, जांच के लिए टीम गठित। मेरठ में 2 गुटों के बीच में टकराव, पुलिसिया कार्रवाई और जांच को लेकर एएसपी ने जानकारी दी। पत्नी को खुश करने के लिए नोएडा से कार चोरी, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एटा पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। बलिया में लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या, पूजा का सामान लेकर घर लौट रहा था युवक, पुलिस जांच जारी। मुरादाबाद में यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 की फिजिकल परीक्षा जारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल। एमए के अब्दुल्ला हॉल में खाने की गुणवत्ता को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रॉक्टर ने प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, नकाबपोश हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस।

0: और अब यूपी की राजनीति पर असर डालने वाले आज की बड़ी खबर यूसीसी पर। यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है और बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनावों के दौरान ही संकल्प पत्र जारी हुआ था जिसमें यूसीसी को प्रमुखता से शामिल किया गया था। पार्टी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो जाती तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और अधिकार देना मुमकिन नहीं है।
1: जो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के समय संकल्प पत्र जारी हुआ था और वो 14 अप्रैल 2024 को जारी हुआ, इस घोषणा पत्र में हमारी पार्टी ने यूसीसी को प्रमुखता से शामिल उसमें किया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाए। हमारी पार्टी का मानना है कि जब तक सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं होती तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और अधिकार संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकार देश में एक बेहतरीन और आधुनिक सामान्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए तैयार है और माननीय गृह मंत्री जी ने उसी ओर आगाह किया है, संदेश दिया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पर देश को विश्वास है, हमारी पार्टी और सरकार उसे पूरा करेगी।
0: वैसे आज यूपी कैबिनेट की मीटिंग भी है लेकिन इस तरह की कोई मसला जो है कैबिनेट के एजेंडे में नहीं है, लेकिन यूपी के मंत्री जब कहते हैं कि यूसीसी यूपी में लागू करेंगे तो उसे लेकर राजनीति जो सरगर्मियां हैं वो जरूर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। दरअसल 13 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि जिस तरह बिना खून का एक बूंद बहाए जम्मू कश्मीर में 370 की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर को आजाद किया गया, जिस तरह महिला अधिकारों और बराबरी की लड़ाई लड़ रही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली, उसी तरह आने वाले 3 साल से पहले देश में एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता भी लागू कर दी जाएगी। अब इसे लेकर बिहार में जेडीयू के अंदर से विरोध की आवाजें भी आनी शुरू होने लगी थी कि अब बिहार से ज्यादा जो है यूपी की राजनीति यूसीसी के इर्द गिर्द गर्म होती दिखाई दे रही है।
2: क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हो सकते ना हैं। और हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। विचारधारा किसी की कुछ भी हो जाए लेकिन वो संविधान से तो अलग नहीं हो सकती। अभी इन्होंने जो कुछ भी किया है, जहाँ जहाँ किया है, उत्तराखंड में किया है और प्रांतों में किया है और ये और प्रांतों में करना चाहते हैं।
3: क्या यूसीसी से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या यूसीसी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या यूसीसी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? आप 21 स्टेट में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, का मतलब है सिविल कोड के अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। आज हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का अलहदा अलहदा पर्सनल कानून है, आप उन कानूनों को 21 जगह बना देंगे।
0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज 6 राज्यों के साथ केशाओ बांध समझौता होने वाला है। दिल्ली के कर्तव्य भवन में थोड़ी ही देर बाद एक समझौता होने वाला है। इसमें यूपी की 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है। अब इन समझौतों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहने वाले हैं। और इस समझौते के बाद टोंस नदी पर बनने वाले केशाओ परियोजना से 6 राज्यों को पानी और बिजली का सीधा लाभ मिलेगा। अब बात यूपी में चल रही राजनीति की। यूपी में इस बार की चुनावी राजनीति में पश्चिमी यूपी की जंग रोचक होते जा रहे हैं। एक तरफ 54-58 की लड़ाई, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से धुआंधार रैलियां, विकास योजनाएं और हिंदुत्व का कार्ड है। लेकिन इस बीच में पूरी जंग के बीच विपक्ष की ओर से जमीन पर कोई भी बड़ी हलचल दिख नहीं रही है।
4: पश्चिमी यूपी में इस बार की भी चुनावी सियासत कानून, किसान और मुसलमान के इर्द गिर्द बुनती जा रही है और इसी जंग में चवन्नी से लेकर सिक्के तक की सियासत हो रही है।
5: जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश।
4: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है कि मामला अब संगीन होता जा रहा है, हमले तेज होते जा रहे हैं।
5: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहां ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
4: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव हैं कि पश्चिमी यूपी में एक रैली तक नहीं कर पा रहे। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी ओर एनडीए ने पश्चिमी यूपी के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है। यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी ने 3 महीने में धुआंधार रैलियां की हैं। मेरठ से लेकर सहारनपुर, बागपत से लेकर बुलंदशहर तक के दौरे किए, सिर्फ 3 जिलों में 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट लिए। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बने हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी का किला जीतने के लिए बीजेपी 3 मोर्चों पर तेजी से काम कर रही है, विकास, कल्याण, हिंदुत्व, जिसमें विकास योजनाओं की झड़ी के अलावा जन कल्याण की योजनाओं की घोषणाएं हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों, पीआरडी जवानों, वकीलों, रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तमाम मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा है, तो तीसरी तरफ कानून व्यवस्था बुलडोजर से लेकर मथुरा वृंदावन तक हिंदुत्व की राजनीति भी है। पश्चिमी यूपी की अपनी रैलियों, कार्यक्रमों में सीएम योगी अक्सर 2017 से पहले के हालात, दंगे, माफिया राज और अपराध को लेकर विपक्ष को निशाने पर लेते रहे हैं। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाए, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बार यूपी में बीजेपी ने एक और प्लान तैयार किया। जिस तरह समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे और चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, उसे देखते हुए बीजेपी ने काउंटर अटैक का प्लान बनाया है। अब अखिलेश राज बनाम योगी राज के आंकड़ों के साथ बीजेपी जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखने वाली है।
6: यूपी में चुनावी रणभेरी बजने भर की देर है। दोनों ओर से मुद्दों पर मोर्चे तैयार हैं और अब इस जंग में बीजेपी की तिहरी रणनीति का खुलासा हुआ है, जिसमें एक तो बीजेपी 2012-17 बनाम 2017-26 का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने जा रही है, दूसरे कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के आंकड़ों से विपक्ष को घेरने का प्लान है, और तीसरे पीडीए के जवाब में गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित साधने की योजना बन चुकी है। आंकड़ों से चुनावी वार। सीएम योगी अक्सर अपनी रैलियों में 2017 से पहले और बाद का जिक्र करके सत्ता और सियासत का फर्क बताते रहे हैं। अब बीजेपी की योजना है कि कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा, बिजली और गरीब कल्याण जैसे 5 प्रमुख मुद्दों पर तब और अब का फर्क दिखाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, दंगे, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति कुर्की, एफआईआर, चार्जशीट और दोष सिद्धि के आंकड़े तैयार किए जाएंगे। साथ में महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन, मिशन शक्ति और गरीब कल्याण योजनाओं के आंकड़ों की तुलना भी अखिलेश राज के मुकाबले की जाएगी।
7: 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, कैसे गुंडे और माफिया प्रदेश की सरकार को चलाया करते थे, आतंकवादियों के प्रति अखिलेश यादव की जो नरमी थी उसको भी बताया जाएगा, और लखनऊ की सरकार माफिया निर्देशित करते थे ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को बताया जाएगा।
8: भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि पहले जेलों में हत्याएं नहीं होती थी, आज जेलों में हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, पहले कचहरी में हत्याएं नहीं होती थी, आज कचहरी में हत्याएं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, पहले अस्पतालों में हत्याएं नहीं होती थी, आज अस्पतालों में हत्याएं हो रही हैं।
6: दूसरी ओर अखिलेश यादव इसे प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार की रणनीति करार दे रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि यूपी में 2017 में सूचना विभाग के 379 करोड़ के प्रचार का बजट 2026 में 1864 करोड़ के पार यानी करीब 5 गुना बढ़ चुका है।
9: और हकीकत तो ये है कि आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और जिस तरीके से किसान अपनी आय को लेकर के परेशान है, हैरान है, धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो हम समझते हैं आज जो है आज उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार दिया है।
0: और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं और बड़ी खबर इस समय बिहार से मिल रही है जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरोगा भर्ती के मामले को लेकर यहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और ये छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में वहां पर है। दरअसल दरोगा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के उनके आरोप हैं और ये आरोप लगातार उनके तरफ से लगाए गए हैं और अब पारदर्शी जांच की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लिए हुए, पोस्टर्स, बैनर्स लिए हुए ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों के कई तरह के आरोप हैं, इसमें अनियमितताओं के, धांधली के, पेपर लीक जैसे तरह के आरोप हैं और इसी आधार पर पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं और इन आरोपों को अभी तक सिद्ध भी पूरी तरह से नहीं किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इनको नहीं किया जा सकता। पहला सुजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, क्या इनकी मांग है, क्या क्या इनके आरोप हैं और क्या सिचुएशन है, बताएं।
10: जी देखिए, जेपी गोलंबर पर अभी भी अभ्यर्थी पूरी तरह से डटे हुए। सुबह 11 बजे इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास मार्च करना था लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देर हुई और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी अभ्यर्थी पहुंच गए। दरोगा बहाली के अभ्यर्थी पहुंचे हैं, 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी जो परीक्षा है उसे निरस्त कर दिया जाए और दरोगा बहाली में जो 1799 पदों की बहाली निकली थी उसमें कई जांच एजेंसी लगी हुई थी जिसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इसे भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए और फिर से इस पूरे मामले में जो एग्जाम है वो लिया जाए, फिर से बहाली निकाली जाए और उसी को लेकर जो है अभी भी जेपी गोलंबर पर सभी अभ्यर्थी यहाँ पे डटे हुए। पुलिस के साथ रह रहकर नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से लगा दिया गया है लेकिन एक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद कुछ अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हुई लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यहाँ काबू में है, पुलिस अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास कर रही है।
0: सुजीत ये भी बताएं कि पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कुछ ये भी है कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं कि उसका हम इंतजार कर रहे हैं, लिखित परीक्षा होगी और पीटी नहीं हुआ अभी तक।
10: बिल्कुल, पीटी में दोनों रद्द करने की मांग कर रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी है क्योंकि इनका साफ तौर पर आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है और कई जांच एजेंसियां जो इस मामले की जांच कर रही थी उसको भी कुछ साक्ष्य मिले हैं अभ्यर्थियों का कहना है, जिसके आधार पर जो ट्रेनिंग है जितने भी जो अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग हुई थी उन सभी को रद्द कर दिया जाए और ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए।
0: एक बार इस पूरे मामले को शुरुआत से बताएं कि कब परीक्षाएं हुए और कब से स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार इस मामले में अब तक क्या क्या कर चुकी है।
10: ये देखिए, ये अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से लगातार जारी है, सरकार से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से भी ये लोग मांग कर रहे थे लेकिन बीपीएससी की ओर से ठोस जवाब अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें नहीं मिला जिसके कारण हम लोग को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण लगातार पिछले कई महीनों से जितने अभ्यर्थी वो सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
0: जी सुजीत, आप हमारे साथ बने रहे, इस बीच में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना में अब दरोगा भर्ती मामले को लेकर, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनका सीधा आरोप है कि बड़ी धांधली हुई है, अनियमितताएं हुए हैं तो ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में और पिछले काफी समय से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 1799 पद और उन पदों पर भर्ती को लेकर परीक्षा तो आयोजित हुई लेकिन अब उस परीक्षा में प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, उस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए हैं और अब उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। ये पटना में आप छात्रों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं।

0: इस मामले में अब पीछे हटेंगे नहीं। दरअसल कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और इस आधार पर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी पीईटी की भी, पीईटी के इंतजार में है, फिजिकल टेस्ट के इंतजार में है। हमारे साथ संवाददाता सुजीत लगातार। सुजीत, क्या इन छात्रों के साथ कोई बातचीत अब तक हुई है? कोई एश्योरेंस, कोई आश्वासन उनको दिया जा रहा है कि नहीं?
1: जी बिल्कुल, पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इनके डेलीगेशन को जो है आगे मिलवाया जाए, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री आवास तक ये लोग मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग को रखेंगे। फिलहाल पुलिस और कई सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने 5 डेलीगेशन को लेकर चले, आपको मिलवाया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी फिलहाल इस बात को लेकर तैयार नहीं है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी या मुख्यमंत्री आके हम लोगों से मिले इस पूरे मामले को लेकर।
0: BPWSC का क्या इस पर स्टैंड है? क्या उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया है जो आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं?
1: ये देखिए, BPSC की ओर से और DSSC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पहले कई बयान जारी किए गए थे जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। फिलहाल जो आज प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन से पहले जो अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया था, उस दौरान अभी तक ना BPSC की ओर से और ना ही DSSC की ओर से कोई बयान जारी किया गया।
0: लेकिन पीटी को टालना ये सवाल तो खड़े करेगा कि जब लिखित परीक्षाएं हो गई तो आपको पीटी कराने में इतना समय क्यों लग रहा है? उसकी तारीख आप क्यों नहीं बता रहे हैं?
1: बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब जितने भी जो परीक्षाएं हैं उसकी जो समय सीमा है उसे निर्धारित की जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल जो ठोस आश्वासन है इन लोगों को नहीं मिल पाया। उसी बीच इन लोगों ने सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर दी है।
0: लेकिन सुजीत, क्या ये भी सच है कि अभ्यर्थी आरोप तो लगा रहे हैं गड़बड़ी के, अनियमितताओं के, लीक जैसे, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रूफ नहीं है कि हुआ है पेपर लीक इस मामले में?
1: जी बिल्कुल, देखिए कई जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही थी तो कुछ सबूत जांच एजेंसियों को मिले थे, लेकिन उसके आधार पर फिलहाल आगे की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसको लेकर ये लोग अपनी सड़क पर उतर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं परीक्षाओं को रद्द कर दी जाए। अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जांच पे तो इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई जो है सरकार जो लिखित बयान है वो जारी नहीं किया गया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया।
0: इस बीच में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आगे, ये अभ्यर्थी आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस कर्मियों ने आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो एक छोटा सा ये टकराव भी इस समय देखने को मिल रहा है। वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बहस भी कर रहे हैं। तो यह तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसमें स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को देखेंगे तो काले कपड़े पहनकर आए हुए हैं, सबके काले कपड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो छात्राएं हैं वो भी दिख रहे हैं, छात्र भी दिख रहे हैं, और वो सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो अब बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में हमने हाल के समय में कई प्रोटेस्ट अलग अलग राज्यों में देखे, अब बिहार में एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई उनकी नई मांग नहीं है, नया प्रदर्शन नहीं, पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन और ज्यादा बड़ा होता दिख रहा है। सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, अनिकेत भी हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए जो इस समय ग्राउंड पर है। अनिकेत, इस समय की तस्वीरें दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में भर्ती हैं? अनिकेत, आपको आवाज मिल रही है? अनिकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस मामले में एक पक्ष ये भी कह रहा है कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी और उस परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हुए, जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है, उनका भविष्य क्यों अधर में लटके?
2: कराने की मांग को लेकर के आज छात्रों ने पटना में प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसे जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। जेपी गोलंबर पे रोकने के बाद जब छात्र आगे नहीं बढ़ पाए तो बगल वाले रास्ते से छात्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां पर भी पुलिस ने रोक दिया है। और ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर भयंकर बवाल जो है वो मचा हुआ दिख रहा है। यहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में जो है झड़प कहीं ना कहीं देखने को मिली है। देखिए यहां पर कच्ची बैरिकेडिंग बनाई गई थी बांस की, और इस बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की और छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से फिर से पुलिस जो है बैरिकेडिंग को बनाने में लगी हुई है, जिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। ये कच्ची बैरिकेडिंग थी जिसे छात्रों ने तोड़ने की कोशिश की और यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की है। पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर छात्र और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, ये पूरी तस्वीर जो है

0: हम आपको दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र जो हैं वो अब भी डटे हुए हैं। और एक बार देखिए फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए ये तस्वीर देखिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो छात्रों के द्वारा की जा रही है और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है और पुलिस और छात्रों के बीच जो है देखिए यहाँ पर किस तरीके से झड़प तेज हो गई है। और ये तस्वीर देखिए, छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रही है। देखिए किस तरीके से भारी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के जेपी गोलंबर के पास ये भारी बवाल मचा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्र और पुलिस के बीच में भयंकर झड़प जो है वो देखने को मिली है। छात्रों ने कच्ची बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद छात्र इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पटना के जेपी गोलंबर पे एक बार फिर से भयंकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा बीएसएससी बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर के छात्रों ने यह प्रदर्शन का कॉल लिया था।
1: पटना की सड़कों पर बवाल चल रहा है, बड़ी खबर है, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: भैया मेरे राखी के बंधन को नींव 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
3: लो मिठाई भी खाओ।
4: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
2: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
5: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
2: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
3: क्या बात कर रहे हैं।
2: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
2: सबसे अच्छे हुए।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा है।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
1: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं।
1: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
1: सबसे अच्छे हुए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। आज तक पलेरी बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का मामला।

समेत हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के सीएम। एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लाने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से मिले जेडीयू नेता। गृहमंत्री से मिलने का मांगा वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग बोले ड्राफ्ट देखकर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका। काले की सीबीआई जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य और सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट। बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत।

0: सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए हैं। परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ियों की पारदर्शी जांच करवाई जाए और परीक्षा दोबारा हो। यही वो अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त पुलिस के साथ रस्साकशी कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पुलिस मना कर रही है। दरोगा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है, उसी को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन में जुट गए।
1: बीपीएससी 17वीं परीक्षा, दरोगा बहाली परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ साथ बीएससी से की लंबित परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर के आज छात्रों ने पटना में प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसे जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। जेपी गोलंबर पे रोकने के बाद जब छात्र आगे नहीं बढ़ पाए तो बगल वाले रास्ते से छात्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां पर भी पुलिस ने रोक दिया है। और ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर भयंकर बवाल जो है वो मचा हुआ दिख रहा है। यहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में जो है झड़प कहीं ना कहीं देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर कच्ची बैरिकेडिंग बनाई गई थी बांस की, और इस बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की और छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से फिर से पुलिस जो है बैरिकेडिंग को बनाने में लगी हुई है, जिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। ये कच्ची बैरिकेडिंग थी जिसे छात्रों ने तोड़ने की कोशिश की और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, ये पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र जो है वो अब भी डटे हुए हैं। और एक बार देखिए फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश। और ये देखिए ये तस्वीर देखिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो छात्रों के द्वारा की जा रही है, और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है, और पुलिस और छात्रों के बीच जो है देखिए यहाँ पर किस तरीके से झड़प तेज हो गई है। और ये तस्वीर देखिए, छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रही है। देखिए किस तरीके से भारी बवाल जो है देखने को मिल रहा है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के जेपी गोलंबर के पास ये भारी बवाल मचा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्र और पुलिस के बीच में भयंकर झड़प जो है वो देखने को मिली है। छात्रों ने कच्ची बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद छात्र इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पटना के जेपी गोलंबर पे एक बार फिर से भयंकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा बीएसएससी बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर के छात्रों ने यह प्रदर्शन का कॉल लिया था, और हाथों में देखिए किस तरीके से छात्रों ने तख्ती ले रखी है, पोस्टर ले रखा है और आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका है। यहाँ पर जो कच्ची बैरिकेडिंग बनाई गई थी उन बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई और छात्रों ने तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन छात्रों को यहां पर रोका है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से अभी छात्र और पुलिस के बीच में भयंकर झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में भयंकर झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। खूब कहा सुनी दोनों की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। पुलिस ने छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश की है, छात्र बैरिकेडिंग तोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। अब ये तस्वीर देखिए जहां पर अभी छात्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ छात्रों को चोट भी लगी है। यहाँ पर पुलिस जब उन्हें रोक रही थी इस दरमियान धक्का मुक्की के दरमियान कुछ छात्रों को भी चोट लगी है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। और ये तस्वीर देखिए सामने कैसे छात्र जो है वो सर पे कफन बांध करके बदन पर तिरंगा बांध करके और काला लिबास पहन करके देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पर बहस जारी है छात्र और पुलिस के बीच में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भयंकर बवाल मचा हुआ है पटना के जेपी गोलंबर पर, जहां पर छात्र जो है वो बार बार यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें बार बार रोका जा रहा है। और इस बीच दोनों के बीच एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये तस्वीर देखिए एक बार फिर से छात्र और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो गई है। छात्र फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर पुलिस के लिए काफी मुश्किल बड़ा पल छात्रों को रोकना और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र जो है वो आक्रोशित हो चुके हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान पुलिस और छात्रों के बीच खूब
0: वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

0: पटना में दरोगा भर्ती को लेकर छात्रों का आंदोलन, परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर भड़के छात्र, आंदोलनकारी छात्रों से पुलिस की झड़प। आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुराम, हिट एंड रन का आरोपी, महिला बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का मामला। गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया ने कहा कल्याण बैसला ने जानबूझकर लेन बदलकर चक्कर मारने की कोशिश की थी। शिवानी ने आरोप लगाया कि इस चक्कर में उनकी जान जा सकती थी। शिवानी ने एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की। कल्याण बैसला ने शिवानी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, जांच दोनों ओर से होनी चाहिए। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को आज मिलेगी आर्थिक मदद, सीएम शिवराज चौधरी ने कहा बाढ़ पीड़ित हर एक परिवार को 7,000 रुपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। कुल 8,27,472 परिवारों तक मदद पहुंचाएगी सरकार, गंगा गंडक कोसी पुनपुन और अन्य नदियों में आई बाढ़ से 15 जिलों के 88 प्रखंड प्रभावित। सीएम शिवराज चौधरी ने कहा बिहार बाढ़ का जायजा लेने आएंगी केंद्रीय टीम, शिवराज सिंह चौहान करेंगे नेतृत्व। राहुल गांधी ने कहा बिहार में विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें, बाढ़ प्रभावितों के साथ मेरी सहानुभूति है। बिहार बाढ़ पर खड़गे का बयान, बोले 15 जिलों में 50 लाख लोग प्रभावित हैं, सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की अपील। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी ने सरकार से तत्काल बाढ़ राहत पैकेज का आग्रह किया है। कटिहार में बाढ़ के बीच नाव पर लगी पाठशाला, डूबे स्कूल के बावजूद बच्चों की पढ़ाई जारी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी भी मिलने पहुंचे। 18 सितंबर को जेडीयू का प्रबोधन कार्यक्रम और यूसीसी मसले पर चर्चा के बीच इन नेताओं का नीतीश कुमार से मिलना अहम माना जा रहा है। राजस्थान निकाय चुनाव, बीजेपी की प्रचंड जीत, 10 नगर निगम में 5 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस 1 पर सिमटी। राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा, निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा, पीएम मोदी ने जताया आभार। राजस्थान निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय हुई है। निकाय चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा राजस्थान में डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत हुई है। 47 नगर परिषदों के नतीजे में बीजेपी आगे, बीजेपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीट पर दर्ज की है जीत। बंगाल में टीएमसी के भीतर फिर बगावत के संकेत, 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दावा। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बागी सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे, जगदीश बसुनिया का दावा। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने साधी दूरी, बागी सांसद भी बोले कोई फैसला नहीं। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदलकर कानूनी पेच, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, 22 सितंबर तक जवाब। हुगली में कागजों में मदरसा, जमीन पर कुछ नहीं, 252 अनधिकृत मदरसों की सूची में शामिल। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत तेज, टीएमसी विधायक और फुरपुरा शरीफ के पीरजादा ने जताया विरोध। 252 मदरसों को बंद करने, 100 को नोटिस पर ताहा सिद्दीकी का विरोध, सरकार से फैसला बदलने की मांग। नंदीग्राम फिर बना बंगाल की सियासत का केंद्र, उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बागी गुट आमने सामने। नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी नहीं उतरेंगी, टीएमसी ने उम्मीदवार घोषित किया, सियासी अटकलों पर लगा विराम। नंदीग्राम में फिर सियासी मुकाबले की तैयारी, बागी टीएमसी गुट ने नंदीग्राम और डेजी नगर में उम्मीदवार उतारे। यूसीसी को लेकर यूपी मंत्री असीम अरुण का बड़ा बयान, बोले 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने की तैयारी। यूसीसी पर बोले भूपेंद्र चौधरी, कहा यूसीसी लागू करने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह तैयार है, महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुजफ्फरनगर में यूजीसी कानून को लेकर हंगामा, दिल्ली जा रहे त्यागी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। आरएलडी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा यूपी का असली मुद्दा खेती, किसानी, युवा और शिक्षा है, जनता समय आने पर जवाब देगी। आरएलडी का बड़ा दावा, यूपी की सभी 403 सीटों पर एनडीए और सहयोगी दल मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, विकास की गति न रुकने की कोशिश। यूसीसी पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हुला हूं। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले समानता के साथ विविधता का सम्मान जरूरी है। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर अन्य सामान जब्त करने का आरोप। अमृतसर में किसानों की मांग को लेकर बीकेयू उग्राहा का डीसी कार्यालय पर घेराव, सभी गेट किए गए बंद। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ली गई सदस्यता। दिशा सालियान मामले में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्य और सूरज पंचोली, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। दिशा सालियान केस पर वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का किया समर्थन, कहा दिशा सालियान केस का राजनीतिकरण न किया जाए। गुरुग्राम में एयरफोर्स के टायर अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82% हुई, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बताया सामूहिक आवाज। मनोज जरांगे का मुंबई कूच का ऐलान, अंतरवारी सराठी से होंगे रवाना, 2 गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस और चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई जाएंगे। मराठा समाज की जरांगे की अपील, जल्दबाजी ना करें, शांति बनाए रखें, आजाद मैदान की अनुमति नहीं मिली फिर भी मुंबई जाने के फैसले पर कायम है जरांगे। जरांगे को लेकर फडणवीस का दावा, लगभग सभी मांगे पूरी, न्यायालय के दायरे वाली मांग पर प्रक्रिया जरूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज भीलवाड़ा पहुंचकर जैन संत आचार्य पुलक सागर के चातुर्मास में शिरकत की, आचार्य सागर से लिया आशीर्वाद। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल, सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने की नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच होगा बड़ा एमओयू। कर्तव्य भवन में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की होगी सच्चाई। कर्तव्य भवन में यूपी समेत दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम मौजूद रहेंगे। टॉन्स नदी पर बनने वाली किशाऊ परियोजना से 6 राज्यों को पानी और बिजली का लाभ मिलेगा। परियोजना से 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचाई होगी। दशकों से लंबित परियोजना पर समझौते से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के जल संकट का समाधान होगा। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार की सख्ती, लापरवाही पर अधिशासी अभियंता निलंबित। योगी सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। राजा भैया का जेंजी आंदोलन पर बड़ा बयान, बोले आंदोलन को विदेश से मिल रही फंडिंग, बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज। वेल्लोर मंत्री सेंगोट्टैयन की प्रेस मीट के दौरान बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में देना पड़ा इंटरव्यू, पीएमके ने पावर कट पर सरकार को घेरा। आईयूएमएल मंत्री शाहजहां का डीएमके पर हमला, राजा और शेखर बाबू के बयानों को बताया बेहद दुखद, बोले महिलाओं और परिवार को निशाना बनाना डीएमके के लिए आत्मघाती। दिल्ली में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में सीजेआई सूर्यकांत, बोले अदालतों को सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर रखना चाहिए। कैनेडा से रिपोर्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी गैंगस्टर कर्मवीर। कर्मवीर देव को कैनेडा से भारत डिपोर्ट किया गया, पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। कैनेडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर हुई फायरिंग में कर्मवीर का रोल आया सामने, पंजाब पुलिस ने कर्मवीर के खिलाफ एलओसी जारी की हुई थी। अलीगढ़ में छात्राओं के समर्थन में एमयू छात्रों का प्रदर्शन, भोजन की गुणवत्ता को लेकर जताई चिंता, प्रोक्टोरियल टीम पर कार्रवाई की मांग। इंदौर के होटल में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, साथ मौजूद प्रेमी से पुलिस कर रही है पूछताछ। गाजियाबाद के लोनी में विधायक रामकिशोर गुर्जर को गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। आगरमालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई, जेसीबी से तोड़ी गई दुकानें। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र की घेर कर पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवा, 3 पर मामला दर्ज। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का तोड़ा घर, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया। कटिहार से प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली 50 क्विंटल खेप में जब्त, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ट्रेन में फंसे यात्री के हेड कांस्टेबल ने बचाई जान, जोखिम में डालकर कोच के नीचे घुसकर किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग की चपेट में आया मदरसा, पूरी इमारत जलकर खाक। हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया मेडिकल लापरवाही का आरोप, एआईएमआई विधायक ने कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, नकाबपोश हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत, बचाने गया 3रा शख्स हुआ घायल। अमृतसर में जनरेटर से जहरीली गैस लीक, 4 लोग बेहोश, अस्पताल में 1 की मौत। इंदौर में साइबर ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लाख बैंक अकाउंट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार सवार युवकों ने घर में बाहर बैठे लोगों पर बरसाए पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर के दतिया गैंग वॉर मुख्य आरोपी महेश यादव की मौत, 10-11 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सहारनपुर में नकली सिक्के बेचने वाले गिरोह का फंडाफोड़। लोहे जस्ता की प्लेट पर पीतल की परत चढ़ाकर बनाते थे सिक्के। पोखरण पहली बार वायुसेना का ड्रोन थॉन। 2026 साल से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं कार्यक्रम में हिस्सा। कंपनियां अपने उत्पादों और प्रणालियों का करेंगी लाइव प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वार्म टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस ऑपरेशंस पर है केंद्रित ये आयोजन। मानव रहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों पर फोकस। उद्योग जगत को जोड़ने की कोशिश। वायुसेना के शीर्ष अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हुए। आधुनिक तकनीक को परखने और भविष्य की सैन्य तैयारियों के समाधान खोजने के लिए आयोजन। 16 सितंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित किया गया है पहला ड्रोनाथॉन। 2026 मिशन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना मकसद है। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक। लालबाग चौराहा के दर्शन से उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के चिंचपोकली चा राजा गणपति पंडाल में इकट्ठा हुए भक्त। 107 साल पुराना है चिंचपोकली। गणेशोत्सव पर पुणे में लिखा विशेष उत्सव। महिलाओं ने किया गणेश अथर्व शीश का पाठ। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का हुआ अलौकिक श्रृंगार। करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे विघ्नहर्ता। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक। भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग चढ़ाया गया। सैफ अली खान करीना कपूर ने बापा के दर्शन के लिए परिवार संग आए एंटीलिया। करिश्मा कपूर भी रही मौजूद। अंबानी के घर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के आरवाणी गणेशोत्सव में हुए शामिल। तेज देश में पत्नी जिलिया के साथ अंबानी के गणेश उत्सव में हुए शामिल। अनिल कपूर भी अंबानी परिवार गणेश उत्सव में शामिल। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी पहुंचे एंटीलिया। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल भी पहुंचे अंबानी हाउस गणेश उत्सव में हुए शामिल। गणेश चतुर्थी पर राम भक्तों को स्वागत। फिल्म रामायण का पहला गाना लॉन्च। रहमान ने दिया संगीत। डॉक्टर कुमार विश्वास लिखे बोल। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब एक और पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर लाने को तैयार। महावीर जैन फिल्म्स और विशाल चतुर्वेदी ने किया राम बोला का ऐलान। नयनतारा सारा मुकुति अमन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति रिलीज। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की कहानी की झलक। बड़े पर्दे पर सुपर हीरो अवतार में नजर आएंगे आमिर खान। निर्माता साजन नाडियाडवाला के साथ बातचीत जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। इस वक्त भी प्रदर्शन चल रहा है। परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा में गड़बड़ियों की पारदर्शी जांच करवाई जाए और परीक्षा दोबारा हो। अनिकेत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनिकेत तस्वीरें दिखाइए।
3: देखिए नेहा, हम आपको तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी गोलंबर पे जब स्टूडेंट जो है दरोगा बहाली बीएसएससी और बीपीएससी 70वीं के जो अभ्यर्थी हैं वो जब प्रोटेस्ट करते हुए निकले थे तो जेपी गोलंबर के पास उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन छात्रों ने पुलिस को चकमा दे करके वहां से छात्र वहां से निकल गए और पुलिस वहीं पे खड़ी रह गई। और अब डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं और एक नहीं बल्कि दो दो लेयर में बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम बीएमपी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं छात्रों को रोकने के लिए। देखिए छात्र जो है वो डाक बंगला चौराहे नहीं बल्कि एग्जीबिशन चौराहे के ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हुए सीधा विधान मंडल की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि छात्रों ने कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा दे दिया है। नया पुलिस जो है वो डाक बंगला चौराहे के पास इंतजार कर रही थी छात्रों की कि छात्र जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा दे दिया है और अब वो गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने से ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हुए सीधा हर ब्लॉक की तरफ बढ़ गए हैं जो कि सीधे विधान मंडल के पास उतरता है। यानी कि छात्र विधानसभा की तरफ जो है बढ़ गए हैं और पुलिस डाक बंगला चौराहे पर उनका इंतजार करती रह गई है। पूरी तस्वीर देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम जो जवान है वो तैनात यहाँ पर किए गए, छात्रों का इंतजार कर रहे थे लेकिन छात्रों ने इन सभी को चकमा दे दिया है और वो यहाँ से सीधे विधानसभा की तरफ बढ़ गए हैं। पुलिस डाक बंगला चौराहे पर इंतजार कर रही थी नेहा, लेकिन जो छात्र हैं वो अब विधानसभा की तरफ बढ़ गए हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, जो आज तक को जानकारी मिली है, जो छात्र हैं वो ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को चकमा देते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ गए। देखिए कई मांगे हैं नेहा, सबसे मुख्य मांग जो आज के इस आंदोलन में है वो है दरोगा बहाली मेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग। दरोगा बहाली मेंस परीक्षा को लेकर के मामला कोर्ट में भी है। छात्र ये लगातार ये आरोप लगा रहे कि मेंस की परीक्षा में धांधली हुई थी, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है लेकिन बावजूद छात्र जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेंस परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही साथ बीपीएससी सत्तरवीं परीक्षा जो 2023 में आयोजित हुई थी उस परीक्षा को भी रद्द करने की मांग जो है वो छात्रों की है। और साथ ही साथ बीएसएससी एक बड़ा मुद्दा है इस आंदोलन में जिसकी परीक्षा जी जी नेहा
0: ठीक है। और इस बीच उत्तराखंड के विकास नगर में शिमला बाईपास के हसनपुर खाले में फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। शिवालिक जंगल की तरफ से आए तेज रफ्तार पानी का रौद्र रूप देखते ही सड़क पर फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली चीजों को बहाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार और रफ्तार तफरी मच गई जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 52 सेकंड का ये वायरल वीडियो जिसमें कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है, खौफनाक तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे लोगों में आसमानी आफत का भय है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह अचानक आए तेज रफ्तार से सैलाब अपने रास्ते में आने वाली चीजों को फंती जाल धारा के साथ बहाता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी जबरदस्त कि मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पल भर में हालात ऐसे बदल गए जैसे कुछ देर पहले आवाजाही चल रही थी वहां पलक झपकते ही सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान से ब्रेक का हौसला बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
6: आगे आगे
7: अरे उधर
6: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: AU सोच बदलो और बैंक भी।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
14: जेके वॉल मैक्स।
15: बेस्ट पेंट
16: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
18: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: EU सोच बदलो और बैंक भी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक की खबर का बड़ा असर राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले का मुख्य आरोपी आज तक पर लेडी बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का मामला। यमुना पर किशाऊ बांध परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। दिल्ली में योगी समेत हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम।

शासित राज्यों में यूसीसी लाने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से मिले जेडीयू नेता। गृहमंत्री से मिलने का मांगा वक्त, कहा बिना चर्चा के ना हो लागू। चिराग बोले ड्राफ्ट देकर तय करेंगे रुख। दिशा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े शहरों की भूमिका खंगाली के सीबीआई जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या और सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर भी शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर आज कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत।

मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं। हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखें।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बात करेंगे दिल्ली सटे गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रूट पर हुए हिट एंड रन मामले की, जिसमें पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब इस मामले में मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक राइडर शिवानी चौहान के परिवार वालों की शिकायत और मामले के वीडियो के आधार पर आज ही कल्याण बैसला के खिलाफ दर्ज हुए केस में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी गई, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कल्याण बैसला की गिरफ्तारी राजस्थान के दौसा से हुई है। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंची, जहां कल्याण बैसला को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसे साफ पता चलता है कि कार सवार युवक ने जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मारी, जो सीधे तौर पर जान से मारने की कोशिश का मामला है। इसीलिए पुलिस ने FIR में धारा 307 शामिल करने का फैसला किया।
1: जिस तरह एक महिला बाइक राइडर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिस तरह से गुरुग्राम के पौश इलाके की सड़क पर सरेआम ये घटना हुई, इन तस्वीरों ने न केवल हर किसी को हैरान कर दिया बल्कि लोगों को दहशत में भी भर दिया। तस्वीरों से साफ है कि बीच रास्ते पहले महिला राइडर को कार में बैठा शख्स धमकाता है, फिर उसकी कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाता है। घायल राइडर शिवानी चौहान उर्फ सिया ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा किया और पूरी घटना की जानकारी दी, तो वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई।
2: ये जो सिंपैथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सूट हो रहा है।
1: इस बीच आरोपी कल्याण बैसला आज तक के कैमरे पर सामने आया, अपनी गलती तो मानी लेकिन उल्टा आरोप भी मढ़ दिया। लेकिन उसका ये सफाई वाला दाव ज्यादा देर नहीं चल सका, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित राइडर शिवानी के परिजनों की शिकायत और सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि कार सवार कल्याण बैसला ने जानबूझकर शिवानी की बाइक को टक्कर मारी, और केस दर्ज होने के कुछ ही देर बाद आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जब आरोपी कल्याण बैसला ने मीडिया के सामने आकर दावा किया था कि उसने कार को टक्कर जानकर नहीं मारी, तो शिवानी ने पहली बार वीडियो मैसेज जारी कर उसके एक एक दावे की पोल खोल दी।
2: So, let's hear this and उसके बाद मैं बताती हूँ फिर चीजें।
3: बहुत जोर जोर से लेके कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे, स्लो कर रहे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं, मैंने कर रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी। ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है, दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ। मेरा भाई
2: इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें। और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
1: शिवानी चौहान ने एक एक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, बताया कैसे काफी देर तक कार सवार ने उसका पीछा किया, फिर कैसे उसे रोकने का प्रयास किया और जब वो रुकी नहीं तो उसे टक्कर मारकर फरार हो गया।
2: फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वॉज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
1: इस बीच गुरुग्राम हिट एंड रन केस में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। नई धाराओं में केस दर्ज होने के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम बाइकर शिवानी चौहान के घर पहुंची, उसका बयान भी लिया।
4: स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद
5: FIR दर्ज हो गई,
4: सब जोड़ चुके हैं।
1: उधर शिवानी का परिवार लगातार आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जिस तरह से शिवानी को टारगेट कर हमला किया गया, उसे कुछ भी हो सकता था।
5: एक्सीडेंट नहीं दिख रहा है, ये एक्सीडेंट करने की बहुत जबरदस्त कोशिश की जा रही है। वो तो किस्मत अच्छी थी बच्चे की जो इतनी दूर चोट लगने के बाद वो घर तक आ गई, नहीं तो खुदा ना खास्ता वो तो वहीं रोड पे ही जिस प्रकार से उन्होंने हिट करा था तो बहुत चोट आ सकती थी और कुछ भी हो सकता था।
1: उधर आरोपी कल्याण बैसला की सफाई कोई काम नहीं आई, अब उस पर पुलिस का शिकंजा कस गया है।
2: तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सूट हो रहा है। और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे।
1: गुरुग्राम में हुई ये वारदात बेहद खौफनाक है, साथ ही इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी कल्याण बैसला अब पुलिस की गिरफ्त में है और पूरी घटना की जांच जारी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, FIR में धारा 307 का जुड़ना और आरोपी को गिरफ्त में लिए जाना, क्या अब इस कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार?
6: हाँ, काफी हद तक उनका कहना है कि जो उनकी जो मेन डिमांड थी वो फिलहाल पूरी पुलिस ने पूरी कर ली। और पुलिस का क्लियर कहना था कि शुरुआत में जब कंप्लेनेंट आए नहीं थे और वायरल वीडियो पर पहली FIR की गई थी और इस वजह से उस FIR में किसी का नाम नहीं था क्योंकि तब तक क्लियर नहीं था। और उसके बाद जब फैमिली पहुंचती है कंप्लेन देती है तो पुलिस ने फिर 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की जो BNS की धारा है वो जोड़ती है और साथ ही साथ हिट एंड रन। दरअसल जो वीडियो एविडेंस है जो प्रोड्यूस किए आते हैं पुलिस के सामने उसमें दो चीजें, एक तो अगर आप देखिए तो गाड़ी टक्कर मारने के बाद रुकती नहीं है, हालांकि फेलो जो बाइकर उसने रोकने की कोशिश की, उसने पीछा किया, आगे रेड लाइट पर पहुंचा, वहां रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्ट टर्न लेकर के वहां से कल्याण बैसला निकल जाता है। यानी एक तो आपने टक्कर दी, पलट के आपने ये भी सहमत उठाने की कोशिश नहीं की ये पता करने की कि लड़की की कंडीशन क्या है, क्योंकि 50 और 60 की रफ्तार जैसा कि सिया ने हमें बताया ठीक ठाक रफ्तार होती है अगर बाइक के लिहाजे से हम देखें, और उसमें अगर आपको कोई गिराता है तो ये आपकी किस्मत अच्छी थी, सिया की किस्मत अच्छी थी कि गंभीर चोट नहीं लगी। और उसके बाद जो धारा 109 BNS जो जुड़वाने की बात है उसमें इंटेंशन को लेकर के कि आप अगर देखेंगे जो वीडियो है नेहा वो क्लियर एकदम से टर्न लिया है तो उसकी वजह से जोड़ने के लिए अपील थी और फिलहाल पुलिस ने यह मान ली है। अब पुलिस दो तरीके से पूरे सिक्वेंस को देख करके जांच कर रही है, एक सिक्वेंस में देखा जा रहा है जहां पर टक्कर लगी उसके पहले, यानी जहां पर पहली बार बाइकर्स से एनकाउंटर हुआ, बाइकर्स और सड़क पर एक साथ गाड़ी आई, उसके बाद जो अलग अलग दावे हैं कि पिंच किया जा रहा था या वो पीछा कर रहा था वो पूरा CCTV से पुलिस ट्रैक करेगी। फिर एक्सीडेंट के बाद जब वो भागता है तो 24 घंटे उसके क्या रवैये थे, कहां जाता है, किससे मिलता है और वो कैसे छुपता है, तो ये पूरा जो पूरा ट्रेल है वो पुलिस फिलहाल दोनों तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। नेहा,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस पूरे हिट एंड रन मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उस पर आरोप हत्या के प्रयास का भी लगा है। उसकी गिरफ्तारी में वो वीडियो सबसे अहम सबूत बना जो राइडर शिवानी ने जारी किया था।
7: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ जो हुआ उसकी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। एक महिला बाइकर को कार सवार पहले धमकाता है, फिर टक्कर मारता है और फिर उसे सड़क पर गिराकर फरार हो जाता है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हादसे की हैं, जो बीते रविवार को हुआ। उस वक्त पीड़ित महिला बाइकर अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर निकली थी, तभी कार सवार मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वो महिला बाइकर को चेस करने की कोशिश कर रहा था।
8: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से। सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ, एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए.
7: ये सभी वीडियो बाइकर्स के हेलमेट और अन्य गियर्स में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं. साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार बेकाबू रफ्तार से महिला बाइकर की तरफ जाता है और उसे टक्कर मार देता है. हादसे के बाद पीड़िता का दोस्त कार वाले का पीछा करता है, वो फौरन ही वहां से फरार हो जाता है.
8: कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ऊपर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया.
7: रविवार को एक घटना घटी, उसके बाद महिला बाइकर ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किए और आरोपित को बेनकाब करने की कोशिश की.
8: मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूं, एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट, एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे इजीली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
7: वीडियो के आधार पर केस दर्ज हुआ. आरोपी कल्याण बैसला मीडिया के सामने आया, सफाई थी, लेकिन अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि वीडियो फुटेज की जांच के बीच पुलिस मान रही है कि महिला राइडर की बाइक को टक्कर जानकर मारी गई है. ऐसे में उस पूरे घटनाक्रम को दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर देखना और समझना भी जरूरी है, जिससे ये साफ साफ समझा जा सके कि आखिर उस वक्त गुरुग्राम की सड़क पर हुआ क्या था और घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों का दावा क्या है. सबसे पहले बात आरोपी कल्याण बैसला के उस दावे की, जिसमें वो कह रहा है कि बाइक राइडर्स करीब 10 मिनट तक उनकी कार के आगे पीछे बेतरतीब तरीके से चल रहे थे, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही थी, जिसके जवाब में शिवानी का कहना है कि जो कुछ भी मौके पर हुआ वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है.
9: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे खींच रहे, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कहा. मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल.
8: रेस में मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे.
7: कल्याण बैसला ने अपने बचाव में दावा ये भी किया है कि सोशल मीडिया पर जारी वीडियो आधी अधूरी है, पूरी घटना की वीडियो सामने आनी चाहिए जिससे पूरी घटना सामने आ सके. हालांकि पूरे घटना को लेकर कल्याण बैसला की दलील कुछ भी हो, लेकिन बाइक को टक्कर का वीडियो सबके सामने है और ये भी उसके खिलाफ एक्शन की सबसे बड़ी वजह है.
9: इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाए, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा दिखाओ ना, उसको फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में.
8: दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए कि दो वीडियो इनफ नहीं है.
7: घटना के बाद महिला बाइकर के साथियों ने आरोपित को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो फौरन ही मौके से फरार हो गया. सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर टक्कर गलती से लगी तो उसने रुक कर मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की.
9: कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ वैसे, मैंने भाई से बोला भैया कि मैंने यार दुख हो रहा मुझे.
8: अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं. आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है.
7: शिवानी चौहान और उसका परिवार आरोपित कल्याण बैसला के हर दावे पर सवाल उठा रहा है. परिवार वालों की मांग है कि अब आरोपित के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज हो गया है.
5: अरे भाई कौन किसको पिंच कर रहा था, चार चार लोग आप गाड़ी के अंदर आ रहे हो और ये आपको पिंच कर रहे हैं. और वो एक अपनी स्टेटमेंट में करा दे जी 28 बाइकर थे, वीडियो तो हम भी देख रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर एक से दो से ज्यादा कोई लोग नहीं थे और आप ही गाड़ी को आगे लेकर आ रहे हो, आप ही गाड़ी को जबरदस्ती हीट करके जा रहे हो, और जबकि आपको बिटिया कह रही है कि अंकल थोड़ा आप डिस्टेंस बनाइए, आप गाड़ी थोड़ी दूर रखिए, और आप यूं कह रहे जी आप स्टेट कर रहे थे उसको, और उसके बाद जब वो गाड़ी आगे लेके साइड पे चलती है तो आप एकदम गाड़ी की रेस देके उसको हीट करके फिर निकल गए।
7: परिवार वालों की मांग पर ही अब आरोपित के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज हो गया है। पुलिस की जांच में खुलासा ये भी हुआ है कि कार चला रहे आरोपित ने अपने दोस्त से कार ली थी, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और महिला राइडर को टक्कर मारकर फरार हो गया। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गुरुग्राम हिटरन मामले को लेकर बाइकर शिवानी चौहान और सिया से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और घटना वाले दिन आखिर गुरुग्राम में क्या हुआ था, सिया ने इस बारे में बताया।
10: पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ये शुरू कहां से हुआ था और ये सब हुआ कैसे?
2: ये शुरू हुआ था गोल्फ कोर्स रोड से ही, और गोल्फ कोर्स रोड से हमारा एक कैफे, मैं जा रही थी बाइकर वन कैफे जिसे हम कहते हैं, और वो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे। मैंने उसको बहुत बाद में नोटिस करा कि वो मेरे आसपास चल रही है। पहला इंसिडेंट

0: एक बार उन्होंने थम्स अप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे, उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कुछ इशारे कर रहा था और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे। तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं, क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे। इसी चीज को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा है कि वो गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही है। जब वो कट मारती है, उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं, जो बाइक पे जाते हैं।
1: पीछे कौन था कार में? क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी। आप देख पाई
0: बहन पीछे थी?
1: वो जो गाड़ी के अंदर कल्याण बैसला क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी।
0: नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें लड़की थी। और प्लस एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही वो एक रूल वॉयलेट कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मेरे पीछे जो मेरा फेलो राइडर चल रहा था, उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरी वीडियोस में दिख रहा है कि मैं हूँ और वो मेरे साइड में चल रहा है, उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना आए। उसने देख लिया था कि वो लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गाड़ी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या जताना चाहते थे, कि वो लड़के हैं या मैं लड़की हूँ, या वो मुझे डरा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, क्या क्या चीज करना चाह रहे थे। मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो जल्दी जल्दी में आए, अपनी गाड़ी कट मारा, ठोका और भाग गए।
1: इंटेंशन कब क्लियर हुई? कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है?
0: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके जब वो इशारे कर रहे थे,
1: क्या इशारा कर रहा था कुछ और बोला भी?
0: कुछ वो बोल रहा था और मैंने हेलमेट पहन रखा था, इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और वो इशारा कर रहा था, साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप साइड हो जाओ, वो दूर ही नहीं हो रहे थे। तो
1: इंसिडेंट के बाद क्या डर लगा आपको?
0: ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगा। और
1: दोबारा बाइक चला पाएंगी?
0: सी, मैं बाइक तो चला पाऊंगी, पर मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊं रोडों पे।
1: अकेले जाओ, ग्रुप में जाने में डर लगेगा?
0: ग्रुप में क्या, मुझे गुड़गांव दिल्ली के रोड पे ही जाने में डर लगेगा।
2: बस पूरी गिरफ्तारी पर राजस्थान पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए।
3: उसके बाद डिटेन करके उनको गुरुग्राम लेकर गए। प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी, प्रकरण चूंकि गुरुग्राम की जिले का है, इसलिए हमारे यहाँ तो उनके द्वारा बस ये सूचना दी गई थी कि हमारे द्वारा जो इसकी घटना के संबंध में जो कथित आरोपी थे उनको डिटेन किया गया है, जिसके संबंध में आपको सूचित किया गया है। ये आगरा रोड से उनके द्वारा डिटेन करना बताया है, और जो कि सदर थाना इलाके में उन्होंने यहाँ दर्ज कराया। और
2: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: EU
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन अ
1: भैया मेरे राखी के बंधन को नींव 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम
2: लो मिठाई भी खाओ
3: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं
4: हाँ बिल्कुल हैं हम नाराज हैं
1: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं
2: क्या बात कर रहे हैं
1: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है
2: अच्छा
1: सबसे अच्छे हुए
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। आज तक पर लेडी बाइकर के बयान के बाद दर्ज हो चुका है हत्या की कोशिश का केस। यमुना पर किशाऊ बांध परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, दिल्ली में योगी समेत हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, सीएम आवास की तरफ बड़े अभ्यर्थी, धांधली की शिकायत के बाद सड़क पर हल्ला बोल। दिशा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगालेगी सीबीआई। जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, ड्यूनू मौर्या, सूरज पंचोली, कई पुलिस अफसरों पर शक। और पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी भगवंत मान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और देखिए 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। और न्यूज रूम लाइव में जैसे हमेशा करते हैं, आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि कौन सी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे बिहार की राजधानी पटना। जमकर हंगामा हुआ, क्यों हुआ छात्रों का हंगामा, पुलिस क्यों आमने सामने आ गई, हम आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरी जो हमारी बड़ी खबर होगी उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, और ये है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं। अब क्या कुछ खबरें निकल के सामने आ रही है, डिटेल में हम आपको बता देंगे। जो तीसरी हमारी बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में ना अब चुनाव है, तो चुनाव से पहले हर कोई अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मुलाकात होती है माता प्रसाद पांडे संजय निषाद की, अब उस मुलाकात के बाद क्या निकल के आया, डिटेल में हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल नंदीग्राम को लेकर, खबर डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर हम आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर है बिहार। बिहार में एक बार फिर से एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी आमने सामने हो जाते हैं। बीपीएसएससी के जो छात्र थे, परीक्षा थी, उसको लेकर ये हंगामा होता है, और उसके बाद ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नोकझोंक शुरू हो जाती है। बीपीएसएससी और बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास उन्हें रोका तो छात्र बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। छात्रों ने पुलिस का विरोध किया। अब ये जो सभी प्रदर्शनकारी छात्र हैं, ये गांधी मैदान से सीएम आवास की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र दरोगा बहाली और बीपीएससी 70वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही बीपीएसएससी की परीक्षा जल्द करवाने की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन बीपीएसएससी, अब इसी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखिए। अब ये आप देखिए कि एक तरफ पुलिसकर्मी है तो दूसरी तरफ छात्र हैं, हाथों में तिरंगा है, बैरिकेड पार करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान नोकझोंक होती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी है, वो आपको सीधे लिए चलते हैं हम पटना, जहां पर इस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शशि, क्या तस्वीरें वहां पर अभी दिखाई दे रही हैं, क्या हो रहा है, छात्रों की क्या मांगे?
1: हिमांशु, देखिए मांगों को लेकर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। एक तो 70वीं बीपीएससी की जो है बहाली प्रक्रिया, उसको खत्म करने की मांग, उसकी जांच, और साथ ही साथ जो बिहार में 1799 दरोगा बहाली की परीक्षा हुई थी उसमें जो गड़बड़ियों की खबर आई है और जिसकी जांच भी हो रही है, उन तमाम मसलों पे जो प्रोटेस्ट है अभ्यर्थियों का। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमांशु दर्शकों को, ये भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर है बिल्कुल विधानसभा के पास, और देखिए यहाँ एक्शन, यहाँ देखिए, ये देखिए पुलिस ने अब एक्शन शुरू किया है विधानसभा के पास। यहाँ देखिए पीछे की तरफ, ये देखिए, ये तमाम अभ्यर्थी जो विधानसभा के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर पुलिस अब हटा रही है और पूरा बैरिकेड्स लगाया गया है। क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
2: हम लोग बीएसएससी के मुद्दे को लेकर हैं, यही सर सवाल पूछे होते हैं लोग सरकार से कि एग्जामिनेशन डेट कब जारी होगा, हाथ लगाएगा जबरदस्ती हटा।
1: देखिए ये छात्र हैं और देखिए दूर तक के छात्रों को खदेड़ा है पुलिस ने, अब जो पूरा का पूरा फ्लाईओवर, देखिए आगे आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए आगे पुलिस एक्शन ले रही है, जो तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं पटना पुलिस के वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और बस लाया गया है जहां पर उनको डिटेन भी किया जा रहा है, जो रैफ का राइट कंट्रोल व्हीकल होता है वो भी लाया गया है। तो पुलिस अब एक्शन में यहाँ पे दिख रही है। पुलिस की कोशिश यही है कि जिस फ्लाईओवर को काफी देर से बंद कर रखा है अभ्यर्थियों ने, उसको क्लियर कराया जाए, और यही वजह है कि यहाँ पर एक्शन अब देखते हुए बन रही है तस्वीरें, और लगातार पुलिस क्लियर करा रही है इस पूरे जोन को, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है हिमांशु, और यहाँ पर प्रदर्शन की मनाही है, यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब छात्रों ने फ्लाईओवर पे काफी देर से अपना डेरा जमाया हुआ था, तो अब अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और पुलिस अब यहाँ एक्शन में दिख रही है। हिमांशु,
0: और बिल्कुल अभी ये भी खबर आ रही है शशि की, विधानसभा के बिल्कुल करीब इस वक्त छात्र पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस अभी शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकती है।
1: बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि ये भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर है। अच्छा। जो बिल्कुल सचिवालय थाने के पास है, आर ब्लॉक का इलाका है, आर ब्लॉक से ये कनेक्टिंग सड़क है, और यहाँ से विधानसभा बमुश्किल आप समझिए 100 से 150 मीटर है, बहुत दूरी नहीं है। फ्लाईओवर जहाँ खत्म होती है वहां से विधानसभा का क्या प्रीमिसेस शुरू हो जाता है, दीवार शुरू हो जाती है, तो वहां पुलिस उनको किसी हाल में नहीं पहुंचने देना चाहती है। यही वजह है कि फ्लाईओवर के ऊपर ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और छात्रों को अभ्यर्थियों को यहीं पर रोका गया है। अभ्यर्थी जो है वो यहीं पर काफी देर से खड़े थे और अब पुलिस उनको यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। हिमांशु,
0: लेकिन शशि अब इसका समाधान क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि बिहार में पटना में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वो प्रदर्शन भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से रहे। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जब डिटेन कर रहे थे, छात्र छात्रा एक दूसरे से लिपट गए थे, हट नहीं रहे थे, तो अब ये समाधान होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है आपको?
1: देखिए, जो दरोगा बहाली में अनियमितता या फिर जो सॉल्वर गैंग के संलिप्तता की खबरें आई थी गया जी के एक सेंटर पे, और उसके बाद जो जांच हो रही है उसमें लगातार एजेंसी ईओयू की तरफ से जांच हो रही है। यहाँ मजिस्ट्रेट और जो पुलिस बल तैनात है, थोड़ा 10 कदम आगे की तरफ चल के दिखाते हैं आपको हिमांशु, ये सामने की पूरी सड़क जो नीचे की तरफ जा रही है फ्लाईओवर, ये आगे विधानसभा है और विधानसभा का जो कैंपस है, जो मुख्य इमारत है और मुख्य सचिवालय, वो भी सामने दिख रहा है। थोड़ा कैमरे की नजर से अगर आप जूम करें हमारे सहयोगी, तो देखिए सामने विधानसभा है। तो पुलिस की और प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी तरह से वहां आगे न बढ़ने दिया जाए, और इसीलिए ये पूरा बैरिकेड्स लगाया यहाँ पुलिस ने, और ये पूरा हर तरफ यहाँ से सड़क निकलती है। ये जो देखिए सामने से जो सड़क आ रही है, ये स्टेशन जो पटना जंक्शन है वहां से सड़क आ रही है, इनकम टैक्स गोलंबर से सड़क आती है फ्लाईओवर पे, हमारी बाईं तरफ ये मीठापुर की तरफ सड़क निकल जाती है गर्दनीबाग की तरफ। तो काफी देर से ट्रैफिक यहां पर बंद है इस फ्लाईओवर पर अफरा तफरी होने की वजह से, अभ्यर्थियों की मौजूदगी होने की वजह से, और यही वजह है कि अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको क्लियर कराया जाए। सामने विधानसभा है, वहां तक अभ्यर्थी न पहुंच पाए। लेकिन अभ्यर्थियों का क्या कहना है, जो हम बातचीत कर रहे थे लगातार, अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो 1799 पदों पर दरोगा की नियुक्ति के लिए जो BSCC ने एग्जाम लिया, उस एग्जाम में गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी के बाद उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसमें अब मुख्य परीक्षा हो चुकी है, फिजिकल की परीक्षा जो है ना वो आगे वहां पे होनी है, तो एक आपत्ति वहां पे है। और 70वीं BPSC एक ऐसा सवाल जिसको लेकर के हमने 2024 में भी देखा आंदोलन, लगातार प्रोटेस्ट होते रहे और लंबे अरसे से बार बार डिमांड करते हैं अभ्यर्थी कि 70वीं BPSC में गड़बड़ी हुई है उसको।
0: लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आ रही है जिनको देखकर लग रहा है कि छात्र काबू में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर भी अब छात्र पहुंच गए, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
1: बिल्कुल, मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, जहाँ हम इस वक्त हैं वहीं देखिए, ये देखिए ये नीचे की तरफ, ये रेलवे ट्रैक है नीचे की तरफ, तो वहां पर छात्रों की मौजूदगी है। पटना के SSP हमारे फ्रेम में हैं जो नीचे खड़े हैं जिस फ्लाईओवर के ऊपर इस वक्त हैं, चूंकि बैरिकेड्स है तो हम नीचे अभी नहीं जा पा रहे हैं हिमांशु, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए पटना के SSP वहां नीचे खड़े हैं, नीचे की सड़क भी जाम है और कोशिश ये हो रही है प्रशासन की तरफ से कि जो अभ्यर्थी, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हिमांशु कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बमुश्किल 150 से 200 अभ्यर्थी ही यहां पहुंचे पाए होंगे जो गांधी मैदान से निकले थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जैसा हम दिखा रहे हैं सामने जो राइट कंट्रोल व्हीकल है उसमें अभ्यर्थियों को रखा गया है, अभ्यर्थी यहां से देखिए अब आगे की तरफ उनको गाड़ी लेकर के जा रही है और पुलिस और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, पटना के SSP भी लगे हुए हैं कि कैसे ट्रैफिक चालू कराया जाए। और देखिए हमारे सामने ही अब देखिए ये बैरिकेड्स हटते हुए अब ट्रैफिक जो है यहाँ से आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है हिमांशु।
0: और बिल्कुल ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देखिए शशि भूषण यहाँ पर मौजूद है, बाकी दो तस्वीरों में एक तरफ पुलिसकर्मी तो दूसरी तरफ ये अभ्यर्थी जिनके बारे में अभी जानकारी शशि भूषण दे रहे थे। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की भीड़ है, रेलवे ट्रैक पर इस वक्त छात्र पहुंच गए हैं, हालांकि उनको रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए तब से कोशिशें की जा रही है, हल्के बल का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और एक बात बताइए शशि, यहाँ पर जो छात्र एग्जिट हुए हैं क्या इनको कोई लीड कर रहा है? ये देखिए रेलवे ट्रैक की जो तस्वीर है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर किस तरह से, और ये आप देखेंगे कि वहां पर रेलवे ट्रैक पर काम भी चल रहा है और हाथों में तख्तियां लिए कि BSSC जागो, परीक्षा की तारीख जारी करो, और ये छात्र रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए छात्र। और ये देखिए अलग अलग जगह से, ये देखिए सारा रेलवे ट्रैक इस वक्त ब्लॉक कर रखा है। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है, शशि तस्वीरें देख रही है, रेलवे ट्रैक पर इस वक्त छात्र मौजूद है, एक बात बताइए इन छात्रों को कोई लीड कर रहा है, क्या उनसे पुलिस वालों की बात चल रही है?
1: देखिए यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ वो छात्र हैं जो सीधे सीधे अपने आप को इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रभावित या पीड़ित मानते हैं। मानसू, 1799 पदों पर दरोगा बहाली के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और जिनका चयन फिजिकल के लिए नहीं हुआ, मतलब आप समझिए कि जो रिटेन की परीक्षा हुई उस परीक्षा में वो पास हो गए कई अभ्यर्थी, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब जो फिजिकल में सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन छात्रों का कहना है कि उसमें गड़बड़ियां हुई। हमने जैसा पहले बताया गया जी के सेंटर पे भी कुछ गड़बड़ी हुई, ईओयू जो जांच कर रही है उसमें 20 ऐसे सेंटर्स चिन्हित किए गए हैं उनकी तरफ से, हालांकि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि 20 ऐसे केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र रहे उस परीक्षा में जहां से सबसे अधिक छात्रों का चयन हुआ, और उन छात्रों का चयन जो हुआ उसमें, मतलब आप समझिए उस सेंटर से 25% छात्र जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। हमारे साथ अनिकेत हैं, हमारे सहयोगी, जो शुरू से इस आंदोलन को भी कवर कर रहे हैं और पूरी परीक्षा बहाली। 70वीं बीपीएससी का सवाल बार बार अनिकेत उठता है, आज भी वो मुद्दा जुड़ा है, तो ऐसा लगता है कि संख्या बल बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी भी उस आंदोलन को जोड़ लेते हैं इसके साथ।
2: देखिए, आपको याद होगा जिस वक्त ये परीक्षा हुई थी उस वक्त से ये विवाद में है ये परीक्षा। अब ऐसे में इन अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी जो है वो कई जगहों पे ब्लैंक है, तो कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसको लेकर के ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आयोग भी इसको लेकर के सफाई लगातार दे रही है। अब ऐसे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लाखों अभ्यर्थियों ने दी थी, तो उनका ये मानना है कि जब तक सरकार पर आयोग पर प्रदर्शन करके दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक भीड़ को मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है। आज आपको बता दें सर कि लगभग 200 से 250 ही छात्रों की संख्या थी, बावजूद हजारों पुलिसकर्मियों को छात्रों ने इस तरीके से चकमा दिया कि आज दिन भर माहौल जो है वो, या फिर यूं कहें कि हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो पटना में चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार भर के जेंजीज को या फिर जो युवा है जो 70वीं बीपीएससी से जुड़े हुए हैं या दरोगा बहाली से जुड़े हुए हैं उनको ये मैसेज देने की कोशिश है कि जब तक सरकार पर और आयोग पर दबाव नहीं बनाया जाएगा सड़कों पर माहौल
3: निकालना होगा छात्रों की मांग का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों के बाद जब बयान आते हैं तो बहुत सी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। संजय निषाद, माता प्रसाद पांडे, ये मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जो बयान सामने आते हैं उससे सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई। यूपी के मंत्री हैं संजय निषाद और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, और बयान देते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद कहते हैं जो निषादों की बात करेगा हम उसके साथ में हैं। माता प्रसाद पांडे से बात की तो उनका एक और बयान बहुत अहम हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सपा के दरवाजे बंद हुए तो बीजेपी के खुल गए, बीजेपी के बंद होंगे कहीं और खुले। संजय निषाद से बात की हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
4: कल आप नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मिले हैं काफी देर, क्या वार्ता क्या हुई है?
5: शुरू से कहते आ रहा हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा तो मैं भाजपा के पास गया, भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा। उस पर
4: कहने का ये है कि आप जिससे मुलाकात आपने की है, बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
5: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निर शायद 1973 में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था। इस युग में
4: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का ये बंद हो गया तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
5: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
4: संजय निषाद को अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में एक को चुनना होगा ऐसी स्थिति में तो किसको चुनेंगे?
5: नहीं, अभी तो जो समय जब आएगी स्थिति उस समय सोचा जाएगा क्या करना, अभी तो ऐसी जरूरत ही नहीं। अभी तो धर्मपाल जी से कल बैठक बात हुई है, बुलाए गए थे।
4: प्रसाद पांडे ने नहीं कहा आपसे कि कहां वहां है, आइए हमारे पास?
5: नहीं, ऐसा
4: कहते हैं यूजुअली नेता, आप लोग बताएं। बस
5: नहीं, गलत, हम झूठ बोलते नहीं, वो बुजुर्ग आदमी ऐसा उन्होंने नहीं कहा, तो हम लोगों के उनका 85 साल उम्र, हमारा 60 साल।
4: आपने उनसे नहीं कहा? नहीं, तो कभी नहीं बोले। आपने उनसे नहीं कहा?
5: बात नहीं,
4: आपने उनसे नहीं कहा कि जो है अगर भाई मेरे मुताबिक सीट्स नहीं मिली तो मैं सोच सकता हूँ?
5: मैंने उतना बता दिया, आगे मैंने बता दिया कि इस तरह का कुछ नहीं है।
4: कितनी सीट्स पर आप जीत सकते हैं?
5: अभी तो हम लोग चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि एनडीए भी जीते, जीत के लिए काम करें, जो सीटें हमारी है कुछ सीटें और हमारी हारी हुई दें जिसमें निषाद अधिक है उस पर चर्चा होगी। अभी
3: तो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर, वो भी हम आपको बता दें, यूसीसी का मुद्दा। और अब ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में उनकी बात होगी, मुलाकात होगी, रणनीति पर मंथन होगा। दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी को लेकर अहम स्तर पर चर्चा और आगे की रणनीति पर मंथन की संभावना है। उत्तर और दिल्ली पहुंच चुके, ये भी आपको बता दें उत्तर प्रदेश यूसीसी की मांग करने वाला देश का पहला राज्य रहा है। अब यूपी में यूसीसी को लेकर सरकार की आगे की तैयारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य स्तर पर संभावित कदमों को लेकर बातचीत हो सकती है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश यूसीसी की मांग करने वाला, और अब यूसीसी को लेकर सरकार आगे की तैयारी कर रही है और उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी सियासत को देख रहे हैं, अलग अलग जगह से बयानबाजी भी वक्त वक्त पर आती रही है, लेकिन ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा ये बहुत अहम देखा जा रहा है, बहुत खास। तो देखिए यूसीसी को लेकर चर्चाएं काफी की जा रही है और इसको लेकर बयान भी जारी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं यूसीसी लागू करने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है, महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के लिए यूसीसी जरूरी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में यूसीसी को प्रमुखता से शामिल किया था।
6: क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड?
7: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है, तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए, हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश, हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
3: अब देखिए यूसीसी पर जमकर सियासत हो रही है, बयानबाजी भी जारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं तो बातचीत होगी। अब विपक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यूसीसी पर भी बयान दिया गया।
8: भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या है? यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मजारे, यूसीसी। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पेपर लीक पे कोई जवाब नहीं है, मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो सुधार होने चाहिए वो सुधार नज़र नहीं आते हैं। किसानों की समस्याएं, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, सबके सामने है। जो लोग 2022 का विजन दिखाते थे वो अब 2047 का विजन दिखा रहे हैं, जो लोग 2014 में सपने दिखा रहे थे वो अब 2047 के सपने बेच रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जमीन पे कुछ भी बदलाव नजर नहीं आता। आज बेरोजगारी है, महंगाई है।
9: जो उन्होंने यूसीसी के बारे में बात की, जेडीयू की विचारधारा इस पर बहुत स्पष्ट रही और इसीलिए बिहार में विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि हम जब आएगा उसको तो देखेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश आंध्रा में न तेलुगुदेशम साथ खड़ा है और न ही वहां पे कोई पार्टी साथ खड़ी है जिनके साथ है। तो मुझे लगता है ये बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में दिया गया एक ऐसा बयान है जो पूरी तरह एनडीए के आपसी एकता की टूटन को प्रदर्शित करता है।
3: और चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में ट्रस्ट को लेकर टेंशन चल रही है। अब यहां पर अभी तक जो जिम्मेदारी निभा रहे थे शिवपाल यादव, अब वो मिल गई है अखिलेश यादव को। और ये क्या कहे, अब आपको बता दें लोहिया ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ऐतिहासिक लोहिया ट्रस्ट। शिवपाल यादव की जगह अब अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2017 से लगातार शिवपाल सिंह यादव ट्रस्ट की कमान संभाल रहे थे, अब अखिलेश यादव के पास पार्टी के साथ साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर ट्रस्ट की पूरी कमान है। 2017 में आपको याद है विवाद हुआ था परिवार में, उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब ये जो ट्रस्ट पर टेंशन समाजवादी पार्टी में छिड़ी है, इस पर बीजेपी की तरफ से भी बयान जारी किया गया है।
7: शिवपाल जी को लेकर अखिलेश जी के मन में जिस प्रकार की परिस्थिति रही है और जिस प्रकार की असहजता उनके मन में रही है वो जग जाहिर है। अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2016 में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को अभी भूले नहीं है, और इन सारे विषयों को शिवपाल जी भी जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है और समाजवादी पार्टी में आपस में बहुत बड़े स्तर पर आंतरिक मतभेद है, परिवार में टकराव और तनाव है, और ये निश्चित रूप से आप देखेंगे चुनाव से पहले ये सब चीजें सड़कों पर आएंगी। और अखिलेश यादव जी ने कभी भी शिवपाल जी का सम्मान नहीं किया है, उन्होंने हमेशा शिवपाल यादव जी को अपमानित किया है, और शिवपाल यादव जी भी इन सब विषयों को जानते हैं।
10: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 3 साल थे, सदन के अंदर अखिलेश जी ने बयान दिया, आप खुद समाजवादी पार्टी से अलग होकर के उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी की सच्चाई को उजागर किया कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन लूटने वाले लोग आ गए हैं, और ये इस तरह पार्टी नहीं चलती है। बयान अलग अलग शिवपाल जी के आए तो भरोसा कैसे करेंगे, तो उनको तो खुद किनारे लगाने में लगे हैं, तो इस नाते लोहिया ट्रस्ट ने उनको हटा दिया है कि अब आपकी जरूरत नहीं है।
4: लेकिन अब इलेक्शंस नजदीक है, बीजेपी को मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करने का, अब वो इसको 2017 से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ले ली है और इस तरह की बातें, तमाम बयान बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं, क्या पक्ष आपका है और क्या जवाब देंगे आप?
11: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न देश से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न लोहिया से मतलब है, न जयप्रकाश से मतलब है, न उन्हें सामाजिक सद्भाव से मतलब है। उनका एकमात्र लक्ष्य है चुनाव, इसलिए हर जगह वो चुनाव देखते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया है, जैसी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, यह तो एक आदर्श की स्थापना का एक संकल्प है, उसी संकल्प
3: पे। और देखिए, पंजाब के संगरूर में हुआ सुसाइड केस, अब मान सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। चंडीगढ़ में जमकर प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। पार्टी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पंजाब में नशे का बढ़ता कहर हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया, सरकार की उदासीनता ने संकट को और अधिक गंभीर और भयानक बना दिया है, जिसके हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जैसे
0: सीधा रुख करेंगे असीम बस्सी का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, ये मामला संगरूर सुसाइड मामला मान सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ा रहा है, आज किस तरह से प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से?
12: जी हाँ, डेफिनेटली जिस दिन से गुलजार सिंह ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसके बाद उनकी डेथ हुई है, तब से मान सरकार को लगातार ऑपोजिशन जो घेर रही है। पंजाब कांग्रेस ने आज बड़ा प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पर, और खासतौर के पंजाब कांग्रेस के नए इंचार्ज बने सचिन पायलट उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। यूनाइटेड फेस कांग्रेस ने दिखाया और वो मार्च करना चाहते थे हरपाल चीमा के घर की तरफ, वो डिमांड कर रहे हैं एक्शन उनके खिलाफ, FIR हो उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार जो है ऐसा कुछ नहीं कर रही है। हालांकि 5 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, कुछ 4 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन आज पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन जो है काफी अग्रेसिव था, और जैसे ही वो मार्च करने के लिए बढ़ने लगे तो वाटर कैनन पुलिस ने जो है यूज किया चंडीगढ़ पुलिस ने उनको रोकने के लिए, बैरिकेडिंग काफी वहां पर लगाई गई थी ताकि वो मार्च ना कर सके हरपाल चीमा के घर की तरफ। लेकिन बड़ी बात थी, कांग्रेस ने आज हजारों वर्कर्स यहां पर इकट्ठे हुए, सचिन पायलट लीड कर रहे थे, और जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े क्रॉस करने के लिए, तभी जो है वाटर
0: बिल्कुल मामला भी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। मान सरकार की शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
1: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई.
7: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए.
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता.
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी.
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़.

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा है।
3: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जब प्रदर्शन किया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां संगरूर सुसाइड मामले को लेकर जोरदार घेराव इस वक्त सरकार का, पंजाब सरकार का किया जा रहा है और जमकर प्रदर्शन भी हो रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हल्ला बोला गया और जब भीड़ बढ़ गई तो उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान ये देखिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पार्टी नेताओं का ये आरोप है कि पंजाब में नशे का कहर बढ़ता जा रहा है, हर दरवाजे तक पहुंच गया ये नशे का कहर, लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार उदासीन है, सरकार शांत है, मौन हो चुकी है भगवंत मान सरकार, और इसलिए भगवंत मान सरकार का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीर उसी की
8: संगरूर सुसाइड मामले को लेकर आज
7: ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही है, दूसरी तरफ बैरिकेटिंग लगा रखी है और लोगों की भीड़ है और इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है जो मान सरकार का विरोध किया जा रहा है। असीम असी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए, अभी हालात वहां पर क्या बने हुए हैं?
9: ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जो कांग्रेस के लोग थे राजा वरिंग भगवान के ऊपर पड़े बैरिकेडिंग के ऊपर, तो सभी तरीके से जो है वोटर कम का इस्तेमाल किया। सचिन पायलट भी साथ नहीं थे आज, इन सचिन पायलट का पहला यहाँ पर विजिट था जिससे इंचार्ज बने हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर करने लग गया है। लेकिन ये पंजाब कांग्रेस एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, गुजरात सिंह से देख हुए, पंजाब सरकार से देख हुए, मान सरकार से देख हुए ये मार्च करना चाहते थे। फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह उधर की तरफ और ये डिमांड कर रहे हैं कि हरपाल सिंह की तरफ से गुजरात में बैंक से बनती, तो आज बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ है। काफी देर जो वाटर कैनल और बड़ी लाइटी है कि हजारों की गिनती में,
7: और देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें तो अभी साफ स्पष्ट दिखाई भी दे रही हैं। बिल्कुल जी, और एक बार फिर देखिए गुलजार सिंह सुसाइड केस में कांग्रेस सरकार का घेराव कर रही है और उसके बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। नशे का बढ़ता कारोबार, विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि नशा हर घर तक पहुंच चुका है, हर दरवाजे को खटखटा रहा है और ऐसे में जो मान सरकार है वो चुप्पी साधे हुए। मान सरकार का उदासीन रवैया युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहा है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के मंत्री पुलिस सब मिले हुए हैं, पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट है। और ये देखिए बैरिकेटिंग जब पार करने की कोशिश की जाती है तो कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। असीम बसी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। असीम ये बताइए, हर तरफ विरोध हो रहा है, घेराव किया जा रहा है, चीमा के इस्तीफे की मांग की जाने लगी है, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड अभी तक आया है? अपनी बात रखी है सरकार ने?
9: देखिए कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पंजाब के मुख्यमंत्री भवन सिंह ने, और हालांकि ऑफिशियल जो है सर लगातार ड्रग्स के ऊपर अटैक कर रहा है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत ज्यादा है, सरकार फेल हुई है, और इस केस में जो केस में बोलते हैं कि उन्होंने एक सवाल पूछा था इसलिए उनको सुसाइड करनी पड़ी। हालांकि सरकार कहती है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जिन लोगों के ऊपर भी इनाम लगाया गया था गुलजार सिंह की तरफ से उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर यह है कि मंत्री हरपाल सिंह सीमा को सरकार बचा रही है इस पूरे विवाद में। हालांकि कांग्रेस हो बीजेपी हो अकाली दल हो सभी जो है हरपाल सिंह के खिलाफ एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो अभी तक इस मामले पर हरपाल सिंह सीमा को बचा कर रही है। कल भी जब पूछा गया था भजन मोहन में तो उन्होंने ये भी कहा कुछ भी छोटी छोटी घटना होता है तो सब लोग उधर चले जाते हैं, तो उन्होंने तो इस पूरे इंसिडेंट को जो वहाँ पे हुआ संजूर में नाम ना छोटी मोटी घटना कह दी। उसके बाद जो अपोजिशन ने लगातार बताया कि ड्रग्स के मुद्दे पर इलेक्शन जो है वो राउंड द कॉर्नर है, ड्रग्स के मुद्दे पर गुजरात के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर अपोजिशन लगातार जो है वो अटैक कर रही है।
7: नहीं लेकिन एक बात बताइए असीम, क्या ये ड्रग्स का मुद्दा नया नहीं है? उड़ता पंजाब इस तरह की न जाने कितनी बातें कही गई हैं, कितने बयान जारी किए गए हैं, और नशा ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब में। और ये हमने देखा है कि युवा एक नशे की बिल्कुल उनकी हालत खराब हो जाती है नशे की खेप में आ रखी है, तो क्या सरकार इस मामले में गंभीरता के साथ कोई प्रयास उठा रही है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है पक्ष विपक्ष सबके लिए?
9: देखिए पिछली सरकार में इस बार ड्रग्स का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कथन करी थी कि हम कथन कर देंगे, इस बार भी जब अरुण केजरीवाल आए उन्होंने भी बोला था कि हम ड्रग्स को बिल्कुल बंद कर देंगे पंजाब से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि पंजाब सरकार जो है वो क्लेम करती है कि युद्ध में कैंडिडेट जो भी वॉर अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन है उसमें हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी बड़ा फिगर हुआ है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देख लें लोग कंप्लेन करते हैं कि अभी ड्रग्स का जो है प्रेविलेंस है, ड्रग्स जो है जो बड़ा मुद्दा है। और अगर आप पिछले एक महीने में देख लें तो संगरूर में जो इंसिडेंट हो गए मोहन जी वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था ड्रग्स के मुद्दे पर, इसको भी एलिजिबली पुलिस ने टॉर्चर किया जो आरोप लगते हैं। और अब ये गुलजार सिंह उसने अपने ही बेटे के इशू था, अगर मेरा बेटा जो है ड्रग्स लेता है ड्रग्स का हल नहीं किया सरकार ने, तो चाहे पंजाब सरकार जो है उदावे कर रही है और भी ड्रग्स की ये समस्या विरुद्ध की, लेकिन ऑन ग्राउंड आज भी जो है ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में।
7: लेकिन हर बार वही होता है कि जो जमीनी स्तर के जो ड्रग डीलर होते हैं या फिर जो नशे को फैलाते हैं, नशे का कारोबार फैलाते हैं, उनको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो ये कारोबार कर रहे हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता और उनको लेकर सिर्फ सियासत होती रहती है, प्रदर्शन किया जाता है विपक्षी तरफ से, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बावजूद वही हालात रहते हैं। तो ये बदलाव की उम्मीद जो आम जनता लेकर बैठी है, क्या वो बदलाव कहीं दिखाई दे रहा है सरकार की मंशा में?
9: देखिए लेकिन अगर पिछले डेढ़ महीने दो महीने में तो लगातार हर सेक्टर ही जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, एम्प्लॉइज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ड्रग इश्यू का जो है प्रोटेस्ट किए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। बड़े बिग प्रॉमिस से आए थे, 92 MLA बनकर आए थे, लेकिन अब तकरीबन हर सेक्शन चाहे एम्प्लॉइज हों चाहे टीचर्स हों चाहे किसान हों चाहे आईटी हो, ये लगातार सरकार को दे रहा है। जी
7: गुलजार सिंह के परिजनों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि उनकी बात को हमेशा दबाया गया, उनका भी ये कहना था कि अंतिम संस्कार भी जबरदस्त करवा दिया गया। हालांकि ठीक है, इस बारे में अब क्या सरकार एक्शन लेती है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं मान सरकार पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से लोगों का समूह दिख रहा है सड़कों पर, और मनोज जरांगे के नेतृत्व में यह बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर लोगों की भीड़ है और मांग की जा रही है आरक्षण की। ये देखिए मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का कूच, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग आरक्षण की मांग करते रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना से मुंबई के लिए मनोज जरांगे ने कूच किया है, महाराष्ट्र के जालना से मुंबई के लिए। इस दौरान मनोज जरांगी ने कहा कि अपने समर्थकों से कि फिलहाल आप यहीं पर रहें, अकेले अनशन के लिए वो जाएंगे। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगी को आजाद मैदान में अनशन या आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी है। गणेश उत्सव और साउथ मुंबई के इलाकों में स्थित सेंसिटिव एरियाज को देखते हुए यह अनुमति देने से इनकार किया है। लेकिन लोगों की भीड़ आप देखिए, और एक बार फिर से ये सभी एकजुट मराठा आरक्षण की आवाज को बुलंद करने के लिए मनोज जरांगी के नेतृत्व में। अभिजीत करांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं मनोज जरांगिया की तरफ से, क्या अपील की गई और क्या आगे की रणनीति लेकर चल रहे हैं वो?
6: देखिए, मनोज जरांगिया पार्टी जो है वो आज सुबह जालना के अंतरवाली सराटी से निकल चुके हैं मुंबई के लिए। वो शनिवार को मुंबई पहुंचेंगे। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से सर्टिफिकेट दिए जाए ताकि उनको नौकरी में और शिक्षा में उसका फायदा मिले। और भी उनकी 14 मांगे हैं, लेकिन इन मांगों को सरकार ने सकारात्मक तरीके से लिया है। इनमें से बहुत सारी मांगें जो है वो पूरी कर ली गई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने पहले से कह दिया है। फिर भी मनोज जरांगिया पार्टी जो है वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो अपने समर्थकों के साथ आएंगे, लेकिन आजाद मैदान पुलिस ने उनको अनशन की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि एक ही दिन की अनुमति आजाद मैदान पुलिस की तरफ से हर दिन के लिए दी जाती है, और सैटरडे संडे और बाकी जो छुट्टियां होती है उस दिन अनशन और किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती। और पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उनमें उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिस वजह से पुलिस को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अभी मुंबई में गणेश उत्सव है, बहुत सारे सेंसिटिव इलाके मुंबई में है, साउथ मुंबई में जहां पर वो अनशन करना चाह रहे हैं वो पूरा इलाका हाई अलर्ट वाला इलाका है। तो ऐसे माहौल में उनका अगर अनशन होता है तो ये एक तरीके से सुरक्षा के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, ऐसा
7: बिल्कुल मानना है। तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है कि कहीं कुछ कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और प्रदर्शन भी शांति से चलता रहे, जो आवाज उठाई जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री की।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री, क्या अब इस बात का खुलासा होगा? सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिशा सालियान के पिता ये कहते रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं। सीबीआई की तरफ से अब एक्शन लिया जा रहा है, केस में एफआईआर भी दर्ज की गई है और आप देखिए आदित्य ठाकरे सहित कई बड़े लोगों का नाम इस मामले में सामने आया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ बॉलीवुड के कई चेहरे जिसमें सूरज पंचोली का नाम सामने आता है, जीनो मोरिया का नाम सामने आता है, रिया का नाम सामने आता है, अब ये जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास। तो सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन दिशा सालियान की मौत के 6 साल बाद तक सिर्फ इसे आत्महत्या बताया गया। जांच को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। जब दिशा सालियान के पिता का बयान दर्ज किया गया तो दिशा सालियान के पिता इस बात को कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं, गैंगरेप किया गया और उसके बाद फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई उसकी हत्या करके।
1: क्या सुलझ पाएगी दिशा की मौत मिस्ट्री? क्या 6 साल बाद दिशा के पिता को मिलेगा इंसाफ? सीबीआई की एफआईआर में कई बड़े लोगों के नाम। 2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की अर्जी पर दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज किया जिसमें दिशा के पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं। दिशा के पिता ने अपने बयान में कहा कि दिशा के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर उसकी हत्या की गई और इस साजिश में कई लोग शामिल थे।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने।
1: दिशा के पिता के आरोप को लेकर 13 सितंबर 2026 को सीबीआई ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड और पुलिस वालों के भी नाम शामिल हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें जाने माने चेहरे हैं, शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, उनके पिता उद्धव ठाकरे, एक्टर रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शैविक चक्रवर्ती, एक्टर सूरज पंचोली, डीनू मौर्या, इसके अलावा पुलिस अफसर सचिन वाजे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख, इसके अलावा कई और नाम शामिल हैं।
3: सतीश सालियन के तहत लगाए गए एलिगेशन या उनके कंप्लेंट के तहत उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर दीनू मौर्या, उस वक्त के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, अन्य बहुत से लोगों का नाम लिया है कि ये सब लोग इस केस में जिम्मेदार हैं, इस केस में मर्डर के लिए भी जिम्मेदार हैं, गैंगरेप के लिए भी जिम्मेदार हैं और उसके बाद जो कवर अप किया गया उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सतीश सालियान का कहना है।
1: दिशा सालियान के पिता के आरोपों के साथ साथ उनके वकील ने भी आदित्य ठाकरे के साथ साथ मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों और पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
4: दिशा सालियान का सामूहिक अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया, उसके बाद में ये जो आरोपी थे आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, इनको बचाने के लिए पूरे पुलिस के रिकॉर्ड चेंज किए गए, झूठे गवाह बनाए गए, झूठा रिकॉर्ड बनाया गया और इसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। ये जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें जो हमने नाम दिए सतीश सालियान जी ने, उसमें आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे है और जो बचे वाले आरोपी है उसमें सूरज पंचोली, डीनो मौर्या, बाद में आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, फिर तुम्हारा परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, यहाँ से लेकर जो एसआईटी के अधिकारी है वो तक और जो फोरेंसिक जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया।
1: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 6 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं करता और मामले को सिर्फ हादसे के रूप में देखना कई सवाल खड़े करता है।
3: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है, इनके जो कंप्लेंट है उन्हें आप इन्वेस्टिगेट करिए, इसमें क्या तथ्य निकलते हैं और उसके बाद आप आरोपी बनाइए और आरोपियों पर एक्शन लीजिए।
1: तो साफ है, 2 सितंबर को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी तो साफ कर दिया था कि तब तक सीबीआई किसी को आरोपित करार ना दे जब तक कि जांच में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना मिल जाए। दिशा सालियान की संदिग्ध मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी और पुलिस ने मौत को सुसाइड बताया था। वहीं दिसंबर 2023 में केस दोबारा खोला गया और एसआईटी बनाई गई, इसमें भी आत्महत्या की बात कही गई थी।
5: जब वो ऊपर से गिरी थी तो दिशा सालियन के शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, सिर्फ कुछ दांत टूटे थे, इसके अलावा कुछ खास नहीं चोटें थी। जबकि जब इंसान को इतनी ऊपर से गिरता है तो जाहिर सी बात है चोटें बहुत ज्यादा लगी होनी चाहिए थी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स पर नहीं दिख रही थी। इसके अलावा अदालत ने ये भी देखा कि जो स्पॉट पंचनामा है, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, लेकिन जो स्पॉट पंचनामा है उसमें खून है ही नहीं, दिखाया ही नहीं गया पुलिस द्वारा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे।
1: जहां एक तरफ दिशा सालियान के पिता को न्याय का इंतजार है तो वहीं सवाल उठ रहा है कि 6 साल बाद क्या इस केस में सीबीआई के हाथ कुछ नए सबूत लग पाएंगे। मुंबई से दिवेश सिंह और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
0: दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और जब दिशा सालियान की मौत होती है उसके 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और उसके बाद अब ये जो अधिवक्ता हैं और दिशा सालियान के जो पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों मौत का मामला आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये पता चल जाएगा कि दिशा सालियान की मौत कैसे हुई है तो ये भी पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की आखिर वजह क्या है। और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि 6 साल बाद अब इस मामले की सीबीआई जांच की बात कही जा रही है ताकि इन दोनों मौत की कड़ियों को जोड़ा जा सके और

0: सुशांत की मौत से दिशा की मौत का क्या कनेक्शन? दिशा की मौत को सुशांत की मौत से क्यों जोड़ा जा रहा है? 6 दिन के अंदर दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत। साल 2020 में जब पूरा देश कोरोना के खतरे का बस अंदाजा लगा रहा था, उसी वक्त दो ऐसी मौत होती हैं जो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई। इसमें एक मौत थी दिशा सालियान की और दूसरी मौत थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। 4.5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने मुंबई की कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सुशांत की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं होने की बात कही। वहीं 6 साल बाद दिशा की मौत का केस फिर से जिंदा हो गया। दिशा सालियान के पिता ने सीबीआई को दिए गए अपने बयान में कहा कि दिशा कुछ ऐसा राज जानती थी जिसकी वजह से पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसका कत्ल और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश। वहीं दिशा के वकील ने दिशा की मौत और सुशांत की मौत को जोड़कर गंभीर आरोप लगाए।
1: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे डीनो मोरिया, ये गैंग के साथ है। उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया, इसमें ये सभी लोग शामिल है।
0: यही नहीं, दिशा सालियान के पिता के वकील का दावा है कि दिशा और सुशांत का केस आपस में जुड़ा है और दिशा की मौत का सच सामने आते ही सुशांत की मौत का सच भी सामने आ जाएगा।
1: हमारा सबमिशन जो है, दोनों केस इंटरकनेक्टेड है और वही हमारा एफिडेविट भी है, वही कोर्ट के हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी मेंशन है और वही हमारा स्टेटमेंट है। दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है।
0: 8 और 9 जून 2020 की रात मुंबई की रीजेंट गैलेक्सी सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के घर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में दिशा के अलावा रोहन रॉय और उनके दोस्त शामिल थे। इसी पार्टी के दौरान देर रात दिशा एक बेडरूम की खिड़की से नीचे गिरी और उसकी संदिग्ध मौत हो गई।
2: दिशा सालियन अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के साथ मलाड की एक बिल्डिंग में रह रही थी और उस शाम जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस शाम उनके घर पर एक पार्टी चल रही थी, कुछ दोस्त आए हुए थे, कुछ बातचीत में विवाद हुआ जिसके बाद दिशा अपने कमरे में चली गई और दिशा ने कमरा बंद कर लिया। दिशा बहुत देर तक कमरे के बाहर नहीं आई। रोहन राय ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर वो आई नहीं। बहुत देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहन राय को इन्फॉर्म किया कि दिशा नीचे गिरी हुई है और उसके बाद वो लोग नीचे गए, दिशा की मृत्यु हो गई थी।
3: और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: उत्तराखंड के विकास नगर में शिमला बाईपास के हसनपुर नाले के फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया और उसके बाद अचानक बाढ़ से हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। शिवलिंग जंगल की तरफ से आए तेज रफ्तार पानी और उसके साथ मलबे ने सब कुछ अपने साथ में बहा दिया। अब सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख पकार मच गई और ये बताया जा रहा है कि 52 सेकंड का ये वायरल वीडियो में कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें देखी जा रही हैं और लोग अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। आज तक पर लेडी बाइकर के बैन के बाद दर्ज हुआ था हत्या की कोशिश का केस। यमुना पर किशाऊ बांध परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए गृहमंत्री के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में। योगी समेत हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम मौजूद। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। सीएम आवास की तरफ बढ़े अभ्यर्थी, धांधली की शिकायत के बाद सड़कों पर हल्ला। दिशा सालियान केस में दर्ज हुई एफआईआर, अब तक कई बड़े चेहरों की भूमिका खंगाल सकती है। अब सीबीआई जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, रिनो मोरिया, सूरज पंचोली समेत कई पुलिस के अधिकारियों पर भी शक। पंजाब में ड्रग्स और संगरूर सुसाइड मामले पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मान सरकार के वित्त मंत्री चीमा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सचिन पायलट, बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम मान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पटना में दरोगा भर्ती को लेकर छात्रों का फिर से आंदोलन। परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर भड़के छात्र, विधानसभा के बिल्कुल नजदीक पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र। पटना में दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। पटना में अभ्यर्थी पुलिस के साथ झड़प करते हुए फ्लाई ओवर पर चढ़कर मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए निकले, पुलिस रोकने भी नाकाम। चंडीगढ़ में गुलजार सिंह मामले का कांग्रेस का इस पर अब हल्ला बोल, सचिन पायलट की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। झारखंड में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की सख्ती, जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं के मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश। आज तक की खबर का बड़ा असर, राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया गुरुग्राम हिट एंड रन का आरोपी। महिला बाइकर के बयान के बाद दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया ने कहा कि कल्याण बैंसला ने जानबूझकर लेन बदली और उसे मारा। शिवानी ने आरोप लगाया कि इस टक्कर में उसकी जान भी जा सकती थी। शिवानी ने एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की थी। वहीं कल्याण बैंसला ने शिवानी के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, जांच तो दोनों ओर से होनी चाहिए। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को आज मिलेगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित हर एक परिवार को 7,000 रुपए की मदद उनके बैंक खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से देंगे। कुल 8,27,472 परिवारों तक मदद पहुंचाएगी सरकार। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और दूसरी नदियों में आई बाढ़ से 15 जिलों के 88 प्रखंड प्रभावित। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बाढ़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आएगी, शिवराज सिंह चौहान करेंगे नेतृत्व। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से जनहानि हुई अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें, बाढ़ प्रभावितों के साथ मेरी सहमति। बिहार बाढ़ पर खड़गे का बयान, बोले 15 जिलों में 50 लाख लोग प्रभावित, सरकार से तत्काल राहत पहुंचाने की अपील। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी ने सरकार से तत्काल बाढ़ राहत पैकेज का आग्रह किया है। कटिहार में बाढ़ के बीच में नाव पर पाठशाला होने लगी है, डूबे स्कूल के बावजूद बच्चों की पढ़ाई जा रही है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी भी मिलने के लिए पहुंचे। 18 सितंबर को जेडीयू का प्रबोधन कार्यक्रम और यूसीसी के मसले पर चर्चा के बीच में नेताओं का नीतीश कुमार से मिलना बहुत अहम। यूसीसी को लेकर यूपी के मंत्री असीम अरुण का बयान का, 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने की हमारी तैयारी है। यूसीसी पर बोले भूपेंद्र चौधरी का कि यूसीसी लागू करने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह तैयार, महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यूसीसी जरूरी। मुजफ्फरनगर में यूजीसी कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा, दिल्ली जा रहे त्यागी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। आरएलडी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, यूपी का असली मुद्दा खेती, किसानी, युवा और शिक्षा, जनता समय आने पर जवाब देगी कहा। आरएलडी का बड़ा दावा, यूपी के सभी 403 सीटों पर एनडीए और सहयोगी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव, करेंगे प्रचार और विकास की गति रुकने वाली नहीं। यूसीसी पर एनडीए में जबरदस्त हलचल, जेडीयू ने मांगा गृहमंत्री से मिलने का समय, कहा कि बिना चर्चा के लागू ना हो। यूसीसी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले कि समानता के साथ विविधता का भी सम्मान जरूरी। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर और दूसरे सामान जब्त करने का आरोप। अमृतसर में किसानों की मांगों को लेकर बीकेयू उग्राहा का डीसी कार्यालय का घेराव, सभी गेट किए गए बंद। चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में सदस्यता ली। दिशा सलेन केस में सीबीआई की बड़ी एंट्री, एफआईआर दर्ज, जांच के घेरे में आदित्य ठाकरे, डीनो मोरी और सूरज पांचोले, शक के घेरे में कई पुलिस वाले भी हैं। दिशा सालियन केस में वारिस पठान ने कोर्ट के निर्देश पर जांच का समर्थन किया ताकि दिशा सालियन केस का राजनीतिकरण न हो। गुरुग्राम में एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी के साथ मारपीट मामले में अब एक्शन, एफआईआर दर्ज होने के बाद 7 घंटे के भीतर पार्किंग अटेंडेंट गिरफ्तार। महंगाई ने फिर से बढ़ाई टेंशन, अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82% हुई, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई में 4.45% दर थे। 19 सितंबर को राहुल गांधी जाएंगे इंदौर, छात्रों को करेंगे संबोधित, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सामूहिक आवाज बताया। बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत के संग 17 सांसदों के बीजेपी में जाने का बड़ा दावा हुआ। दुर्गा पूजा के आसपास 17 बागी सांसद बीजेपी का थामेंगे दामन, जगदीश पसुनिया का यह दावा है। 17 सांसदों के बीजेपी में जाने के दावे पर बंगाल बीजेपी ने साधी दूरी, बागी सांसद बोले कि अभी कोई फैसला नहीं। बंगाल में 20 टीएमसी सांसदों के दल बदल पर कानूनी पेश, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, 22 सितंबर तक जवाब। उगली में कागजों पर मदरसा, जमीन पर कुछ नहीं, 252 अनाधिकृत मदरसों की सूची में शामिल था। मदरसा बंद करने के फैसले पर बंगाल में सियासत तेज, टीएमसी विधायक और फुरपुरा शरीफ के पीरजादा ने इसका विरोध किया। नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव, दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ ने दाखिल किया नामांकन। शुभेंदु बदेकर नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन रैली में शामिल हुए, हल्दिया में पार्टी के उम्मीदवार हसीरानी रथ की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भीलवाड़ा पहुंचकर जैन संत आचार्य पुलक सागर के चतुर्मास में शिरकत की और आशीर्वाद लिया। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में सियासी गलियारों में हलचल, सीएम योगी ने मंत्री संजय निषाद ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से की मुलाकात, इसे शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी का दिल्ली का तारा किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच में होगा बड़ा एमओयू। कर्तव्यगढ़ में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता, 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई होगी। कर्तव्य भवन में यूपी समेत दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के सीएम रहेंगे मौजूद। टॉस नदी पर बनने वाले किशाऊ परियोजना से 6 राज्यों को पानी बिजली का लाभ मिलेगा। परियोजना से 97,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई होगी। दशकों से लंबित परियोजना पर समझौते से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के जल संकट का समाधान। वाराणसी में जल भराव पर योगी सरकार के साथ लापरवाही पर अधिशासी अभियंता सस्पेंड। योगी सरकार का बड़ा, वकीलों को बड़ा तोहफा, सक्रिय अधिवक्ताओं को 5 लाख का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। राजा भैया का एजेंसी आंदोलन पर बयान, बोले कि आंदोलन को विदेश से फंडिंग मिल रही है और बयान से सियासी गलियारों पर चर्चा। बेलोर में मंत्री सिंह टेयन की प्रेस मीट के दौरान बिजली हुई गुल, मोबाइल की रोशनी में देना पड़ा इंटरव्यू और पीएमके ने पावर कट पर सरकार को घेरा। आईयूएमएल मंत्री शाहजहां का डीएमके पर हमला, राजा और सेकर बाबू के बयानों को बताया बेहद दुखद, बोले कि महिलाओं और परिवारों को निशाना बनाना डीएमके के लिए आत्मघाती। दिल्ली में राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में सीजेआई सूर्यकांत बोले कि अदालतों को सोशल मीडिया के प्रभाव से खुद को दूर रखना चाहिए। कनाडा से रिपोर्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी, गैंगस्टर कर्मवीर गिरफ्तार किया गया। कर्मवीर देव को कनाडा से भारत रिपोर्ट किया गया और पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया। कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग के मामले में कर्मवीर का रोल सामने आया था। पंजाब पुलिस ने कर्मवीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। अलीगढ़ में छात्राओं के समर्थन में एएमयू छात्रों का प्रदर्शन, भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता और प्रोक्टोरियल टीम पर कार्रवाई की मांग। इंदौर में होटल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और मौजूद प्रेमी से पुलिस कर रही पूछताछ। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर को गाली देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। आगर मालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद चिकन मटन बेचने पर प्रशासनिक कार्रवाई और जेसीबी से दुकानें तोड़ दी गई। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र को घेर कर पीटा गया, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया गया, 3 पर केस। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने तो आरोपी का घर तोड़ दिया, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया गया। कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली की 50 क्विंटल खेप जब्त, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ट्रेन में फंसे यात्री की हेड कांस्टेबल ने बचाई जान, जान जोखिम में डालकर कोच के नीचे घुसकर किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग की चपेट में आए मदरसा, पूरी तरह इमारत जलकर राख। हैदराबाद में अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया मेडिकल लापरवाही का आरोप, AIMIM विधायक ने कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर नकाबपोश हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत, बचाने के लिए गया तीसरा शख्स घायल हुआ। पोखरण में पहली बार वायुसेना का ड्रोन थॉन 2026, 60 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में ले रही हिस्सा। कंपनी अपने उत्पादों और प्रणालियों का करेंगे लाइव प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वामी और स्वाम टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस ऑपरेशंस पर है केंद्रित यह आयोजन। मानव रहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों पर फोकस है, उद्योग जगत को जोड़ने की कोशिश। वायुसेना के शीर्ष अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हुए शामिल, आधुनिक तकनीक को परखने भविष्य के सैन्य तैयारियों का समाधान खोजने के लिए आयोजन। 16 सितंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित किया जाएगा पहला ड्रोनाथॉन 2026, मिशन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है मकसद। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, लालबाग चौराहा के दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्तों की भीड़। भगवान गणेश का आशीर्वाद देने के लिए चिंचपोकली में गणपति पंडाल में इकट्ठा हुए भक्त, 107 साल पुराना चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल। गणेशोत्सव पर पुणे में विशेष उत्साह दिखा, महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर्ता बब्बा का अलौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे हैं विघ्नहर्ता। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक और यहां लगभग 1.5 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया।

ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर रहा एक ऑयल टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद फट गया। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में मानवीय संकट को दी चेतावनी, कहा कि सितंबर की शुरुआत से अब तक 125,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बोगाजा की आबादी वाले इलाकों में सैन्य हमलों से बेहद चिंतित, इसराइल के हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। गाजा में कथित नरसंहार पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाजा के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी प्राइज जीतने पर इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध खत्म करने की सच्ची इच्छा अगर दिखाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने का अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक ने 27 सितंबर को राष्ट्रपति पद छोड़ेंगे वो, और अगले साल से जारी छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने फैसला लिया। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कोयले और गैस के चलने वाले पावर प्लांट से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया। एंथ्रोपिक के को फाउंडर जैक लॉक ने कहा कि पॉलिसी बनाने वालों के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुरक्षा उपाय तय करने का बहुत कम समय। तुर्की 2027 के शुरुआत से चांद पर जाने वाला एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगा। ये स्पेस क्राफ्ट 2 महीने में चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचेगा और फिर वहां पर 1.5 साल तक सर्वे करेगा। दक्षिणी मेक्सिको के समुद्री तट पर 330,000 से ज्यादा समुद्री कछुए पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 3 लाख कछुए इस बार अंडे दे सकते हैं।

बाद नोएडा के एलिवेटेड रोड के जिस पर सड़क धंसने से अचानक 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, इसका वीडियो भी सामने आया है। इस रास्ते पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं गुजरते हैं। सड़क धंसने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राहत की बात यह है कि हादसे के समय कोई वाहन यहाँ पर इसकी चपेट में नहीं आया, बस यही राहत की बात है, वरना अनहोनी हो सकती थी। नोएडा प्राधिकरण के वॉक सर्किल 2 क्षेत्र के तहत आने वाले एलिवेटेड रोड का हिस्सा धंसने से सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। आप देखिए स्थिति देखकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मजबूत कंक्रीट के नीचे की मिट्टी खोखली थी। घटना के बाद एहतियातन ट्रैफिक रोका गया, जिसके चलते एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लगा, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लेकिन गुणवत्ता पर कितना गंभीर प्रश्न है आप ये देखिए।

0: नोएडा के सेक्टर 18 से सेक्टर 61 जाने वाले एलिवेटेड रोड पर एलपीजी सिलेंडरों से भरे हुए एक ट्रक के निचले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा और उसके बाद उसमें आग लग गई और घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तुरंत पहुंची और तत्परता दिखाते हुए उन्होंने आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों की समय पर की गई कार्रवाई से आग सिलेंडर तक नहीं पहुंची, जिससे एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। इसी एलिवेटेड रोड पर एक तरफ बड़ा गड्ढा हो गया और दूसरी तरफ इसी रोड पर एक ये सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जिसमें अचानक नीचे से धुआं उठने लगा और इसमें किसी भी क्षण आग लग सकती थी। तो फायर ब्रिगेड को जल्दी आना था, फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई और रहा था कि उन्होंने आग बुझा भी ली, मतलब आग फैलने से रोक दी, तो बड़ा नुकसान होने से बच गया। एलिवेटेड रोड की अब दो तस्वीरें हैं। नोएडा प्राधिकरण जो टैक्स के रूप में इतना मोटा मोटा पैसा लेता है, वहां पर बरसात के बाद सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े खड्डे, खासकर सर्विस लेन की तो देखरेख ही नहीं है, इंडस्ट्रियल गतिविधियां बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, तो उन सड़कों का हाल बुरा है। और जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ से आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, और ये तो बहुत ही बिजी रोड है एलिवेटेड, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है जब पीक आवर्स होते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाना ये तो सामान्य नहीं है, ये तो गुणवत्ता पर सीधा सीधा प्रश्न है कि नीचे आप देखिए कि मिट्टी तो थी नहीं, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, ऊपर एक परत थी और वो सिर्फ जो तारकुल है उसकी परत थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई वाहन उस समय से गुजर रहा होता और स्पीड में होता, आमतौर पर यहाँ पर 60 की स्पीड तो मिनिमम रहती है गाड़ियों की, 60 तक की स्पीड, तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। तो बस राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर नहीं है ये जो जहाँ पर सड़क धंसी है। अब दूसरी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं उसी एलिवेटेड रोड की, जब जहाँ पर एक ट्रक में आग लगी वो आग बुझा ली गई है, तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी ट्रक में जो सिलेंडर से भरा हुआ था उसमें आग लगी थी, धुआं निकल रहा था, तो फायर ब्रिगेड पहुंचे, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, धुआं निकलना बंद हो गया। तो एक तरफ दुखद खबर, दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर। अब अगली खबर दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। देश की राजधानी दिल्ली आया नगर इलाके में कल एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर भाऊ हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब इस मामले में दिल्ली के आया नगर में नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एक महीने के अंदर हिमांशु भाऊ गैंग ने दिल्ली में दो हत्याकांड को अंजाम दिया है, एक महीने में दो बार। और देश की राजधानी की पुलिस क्या कर रही है, जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा है, वो आपको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर रहा। अगर वो कुछ कर रहा होता तो ये जो गैंग हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में न सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं, न सिर्फ चल रहे हैं, लोगों का मर्डर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सवाल ये है कि पुलिस या व्यवस्था दिल्ली में कर क्या रही है, कुछ नहीं कर पा रहे, हर तरह से फेल्योर दिखाई दे रहा है। एक जिम ट्रेनर को मार दिया जाता है, तो ये सवाल बड़ा है कि ये जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं जब चाहे जिससे चाहे रंगदारी मांग सकते हैं, क्योंकि पुलिस को तो कुछ पता ही नहीं, क्या दिल्ली की पुलिस सो रही है, ये बड़ा सवाल है। आज दूसरी तरफ परिवार वालों की आंखों में आंसू हैं, इनके परिवार का इस सदस्य वापस कभी नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि दिल्ली में बसा हुआ एक एक नागरिक उसकी सिक्योरिटी वो मुहैया कराए, उसको सुरक्षित रखे, लेकिन नहीं रख पा रहे। जिम ट्रेनर को गोलियों से भून दिया जाता है और अब लोग गुस्से में हैं कि दिल्ली की लॉयन, दिल्ली का लॉयन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई देता है। महिलाएं सड़क पर बैठ गई, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं महिलाओं की, और इन प्रदर्शनों के बाद भी क्या दिल्ली पुलिस जागेगी, इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। आगे बढ़ते हैं, बात अब गुजरात की करेंगे, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। लगातार हो रहे बारिश के चलते गुजरात के कई जिलों में जनजीवन के रफ्तार पर ब्रेक से लग गया है। अहमदाबाद से लेकर आणंद, भरूच, साबरकांठा तक भारी बारिश हुई, कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें आई, आप देखिए सड़कें तालाब बन गए, कहीं पर घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है।
1: गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अहमदाबाद से लेकर आणंद तक पानी ही पानी, तालाब बनी सड़कें, कई इलाकों में भरा पानी, सितंबर का आधा महीना बीत गया है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में हो रही लगातार भारी बारिश से अब गांव से लेकर शहरों तक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव है। सड़कों तक पानी इतना भर गया कि लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी हो रही है।
2: कई सारी सड़कें जलमग्न है। एक तरफ से कहें तो अहमदाबाद शहर चंद घंटों में हुई बारिश की वजह से जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार के हालात अहमदाबाद की सड़कों के हुए हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं शहर के प्री मानसून कामकाज को लेकर, लेकिन प्री मानसून कामकाज पर सीधे तौर पर सवाल आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार की स्थिति अहमदाबाद के अधिकांश जगहों की है। और लगातार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर जो जलभराव की स्थिति हुई है और जिस प्रकार से सामान्य जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो पड़ा है, उसे जल्द से जल्द सामान्य किया जाए।
1: ये तस्वीरें देखिए, जहां स्कूल के बाहर एक बस जलभराव के चलते नाले में फंस गई, वहीं एक कार भी पानी की चपेट में आकर फंस गई, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के दूसरे इलाकों में भी हाल यही है। आनंद के बोरसद में महज चंद घंटों की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। शहर की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। आनंद के इंदिरा नगरी में सबसे ज्यादा हालात खराब रहे, जहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया और जिसके चलते लोगों ने सामान और अनाज को बचाने के लिए उन्हें खाट और पलंग के ऊपर रख दिया। गुजरात के खेड़ा में भी भारी बारिश के चलते हालात खराब हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के चलते एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसके चलते कई गाड़ियां नाले में गिर गई और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। साबरकांठा के हिम्मत नगर की भी तस्वीरें देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश से हिम्मत नगर धनसूरा रोड पर पानी ही पानी है और इसी पानी से लोगों को निकलना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने से रोड की एक तरफ गाड़ियों की कतार लग गई और दूसरी तरफ रुक रुक कर गाड़ियां चलने को मजबूर रही। अब गुजरात के वडोदरा से आई तस्वीर देखिए, जहां नगर निगम की लापरवाही से एक दादी और पोती की जान पर बनाई, जहां भारी बारिश के बीच पादरा जासपुर चौराहे के पास नई ड्रेनेज लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए और इस गड्ढे में दादी और पोती गिर गई। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर दोनों को बाहर निकाला और ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। तो एक तरफ गुजरात में भारी बारिश के चलते हालात खराब होते दिख रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर गया,
6: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हत्या की कोशिश का केस। किशाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार, अमित शाह की मौजूदगी में यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मसौदे पर किए हस्ताक्षर। पटना में छात्रों का महा आंदोलन, दारोगा भर्ती और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, बैरिकेडिंग तोड़ सीएम आवास की तरफ बढ़े अभ्यर्थी। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम मान। नोएडा में टला बड़ा हादसा, एलिवेटेड रूट पर धंसी सड़क, बना 10 फीट गहरा गड्ढा, एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग से मचा हड़कंप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर आज पटना में छात्रों का जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ कूच भी किया। ऐसे अवसर भी आए जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और छात्रों की भिड़ंत पुलिस से हो गई। छात्र दारोगा बहाली और बीपीएससी की 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, साथ ही बीएसएससी की परीक्षा जल्द करवाने की मांग को लेकर भी छात्र सड़कों पर उतरे थे। पटना में कई घंटों तक पुलिस और छात्रों का आमना सामना होता रहा, छात्र पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर फ्लाईओवर पर चढ़ गए और विधानसभा की तरफ मार्च किया। तस्वीरें
2: आप देख सकते हैं, अभी अभ्यर्थी देखिए अब फिर से एक बार आगे बढ़ गए हैं और विधानसभा गोलंबर की ओर फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। अब पहली बार जो है अभ्यर्थी देखिए पुलिस के साथ यहां नोकझोंक शुरू हो गई अभ्यर्थियों की। अब पुलिस जो है यहां आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इन अभ्यर्थियों को, क्योंकि आगे काफी वीआईपी एरिया है और इधर से हमारे पीछे जो है विधानसभा उतरने का रास्ता है। और देखिए अभ्यर्थी और पुलिस के बीच देखिए नोकझोंक, अभ्यर्थी और दरोगा अभ्यर्थी के साथ पुलिस की नोकझोंक हो रही है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो है, अब देखिए एसडीएम साफ तौर पर इन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग गर्दनी बाग जाइए, गर्दनी बाग जो है धरना स्थल है, अपनी मांग गर्दनी बाग में रखिए। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं और लगातार पुलिस और अभ्यर्थियों में देखिए नोकझोंक। पटना के जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर पर पहली बार इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है पटना में। अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए अलग अलग रास्ते से निकल रहे, देखे पुलिस के साथ झड़प, पुलिस को ठेल दिया अभ्यर्थियों ने और पुलिस देखिए पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को आगे न जाने दें, लेकिन अभ्यर्थी निकल चुके हैं। पुलिस देखिए अभ्यर्थियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कई अभ्यर्थी देखिए आगे निकल गए और देखिए कई अभ्यर्थी आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन अभ्यर्थी माने नहीं। और ये तस्वीर जीपीओ नंबर की है, पुलिस ने पूरी कोशिश की अभ्यर्थियों को रोकने के लिए लेकिन अभ्यर्थी आगे बढ़ गए। देखिए तस्वीर देखिए भगदड़ जैसी स्थिति पुलिस पूरी कोशिश की इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, लेकिन अभ्यर्थी माने नहीं। और अब देखिए आगे बढ़ चुके हैं ये विधानसभा की ओर, गोलंबर, विधानसभा गोलंबर ये फ्लाईओवर उतरेगा और अब सीएम आवास जाने के लिए विधानसभा की ओर बढ़ चुके हैं अभ्यर्थी। सुजीत कुमार, आज तक पटना।
0: हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की ये रिपोर्ट आपने देखी। अनिकेत कुमार हमारे एक और संवाददाता की पटना से एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जब छात्रों प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस से आमना सामना हुआ।
3: बीपीएससी 17वीं परीक्षा, दरोगा बहाली परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ साथ बीएससी से लगी लंबित परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर के आज छात्रों ने पटना में प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसे जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। जेपी गोलंबर पे रोकने के बाद जब छात्र आगे नहीं बढ़ पाए तो बगल वाले रास्ते से छात्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां पर भी पुलिस ने रोक दिया है। और ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर भयंकर बवाल जो है वो मचा हुआ दिख रहा है। यहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में जो है झड़प कहीं ना कहीं देखने को मिली है। देखिए यहां पर कच्ची बैरिकेडिंग बनाई गई थी बांस की और इस बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने रोकने के लिए पूरी कोशिश की और छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से फिर से पुलिस जो है बैरिकेडिंग को बनाने में लगी हुई है, जिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। ये कच्ची बैरिकेडिंग थी जिसे छात्रों ने तोड़ने की कोशिश की और यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर छात्र और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, ये पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए किस तरीके से यहां पर छात्र जो है वो अब भी डटे हुए हैं। और एक बार देखिए फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, और ये देखिए ये तस्वीर देखिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो छात्रों के द्वारा की जा रही है और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, और छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिरा दिया है और पुलिस और छात्रों के बीच जो है देखिए यहाँ पर किस तरीके से झड़प तेज हो गई है। और ये तस्वीर देखिए, छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रही है। देखिए किस तरीके से भारी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के जेपी गोलंबर के पास ये भारी बवाल मचा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्र और पुलिस के बीच में भयंकर झड़प जो है वो देखने को मिली है। छात्रों ने कच्ची बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद छात्र इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर पटना के जेपी गोलंबर पे एक बार फिर से भयंकर बवाल मचा हुआ है।
0: आगे बढ़ते हैं, अब बिहार से हम आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं। खबर पंजाब के संगरूर में हुए आत्महत्या केस की, इसे लेकर आज पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पंजाब में नशे का बढ़ता कहर हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता ने इस संकट को अधिक गंभीर और भयावह बना दिया। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए।
4: गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर आज कांग्रेस बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है और सचिन पायलट जो हैं वो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग जो है खुद चढ़े हैं जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। एक बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये मार्च करना चाहते हैं हरपाल चीमा के घर की तरफ। इनकी मांग है कि संगरूर के में जो गुलजार सिंह का सुसाइड हुआ था उसमें जो है हरपाल चीमा के ऊपर एक्शन हो। आप देखिए काली झंडी जो है फेंक दी है राजा वड़िंग ने, और वाटर कैनन यहाँ पे यूज हो गया है। आप विजुअल्स में देखिए वाटर कैनन यहाँ पे चला दिया गया है ताकि ये आगे ना जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग की गई, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई। और जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े तो बैरिकेडिंग चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग के जैसे ऊपर चढ़े चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। आज संगरूर सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ में, और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह सचिन पायलट यहां पहुंचे, वड़िंग यहां पहुंचे, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यूनाइटेड होकर यहां पहुंचे पंजाब सरकार के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ, हरपाल चीमा के खिलाफ। और यहां पर सिचुएशन किस तरह वाटर कैनन जो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यूज कर रही है, चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यूज कर रही है वाटर कैनन, और ताकि स्कैटर किया जाए कांग्रेसी वर्कर्स को आगे ना जा सके किसी भी हालात में। और ये पहली विजिट है सचिन पायलट की आज पंजाब की, जब से वो इंचार्ज बने हैं तो कांग्रेस इंचार्ज बने के बाद सचिन पायलट का पहला विजिट था। और आप देख सकते हैं गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर ऑपोजिशन पूरा सरगर्म है, पंजाब सरकार पे अटैक कर रहा है। और आज हरपाल चीमा के घर की तरफ मार्च करना चाहते थे लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें यहां रोक दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने यहां रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। अब देखिए ज्यादा फोर्स के साथ वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेक्टर 15 है जहां कांग्रेस का जो है प्रदर्शन है।
0: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया। बाइक राइडर शिवानी चौहान के परिवार वालों की शिकायत और मामले के वीडियो के आधार पर आज ही कल्याण बैसला के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। हत्या के प्रयास की धारा इसमें जोड़ी गई, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल्याण बैंसला को आरोपी बैंसला की गिरफ्तारी राजस्थान के दौसा से हुई। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंची, जहां कल्याण बैंसला को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि घटना का जो वीडियो सामने आया, उससे साफ पता चलता है कि कार सवार युवक ने जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मारी थी, जो सीधे तौर पर जान से मारने की कोशिश का मामला बनता है। इसलिए पुलिस ने FIR में धारा 307 शामिल करने का निर्णय किया है।
5: सर, आप लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए।
6: जिस तरह एक महिला बाइक राइडर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिस तरह से गुरुग्राम के पौश इलाके की सड़क पर सरेआम यह घटना हुई, इन तस्वीरों ने न केवल हर किसी को हैरान कर दिया, बल्कि लोगों को दहशत में भी भर दिया। तस्वीरों से साफ है कि बीच रास्ते पहले महिला राइडर को कार में बैठा शख्स धमकाता है, फिर उसकी कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाता है। घायल राइडर शिवानी चौहान उर्फ सिया ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा किया और पूरी घटना की जानकारी दी, तो वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई।
7: ये जो सिंपैथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है।
6: इस बीच आरोपी कल्याण बैंसला आज तक के कैमरे पर सामने आया, अपनी गलती तो मानी लेकिन उल्टा आरोप भी मर दिया। लेकिन उसका ये सफाई वाला दाव ज्यादा देर नहीं चल सका, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित राइडर शिवानी के परिजनों की शिकायत और सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि कार सवार कल्याण बैसला ने जानबूझकर शिवानी की बाइक को टक्कर मारी, और केस दर्ज होने के कुछ ही देर बाद आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जब आरोपी कल्याण बैसला ने मीडिया के सामने आकर दावा किया था कि उसने कार को टक्कर जानकर नहीं मारी, तो शिवानी ने पहली बार वीडियो मैसेज जारी कर उसके एक एक दावे की पोल खोल दी।
7: सो लेट्स हियर दिस एंड उसके बाद मैं बताती हूं फिर चीजें।
8: बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी। ये 22-23 जने थे टोटल। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाए? दो क्यों दिखा रहे? अब दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है? दिखाओ ना उसको, फ्रेंड को नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में। तो कहने का मतलब ये है, मैं उस लड़की के लिए मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ। मेरा भाई
7: इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, और हम इनको पिंच कर रहे थे। वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें? और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
6: शिवानी चौहान ने एक एक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, बताया कैसे काफी देर तक कार सवार ने उसका पीछा किया, फिर कैसे उसे रोकने का प्रयास किया, और जब वो रुकी नहीं तो उसे टक्कर मारकर फरार हो गया।
7: फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वॉज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ, क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
6: इस बीच गुरुग्राम हिट एंड रन केस में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। नई धाराओं में केस दर्ज होने के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम बाइकर शिवानी चौहान के घर पहुंची, उसका बयान भी लिया।
9: स्टेटमेंट अभी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद
10: FIR दर्ज हो गई।
9: सब जोड़ चुके हैं।
6: उधर शिवानी का परिवार लगातार आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जिस तरह से शिवानी को टारगेट कर हमला किया गया, उसे कुछ भी हो सकता था।
10: ये एक्सीडेंट नहीं दिख रहा है, ये एक्सीडेंट करने की बहुत जबरदस्त कोशिश की जा रही है। वो तो किस्मत अच्छी थी बच्चे की जो इतनी दूर चोट लगने के बाद वो घर तक आ गई, नहीं तो खुदा ना खास्ता वो तो वहीं रोड पे ही जिस प्रकार से उन्होंने हिट करा था तो बहुत चोट आ सकती थी और कुछ भी हो सकता था।
6: उधर आरोपी कल्याण बैसला की सफाई कोई काम नहीं आई, अब उस पर पुलिस का शिकंजा कस गया है।
7: तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सूट हो रहा है। और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे।
6: गुरुग्राम में हुई ये वारदात बेहद खौफनाक है, साथ ही इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी कल्याण बैसला अब पुलिस की गिरफ्त में है और पूरी घटना की जांच जारी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: गुरुग्राम हिट एंड रन केस को लेकर बाइकर शिवानी चौहान और फसिया ने आज तक से बातचीत में बताया कि घटने वाला दिन आखिर गुरुग्राम में क्या हुआ था। इसके साथ ही शिवानी ने आरोपी कल्याण बैसला के एक एक आरोप का जवाब भी दिया और कल्याण के हर दावे को शिवानी ने गलत बताया।
11: पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ये शुरू कहां से हुआ था और ये सब हुआ कैसे?
7: ये शुरू हुआ था गोल्फ कोर्स रोड से ही, और गोल्फ कोर्स रोड से हमारा एक कैफे, मैं जा रही थी बाइकर वन कैफे जिसे हम कहते हैं, और वो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे। मैंने उसको बहुत बाद में नोटिस करा कि वो मेरे आसपास चल रही है। पहला इंसिडेंट था कि जब वो गाड़ी मेरे साइड से बहुत तेज़ी से निकली थी और तब मैंने इतना नोटिस नहीं करा, मुझे लगा कि कहीं पे भाई कोई गाड़ी होगी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट था जब वो मेरे साइड में आके जब वो कुछ मतलब एक बार उन्होंने थम्स अप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे, उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कुछ इशारे कर रहा था और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे। तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे। इसी चीज़ को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा कि वो गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही है, जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं, जो बाइक पे जाते हैं।
11: पीछे कौन था कार में? क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी, आप देख पाई?
7: बहन पीछे थी
11: वो जो गाड़ी के अंदर, कल्याण बैसला क्लेम कर रहा है कि उसकी बहन पीछे थी।
7: नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें लड़की थी। और प्लस एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही वो एक रूल वायलेट कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मेरे पीछे जो मेरा फेलो राइडर चल रहा था उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरी वीडियोस में दिख रहा है कि मैं हूँ और वो मेरे साइड में चल रहा है, उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना आए। उसने देख लिया था कि वो लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गाड़ी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि वो लड़के हैं या मैं लड़की हूँ, या वो मुझे डरा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, क्या चीज़ करना चाह रहे थे, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो जल्दी जल्दी में आए, अपनी गाड़ी कट मारा, ठोका और भाग गए।
11: इंटेंशन कब क्लियर हुई, कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है?
7: जब वो मेरे साइड में आके शीशे डाउन करके जब वो इशारे कर रहे थे।
11: क्या इशारा कर रहा था कुछ और बोला भी?
7: कुछ वो बोल रहा था, और मैंने हेलमेट पहन रखा था, इतना क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और वो इशारा कर रहा था, साइड वाला भी इशारे कर रहे थे मुझे, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप साइड हो जाओ, वो दूर ही नहीं हो रहे थे।
11: तो इंसिडेंट के बाद क्या डर लगा?

सालियान संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच की है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। बड़े लोगों के नाम आए जिनमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरियो, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। इसके साथ उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख की भूमिका की भी जांच के दायरे में हैं। दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने बयान दर्ज करा दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या की गई।

0: क्या सुलझ पाएगी दिशा की मौत मिस्ट्री? क्या 6 साल बाद दिशा के पिता को मिलेगा इंसाफ? सीबीआई की एफआईआर में कई बड़े लोगों के नाम। 2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की अर्जी पर दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज किया, जिसमें दिशा के पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं। दिशा के पिता ने अपने बयान में कहा कि दिशा के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर उसकी हत्या की गई और इस साजिश में कई लोग शामिल थे।
1: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने कंप्लेंट दिया है मैंने।
0: दिशा के पिता के आरोप को लेकर 13 सितंबर 2026 को सीबीआई ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड और पुलिस वालों के भी नाम शामिल हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें जाने माने चेहरे हैं, शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, उनके पिता उद्धव ठाकरे, एक्टर रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शैविक चक्रवर्ती, एक्टर सूरज पंचोली, दीनू मौर्या, इसके अलावा पुलिस अफसर सचिन वाजे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख, इसके अलावा कई और नाम शामिल हैं।
2: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
1: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं।
1: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
1: सबसे अच्छे हुए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: O Xixca Kiss. किशाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार, अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने मसौदे पर किए दस्तखत। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव, यूसीसी पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान हुए ठीक। पंजाब में ड्रग्स और सुइसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व सीएम, बीजेपी और अकाली दल के निशाने पर भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। नोएडा में टला बड़ा हादसा, एलिवेटेड रोड पर धसी सड़क, बना 10 फीट गहरा गड्ढा, एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग से मचा हड़कंप।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
3: ट्रंप पुतिन का मेल, दुनिया में तेल का अजब खेल। पुतिन के करीबी ने क्यों उठाया ट्रंप के बेटे के हनीमून का खर्च। क्या इसीलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा रूस के तेल ठिकानों पर रोक दो हमला। हुर्मुज़ से तेल निकालने को लेकर ट्रंप ने छेड़ रखी है ईरान से जंग। तो तेल का रास्ता बंद होने पर क्यों नहीं कर रहे सऊदी अरब की मदद। क्यों हुर्मुज में सुलह की मीटिंग में आने से सऊदी अरब ने किया इनकार। क्या हुती विद्रोहियों से सऊदी अरब को बचाने आएंगे नेतन्याहू। ट्रंप ने ऐसी चली चाल, अब सऊदी की मदद में इजराइल बिछाएगा जाल। क्यों भारत रूस में बहने लगी तेल की उल्टी धार। क्यों गुजरात की रिफाइनरी से रूस को जा रहा करोड़ों लीटर तेल। रूस में किल्लत तो अमेरिका में तेल की कीमतों में क्यों लगी आग। दुनिया में तेल का ये कैसा खेल।

नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। मध्य पूर्व से लेकर रूस और यूक्रेन तक जो जंग छिड़ी है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तेल को लेकर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो दो युद्ध इस समय चल रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन के बीच में और दूसरा ईरान और अमेरिका का, इन दोनों युद्ध के कारण दुनिया की जो कुल तेल की रिफाइनिंग की क्षमता है, लगभग 9% हिस्सा यानी करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन इस समय या तो ठप हो गया है या बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह हो रहा है कि वो रूस जो दुनिया भर के देशों के तेल को निर्यात एक तरह से करता था, क्योंकि रूस के पास तेल की कोई कमी नहीं है, अब उसे वो निर्यात रोकना पड़ रहा है, क्योंकि रूस के पेट्रोल पंप या तो बंद पड़े हैं या फिर रूस में अब पेट्रोल की राशनिंग करने की नौबत आ गई है, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन्स की बमबारी में उसकी तेल की रिफाइनिंग की क्षमता पर काफी बुरा असर डाला है। फिर अमेरिका में 1 गैलन अगर डीजल की बात करें तो इसकी कीमत इस समय लगभग $6.25 प्रति गैलन यानी ₹138 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यह अमेरिका कि में पेट्रोल का डीजल का दाम है। अमेरिका में इतना महंगा डीजल इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप ये सोचेंगे, जब इतना ज्यादा संकट है तो अमेरिका और रूस यूक्रेन जंग का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? दरअसल प्रश्न यहां यह है कि क्यों ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग बंद नहीं कर देते। तो इसके पीछे एक और वजह है कि इस आपदा में भी ना एक अवसर अमेरिका को नजर आ रहा है। इस आपदा को अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं, उन्होंने एक ऐसा अवसर बना लिया है कि उनकी कमाई भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। और इस बीच एक चौंका देने वाली खबर यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के हनीमून का खर्चा, आप ये सोचिए, एक रूसी अमीर उद्योगपति ने उठाया। और प्रश्न उठ रहा है क्यों ऐसा रूसी उद्योगपति जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी समझा जाता है। तो क्या इस खेल में एक और खेल चल रहा है जिसे अंग्रेजी में व्हील्स विद इन व्हील्स कहते हैं, खेल के अंदर खेल? और अगर राष्ट्रपति ट्रंप को तेल की बढ़ती कीमतों की चिंता हो रही है तो हूथी विद्रोहियों के हमले से जहां सऊदी अरब के तेल निर्यात पर उत्पादन पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को निशाना बनाया, पंपिंग स्टेशंस को निशाना बनाया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? सऊदी अरब के लिए तेल निर्यात करने के दोनों रास्ते इस समय लगभग बंद पड़ गए हैं और इससे तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ रही हैं, असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। सऊदी अरब पर हूथी हमले को भी डोनाल्ड ट्रंप उस आपदा को एक अवसर में बदलना चाहते हैं। कैसे? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत वो सऊदी अरेबिया से करवाना चाहते हैं और तब इजराइल सऊदी अरब की मदद के लिए सामने आ पाएगा। यानी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया, सऊदी अरब ने तुर्की से मदद मांगी, तुर्की ने इनकार कर दिया, अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका दूसरा मोर्चा खोलने को तैयार नहीं है। खबर इस समय आ रही है कि सऊदी अरब अब इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए अमेरिका के सेंटकॉम से बात कर ही रहा है, इंटेलिजेंस जो इस समय इसराइल के मुसाद के पास है। क्या मायने इसके? यानी इसराइल सऊदी अरब की मदद करेगा और इसराइल सऊदी अरब की अगर मदद करेगा तो तब सऊदी अरब को पता चलेगा कि असल मित्र ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश नहीं है, असल मित्र कहीं और है। कई खबरें हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब पर बड़े संकट की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। सऊदी अरब पर हूथी विद्रोहियों का हमला लगातार इस समय जारी है। आज सवेरे सऊदी अरब के तेल टर्मिनल वाले शहर यानबू में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए और सायरन बज उठे। एक और खबर, एक और जगह है जिसका नाम है ताइफ। ताइफ में भी एयर रेड वार्निंग्स दी गई, जेद्दा एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के खमीस मुशैत में एक मिलिट्री एयरबेस पर हुआ। यहां एयरक्राफ्ट हैंगर, रेडार सिस्टम, रनवे, गोला बारूद के डिपो पर बहुत सटीक हमले किए गए। यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन कर रहा है। यमन की सरकार का कहना है कि हूथी विद्रोहियों के हमलों में 13 आम नागरिक घायल हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर तट पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। रेड सी के मुहाने पर जो पेरिम द्वीप है,
पेरम द्वीप पर कब्जा इस समय हूथी विद्रोहियों का है, लेकिन सऊदी अरब अब चुप नहीं बैठ रहा है। सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों पर अपने लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं और उसी का बदला हूथी विद्रोही आज सवेरे ले रहे थे। सऊदी अरब ने इस हमले के बाद उस बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है जो होर्मूज का रास्ता फिर से खोलने को लेकर ओमान में होने वाली है, और इसी वजह से सऊदी अरब के न आने की वजह से अब यह बैठक टल गई है। दूसरी तरफ हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि सऊदी अरब पर उसका जो ताजा हमला है यह पिछले 5 दिनों में यमन पर सऊदी अरब के 300 से ज्यादा हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई था, और अब हूथी विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से यह अभियान जारी रहा तो हूथी विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यह आग का गोला जो इस समय इस तीव्र गति से उठ रहा है, आप देख सकते हैं कि यह युद्ध कितना ज्यादा अब फैलता जा रहा है। और जिस पर्दे के पीछे के खेल की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच, वो युद्ध जैसे ही हजरा कम होता है एक आग और भड़क जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब इस समय कैसे बुरी तरह घिरा हुआ है, इस युद्ध में बुरी तरह फंस गया है, और उसके सामने अमेरिका की शर्तों को मानने के बजाय अब कोई उसके बजाय कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कोई चारा है ही नहीं। बुरे फंसे प्रिंस सलमान, क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने की जरूरत है, यानी इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जरूरत है। क्या यह संभव है? ईरान के खिलाफ यूएस को बेस देने से अब सऊदी अरब इनकार कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप हमको तो बचा नहीं पाते, आपकी सारी जो मिसाइलें हैं वो इजराइल की रक्षा में पेट्रियट मिसाइल या आपके जहाज लगे रहते हैं, हम बेकार में मारे जा रहे हैं। ये हुई पहली बात। फिर पाकिस्तान और तुर्की के संग जो मक्का एग्रीमेंट हुआ था, जो मक्का अलायंस बना था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं है सऊदी अरब को, नुकसान ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ दिया। पाकिस्तान जो सऊदी अरब के टुकड़ों पर पलने वाला देश था, सोचिए दशकों तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पाला उसी इस्लाम के नाम पर, अब जब सऊदी अरब को मदद की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ दिया, ये बोलते हुए कि जो मक्का करार है, मक्का करार के मुताबिक अगर कोई देश आप पर हमला करेगा तो हम मदद करेंगे। हूथी तो विद्रोही गुट है, देश नहीं है। हूथी के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब की मदद नहीं की। अब यह केवल एक नाम भर है कि हूथी विद्रोही एक देश नहीं है। हूथी विद्रोहियों ने यमन पर लगभग कब्जा किया हुआ है। यमन की मिसाइलें, यमन के विमान, यमन के जहाज, यमन के बंदरगाह सब हूथी विद्रोहियों के पास है, तो उनकी सरकार वहां चलती है, उनकी सत्ता वहां चलती है, उन मिसाइलों का, ड्रोन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान से मदद मिल रही है, लेकिन हूथी विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद नहीं की। अच्छा, सेंटकॉम चीफ से इसराइल को भिजवाया संदेश, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में अब पूरे पश्चिम एशिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि सेंटकॉम चीफ और सऊदी अरेबिया के बीच बातचीत हुई इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर, और यह बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, वो सेंटकॉम चीफ से मिले, यानी अमेरिका के सेंट्रल कमांडर, सेंट्रल कमांड के चीफ से। जो अंदर की खबर इसराइल से निकल कर आ रही है या पश्चिम एशिया से आ रही है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से उनके माध्यम से हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए इसराइल से इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की है, क्योंकि इसराइल का इस पूरे क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो खुफिया जानकारी का एक मकड़ जाल है, वो इतना गहरा है कि किस बेस से कब मिसाइल फायर होगी, कब वो मिसाइल हिट करेगी, ये सारी जानकारी इसराइल के पास रहती है, और अगर ये जानकारी सऊदी अरब के पास होगी तो वो पलटवार कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक पलटवार कर सकते हैं। सऊदी अरब के पास अमेरिका की पेट्रियट मिसाइलें तो है, लेकिन इसराइल जैसा उसके पास Arrow 3 सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम नहीं है। ये मिसाइल डिफेंस शील्ड है, Arrow 3 सिस्टम या Arrow 3 सिस्टम और डेविड स्लिंग, कोई 150 किलोमीटर तो कोई 250 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर दूर आपके अंदर अगर खतरा आ रहा है आपके देश पर, तो उतनी दूर जाकर आपका रेडार सिस्टम उसको देख लेता है और आपकी मिसाइलें जाकर उसको ध्वस्त कर देती हैं, और इसीलिए
उनको मदद चाहिए इसराइल से। अमेरिकी शर्त अकॉर्ड साइन करे और इसराइल से रिश्ते सुधारे, यानी मध्य पूर्व में सामान्य संबंध हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसराइल मदद कर सकता है। अमेरिका अपनी शर्त मनवाना चाहता है, अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कराना चाहता है। अब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब उस टू नेशन थ्योरी यानी इसराइल और फिलिस्तीन की थ्योरी पर अब तक अड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, आपको याद है भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी में आईमेक पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भारत से जो एक अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलेगा, ये मिडल ईस्ट यूएई सऊदी अरेबिया जॉर्डन से इसराइल, इसराइल से फिर हाइफा पोर्ट से फिर यूरोप और यूरोप से अमेरिका के लिए पूरा कॉरिडोर निकलेगा। और इसके लिए भी सऊदी अरब और अगर अच्छे संबंध होंगे इसराइल के बीच तो हमारा आईमेक बहुत ज्यादा सफल होगा और उसमें भारत की भी आर्थिक उन्नति उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कारोबार कमजोर हो जाएगा। इसराइल अगर मदद करेगा तो इसराइल चाहता है कि सामान्य संबंध हो और फिर वो हूथियों पर एक जबरदस्त वार कर सकता है। हूथी ठिकानों की खुफिया जानकारी उसके पास है। इसराइल ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल यूएई की मदद की थी, आयरन डोम सिस्टम की बैटरीज तैनात हुई थी और अब फैसला प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को करना है, वो कारोबार ठप करेंगे या अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर अमेरिका और इसराइल की मदद लेंगे और मध्य पूर्व में रिश्ते सामान्य होंगे। ये बहुत बड़ा इस समय खेल चल रहा है, तेल का खेल। अमेरिका हर ओर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, वहीं मुंह फेरने वाले सऊदी अरब को भी हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर रहा है अमेरिका। और इसी तेल के खेल से जुड़ी एक और चौंका देने वाली खबर मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में खोजी पत्रकारिता करने वाले संगठन प्रो पब्लिका ने यह खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में एक द्वीप पर दो दिनों तक जो जश्न चला था, उस जश्न का खर्च एक धनवान रूसी उमर क्रेमलेव ने उठाया था, उसने उसका खर्चा उठाया था। क्रेमलेव रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी समझा जाता है। इसके बाद अमेरिका की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है। सोचिए, वो बहामास, वो द्वीप जहां एक रात के जश्न का खर्च लाखों डॉलर में जाता है, वहां दो रात तक शादी का जश्न चला और पूरा का पूरा खर्च अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे की शादी और हनीमून का खर्च एक रूसी व्यापारी ने उठाया। वो रूस जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से यूक्रेन का दुश्मन भी बताते हैं और उसके साथ वैसे बातचीत भी कर रहे हैं। दोनों देशों की इन दोनों की बीच सांठगांठ का खुलासा करने वाले अमेरिकी संगठन ने दो टूक कहा है कि कोई भी राष्ट्रपति के परिवार पर इतनी बड़ी रकम बिना अपने किसी फायदे के नहीं उड़ा सकता। उसने यह भी दावा किया कि एक विदेशी के इतने बड़े फेवर को दोस्त का तोहफा बताना निहायत बेतुका लगता है। ट्रंप जूनियर अपनी पिछली पत्नी वेनेसा से साल 2018 में अलग हुए थे। इसके 8 साल बाद बेटीना से 2 साल के अफेयर के बाद 21 मई 2026 को फ्लोरिडा में दोनों ने शादी की थी। उसके बाद 23 और 24 मई को बहामास के द्वीप पर यह पार्टी हुई जिसका खर्च एक रूसी अमीर उद्योगपति ने उठाया जो राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद करीबी है। और इस खबर के आने के बाद अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त भूचाल है। अच्छा, इस खुलासे के बाद अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में चर्चा चल रही है, हड़कंप है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस खबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की नई पत्नी ने इंस्टाग्राम पोस्ट जारी किया, उन्होंने बकायदा सफाई दी है। बेटीना ने माना है कि रूसी कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उनकी शादी के बाद हुई पार्टी की फंडिंग की, लेकिन उन्होंने कहा कि उमर उनके प्यारे दोस्त हैं और उसकी ओर से दिया गया पैसा कोई राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि एक दोस्त की तरफ से दिया गया एक बेहद उदार वेडिंग गिफ्ट है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक सफाई भी दी जिसने कहा कि इस दोस्ती
या दोस्ती में दिए गए शादी के तोहफे के पीछे कोई राजनीतिक मकसद या एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका में बवाल मचा है, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पूछ रही है कि इस फंडिंग के बदले डोनाल्ड ट्रंप रूस को क्या फायदा देने वाले हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस की बात है तो दोनों ने इस विवाद पे चुप्पी साधी है। ट्रंप जूनियर दरअसल अपने पिता के कारोबारी साम्राज्य को संभालते हैं। 12 सितंबर डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे और बहू को लेकर आयरलैंड पहुंचे थे। विमान से उतरते और उनके बाद दोनों से मिलते दोनों की तस्वीरें वायरल हुई थी। आयरलैंड में ट्रंप फैमिली का शानदार एक गोल्फ रिजॉर्ट भी है। और इसी दौरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से साफ कह दिया था कि वो रूस के तेल के ठिकानों पर ड्रोन हमले बंद कर दे, क्योंकि इससे तेल के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये साफ तौर पर आपको दिखाती हैं, ये तस्वीरें ये डोनाल्ड ट्रंप के सुपुत्र के विवाह के बाद की तस्वीरें हैं, उनका दूसरा विवाह। और एक बड़ा विवाद जो इस समय हो गया है वो ये है, ये तस्वीरें बहामास के उस द्वीप की है जहां पर दो दिन की पार्टी चली थी, और ये तस्वीर उस रूसी कारोबारी के साथ ट्रंप जूनियर की है, और ये उनकी नई पत्नी ट्रंप जूनियर की दूसरी पत्नी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि रूस के एक कारोबारी जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी समझे जाते हैं, आखिर वो क्यों फंडिंग कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे के दूसरे विवाह की। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में ये पूछ रही है कि अब आप इसके बदले में क्या फायदा पहुंचाने वाले हैं रूस को।

0: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
1: ये बड़ी बात है. अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोल दिया है कि तुम सर्जिक निशाने लेना चाहते हो उनको मारो, लेकिन डीजल के पंपिंग स्टेशंस को या रिफाइनिंग स्टेशंस को, ईंधन को निशाना मत बनाओ, क्योंकि उससे न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं. जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कहा कि अगर रूस उनके देश के महत्वपूर्ण और जरूरी बुनियादी ढांचों पर हमले रोकने की गारंटी देता है, तो यूक्रेन को भी रूस के तेल और ऊर्जा के ठिकानों पर हमला रोकना चाहिए. ज़ेलेंस्की ने इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ किया वो बिना किसी पुख्ता और ठोस गारंटी के अपनी तरफ से हमले नहीं रोकेंगे. ज़ेलेंस्की के मुताबिक यह समझौता केवल एक अस्थायी पड़ाव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दीर्घकालिक और भरोसेमंद निर्णय होना चाहिए. यूक्रेन का कहना है कि रूस हर दिन उनके ऊर्जा केंद्रों पर, बंदरगाहों पर, रसद के गोदामों पर निशाना साधता है. इसीलिए जब तक रूस इन हमलों को पूरी तरह से नहीं रोक देता, यूक्रेन अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा. वही जब पत्रकारों ने क्रेमलिन से सीधा पूछा कि क्या यूक्रेन के रुकने पर रूस भी बदले में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकेगा, तो दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसका सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया. आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर क्या कहा.
2: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі, і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: अच्छा, आपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुना. उन्होंने भले ही यह बयान दिया हो कि यूक्रेन के हमले नहीं रुकेंगे जब तक एक स्थायी दीर्घकालिक निर्णय नहीं होता. ज़ेलेंस्की के इस बयान के बीच यूक्रेन ने रूस के एक और अहम तेल ठिकाने पर हमला कर दिया है. यूक्रेन ने रूस के समारा इलाके में सिज़रान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है. इस हमले के बाद ईंधन से भरे स्टोरेज टैंकों में आग लग गई. वो तस्वीर आप देख रहे हैं, काले धुएं के गुबार आप आकाश में उठते दिख रहे हैं तेज लपटों के साथ. ये रिफाइनरी दरअसल रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट की है, जहां लगभग हर साल करीब 90 लाख टन तेल रिफाइन किया जाता है. यानी रूस का 3% तेल यही रिफाइन होता है. इस रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, विमानों के लिए ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसे कई तेल उत्पाद निकलते हैं. यही नहीं, यही से रूस की सेना को भी तेल की सप्लाई जाती है. और यूक्रेन ने इस रिफाइनरी को अपने ड्रोन के हमले का निशाना बनाया ताकि रूस की सेना का आगे बढ़ना रोका जा सके. अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. यह बड़ी चिंता की बात है. क्रूड में इस उछाल का सीधा असर दुनिया भर में उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है, जहां पेट्रोल और डीजल की महंगाई आम आदमी का बजट बिगाड़ रही है. लेकिन अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो जमकर कमाई कर रही हैं. अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने दूसरी तिमाही में $14.5 बिलियन यानी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है. वहीं शेवरॉन ने $12.1 बिलियन के साथ अपनी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा दर्ज किया है. इसके अलावा शेल का मुनाफा भी दोगुना यानी 9.8 बिलियन के पास हो गया है, दोगुने से भी ज्यादा. यह समय बड़ी चिंता की बात है दुनिया भर के लिए. भारत किस तरह इस तस्वीर से निपट रहा है, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
8: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे
9: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
10: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
11: अब मैं क्या ही बोलूं।
12: परिवार अटूट भरोसा

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई.
7: अंडमान निकोबार आइलैंड, तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए.
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता.
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी.
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव। यूसीसी पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान हुए ठीक।

ड्रग्स और सुइसाइड केस पर भारी बवाल। चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री। बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। केशाव बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार। अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए मसौदे पर दस्तखत।

एक के बाद एक धमाकों से मुनीर परेशान। बलूचिस्तान में बीएलए ने मचाया कोहराम। हर रोज सैन्य ठिकाने गंवा रहा पाकिस्तान। कई राज्यों में बढ़ रहा घमासान। पाकिस्तान में फिर शुरू हो गया सियासी ड्रामा। खैबर के सीएम का पंजाब में अपहरण। गृह युद्ध जैसे हालात, बंदूकों से कैसे बनेगी बात? खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक आखिर कब तक होते रहेंगे पाकिस्तानी फौज के जुल्म? गोली का जवाब गोली से मिलने लगा तो उड़ने लगी है आसिम मुनीर की रातों की नींद।

0: रणभूमि आपके साथ मैं हूं गौरव साहब। वैसे कहने को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर दुनिया भर में शांति दूत बने घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के देश में अशांति है और जो अशांति का माहौल है उसे शांत करने में या तो उनमें शक्ति नहीं है या दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद उन्हें इसी तरह हाहाकारी माहौल पसंद है ताकि सत्ता का सुख, उनका जो एजेंडा है ना, वो आराम से चलता रहे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें पाकिस्तान से पिछले 24 घंटों से आ रही हैं वो उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। एक तरफ पाकिस्तान के ही एक सूबे के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य की पुलिस पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना लगातार अपनी चौकियां और अपने हथियार गंवा रही है। फिर लाहौर में इमरान खान की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कार्यकर्ता जुट रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पीटीआई ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद कूच का अब ऐलान कर दिया है। और इसी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पंजाब पुलिस के बीच झड़पें हो गई हैं। वहां की राजनीति में हड़कंप है। सोहेल अफरीदी समेत कई बड़े नेताओं के पासपोर्ट अब ब्लॉक कर दिए गए हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के पासपोर्ट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इमरान खान को रिहा कराने का अभियान जो है वो अब पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब इसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं आसिम मुनीर का शासन ही है। सबसे बड़ी बात आप सोचिए, क्या किसी सूबे का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है इसे, और वो भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर ले? पाकिस्तान में यही हो रहा है। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से आ रही सब एक बड़ी खबर के बारे में बता दे। इस्लामाबाद में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में दिया गया है। जज ने पुलिस के अनुरोध को मानते हुए यह आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगले आदेश तक पासपोर्ट ब्लॉक करने के निर्देश उसने हर एयरपोर्ट पर, हर फोर्ट पर जारी कर दिए हैं। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकता है या भाग सकते हैं, और आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमला करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे बेहद संगीन, बेहद गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी उनके सामने पेश नहीं हुए, जिन लोगों को अंतरिम जमानत मिली थी वो भी जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने पुलिस के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इतनी बड़ी बात पाकिस्तान में हो रही है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री और 27 सांसद नेताओं और एक मुख्यमंत्री का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। और आने वाले 10 दिनों में पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, उसके हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद कूच करेंगे लाहौर से। इसका आगाज लाहौर से हो चुका है। जो खबर आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं यानी सोहेल अफरीदी, पाकिस्तान में पंजाब सूबे की पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया, और इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं जबरदस्त बवाल मचाए हुए हैं। राज्य के एक मुख्यमंत्री का अपहरण हो जाए, दूसरे राज्य पर आतंकवाद बढ़ावा देने का आरोप वहां लग रहा हो, यह ड्रामा पाकिस्तान में ही हो सकता है। लेकिन यह ड्रामा पाकिस्तान में समय जोर पकड़ चुका है और दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। आप सोचिए, पाकिस्तान में पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, वो औपचारिक तौर पर खुले में कह चुकी हैं कि उनके देश को खतरा भारत या अफगानिस्तान से नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी सूबों से है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि लाहौर की सड़कों पर पिछले 24 घंटों में कोहराम किस तरह मचा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट।
1: ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया।
2: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
1: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया है। ये देखिए सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने। ये देखिए ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, इनको शर्म नहीं आ रहा है।
2: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया।
3: हमें अफवाह किया गया था, फिर जब इन पर पता नहीं कहां से प्रेशर आया, फिर बगैर सिक्योरिटी के मुझे इधर सड़क पर टैंक दिया गया और वो चले गए। एक सूबे के वजीर आला को अगवा करने की साजिश की गई, भरपूर कोशिश की गई और मैंने तो पहले कहा था कि इनका इरादा पाकिस्तान को तकसीम करना है। ये तासुब फैलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तकसीम हो। यहाँ की जानी वजीर आला ने आज भी एक बयान दिया हुआ है कि मुझे 3 सूबों से खतरा है। वो स्टेटमेंट भी उसका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। ये स्टेटमेंट के हमें इंडिया से कोई खतरा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी उसकी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। आज मुझे पंजाब की जाली हुकूमत, यहाँ की जो इनकी जाती नौकर पुलिस है, उन्होंने अगवा करने की कोशिश की। जब इन पर कहीं से भी प्रेशर आया, इन्होंने मुझे बीच सड़क यहाँ पर फेंक दिया।
2: घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर कभी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका अपहरण पंजाब की पुलिस ने कर लिया, दूसरी तरफ पंजाब सूबा जो है पाकिस्तान का वो ये कह रहा है कि ये पीटीआई का सियासी ड्रामा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हम दोनों के आरोप और प्रत्यारोप आपको अब दिखाना चाहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान में इस समय हो क्या रहा है। आजमा बुखारी हैं, सूचना मंत्री हैं पंजाब सूबे की, कह रही हैं कि वो अपनी ही गाड़ी में बैठकर अपने ही कैमरामैन और अपने ही गार्ड के साथ वीडियो बना रहे हैं। अगर उनका अपहरण होता तो ऐसा नहीं होता। तौबा, शर्म करो, होश में आ जाओ। अच्छा, सोहेल अफरीदी जो मुख्यमंत्री हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कह रहे हैं मुझे पंजाब में पुलिस ने अगवा कर लिया और बाद में दबाव पड़ने पर सड़क किनारे मुझे छोड़ दिया गया। ये ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में। और सोचिए, ये दो बड़े सूबे हैं, पाकिस्तान का पंजाब सूबा और खैबर पख्तूनख्वा। वैसे वो अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को पाकिस्तान का भाग मानता भी नहीं है। उनका तो कहना ये है कि अफगानिस्तान और उनमें जो पश्तून रियासत है वो एक होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है। लिबरेशन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, उन्होंने ये दिखाया है कि उनके जो बलूच फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सेना की 14 से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट नेस्त नाबूद कर दी, तबाह कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। बीएलए के मुताबिक 3 महीने में पाकिस्तान की फौज के कई पोस्ट तबाह हो गए हैं और उनके हथियारों को कब्जे में ले लिया है। बीएलए ने जो जारी की है जानकारी, उसके मुताबिक क्वेटा तफ्तान रूट पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बलूचिस्तान ने पिछले एक साल में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अपने संघर्ष को, अपने स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रीडम स्ट्रगल को, आजादी की जंग को और तेज कर दिया है। कई बार आसिफ मुनीर की सेना पर जानलेवा हमले किए हैं और पाकिस्तान की फौज को बलूचिस्तान से पीछे हटने को कई बार मजबूर होना पड़ा है। आपको हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सेना की पोस्ट पर बीएलए के हमलों की तस्वीर है। एक के बाद एक चौकियों पर हमला कर उन्हें उड़ाया जा रहा है। कई चौकियों के अंदर बीएलए के लड़ाके तबाह करने के बाद उन चौकियों को जा रहे हैं और जो जो हथियार वहां है उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। ज्यादातर चौकियों में हमले के फौरन बाद आग लगा दी गई। बीएलए का दावा यह है कि इन चौकियों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया, अब वहां पाकिस्तान की सेना नहीं आ सकती। बीएलए के मुताबिक चौकियों से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान अब उनके कब्जे में है। हालांकि बीएलए ने यह जानकारी नहीं दी कि कुल मिलाकर कितने हथियार जब्त किए गए हैं, उन्हें किस जगह यह सैन्य सामान मिला। जिन इलाकों में बीएलए ने यह एक्शन किया है उसमें क्वेटा तफ्तान व्यापार मार्ग शामिल है। हालांकि इस वीडियो की तारीख और जगह की और पूरी जो पृष्ठभूमि है स्वतंत्र रूप से उसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ा संकेत कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में कितनी कमजोर है। बलूच लिबरेशन आर्मी, वैसे तो बलूचिस्तान 1948 से, जब से पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा है, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर इसी वर्ष की बात करें, जनवरी फरवरी 2026, क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, पसनी, लगातार यहां हमले हो रहे हैं। निशाने पर पुलिस और प्रशासनिक इमारतें और पाकिस्तान की सेना। आप ये सोचिए, पाकिस्तान की सेना का एक कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा में मौजूद है, स्टाफ कॉलेज पाकिस्तान की आर्मी का क्वेटा में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका जा रहा है बलूच लड़ाकों द्वारा, यह आपको दिखाते हैं। क्वेटा में सैनिकों वाली ट्रेन पर आत्मघाती हमले, मई 2026 में से अब तो 2-3 बार इस तरह के हमले हो चुके हैं। और एक ट्रेन हमले के बाद ही जाफर एक्सप्रेस पर आसिम मुनीर ने भारत में पहलगाम पर हमला कराया था। तो यह आपको एक तरह से दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी नाकामी और नपुंसकता छिपाने के लिए भारत में आतंकवाद फैलाता है। मई 2026 में बीएलए ने 80 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया था और कईयों की तो लाशें सड़क पर बिछा दी थी। यह कहा था कि पाकिस्तानी पंजाबी बलूचिस्तान में नहीं आ सकते, बार बार वो ये कह रहे हैं। फिर नाल, ज्यारत, चेकपोस्ट, बेलाबिंदर काफिले पर लगातार हमले किए गए। मिलिट्री कॉन्वॉयज वहां चल ही नहीं पाते हैं। बड़े बड़े कमांडर वो केवल अपने कैंटोनमेंट तक, अपनी छावनी तक सीमित है, छावनी से निकल नहीं पाते हैं। और दोनों तरफ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत जून जुलाई 2026 में एक और बड़े ऑपरेशन में हुई थी। यह आपको दिखाता है कि बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी अब कितनी ताकतवर होती जा रही है और पलटवार कर रही है। फिर अगस्त सितंबर 2026 पुलिस और सेना के कई पोस्ट पर हमले हुए और हथियारों पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया। महिलाएं भी निकलने लगी हैं उनके साथ। और लारसबेला में, जियारत में, सुरब में झड़पें हुई अगस्त सितंबर 2026, जिसमें 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सेना का एक तरह से कब्रगाह बन गया है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा करने के मामले में अब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर भी सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मानवता के आधार पर इमरान खान को जेल से रिहा कराया जाए। जिन कप्तानों ने यह चिट्ठी लिखी है उसमें ग्रेग चैपल और एलन बॉर्डर, मार्क टेलर, किम ह्यूज, स्टीव वॉ सब शामिल है। 3 साल से ज्यादा से इमरान खान जेल में बंद है। आसिम मुनीर नहीं चाहते कि वो जीवित जेल से निकल सके। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by

बड़ी चुनौती थी भजनलाल शर्मा के सामने। उनके सीएम बनने के 2.5 साल बाद पहला चुनाव हुआ और इस अग्नि परीक्षा में आखिरकार भजनलाल शर्मा उत्तीर्ण रहे। कितने अंकों से किस श्रेणी में यह अलग बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे का भाव बता रहा है कि चुनावी नतीजों ने उन्हें कितनी राहत दी है। उन्हें मालूम था कि इस चुनाव में बीजेपी की नैया भंवर में फंस सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 नगर निगम जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा में बीजेपी विजयी रही। भरतपुर में निर्दलीय आगे रहे, लेकिन वो पहले फेज में ही बीजेपी के साथ चले गए थे, यानी ये सीट भी बीजेपी की ही मानी जा रही है। कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर से संतोष करना पड़ा, जबकि 4 निगम जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में त्रिशंकु स्थिति है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिला है। राजस्थान निकाय चुनाव के परिणाम से जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है। यहाँ के मेरे परिजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर संदेश देखिए, घड़ी घड़ी बधाइयां राजस्थान। राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के सुशासन और नीति पर जनता की मुहर बताया। बीजेपी में जश्न है और उधर कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा रही है। तो पहली नजर में बीजेपी विजय जरूर दिख रही, लेकिन उसके लिए इस चुनाव से कुछ चिंता बढ़ाने वाले संकेत भी आए हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के क्षेत्र बीकानेर में बीजेपी हार गई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ में भी बीजेपी हार गई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र जोधपुर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के क्षेत्र अलवर में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ के क्षेत्र अजमेर भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से दूर ही रही। गौर करने वाली बात यह भी है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों का अंतर 1% से भी कम रहा। तो सवाल यही है कि क्या अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से चुनाव लड़ी होती तो तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

बड़ा हमला, कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया फर्जी। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, पीएम की यात्रा संकल्प की यात्रा, प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा और सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व सीएम, बीजेपी अकाली के निशाने पर

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ है हत्या की कोशिश का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल आपकी जेब से जुड़ा हुआ है या फिर आपकी थाली से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला शुरू होता है सरकार के एक गैजेट नोटिफिकेशन से। उस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत यूपीआई की कोई भी 2000 रुपए के लेन देन के भीतर कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही गैजेट नोटिफिकेशन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसका साफ मतलब निकलता है कि 2000 रुपए से ज्यादा की लेन देन पर सरचार्ज वसूला जा सकता है। विपक्ष कह रहा है कि इसका मतलब यह कि 2000 से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर अब चार्ज वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार इसे धोखाधड़ी कह रही है, खासकर इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहते हैं, जो सर्विस फीस या कमीशन है जो एक दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने के बदले बैंक की कंपनियों से और पेमेंट कंपनियों से चुकाता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत सरकार ने जनवरी 2020 से सामान्य यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड पर लेनदेन जो मुफ्त रखा था वो खत्म करने वाली है और ये अमेरिका के दबाव में चल रहा है। दूसरी खबर ज्यादा अहम है, क्योंकि दूसरी खबर के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। थोक महंगाई जो 9.92% थी वो करीब 10% तक जा पहुंची है। खुदरा महंगाई 4.82%, यानी करीब 5% के करीब है। सरकार का कहना है कि ईरान की जंग, सप्लाई चेन में रुकावटें, ये सब कारण है जिसके वजह से वैश्विक दिक्कत है और जिसके वजह से ये बातें हो रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की नाकामी है। इन दोनों मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। खुद राहुल गांधी जो यूपीआई के लेनदेन को लेकर सोशल मीडिया पर अपना बयान दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी खबर देख लें।

0: जब हिंदुस्तान तेजी से विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है तो सितंबर के महीने ने आम आवाम पर महंगाई और यूपीआई ने डबल सितम ढा दिया है। खबर इसी गजट नोटिफिकेशन में है, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10 ए का जिक्र करते हुए खूबसूरती से कहा है कि 2000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि 2000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर कोई फीस लगेगी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठा दिए।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
0: राहुल गांधी ने लिखा कि अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इन ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। जिस देश में रेहड़ी पटरी से लेकर दान दक्षिणा तक यूपीआई से लिए दिए जा रहे हों, वहां विपक्षी दल सवाल उठाने लगे कि अब 2000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0.3 से 0.5% के हिसाब से चार्ज वसूला जा सकता है। इसलिए कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है।
3: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
0: महंगाई के मोर्चे पर भी आम आदमी की जेब के लिहाज से दो बुरी खबरें हैं। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में थोक मूल्य आधारित महंगाई बढ़कर 9.92% हो गई, जो जुलाई में 9.78% थी, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 4.45% से बढ़कर 4.82% हो गई। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार 7.28% की विकास दर का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन देश की आवाम पिछले 4 महीनों से करीब 10% के आसपास की थोक महंगाई दर झेल रही है, जिसमें खाने पीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड सामानों और ईंधन बिजली की महंगाई बढ़ती जा रही है। मसलन अगस्त में खाद्य महंगाई जुलाई के 6.65% से बढ़कर 7.05% हो गई, मैन्युफैक्चर्ड सामानों में 8.29% से बढ़कर 8.37% पहुंच गई, ईंधन और बिजली आधारित महंगाई 22.93% रही। उधर खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में भी एनएसओ ने बताया है कि अगस्त में खाद्य महंगाई दर ही 5.52% से बढ़कर 5.95% हुई है। दूसरी ओर सरकार की दलील है कि ईरान जंग और हॉर्मुज संकट के कारण सप्लाई चेन में आई परेशानी का असर भारत की इकोनॉमी और आम आदमी की जेब पर पड़ा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस साल के लिए औसत खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5% के आसपास ही रखा है, जिसमें दूसरी तिमाही के लिए 4.7%, तीसरी तिमाही के लिए 5.9% और चौथी तिमाही के लिए 5.5% का अनुमान लगाया है, और महंगाई दर को 2% से 9% की सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव भी नहीं किया है आज तक। के
4: तो एक बात साफ थी कि सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि डिजिटल करेंसी उन्हें बना दी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा बने, इसके लिए सरकार की कोशिश खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद थी, और उसी के तहत यूपीआई को भी इजाद किया गया। और कहा जाता है कि दुनिया को अगर भारत का कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन दिया जा रहा है तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए है, और उसी यूपीआई पर क्या चार्ज लगेगा, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ महंगाई पर भी चर्चा होंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निकट अब्बास कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगी। देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन भी तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 2000 ऊपर के लेन देन पर चार्ज लग सकता है, इस पर उनसे सवाल पूछेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उनसे भी हम सवाल इस पूरे चर्चा के दौरान पूछेंगे। सिद्धार्थ जरा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बिजनेस टुडे के हमारे ग्रुप एडिटर है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जो 2000 रुपए से अधिक की यूपीआई के लेन देन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये चार्ज की अफवाह कांग्रेस उड़ा रही है क्या, ये एक सवाल उठता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया हुआ है। राहुल गांधी खुद सोशल मीडिया पर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर चार्ज वसूलने के दरवाजे अब खोल दिए हैं, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन में महज इतना लिखा है कि 2000 रुपए के लेन देन तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद की बात पर चुप्पी साधी हुई है। तीसरा सवाल जो अहम है, जो आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, क्या थोक और खुदरा महंगाई दरों में बढ़ोतरी सरकार की नीतियों की नाकामी है, जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि महीने दर महीने थोक और खुदरा महंगाई दर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, शुरुआत आप ही से करेंगे। ये बात तो मैं मानता हूं कि जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि 2000 के ऊपर के लेन देन पर कोई भी चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि चूंकि गैजेट नोटिफिकेशन में महज इतना लिखा है कि 2000 रुपए तक के लेन देन तक हम चार्ज नहीं वसूल करेंगे, इसका मतलब यह कि यह हो सकता है कि 2000 रुपए के ऊपर चार्ज लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार की तरफ से इसका क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहिए?
5: देखिए साहिल जी, कांग्रेस पार्टी झूठ की गूंज करने में ही विश्वास रखती है, और भले वो देश का कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या सामरिक क्षेत्र हो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ की गूंज करती है। और हमेशा देश की जनता भी राजस्थान में भी सच की हुकार के तहत कांग्रेस को बताया कि उसके नैरेटिव्स जो हैं वो सिर्फ झूठे हैं, तब भी कांग्रेस जो है वो बाज नहीं आती। ये भी एक कांग्रेस पार्टी का झूठ है। पहला, जैसा आपने कहा, मैं तब भी दर्शकों के क्लैरिटी के लिए ये गैजेट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। इस गैजेट नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि नॉट इवन 1% छोड़िए 0.05% भी कस्टमर पर चार्ज होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। तो पहली फेक न्यूज ये है कि कोई चार्ज कस्टमर पर नहीं लग रहा है। दूसरा, मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेस में विश्वास नहीं करना चाहिए, याद करिए पी चिदम्बरम कहते थे कि क्या कोई गरीब सब्जी वाला, क्या कोई रेड़ी पटरी वाला, क्या स्कैनर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो कहीं गांव में जाके स्कैनर का इस्तेमाल कर सकता है, ये कांग्रेस की सोच है। और आज यूपीआई के तहत 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस और 340 लाख करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो कांग्रेस को नहीं पता कि डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होता है, तो हम कांग्रेस की बात को सत्य नहीं मान सकते बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड। अब मैं कंसेप्ट पे आ जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस पे कोई चार्ज नहीं है। सेकेंडली, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, नोटिफिकेशन ये नहीं कहता है। थर्डली, एमडीआर कोई टैक्स नहीं होता है। एमडीआर जो होता है इट इज बेसिकली अ फी, कोई प्लेटफॉर्म जैसे एनपीसीआई या किसी ने मान लीजिए प्लेटफॉर्म को बनाया, सो 20,000 करोड़ रुपीज के अक्रॉस जो है वो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी वाला बना। तो जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आज की तारीख में ग्लोबली, क्योंकि ये इनको पता नहीं तो मैं ग्लोबली इनको बताना चाहता हूं, ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया के अंदर मान लीजिए 0.30%, ब्राजील में 0.5%, चाइना में 0.4%, जापान अक्रॉस जो है एवरी क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो उसको पता होगा कि जितने भी क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स हैं वो कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करते। सो इवन विद दैट लॉजिक इट विल नथिंग इज बीइंग ट्रांसफर टू द कस्टमर। सो कांग्रेस की पीड़ा ये है कि कांग्रेस ये नहीं कर पाई और देश में ही हो गया, तो इस पर एक झूठ फैलाओ, किसी भी तरीके से झूठ चिपक जाए। और कांग्रेस का कोई झूठ चिपक नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन में है और एक हीन भावना से यूपीआई को देख रही है। सो द ओनली ट्रूथ इज कोई कस्टमर पे चार्ज नहीं है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। यूपीआई जैसे पहले इस्तेमाल होता था वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, जो यूपीआई यूज करता है उसके लिए देयर इज नो चेंज।
4: प्रदीप भंडारी ने इस बात को जस्टिफाई और क्लैरिफाई किया हुआ है। और निखत अब्बास के पास जाने से पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, उनके मन में क्या संदेह हैं वो जानने से पहले प्रदीप भंडारी, मेरे दो महज सवाल है, उसके बाद निखत आप अपनी भूमिका इस पर रख सकती है। पहला सवाल मेरा जो ये है, क्योंकि आपने जो नोटिफिकेशन दिखाया उसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन पर, लेन देन पर कोई भी चार्ज लगेगा, लेकिन यह भी लिखा नहीं है कि उस पर टैक्स नहीं लगे, चार्ज कोई नहीं लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, यह बात बिल्कुल सही है कि भारत देश ने दुनिया को दिखा दिया है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, और छोटा से छोटा आदमी 5 से 10 रुपए तक के भी ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए कर रहा है, और इसी के वजह से 24,000 करोड़ की लेन देन ट्रांजैक्शंस इस तरीके से पूरे देश में आज की तारीख में हो रही है। क्या आपको नहीं लगता, भले ये मैं मानता हूं कि किसी दुकानदार के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें वो ट्रांजैक्शन करने वाले कस्टमर पर, यानी मुझ पर, अगर मैं किसी से खरीद रहा हूं तो मुझ पर वो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो पेमेंट कंपनी है या जो बैंक है वो मर्चेंट, जो दुकानदार है, उससे तो जरूर चार्ज कर वसूलेगी अगर वो चार्ज लगता है तो? ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि दुकानदार इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कई जगह पर हमने देखा है कि दुकानदार कह देते हैं कि हम यूपीआई के जरिए नहीं जाएंगे, उस पर चार्ज लग सकता है। क्या ये आपको डर नहीं लगता आज की स्थिति में भारत को जो उपलब्धि मिली है उस पर उसका क्या असर नहीं पड़ेगा?
5: मैं जवाब देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि यह भी नहीं लिखा है कि आगे का जो चार्ज है वो नहीं हो रहा, तो साहिल जी ऐसे सिचुएशन के अंदर जो स्टेटस को होता है वही स्टेटस को कंटिन्यू करता है। जब आप किसी चीज में चेंज लेकर आते हैं तब आप स्पेसिफिकली करते हैं कि सम एडिशनल चार्ज और एडिशनल टैक्स हैव बीन अप्लाइड। व्हेनेवर कोई भी, अगर आप फॉर नॉट दिस, अगर मान लीजिए बजट में भी अगर गवर्नमेंट कोई बजटरी प्रपोजिशन एडिशनल टैक्स का नहीं डालती है तो ये अंडरस्टूड है कि भाई द स्टेटस को जो पहले चला रहा है वही स्लैब चलेगी। सो पॉइंट नंबर वन ये, और ये सब के उसमें। अब पॉइंट नंबर टू, जो एक आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल जी मैं आपको ये वापस से इसके लॉजिक के जरिए समझाऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट यहां कहीं इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे बैंक या फिनटेक, जिसने वो बनाया है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, मर्चेंट, और इसके बीच के हम एमडीआर की बात कर रहे हैं। ये कस्टमर को अलग ब्लॉक ट्रीट करिए, जो कस्टमर है, जो मैं और आप है, हम पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो एमडीआर की भी आप बात कर रहे हैं, इसमें भी एक कंसेप्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमडीआर कोई चार्ज नहीं हो रहा, पर अगर आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को मैं आगे लेकर जाऊं, उसमें भी वॉल्यूम की बात होती है। तो मान लीजिए मर्चेंट वन और मर्चेंट टू की बात है, तो मर्चेंट वन अगर कुछ ज्यादा करने का प्रयास करेगा तो भाई मर्चेंट टू जो है वो कॉम्पिटेटिव वॉल्यूम को पाने के लिए उसको नहीं करेगा। और ऐसे ही हमने अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनीज के अंदर भी देखा है, तो उसमें भी वही कस्टमर तो उसी के पास जाता है जो उसकी मुनाफे की चीज होती है। और यूपीआई जब हम खुद ही लेके आए तो हम उससे
4: हाइपोथेटिकल सवाल का नंबर वन हाइपोथेटिकल जवाब
5: क्यों हटाएंगे उसको?
4: नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे हाइपोथेटिकल सवाल का, सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल सवाल का आपने हाइपोथेटिकल जवाब दिया हुआ है कि ऐसा होगा, ये होगा, उसकी कोई गारंटी है, इसकी कोई उसका कोई, हम ये लेकर नहीं बैठ सकते कि ऐसा ही करेंगे मर्चेंट्स। ये भी हो सकता है कि मर्चेंट कहेगा कि भाई इसमें तो मुझे सरचार्ज लगेगा, मैं कहां से रखूंगा। और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि बैंक्स किस तरीके से अलग अलग तरीके के चार्ज कस्टमर से वसूले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से वसूले जाते हैं। जब उन पर बात आती है तो कोई फ्री में सेवा देने की कोशिश नहीं करता, ये दुनिया का दस्तूर एक तरीके से बन चुका है, और भारत उससे अलग निकल कर आ रहा था, इसीलिए शायद ये सवाल उठ रहे होंगे। निखत अब्बास,
5: साहिल जी
4: बड़ा साफ सवाल है, संदेह क्यों है आपके मन में? प्रदीप भंडारी क्लैरिफाई कर चुके हैं, संदेह आपके मन में क्यों है?
6: साहिल भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। बड़ी सफाई से भारतीय जनता पार्टी वाले खुद लगातार झूठ बोलते रहते हैं, बातों में गोल गोली मर्ची की तरह घुमाते रहते हैं, और बड़ी सफाई से बड़े स्पष्ट तरीके से इस समय इन्होंने ये दिखा दिया कि यूपीआई पे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो जनता की कन्वीनियंस के लिए था वो कन्वीनियंस के लिए रहेगा, और हम कोई सब चार्ज उसको नहीं लगाने वाले हैं, और विमेन को सिस्टम नहीं करने वाले। अगर आप रेवेन्यू सिस्टम इसको नहीं बनाने वाले हैं तो हाफ कमलन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगस्त 2025 में आपने ही लॉ को अमेंड करा था, और जो प्रोटेक्शन ब्लैंकेट है, जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है उसमें आपने बढ़ा कर उसको यूपीआई तक आपने पहुंचा दिया, और फ्यूचर यूपीआई का आपने खतरे में डाल दिया। और आज आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें आपने ये कह दिया कि 2000 तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, बताने से कतरा गई कि 2001 पर क्या होगा। वो स्पष्टीकरण करने में क्या दिक्कत थी, क्या आफत आई थी, वो हम पूछना चाह रहे। खैर ये तो हो गया एक स्पष्ट सवाल। साहिल भाई क्या है ना, आज तक आम आदमी की थाली में सबसे बड़ा जो छेद करा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। इनके सरकार में छड़ी पता नहीं कौन से अच्छे देंगे, कि खाली छोटी होती जा रही है, आम आदमी की जो जेब है वो हल्की होती जा रही है और जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। अरे आगे आगे बात करो ना, बात करो WPI इन्फ्लेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ है साहिल भाई। आम जनता को दिख रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 4 महीने से लगातार थोक सामान की 10% बढ़ रही है, और जब 10% बढ़ रही है थोक में सामान महंगा हो रहा है तो वो आम बाजार में भी आएगा और जनता की किचन तक, घरेलू औरतों की, लोगों की आम किचन तक पहुंचेगा। दाल महंगी, दूध महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा, सीएनजी महंगा। अरे जिस देश में दही चीनी छोटी छोटी बातों पे चटाने का रिवाज है ना साहिल भाई, उस देश में मोदी जी की सरकार ने 40% चीनी करी 10 लाख टन। आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों क्यों जरूरत पड़ी हमारे देश को, क्यों जरूरत पड़ी कि आप गन्ने को डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल पर, पहले सही पॉलिसी तो बना लेते। इतनी क्या हड़बड़ी थी अपने मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए। भारत में आज कितने राज्यों में 76% दाम प्याज पर बढ़े साहिल भाई, और ये अलग अलग राज्यों की बात मैं कर रही हूँ। मुझे पता है भारतीय जनता
4: सरकार
6: जो कमाई है ना सीएमआई
4: पर हम बहस करेंगे, लेकिन एक बात जरा मुझे बताइए निखत अब्बास जी, जरा एक एक एक बात का क्लैरिफिकेशन आप दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी का तो भरोसा ही नहीं था कि इस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन इस देश में हो सकते हैं। प्रदीप भंडारी ने इस बात का जिक्र तो सही किया ना कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि कौन देश का छोटा एक चाय बनाने वाला, छोटा सब्जी बेचने वाला या कोई छोटा मोटा व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस तरीके से यूपीआई के जो स्कैन कोड्स है वो लेके घूमेगा और इस तरीके के ट्रांजैक्शंस करेगा। आज उसको सक्सेस मिला है, कहीं ना कहीं सरकार सोच रही कि भाई पूरे दुनिया में चार्ज वसूला जाता है, हो सकता है कि इस पर चार्ज वसूला जाए। जो पेमेंट कंपनीज है कब तक फ्री में ये सर्विस देती रहेगी भाई, कहीं ना कहीं तो उस पर चार्ज लगेगा, यही तो होता है किसी भी इकोनॉमी में। नहीं लगता आपको कि इस पर कोई गलत है? आपको तो भरोसा ही नहीं था इस पूरे सिस्टम पर
6: साहिल भाई। मैं तो आई, मैं उसी बात पर आ रही, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी और आपने इंजी की नस पकड़ ली। मैं तो वही कह रही हूँ कि जब आप डिजिटल इंडिया का सपना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का दिखा रहे हैं, आपने सक्सेस स्टोरी बनाई भी चोरी वाली जो आपने अमित भाई करा उसमें बताऊंगा, क्योंकि 2000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो है भरी सिर्फ 4%, आपने अपनी स्टोरी में भी बताया, लेकिन उसका वैल्यू 66% है। तो जितने उसके वैल्यू के हिसाब से इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जाएगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसा कोइंसिडेंस, क्योंकि 2000 तक की नोटिफिकेशन आपने निकाली, जब आप 2000 आपने कलम उठा लिया था, आप
4: प्रदीप भंडारी जवाब दीजिएगा,
6: कलम उठाते और सारी बात लिखते, आधी अधूरी क्यों लिखी, उस नियत में खोट है।
4: निखत अब्बास कह रही है कि आपने दरवाजे खोल दिए हैं, एक बार आपने दरवाजे खोल दिए तो उसका फायदा उठाने के लिए सारी पेमेंट कंपनीज आगे आएगी। कोई भी ऐसी पेमेंट कंपनी नहीं होगी वो जो कहेगी कि भाई हमें अब बिना चार्ज के हम लोग इस सर्विस को आगे बढ़ा के रखेंगे।
5: कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी चोर की दाढ़ी में तिनका की, मैं कह रहा हूं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, ये उल्टा चोरी कोतवाल को डांट रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है यहां पे अगर डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और यूपीआई की बात करेगी और उसको समझाने की बात करेगी तो ये चोर कोतवाल को डांटने की बात कर रहा है। ये तो हमने हिस्टोरिकली देखा है पी चिदम्बरम से राहुल गांधी के बयानों से लेकर। मैं वापस से फैक्ट पे एक फैक्ट चेक करना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि थाली छोटी हो रही है, जरा ये ध्यान से देखिए साहिल भाई, ये भारत की जो डाइट है ना पहली बार इसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ता जा रहा है, और जो लेटेस्ट जो कंजम्पशन आया है ना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, वो ये कहता है इंडियंस आर स्पेंडिंग मोर ऑन मिल्क फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देन ओनली फूड ग्रेन्स। तो पहली बार भारत की जो भारतीय की थाली में दूध प्रोटीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स आए, ये भारत के अंदर पिछले 12 साल के अंदर परिवर्तन आए। पॉइंट नंबर वन। मैं वापस से आऊंगा साहिल जी, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि कोई एडिशनल चार्ज होगा, तो अगर कांग्रेस को ये झूठ फैलाना है तो कांग्रेस झूठ फैलाए, देश की जनता तो यूपीआई का आज भी इस्तेमाल करेगी और अगले महीने भी इस्तेमाल करेगी, अगले दिन भी करेगी, और हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के कम होते हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस को हम नहीं समझा सकते क्योंकि कांग्रेस को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता। अब अगर 20,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है और 20,000 करोड़ की सब्सिडी के थ्रू एनपीसीआई ने वो पूरा प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है, तो बट नेचुरल है कि वो जो कोई कस्टमर है उससे चार्ज नहीं होगा। परंतु इट हैज टू कम टूवर्ड्स अ सोल्यूशन, जो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जिसको दुनिया यूज कर रही है। इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ही नहीं बनाना, उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंजन बनाना है। एक ऐसे दौर में जहां साइबर अटैक्स हो सकते हैं और लोग भारत के इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कांग्रेस और उसका का पूरा पूरा गैंग चाहेगा, तो हम जो है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और देश का आम नागरिक इसको अच्छी तरीके से जानता है। तो बड़ी बात यह है कि अगर कोई आज तक का 5 बजे का शो देख रहा है तो किसी को 1 रुपए का एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा। 800 रुपए पहले देते थे यूपीआई में, आज भी 800 रुपए का पेमेंट करोगे। पहले 2000 देते थे, 2000 पहले 3000 देते थे, तो होगा कोई एडिशनल पैसा नहीं।
4: मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि इस तरीके ये हाइपोथेटिकल प्रॉमिस नहीं होगा, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस या कुछ चार्जेस मैं आपके सामने रखूंगा। दीप्ति तनेजा जी, आपके पास मुझे इस बात को लेकर आना है। देखिए, ये चर्चा क्यों शुरू हुई है, आप भूल जाइए कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इस बारे में सवाल उठा रहा है या कोई विपक्षी दल इस बात को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, मैं आपके सामने लिस्ट रखना चाहता हूं, जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा कौन से चार्ज पहले नहीं थे और पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके वो चार्जेस ऐड कर दिए गए। करीब 10 तरीके के इस तरीके के चार्जेस है, मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। सबसे पहले एटीएम की सालाना फीस 150 से 300 रुपए पर 18% जीएसटी तक वहां पर लगा दिया गया। देखिए, पहला चार्ज। दूसरा चार्ज, दूसरे एटीएम से 5 बार से अधिक लेन देन पर 21-23 रुपए प्लस जीएसटी, ये चार्ज लगाया गया। एटीएम से अधिक रकम निकालने की कोशिश पर 20-25 रुपए तक चार्ज लगाना शुरू कर दिया गया। बैंक ब्रांच से 4 बार से अधिक नकद लेन देन पर 150 रुपए तक चार्ज लगाना शुरू हो गया। खाते में तय बैलेंस अगर नहीं रखा गया, जीरो बैलेंस रखा गया, तो 100-600 रुपए तक चार्ज लगाना शुरू कर दिया गया। चेक बाउंस होने पर 250-500 रुपया। मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट चार्ज पर तिमाही 15-20 रुपया। सालाना 25 पन्नों से अधिक की चेकबुक पर 2-5 रुपया पन्ना। बैंक ब्रांच से निफ्ट और आरटीजीएस या आईएमपीएस पर 2-25 रुपए तक चार्ज और बैंक खाता बंद कराने का भी 200-500 रुपया शुल्क वसूलना शुरू हो गया। ये 10 इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुए, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि एक बार अगर आपको किसी तरीके के ट्रांजैक्शंस की आदत लग जाती है, उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग या पेमेंट की जो कंपनियां हैं, पेमेंट वाली जो कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे उस पर चार्ज वसूलना शुरू करती है। हम उसे सर्विस चार्ज भी कह सकते हैं एक तरीके से। कहा जाता है कि सब फ्री में है, आइए बैंकिंग सर्विसेज में आप अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, लेकिन ये चार्जेस धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं।
7: जी नमस्कार साहिल जी, आपने जैसे सवाल पूछा मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ, फिर यूपीआई पे लेके आऊंगी। देखिए, हमारी कंट्री वो कंट्री थी, हमारी इकोनॉमी वो इकोनॉमी थी जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो दर थी वो 40% से भी नीचे थी और महिलाओं में तो और बहुत कम थी, 20-22% ही केवल एक फाइनेंशियल इंक्लूजन दर थी। फिर जब 2014 में जनधन योजना जब आई उसके तहत 70% से ऊपर लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें लाया गया और अब ये 95% को क्रॉस करी हुई है कि जब लोग एक फाइनेंशियल सिस्टम में है। अब आप इस बात को समझिए कि कोई भी सिस्टम, आपने क्योंकि ये बात करी थी कि पेमेंट कंपनीज इसकी भुगतान करती रहेंगी, साहिल जी देखिए पेमेंट कंपनीज किसी भी चीज का भुगतान नहीं करती है, देयर इज नो फ्री लंच इन इकोनॉमिक्स। इसका खर्चा कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के जिम्मे ही आता है और सरकार इस पे सब्सिडी देती है। अगर मैं आपको सब्सिडी के आंकड़े बताऊं तो 2021 में बजटरी एलोकेशन वर्सेस द एक्चुअल स्पेंड, बजटरी एलोकेशन था केवल यूपीआई पे 1500 करोड़ रुपए का जिसकी लागत हुई 957 करोड़, लेकिन 22-23 में आप देखिए 2600 करोड़ था जिसकी लागत हुई 2000 के करीब, 23-24 में ये 2000 करोड़ के करीब था और लागत हुई 3200 करोड़ के करीब। तो जब ये लागत होती है ये टैक्स पेयर के मनी से ही जाती है, ये बजटरी एलोकेशन ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और जितने भी आपने अभी टैक्सेस और जितने भी चार्जेस आपने बताए ये सारे चार्जेस विद अ कैवियट हैं, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, जैसे कि यूपीआई पे किया गया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर ही ये चार्जेस लगेंगे। जी
4: एक और बात हमें जरा समझा दीजिएगा, ये बात आपकी ठीक है, मैं समझता हूं कि इकोनॉमी में कोई फ्री फंड नहीं होता है, सिर्फ फ्री स्कीम्स होती है जो चुनाव के वक्त कई बार लाई जाती है और वो हर पार्टी लेकर आती है और उसका चुनावी फायदा वसूलने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, भारत जैसे देश में बैंकों का मुनाफा 2000 करोड़ के ऊपर तक पहुंच चुका है, आरबीआई का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है, उसके बावजूद भी बैंकिंग सिस्टम से इस तरीके का चार्ज जो वसूला जा रहा है उसका क्या कारण बताया जाए? एक तरफ हम लोगों को बताने की कोशिश करें कि आप बैंकिंग सिस्टम में आइए, खाते खोलिएगा, उसके जरिए ट्रांजैक्शंस करिएगा, आप मुख्य इकोनॉमी में आइएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के चार्जेस लगते हैं, आपको लगता नहीं है ये डिटरेंट हो सकता है आगे बढ़कर कि जब इस तरीके के चार्जेस वसूले जाएंगे?
7: साहिल जी, जैसे आपने बात करी फ्रीबीज की, फ्रीबीज का तो मुझे लगता है अब दौर है, पहले न्यूयॉर्क के मेयर ने उसको अडॉप्ट किया, अब तो ट्रंप भी बात कर रहे हैं कि मिड टर्म में लाइएगा, तो खैर लेट्स लीव दैट स्टोरी बिसाइड्स। तो वो फ्रीबीज की बात अगर छोड़ते हैं, आपने क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी, देखिए हर चीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल होता है। आप यूपीआई जैसे सिस्टम को अगर समझें, ऑलरेडी 11 कंट्रीज में चल रहा है और उसके बाद 4 कंट्रीज में टेस्ट प्रोजेक्ट की तरह चल चुका है, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, जापान एंड साइप्रस, और साथ साथ ये 23 कंट्रीज के साथ हमारे MOUs हैं। तो जो आप ये बात कह रहे हो कि बैंकिंग सिस्टम का जो प्रॉफिट है, तो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल को मतलब हम नकार दें क्या? और बाकी कंट्रीज भी जो इसका फायदा उठा रही हैं, हम ब्रिक्स की बात कर रहे थे कि डबल ब्रिक्स में ये बहुत सारी बातें हुई हैं कि एक डिजिटल करेंसी सिस्टम बनना चाहिए यूपीआई जैसा। तो जब हम वो सपने बड़े देख रहे हैं, तो हम बाकी कंट्रीज को क्यों अपने आरबीआई के फंड से ही करें? अल्टीमेटली तो ये सारा बजटरी एलोकेशन में ही जा रहा है ना, ये तो है नहीं कि वो रेवेन्यू कहीं और जा रहा है और फंड कहीं और से हो रहा है, सब्सिडी भी उसी बजटरी एलोकेशन से निकल रही है। तो दिस इज कॉल्ड प्रूडेंट इकोनॉमिक्स, कि जब आपके पास फ्री राइडर्स हो सिचुएशन। और आपने क्योंकि ये सवाल पूछा था शॉपकीपर्स का, तो इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसमें तो मैं भी एज अ कस्टमर, एज अ भारतीय, प्रदीप जी से ये बात करना चाहूंगी, रखना चाहूंगी, कंज्यूमर पे इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज अ मर्चेंट रेट एंड ये मर्चेंट पे ही चार्ज रहना चाहिए।
4: प्रदीप भंडारी अब तक 3 बार गैजेट नोटिफिकेशन दिखा चुके हैं और कह चुके हैं कि ये सारा जो है हाइपोथेटिकल है, इसमें कंज्यूमर पर कुछ नहीं आने वाला है, कोई आंच नहीं आएगी कंज्यूमर पे, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निकट अब्बास, मुझे एक एक एक सवाल आपसे पूछना है, डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ में है, महंगाई को लेकर मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती, आपको आजकल अमेरिका क्यों नजर आ रहा है हर चीज में? इसमें अमेरिका का हाथ कहां से आ गया? क्यों आपको लगता है कि भाई ये नोटिफिकेशन है, ये अमेरिका के दबाव में खोला गया है, जबकि अब यूपीआई ब्रिक्स देशों में ले जाना चाहते हैं, दुनिया में ले जाना चाहते हैं, अमेरिका का दबाव कहां से आ गया उसमें?
6: साहिल भाई, जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की गरिमा, अपने देश की आन बान और शान को घुटने टिकवाने की पर मजबूर कर दिया हो, और व्हाइट हाउस से जब नोटिफिकेशन आया था ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का, उसके बाद हर चीज उनके नक्श कदम पर हो रही है, ये मैं नहीं
4: प्रदीप भंडारी इस पर सवाल उठा रहे। प्रदीप जी आपके पास मैं आऊंगा, आपको सवाल उठाने का पूरा मौका मिलेगा, उनको अपनी बात खत्म कर दीजिए। और मेरा स्पेसिफिक मेरा स्पेसिफिक सवाल है सुनिए, नहीं इम्पोर्टेंट है, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मैं दोहरा रहा हूं आपको सवाल, ताकि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में मत जाइएगा। स्पेसिफिक सवाल है, राहुल गांधी का ट्वीट हम यहां पर चढ़ा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली है कमेंट, उसकी आखिरी लाइन में वो कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन भी अमेरिका के दबाव में आया हुआ है, इसका लॉजिक हम समझना चाहते हैं, अगर है सचमुच में तो प्रदीप भंडारी उसका जवाब देंगे ना, इसीलिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसका लॉजिक क्या है वो मैं समझना चाहता हूं।
6: साहिल भाई, पहले मैं अपनी एक बात बोलना चाह रही थी बहुत देर से, क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो मिसलीड हो रहे हैं, और मिसलीड ना हो उसके लिए एक स्पष्टता मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर इस तरह से जो हम गोल गोल घुमा रहे हैं इन्फ्लेशन पर, और हम जो ये बात करें कि यूपीआई के चार्जेस नहीं बढ़े हैं, प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी वाले शायद कॉमन सेंस यूज नहीं करते होंगे, पर देश की जनता कॉमन सेंस यूज करती है। जब आप MDR के दायरे में यूपीआई को ले आते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी मर्चेंट, कोई भी दुकानदार, जब उसको पैसा चार्ज
4: भी पता
6: है तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, मार्केट जो है वो इंटरलिंक्ड होती है, तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर से वसूलेगा,
4: नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, झूठ बोल रही है, नहीं होती है, कोई इंटरलिंक नहीं होती है,
6: दाल और चावल के दाम 50-50% तक बढ़े हैं, तेल 40% तक बढ़ा, इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है।
4: अरे आपके समय मैडम 12% महंगाई दर हुआ करता था, 12%।
6: देखिए मुझे ना, मुझे
4: 12% जवाब दूंगा इनको मैं,
6: यहाँ पर बौखला रहे हैं जब आप ये सवाल का जवाब।
4: मैडम जनता जानती है देश में सबसे ज्यादा महंगाई तेलंगाना में, जहाँ आपकी सरकार है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल एवरेज से 2.5% ज्यादा है।
6: आप
8: नोटिफिकेशन में नहीं ले सकते थे, आई थिंक दैट इज योर बिगेस्ट फेलियर, दैट इज योर बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी एंड दैट इज द वे आप लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट मत करिए,
9: बताइए मैडम आपको क्या होगा। दरअसल दिक्कत क्या है, सुबह सुबह हर कांग्रेस का जो एजेंसी राहुल गांधी ने बनाई है वो राहुल गांधी को कहती है सुबह सुबह एक काम करो, कोई ना कोई फेक न्यूज फैलाओ, कोई ना कोई झूठ फैलाओ, फिर वो झूठ फैलाते हैं दो तीन घंटे चलते हैं।
10: चलिए एक मिनट, बारी बारी से देखिए, एक दूसरे की आवाज दबाने से किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी, तो बारी बारी से बोलिए। और मुझे जरा डॉक्टर वर्मा को इसमें आना है, वो बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए बीजेपी क्या कह रही है, प्रदीप जी एक साथ ही दे दीजिएगा, दोनों पार्टियां बोलेंगी उसके बाद एक साथ ही आपको रिबटल का मौका मिलेगा, मेरा भी एक सवाल उसमें ऐड कर दूंगा मैं। डॉक्टर वर्मा, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि देखिए थोक महंगाई पर प्रदीप भंडारी ये बात सही कह रहे हैं कि एक वक्त था कि डबल डिजिट में महंगाई दर पहुंच गए थे, आज की स्थिति में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा फूड और बेवरेज का इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट 5.66% तक पहुंच गया है, 6% से कम है, लेकिन आरबीआई का जो 4% का रेट है उससे तो ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डबल डिजिट में नहीं है। और आपको दुनिया की स्थिति समझ में आ रही है, आपको पता है कि अभी भी स्टेट ऑफ होर्मुज में क्या चल रहा है, हमले चल रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है, बार बार कहने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है।
11: धन्यवाद साहिल जी। साहिल जी पहले तो देखिए इस बात में कोई जरा से भी कंफ्यूजन नहीं है कि यूपीआई से आम नागरिकों को, आम व्यापारियों को बहुत सहूलियत है, और जिस प्रकार से यूपीआई का ट्रांजैक्शन बढ़ा है ये देश की गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम जरा इसके इतिहास में जाएं, ये समय था 2009 का, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब इस देश में पहली बार नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की स्थापना की गई। एनपीसीआई में ही यूपीआई आता है, रुपए आता है, आईएमपीएस आता है, फास्टैग आता है, भीम ऐप सारी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दूरदर्शिता 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में ली गई, 2010 से 2013 के बीच में आईएमपीएस लेके आए गए, 2014 में मोबाइल बैंकिंग आई, 2016 में यूपीआई का लॉन्च हुआ, 2016 में ही भीम ऐप का भी लॉन्च हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है ये कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट है, किसी एक सरकार के मत्थे नहीं है, जहां किसी ने नींव रखी किसी ने क्रियान्वयन किया। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, देखिए महंगाई कम होने के जितने भी दावे और आंकड़े थे अब वो कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। अगर आज सीपीआई की बात करें तो जुलाई में 4.45 और अगस्त में बढ़ के 4.82 और खाद महंगाई 5.52 से बढ़ के 5.995 तक हो गई है। इसमें कहीं आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे पता चलता है हालात ये है कि थोक और खुदरा महंगाई के बीच जो बड़ा सा अंतर आ गया है, डब्ल्यूपीआई कितना है 9.92 और फ्यूल और पावर की थोक महंगाई कितनी है, ये लगभग 22.5% के आसपास है या 23 के आसपास पहुंच रही है। इससे पता चलता है कि उत्पादन, परिवहन और इनपुट लागत पर जबरदस्त भारी दबाव आ गया है, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब है, ये पॉलिसी फेलियर भी दिखती है। और अगर हम फूड सप्लाई मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी विफलता सरकार की आज दिखती है आम घरों में। अरहर की दाल 125 रुपए प्रति किलो, उड़द 122 रुपए, मूंग 112 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, प्याज 54 रुपए के आसपास और चीनी 60 रुपए की किलो की बढ़ गई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो किसान, वो गांव का आदमी जो भारत सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां पे अर्बन में सीपीआई जो है, अगर सीपीआई 4.3 है तो रूरल सीपीआई जो है वो 5.23% है। मतलब हम पैदा भी करें और महंगाई का मार भी सबसे ज्यादा हम ही झेले। तेल की कीमत का जोखिम भारत सरकार देख रही है, 85% से ज्यादा आज भी हम अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पॉलिसी पैरालिसिस ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से नहीं है, ये लगातार चला जा रहा है। और जो आरबीआई का टारगेट आपने बताया आज भी कितनी दूर है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग
10: आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि कई सारी चीजों में सरकार का इंटरवेंशन जरूरी था। जी बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करें, कोई बात नहीं, जल्दी आपकी बात खत्म करिए क्योंकि प्रदीप भंडारी को बहुत लंबा चौड़ा जवाब देना है इस पूरे बात
11: को। इसको जोड़ता हूँ अपने हाल ही में हुए ब्रिक्स के से, ब्रिक्स में हम लोगों ने फोटो खिंचवाई, क्या खाया क्या नहीं खाया, नॉनवेज वॉनवेज सब बात हुई, लेकिन किसी ने बात करी कि जीपिंग जो आ रहे हैं उनसे ट्रेड की बात करी? पिछले 5 साल में भारत और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 73 बिलियन US डॉलर से बढ़ के 112 बिलियन US डॉलर हो गया है। भारत के ऊपर इतना दबाव, और जो हमारा रशिया था जिससे हम खाली पहले खाली हथियार लेते थे, उसने जब ट्रेड स्टार्ट किया तो इम्पोर्ट हुई, इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, और अब उसका जो है ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन US डॉलर है। GTRI के एनालिसिस कहती है कि खाली ब्रिक्स देशों के साथ भारत के ऊपर जो दबाव है ना,
10: वो इस समय आशुतोष जी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, लॉजिक आपका रशिया वाला लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट से आप तेल लेकर आ रहे हैं, वहां से अगर महंगा साबित हो रहा है, अगर रशिया से आपको सस्ता मिल रहा है, रशिया से हम तेल नहीं खरीद रहे थे तब विपक्ष कह रहा था कि अमेरिका के दबाव में हमने तेल खरीदना कम कर दिया, अब रशिया से हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है कि रशिया से हम तेल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं?
11: नहीं नहीं, ये हमने बात नहीं करी है।
10: मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी
11: गलत मत ले। मेरे कहने का मतलब है कि जो ब्रिक्स हुआ है, हमने इस ट्रेड डेफिसिट पे बात ही तक नहीं करी। जो डी डॉलराइजेशन की बात थी वो खाली ब्रिक्स के पहले होती रही, ब्रिक्स आते ही खत्म हो गई, तो हमने बड़ी अपॉर्चुनिटी खोई है। और
10: भारत ने कभी भी डी डॉलराइजेशन पॉलिसी का ओपन सपोर्ट नहीं किया हुआ है। ये बात अलग है कि नेशनल करेंसी में हम ट्रेड करें, इस बात को लेकर ब्रिक्स में बातचीत हो रही है, और इसी बात का जिक्र जो साझा डिक्लेरेशन दिया गया उसमें इसका जिक्र भी आपको पाया मिल सकता है। लेकिन आपकी बात जो है कि सिर्फ वैश्विक घटनाओं की वजह से ये महंगाई हम पर नहीं लादी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस के तरफ भी आप कहीं ना कहीं उंगली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, मैं कुछ दो चीजें सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसमें दीप्ति जी भी अपनी भूमिका इस पर रख सकती है, क्योंकि आंकड़े जो है ना, मैं यह मानता हूं कि भाई एक वक्त था कि जब 2 डिजिट पे महंगाई का दर पहुंच गया था, लेकिन आज की स्थिति में जनवरी 2026 जब हमारा महंगाई दर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 2.74% था, जो बढ़कर तब भी वॉर की सिचुएशन थी, जो आज की स्थिति में अगस्त 2026 में 4.82% तक जाकर पहुंच गया है। हर महीने में इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। प्रदीप भंडारी, नंबर एक। नंबर दो, आरबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अगस्त 2026 अर्बन और रूरल दोनों जो सर्वे किए गए उसमें यह लिखा गया है कि पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 34.2% टू 27.1%, और करीब करीब यही आंकड़े हमें रूरल सेक्टर में भी इसी तरीके से दिखाई देते हैं, और भी कई आंकड़े उस तरीके से दिखाई देते हैं। क्या कारण है आपको लगता है कि, और ये सवाल मुझे विपक्ष के पास भी मैं लेके जाऊंगा कि भाई सॉल्यूशन भी दीजिए इस बात को लेकर, लेकिन प्रदीप भंडारी क्या कारण आपको लगता है कि आरबीआई खुद कह रही है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति पर घटता जा रहा है?
5: साहिल जी, मैं एक एक कर जवाब दूंगा क्योंकि कई सवाल थे। पहली बात तो विपक्ष से मैंने पूछा कि भाई एमडीआर का फुल फॉर्म है तो नहीं वो कर बता पाए, उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं और वो कोई टैक्स नहीं होता। मैं एक एक करके कहूंगा। आशुतोष जी ने कहा,
10: मैंने खुद ही कहा था,
5: इसकी पूरी जो आधारशिला कांग्रेस पार्टी ने जी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक एक कर मैं जवाब दूंगा, सब एक एक पॉइंटेड जवाब दूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी ने कहा कि भाई यूपीआई की पूरी आधारशिला कांग्रेस ने रची एनपीसीआई के जरिए। अगर ऐसा होता तो पी चिदम्बरम 2012 से 14 के बीच में फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश के अंदर जो है 10% भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली नहीं हुआ करते थे, तो ये पहली बात तो झूठ न्यूज है। और ये पी चिदम्बरम ने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर अपने स्टेटमेंट में कहते हुए स्पष्ट कर दिया था उनका डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे कोई विश्वास नहीं है, तो झूठ है। और देश के अंदर 20 करोड़ भी बैंक अकाउंट नहीं थे 2014 तक, 2014 के बाद 60 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले, 90% ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पोस्ट 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर हुआ है, फैक्ट है। तो कांग्रेस डिड नथिंग फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉइंट नंबर वन, इसकी आधारशिला कांग्रेस ने नहीं रची। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई एनर्जी हम लोग रशिया से ले रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए, भाई पहले हम जाके ईरान से लिया करते थे, रशिया से 1% भी तेल नहीं लेते, 30% ज्यादा ले रहे हैं और डिस्काउंटेड रेट पर ले रहे हैं। इसी के कारण भारत में अगर कंपैरेटिव इन्फ्लेशन आप देखेंगे एनर्जी का तो सबसे कम भारत के अंदर हुआ है। तीसरी बात, आज फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे 785 बिलियन डॉलर से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं जो दुनिया के अंदर टॉप 4 नेशंस के अंदर है, विच मींस देयर इज अ ह्यूज कुशन अगेंस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब साहिल जी आपने बात करी इन्फ्लेशन की, आज ही के सुबह का इंडियन एक्सप्रेस है जिस इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो ये कहा जाता है कि की इन्फ्लेशन नंबर्स राइज इन ऑगस्ट, ऑल आईज ऑन आरबीआईज इंटरेस्ट रेट डिसीजन नेक्स्ट मंथ। तो अब जब सब लोग ये मान रहे हैं जो इकोनॉमी का करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी है जिसने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, द बॉल इज इन इट्स कोर्ट, और आरबीआई जिसका फर्स्ट काम है टू इंश्योर दैट द इन्फ्लेशन रिमेन्स अंडर दैट बैंडवैगन, द आरबीआई विल टेक केयर देयर प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखी हुई है, फिस्कल डेफिसिट को बैंडवैगन के अंदर रखी हुई है, डेट टू जीडीपी को कंट्रोल में रखी हुई है, तभी वही सरकारी आंकड़े जो 7.8% ग्रोथ दे रहे थे उन सरकारी आंकड़ों पर विपक्ष को विश्वास नहीं था, और उन्हीं सरकारी आंकड़ों में से कुछ आंकड़े वो कोट कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी आंकड़ों का मिश्रण 7.8% होते हैं। हाँ, जरूर ये टेम्पररी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, कि कहीं कहीं जगह जो आपने जो बात करी जिस सर्वे की उसमें ये कॉशन दिखाया गया और ये चैलेंज दिखाया गया, और उसमें वो चैलेंज इसीलिए दिखाया गया क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन जैसी है उसके अंदर ये है, उसके अंदर एक टेम्पररी फिनोमेना है जिससे इंडियन इकोनॉमी इजिली ओवरकम करेगी। पर मैं वापस से मुख्य बात पे आऊंगा साहिल जी, मुख्य बात
10: प्रदीप जी,
5: पूरा शो खत्म हो गया, कांग्रेस की
10: एक
5: स्टेटमेंट यूपीआई के चार्ज बढ़ेंगे, कांग्रेस का झूठ एक्सपोज हो गया है।
10: और एक आंकड़ा
5: बोलिए,
10: और एक आंकड़ा मैं आपके सामने कोट करूंगा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता पर सवाल उठाइएगा। मैंने आरबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था उसका सिर्फ एक लाइन आपको पढ़कर बताइए, लेकिन बाकी की तीन लाइनें भी बड़ी, चार लाइनें बड़ी दिलचस्प है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको
5: पढ़िए प्लीज।
10: नहीं नहीं, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। पहला, शेयर सेइंग द सिचुएशन हैड वर्सन, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है, ये शेयर भी 50.5% तक जाकर पहुंचा है जो पहले 38.5% था। नंबर एक। तीसरी लाइन उसमें यह है कि शेयर एक्सपेक्टिंग इकोनॉमी टू इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, ये समझने वाले लोगों की स्थिति भी घटती जा रही है, यानी 56.7% से 10% की गिरावट करीब 47.4% तक। करंट परसेप्शन नेट रिस्पॉन्स डिटीरियोरेटेड शार्पली फ्रॉम -4.2% टू -23.4%, और आगे वन ईयर अहेड नेट रिस्पॉन्स ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 32.3% टू 11.1%। यानी अगले साल में इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर पाएगी, कॉन्फिडेंस लोगों में नजर नहीं आ रहा है, ये खुद आरबीआई कह रही है, ये तो मेरे आंकड़े भी नहीं, और मैं तो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं,
5: उसी में बारे में
10: आरबीआई का
5: इंडेक्स
10: जी जी।
5: उसी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के रिपोर्ट जो आप कोट कर रहे हैं उसको मैं आगे, आपने जहां पे छोड़ा उसके आगे मैं कोट करूंगा प्लीज। डिस्पाइट वीकर कॉन्फिडेंस इन द इकॉनमी, हाउसहोल्ड्स कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट इनकम्स टू इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट ईयर, ऑल्दो ऑप्टिमिज्म इज मॉडरेटेड पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज बट ऑप्टिमिज्म रिमेन, कोट अनकोट। अब अर्बन एरियाज का कोट, इन अर्बन एरियाज द नेट रिस्पॉन्स ऑन द करंट इनकम इंप्रूव्ड मार्जिनली फ्रॉम 0.9 to 1.9, इंडिकेटिंग दैट स्लाइटली मोर रिस्पॉन्डेंट्स रिपोर्टेड हायर इनकम्स देन लोअर इनकम्स कंपेयर्ड विद अ ईयर अगो। तो इसमें आरबीआई ये कंक्लूड कर रहा है, हाँ जो कॉशन आपने बताया वो है, परंतु हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में विश्वास है, तभी ये 7.8% आई है। पर मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज अपने शो पे कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता से ये तो गारंटी ले लीजिए कि अगर कोई सरकारी आंकड़ा आता है तो उसमें पूरा विश्वास करेंगे, वरना आप आज कुछ सरकारी आंकड़ा ये कोट करेंगे, कल कोई दूसरा सरकारी आंकड़ा आ जाएगा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और शो खत्म हो गया, अभी तक नहीं बता पाए कि यूपीआई का कहां निकाय नोटिफिकेशन में कि कस्टमर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।
10: निगत अब्बास, आप दोनों सवालों के जवाब दीजिए और मैं आपसे शुरू करूंगा, और संक्षेप में आप उसके बाद डॉक्टर वर्मा, दोनों से मुझे पूछना है कि अगर आप कह रही हैं कि इस स्थिति में पॉलिसी पैरालिसिस है तो क्या आप कुछ तीन ऑप्शंस दे सकती है जो सरकार को करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से। शुरुआत करिए निगत जी आपसे।
8: पहले तो साहिल भाई मैं कहूंगी उन्हें झूठ बोलना बंद करें, और जो सरकारी आंकड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से ना दें, आरबीआई का वो वाला भी तो डेटा बताए जिसमें आरबीआई ने बताया था कि हाउस होल्ड डेट 45% से ज्यादा बढ़ गया। अभी 3 घंटे पहले की खबर बता देती हूँ साहिल भाई, लेटेस्ट है कि कैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा 13,138 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से उठा लिया। इसका सीधा सीधा असर भारत की मार्केट पे नहीं आएगा, जो आपने यूएस के प्रेशर में ये जो अमेंडमेंट किया है, बताइए ना वो इतने से भंडारी जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी दुकान
5: यूनाइटेड
8: मार्केट पॉलिसी चेंज करे और सीबीआर के कुछ एमबीआर के बारे में आप ले आए, उसे बताइए कि कैसे जो आम आदमी है जेब पर का खर्चा नहीं लगेगा, आप कैसे कह सकते
5: कितनी
8: जो दुकानदार है जो रेस्टोरेंट
5: वाले
8: जो जो जो जो किराने की दुकान पर है, जो कंज्यूमर और कंज्यूमर से पैसा नहीं देगी, इसका जवाब मैं पूछना चाहती हूँ।
9: कंट्रोल
8: डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है और
9: लगातार मोदी जी का
8: और एजुकेशन का जो खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देश की जनता के लिए बढ़ा है।
10: निखत जी, निखत जी, मैं आपको और एक मौका दिया था मैंने, देखिए मेरा समय खत्म हो रहा है इसके लिए, एक मौका मैंने आपको दिया था, वो भी दे दीजिएगा।
5: आउट ऑफ पॉकेट
10: नहीं, आप देखिए, अब मैंने आपको और एक मौका दिया था, मैंने आपको और एक मौका दिया था निखत जी, कि आप कुछ सुझाव भी दीजिए ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या करेंगे आप आज की स्थिति में, क्या करेंगे आप? आपकी तरफ से पहले सुझाव, उसके बाद डॉक्टर वर्मा भी सुझाव देंगे। मेरा समय खत्म हो रहा है जल्दी से, इसके लिए आप पहले एक मिनट पे, उसके बाद डॉक्टर
5: की गूंज करेंगे। और
8: आखिर में पहले बोलिए कि जनता को पूरी पूरी नोटिफिकेशन दे, जनता को मौका ना दे कि जनता आप पर शक करे, पूछे कि आपने 2000 की बात की, 2001 की बात की, आप इतने
9: पूछते
8: नोटिफिकेशन, विपक्ष बताया
9: कांग्रेस,
8: ये आप नहीं बताएंगे,
9: झूठ की गूंज करेगी कांग्रेस।
10: ठीक है ठीक है ठीक है, प्रदीप भंडारी जी सुझाव भी देने दीजिए उनको, समय खत्म हो रहा है। निखत जी सुझाव मैं इंतजार कर रहा
9: हूँ, सुनना चाह रहे हैं
8: सुझाव। तो ये मैंने कहा, तो मैं इतनी देर से साहिल भाई बोल रही हूँ कि इनको बोलिए कि यूएस के आगे जो इन्होंने पॉलिसीज का चेंज कराया है, यूएस के दबाव में, उसको करना बंद करें, जो अमेंडमेंट्स करें और बता दें।
10: डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा,
11: साहिल भाई, अगर सरकार के पास,
10: आशुतोष वर्मा, ठीक है आशुतोष वर्मा, आपसे सुझाव, क्या पॉलिसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी?
11: देखिए हमारा सरकार से यही कहना है कि आपके पास महंगाई रोकने के लिए पर्याप्त तरीके हैं, बफर स्टॉकिंग को रोकना, इंपोर्ट पॉलिसी, पीडीएस, टैक्सेशन, एंटी होर्डिंग और ऐसे तमाम तरीके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एक आम आदमी की रसोई महंगी हो रही है तो इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। और जो प्रदीप भंडारी कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट के समय ही एनपीसीआई का गठन हुआ था, आप पढ़िए, जाइए, समझिए, तब आप पत्रकार थे, अभी आप पढ़ पढ़ के प्रवक्ता बन रहे हैं, इसमें समय लगेगा अभी,
9: कोई बात नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट जमीन पे लाना पड़ता है आशुतोष भाई।
11: ऐसा है ना कि पहले दिमाग लगाना होता है और फिर लाना होता है, देश को आजाद करने के लिए सोचना पड़ता है, मुखबरी नहीं करनी लगी होती है, मुखबरी करने से देश आजाद नहीं होता है।
10: चलिए निफ्टी तनेजा,
11: मुखबरी करने से देश आजाद नहीं होता।
10: लास्ट मिनट मेरे पास है, एज अ इकोनॉमिस्ट,
9: मोदी जी की सरकार है, यूपीआई आगे बढ़ रहा है,
10: ठीक है, क्या सुझाव देंगे
7: जी?
10: क्या सुझाव रहेगा
7: जी साहिल जी? देखिए सबसे पहले तो फैक्ट चेक की, जो बार बार ये निखत मैडम जो आंकड़े दे रही हैं वो आंकड़े गलत हैं, उन आंकड़ों को एटलीस्ट करेक्शन की जरूरत है। फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसमें इन्होंने बोला कि चावल की कम से कम 50% बढ़ी है, ये अभी के जो आंकड़ों की बात हो रही है, चावल 5.88% बढ़ा है, जो उन्होंने बोला कि प्याज 70% बढ़े हैं, वो प्याज नहीं बढ़े हैं, वो जिंजर बढ़े हैं। खैर एनीवे, और जो आपने एफपीआई के भी डेटा दिया वो आप जनवरी फरवरी का दे रही थी। देखिए साहिल जी, सुझाव यही है कि जो एमपीसी आने वाली है, जो मॉनेटरी पॉलिसी करेगी, उसमें रेपो रेट को कंट्रोल रखना है ताकि जनता के ऊपर भार ना पड़े। दूसरा, जो मैंने पहले भी प्रदीप जी से बोला था कि एक गजट नोटिफिकेशन चाहिए होगी कि ये जो मर्चेंट टैक्स है, मर्चेंट रेट है, एमडीआर जो है, ये मर्चेंट पे ही रहेगा, ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होगा। आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी कि फेड रेट बढ़ने की भी पूरी आशंका है सितंबर में,
10: तो ऐसे क्लैरिटी की जरूरत कहीं ना कहीं दीप्ति तनेजा भी यहां पर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ आंकड़े, वाइंड अप, मेरा समय खत्म हो गया इसके लिए। अनियन प्राइजेस 118% पिछले 6 महीने में बढ़ी है, उसके बाद नंबर आता है चीनी का, जो करीब 29% दाम पिछले 6 महीने में बढ़े हैं, उसके बाद अगर समय आता है तो वो पोटैटो उसका जाता है करीब 13% के ऊपर, और टोमेटो के प्राइजेस करीब 48% से बढ़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अब आरबीआई की तरफ सबकी नजरें लगी हुई है कि आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी में इस पर किस तरीके से रोकथाम के उपाय आरबीआई की तरफ से होंगे। फिलहाल लेंगे हम ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: आगे आगे,
15: अरे उधर
14: उधर किधर,
15: करेक्ट करेक्ट,
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
13: जेके मैक्स पेंट्स।
12: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबान।

0: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।
1: सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुन।

0: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
1: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
0: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
0: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चार्ज, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया फर्जी। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लगाओ। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, पीएम की यात्रा संकल्प की यात्रा, प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा और सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम। पंजाब में ड्रग्स और सुइसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। और आज तक की खबर का असर, गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ है हत्या की कोशिश का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पब्लिक को कैसे रोक लोगे बताओ, पब्लिक रोक पाएंगे क्या बताओ भाई। समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया, भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
1: समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है, अखिलेश यादव जी ने कभी भी शिवपाल जी का सम्मान नहीं किया, उन्होंने हमेशा शिवपाल यादव जी को अपमानित किया है।
2: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, तो उनको तो खुद किनारे लगाने में लगे हैं, इस नाते लोहिया ट्रस्ट से उनको हटा दिया है।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधनों का मिजाज बदलेगा? क्या पार्टियों के भीतर भी पत्ते फेंटे जाने शुरू हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में हर नेता हर दल के एक एक कदम से सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे से कल मुलाकात हुई। आज कहा उन्होंने कि बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो सोचना पड़ेगा। हालांकि माता प्रसाद पांडे से मुलाकात से पहले संजय निषाद की सोशल मीडिया पोस्ट में लाल टोपी नीली वर्दी पहनकर यूपी के निषाद समाज को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया था। यूपी की सियासत को समझने वाले समझ गए कि निशाना कहां था, लाल टोपी किसकी है और किसकी युवा इकाई की वर्दी नीली हो गई। सवाल यह है कि क्या यह संजय निषाद का एनडीए में सीटों का गणित तय करने का दबाव डालने वाला फॉर्मूला है? उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का घमासान छिड़ा ही था कि इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छिन गई। क्या अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइड करने का बीजेपी का आरोप दमदार है? यूपी में किसका गणित क्या है? क्या जाति जाति का 2027 का खेला शुरू है? यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट।
1: अखिलेश यादव के खासम खास और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद मिले तो चर्चा दूर की चल पड़ी। कहने को तो माता प्रसाद की तबीयत का हाल जानने शिष्टाचार मुलाकात करने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद उनसे मिलने गए थे, लेकिन मिलकर संजय निषाद ने तोल मोल की ऐसी बात की कि मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव से निकाला जाने लगा।
2: हम प्यास लग रहे हैं
3: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा। उस पर
4: कहने का ये है कि आप जैसे मुलाकात आपने की है, बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
3: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग। अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के नेता भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था।
1: पिछले हफ्ते ही संजय निषाद गोंडा के बर्तन व्यवसायी विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठे थे। किसी कैबिनेट मंत्री का धरने पर बैठना अपनी ही सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश दे गया था। माता प्रसाद पांडे से मुलाकात में भी संजय निषाद ने विनोद सहनी हत्याकांड पर बात की है।
3: विनोद सहनी के उस पर हत्या हुई, अगर उनका SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट नहीं छीना गया होता तो आज अनुसूचित जाति आयोग खड़ा होती और आप ही लोगों ने छीना, आप ही लोगों ने वापस किया था 25/12/2016 को।
1: वैसे संजय निषाद अभी एनडीए को ही जिताने की बात कर रहे हैं। 14 सितंबर को संजय निषाद ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, जो बिहार में मछुआरा समुदाय के वोटों की खरीद बिक्री के लिए बदनाम रहा हो, बिहार में मछुआरों के राजनीतिक उभार को ग्रहण लगा चुका हो, जो एक विधानसभा चुनाव तक जीतने की हैसियत नहीं रखता, वो जेब में नोटों की गड्डी रख के लाल टोपी नीली वर्दी पहनकर यूपी के निषाद समाज को गुमराह करने की राजनीति करने निकला है। ये बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना था। जाहिर है कि संजय निषाद यूपी में केवट बिंद बल्ला निषाद जैसी जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर किसी और की दावेदारी की संभावना को भी खारिज करना चाहते होंगे, लेकिन 2027 में सीटों के फॉर्मूले से ही उनका पाला तय होगा, ऐसा संकेत साफ है। यूपी चुनाव में एनडीए के छोटे दलों की उम्मीदों को साधना बीजेपी के लिए एक पेचीदा काम हो सकता है। चिराग पासवान की LJP भी यूपी में दावेदारी खोज रही है। उधर समाजवादी पार्टी के लिए भी जहां सीटों को लेकर कांग्रेस से गठबंधन का पेच फंस सकता है, तो वहीं लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल यादव से छीने जाने पर एनडीए को समाजवादी पार्टी में घर की कलह दिख गई।
5: अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2016 में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को अभी भूले नहीं है, और इन सारे विषयों को शिवपाल जी भी जानते हैं, तो समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है और समाजवादी पार्टी में आपस में बहुत बड़े स्तर पर आंतरिक मतभेद है, परिवार में टकराव और तनाव है।
6: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 3 साल थे, सदन के अंदर अखिलेश जी ने बयान दिया, आप खुद समाजवादी पार्टी से अलग हो करके उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी की सच्चाई को उजागर किया कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं।
1: शिवपाल यादव 9 साल से लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। 2017 में पारिवारिक विवाद के दौरान मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लोहिया ट्रस्ट के सभी 8 सदस्यों ने अखिलेश को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने पर सहमति दी है। समाजवादी विचारधारा का प्रसार और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना लोहिया ट्रस्ट की अहम जिम्मेदारियों में है। इसीलिए लोहिया ट्रस्ट से शिवपाल यादव के हटने के मायने ढूंढे जा रहे हैं। खासकर इसकी जिम्मेदारी आगे चलकर अखिलेश की बेटी को सौंपने की चर्चाएं भी चल पड़ी हैं।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न देश से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न लोहिया से मतलब है, न जयप्रकाश से मतलब है, न उन्हें सामाजिक सद्भाव से मतलब है। उनका एकमात्र लक्ष्य है चुनाव, इसलिए हर जगह वो चुनाव देखते हैं।
1: अखिलेश पर शिवपाल यादव के कद को घटाने के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ भी यूपी विधानसभा में चुटकी ले चुके हैं।
7: और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। क्यों इतना उनका अपमान कर रहे हैं? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं,
1: यूपी में एनडीए से लेकर समाजवादी खेमे में चुनाव के पहले की उठापटक शुरू हो चुकी है। 2017 और 2022 में बीजेपी की जीत में जातीय आधार वाले छोटे दलों को साथ जोड़ना बड़ी रणनीति थी। आज तक ब्यूरो।
0: तो हल्ला बोल की शुरुआत करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें हम। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अमीक जमई, समाजवादी पार्टी का रुख रखेंगे। अरुण राजभर जो एसबीएसबी के प्रवक्ता हैं। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हम सीधे निषाद पार्टी से भी समझें कि ये हुआ क्या है। लेकिन तब तक अमीक जमई जी, ये समझाइए कि जो लोहिया ट्रस्ट के साथ हुआ वो क्यों हुआ? पार्टी के अंदर क्या सचमुच आपकी खटपट शुरू हो गई है जो बीजेपी कह रही है?
8: श्रोता जी, ये कोई बहुत ही अत्यंत इम्पॉर्टेंट विषय नहीं है जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, और ये पारिवारिक मामले हैं। माननीय शिवपाल यादव जी पार्टी के आज शीर्ष नेताओं में से हैं, उनसे बिना सलाह मशवरा किए हुए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कोई फैसला नहीं करते हैं, और उनके बेटे अंकुर यादव जी वो खुद सांसद हैं, और माननीय शिवपाल जी पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ जो फैसले हैं उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के साथ साथ हैं। दूसरी देखिए, जो चर्चा है सबसे इम्पोर्टेंट ये कि माता प्रसाद पांडे जी से जो हमारे एलओपी हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, निषाद समाज के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं।

0: पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे विनोद साहनी का ये रिसेंट गोंडा का मामला हो जहां पे उनकी हत्या हुई एक पोस्ट करने के लिए, चाहे जौनपुर का बिन समाज का दूल्हे की जो हत्याकांड हुआ, इतनी जघन्य हत्या कि पूरा पूर्वांचल हिल गया, तो पूरे प्रदेश में राजभर समाज को थानों में पीटा जा रहा है, निषाद समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इन सब सवालों पर जब मुख्यमंत्री, जो कि एक घोर जातिवादी मुख्यमंत्री है, जब वो नहीं सुनते हैं, तो माता प्रसाद पांडे जी आप जानती हैं कि बहुत ही सीजन्ड, बहुत वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं।
1: तो मुलाकात मुद्दों को लेकर गए थे या सीटों को लेकर गए थे मुलाकात, मतलब गठबंधन को लेकर?
0: देखिए तकलीफें हैं जो, देखिए एक बात समझिए श्वेता जी, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक करी थी संजय निषाद जी के साथ, डॉक्टर संजय निषाद साहब, और उन्होंने वादा किया था कि हम निषाद समाज को एससी में शामिल करके उनको आरक्षण देने का एनडीए नरेंद्र मोदी वादा करते हैं, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज पूरे प्रदेश में निषाद समाज, बिंद और केवट जो समाज है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और वो प्रेशर संजय निषाद जी पे बना हुआ है। अरविंद हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पूरे थानों में सबसे ज्यादा अगर यादव समाज के बाद कोई पीटा जा रहा है तो राजभर समाज के युवा पीटे जा रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, जो भी वो बोलते हैं सुबह शाम अखिलेश जी को, लेकिन वो जानते हैं कि उनका समाज बीजेपी आरएसएस के उत्तर प्रदेश की इस रिजीम में सबसे ज्यादा शोषित वंचित समाज है, सबसे ज्यादा हमले आज इन कमजोर वंचित समाज के लोगों पर है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि 2024 में आप जानती हैं कि जो एमपीज समाजवादी पार्टी के जीते, एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है कि उसमें निषाद हैं, केवट हैं, कुर्मी हैं, एक बड़ा समाज अखिलेश यादव जी भी भरोसा कर रहा है। इसलिए बीजेपी आरएसएस को समस्या है कि उत्तर प्रदेश में जाति का खेल, फैमिली में तोड़ का खेल खेला
1: जाए, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों के हिसाब से पार्टियां भी हैं और पार्टियों के हिसाब से अगर वो गुलदस्ता देखें तो गुलाब का फूल कभी वहां से निकलकर इधर आ जाता है, कभी दूसरा फूल निकलकर चला जाता है। सुधांशु जी, क्या चिंता आपको हो रही है कि यहां से गुलदस्ते में से आपके कुछ फूल निकलेंगे उधर जाने के लिए?
2: कर दिया ना अमित जी, अभी तक तो आप यही आरोप लगाते थे, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज, अब जैसे ही जात का मुद्दा आया तो अभी जमाई अपनी बिरादरी भूल गए, नहीं बताओ मुस्लिम से तो कोई मतलब नहीं है, अब हम जरा जाति का देख लें। मुझे लगता है यह वाक्य मात्र अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी हिंदू समाज में जातिगत विभाजन करने के लिए अपने उस फार्मूले पे कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, ठीक, तो टुकड़े टुकड़े करके किस ढंग से कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने का जो ख्वाब सजो रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है। दूसरा, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय ने बोला, अमित जमाई साहब ने, उन्होंने कहा जब लोहिया ट्रस्ट की बात आपने पूछी, उन्होंने कहा यह परिवार का मामला है। देखिए कितनी ईमानदार सच्ची स्वीकारोक्ति है ये समाजवादी पार्टी की तरफ से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरे देश के नेता थे, 1967-68 के चुनावों में हम लोगों को याद है जब समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ के बीच में गठबंधन हुआ था, पूरा देश उनको नेता मानता था, और आज क्या कहा जा रहा है, लोहिया ट्रस्ट, ये तो परिवार की बात है भाई, ये रह लेंगे वो रह लेंगे, बिल्कुल सही बात है। और जो अभी इन्होंने कहा कि गुलदस्ते में सभी लोग जुड़े हुए थे, हमें याद है श्वेता जी, हम लोग जब बच्चे थे और मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने, हम लोग कम उम्र के थे, उस समय मुलायम सिंह जी की आइडेंटिटी एक नेता वाली नहीं थी, वो जाति के नेता की नहीं थी, तब वो मजदूर और किसान सबके नेता थे, कहा जाता था धरती पुत्र मुलायम सिंह, और लोहिया जी के बारे में कहा जाता था बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, उस समय सारा वर्ग था। फिर समाजवादी पार्टी ने अपने को संकुचित किया और मुलायम सिंह जी से अलग हो गए काशीराम और मायावती जी, अब दलित छूट गए, अब सिर्फ पिछड़े रह गए, फिर अलग होने की प्रक्रिया रही, बेनी प्रसाद वर्मा जी अलग हुए, फिर सोनेराज पटेल जी ने अलग पार्टी बनाई, कुर्मी समाज अलग हो गया, आज निषाद समाज की अलग पार्टी है, राजभर समाज की अलग पार्टी है, तो आखिर में घटते घटते घटते घटते धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की पार्टी अब सिर्फ मुलायम सिंह जी के पुत्र तक रह गई है। अब तो भाई और पुत्र के बीच में भी मतभेद साफ दिख गया कि भाई पार्टी पे अधिकार अब पुत्र का है, भाई का नहीं है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के क्रमिक ह्रास का, और उन्होंने अपना सामाजिक अधिकार आधार कैसे खोया है, और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का विश्वास जिस प्रोसेस से खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रोसेस से सबको एडॉप्ट किया है, और आज समाज के सभी वर्ग और सभी जातियां हमारे साथ जुड़कर

0: विकसित भारत के संकल्प और उत्तर प्रदेश जो एक नया स्वरूप धारण किया है।
1: सुधांशु जी, निषाद पार्टी साथ रहेगी कि नहीं रहेगी?
0: बहुत लंबे समय से दिल्ली में आता जाता रहा हूं। देखिए, हमारा ये विचार है एनडीए का कुनबा आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और इंडी गठबंधन उत्तरोत्तर बिखरता गया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते हुए भी हमें इसी दिशा ही में कुछ और नया दृश्य दिखाई पड़ेगा।
1: सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की तरफ से अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, ये समझाइए कि क्या वाकई जो छोटे पार्टनर होते हैं गठबंधन में बड़ी पार्टी की छाया में ही रह जाते हैं? आप लोगों के मन में इच्छा ही रह जाती है कि थोड़ा और सीट मिल जाती चुनाव लड़ने के लिए? सम्मान हो रहा है आपका गठबंधन के अंदर कि नहीं?
2: देखिए, पूरा एनडीए कुनबा पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और सम्मान की जहां तक बात है पूरा सम्मान के साथ खड़ा है। सबसे बड़ी चिंता की बात इस तरह का है कि जो एक नारा लेके चले थे फर्जी पीडीए का, जो एक जुमला साबित हो रहा है, धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब जातियों में बटे हुए हैं। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जब सत्ता हमारी थी समाजवादी की, तब हम न्याय की बात नहीं करते थे, हिस्सेदारी की बात नहीं करते थे, सम्मान की बात नहीं करते थे। और सत्ता से बाहर होने के बाद सारी बातें कर रहे हैं, तो जनता को भी पता है सत्ता में आने वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं। और जहां तक बात यह है कि एनडीए के गुलदस्ते में यहां हर तरह के फूल हैं और सारे फूल पूरे सुगंध दे रहे हैं और अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे हैं। कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी की तरह हम एक जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखते थे, आज सारे जाति धर्म के लोगों को सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव। जवाई साहब ने कहा बड़ी बात बारीकी से कहा कि राजभर और यादव पर अत्याचार हो रहा है। अब इनको यह नहीं पता है कि अत्याचार करने वाला कौन है। अत्याचार करने की लिस्ट में देखा जाए तो अभी आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा में एक यादव ने एक ब्राह्मण की चाकू मार के हत्या कर दिया, लेकिन वहां ये इस बात को नहीं कहा जाएगा कि उस यादव ने हत्या किया। उसी जौनपुर में एक प्रजापति को एक यादव ने हत्या किया, उसको गोली मार के हत्या कर दिया, वहां कुछ बात नहीं होगी। गाजीपुर में एक यादव ने राजभर की हत्या किया, वहां ये बात नहीं की जाएगी। मऊ में एक यादव प्रधान ने राजभर की हत्या किया, वहां ये बात नहीं कही जाएगी। बात सुनिए पहले, जमी
3: साहब, समाजवादी पार्टी जीतेगी
2: नहीं, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। जमीन पर आइए, जमीन पर आइए, जमीन की बात कर रहा है। जनता के बीच में कहीं कुछ नहीं, जनता से बहुत पॉपुलर है अरुण राजभर, जनता के बीच में। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जनता के बीच से बात कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। जनता के बीच में जो
3: जी अतरौलिया से
2: उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल,
3: विधायक होंगे, नेता होंगे,
2: वही समाजवादी है जहां लोग बड़े पैमाने पर दंगा का शिकार होते थे, बड़े पैमाने पर कर्फ्यू का शिकार होते थे, बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले से शिकार होते थे। और आज 16-17 से लेकर के 26 तक एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अब ये बतावे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दंगा होता था, वो दंगा कराने के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह खेल करती थी। अब समाजवादी पार्टी में श्री शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव से तो पट नहीं रही है। अब ये दोनों आपस में से तो बन नहीं रही है। अगर ये बनी होती तो अलग से चाबी लेकर के वो घूमे नहीं होते। 2013 से एक कुंडली इनका खुला हुआ है और ये कुंडली आज नहीं, चुनाव आने दीजिए, नजदीक आएगा।
1: गठबंधन पार्टनर्स के बीच ऐसी ऐसी एकजुटता का मुझे लगता है कि चुनाव से पहले सब इंतजार करते होंगे कि एक दूसरे का समर्थन ऐसे करिए। लेकिन अमीक जमे जी, क्या जो इंडिया गठबंधन है उसमें ऐसा है? अव्वल तो जो आरोप आप पर लगा रहे हैं अरुण राजभर, कि आप लोग सिलेक्टिवली, आप अपने हिसाब से अगर कोई जो जुर्म होता है, कोई क्राइम होता है, उसमें जाति देखकर पॉलिटिक्स करते हैं और जहां पर आपको सूट नहीं करता वहां पर आप खामोश रह जाते हैं, इस आरोप पर जवाब दें।
3: देखिए श्वेता जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा प्रधानमंत्री, मैं पिछड़े समाज से हूं करता हो, जाति की बात तो हमें चर्चा करनी चाहिए नहीं। हमने 2-3 सवाल सुधांशु भाई से पूछा जिसका जवाब नहीं दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने निषाद समाज से आरक्षण का वादा किया था, एससी में उनको लाने का दर्जे की बात करी थी, उसका क्या हुआ नहीं बताया। हमारा भाई अरुण राजभर से मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आपको कितना टिकट दे रही है, कितनी सीटें दे रही हैं, कुछ तो बताइए, जवाब नहीं दिया। भाई इनके वालिद ने, मोहतरम ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कार्यकर्ताओं से कि जवान थाने

0: में चल जाइबा, पीला गमछा दिखा देबा, न्याय मिल जाई। पूरे थाने में राजभर नौजवानों की जो पीले गमछे जाते, यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हमारे राजभर युवाओं को कूटने का काम करती है। यादव नहीं है पुलिस वाले, मुसलमान नहीं है। और याद रखिए अरुण बाबू, इसी यादव ने, इसी दलित ने, इसी मुसलमानों ने आपको 19 सीटों में से 6 सीटें जितवाई थी, आपके साथ खड़े हुए थे, कभी आपको गैर नहीं समझा। ठीक है, आपका दल का मजबूरी है, लेकिन आज श्वेता जी को बता के जाना कितना सीट मिल रही है आज आपको भाजपा से।
1: बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल जमई साहब, 2017 में आपकी ताकत क्या थी? 47 सीट पर माननीय ओम प्रकाश राजभर आए, 125 पहुंच गए, एक ताकत आपको दिखा दी। जहां तक रही सीट की बात, समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन की सीट तय नहीं करेगी, यहाँ एक पूरी प्रोसेस होती है और जमीन की हकीकत, जनता के बीच की हकीकत पार्लियामेंट बोर्ड में जाती है और सब पार्टियां तय करती है कौन कहां से लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा। नंबर दो बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और हम लोग आपके दम पर जीत के आए। अरे भैया, हम अगर आपको सहयोग किए तो आप हमें सहयोग किए, और 2017 में आपके दम पर नहीं आए थे। नहीं, कहीं डीएपी तो आपकी नहीं है, ये सब फर्जी बात है। और जहां तक बात थाने की है, आज भी हमारे कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यता के साथ थाने में जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है, उनको न्याय मिलता है। ये फर्जी अफवाह फैलाना बंद करिए। इसी अफवाह के चलते बाह मोड़ते हुए गांव में पाए जाते हैं, कहते हैं भैया जी की सरकार आ जाएगी तो हम ठिकाने लगा देंगे। अब भैया जी की सरकार लाने के लिए बाह मोड़ा जाता है, भैया जी की सरकार लाने के लिए धमकाया जाता है, भैया जी की सरकार लाने के लिए डराया जाता है, और वही डर आज उत्तर प्रदेश समाप्त है। वही अफवाह जो आज आप लोग अफवाह फैला करके लोग भ्रमित करते थे, आज वो भ्रम खत्म है, इसकी जनता जान गई है।
2: सुधांशु जी, जो 9% आरक्षण निषाद समाज के लिए, जिसकी बात संजय निषाद की तरफ से बार बार की जाती है, क्या इसको लेकर जो अमीक जमे भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इसको लेकर जो निर्णय नहीं है वो संजय निषाद को इतना परेशान कर सकता है कि वो एनडीए छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं और वापस जाएं? इसलिए कहूंगी क्योंकि भले उनका सिंबल था, लेकिन जो उपचुनाव गोरखपुर के थे उस समय क्या नतीजा था वो सबके सामने था।
3: श्वेता, जितने भी जो छोटे दल होते हैं,
4: अभी अरुण राजभर जी ने,
2: जी सुधांशु जी आप बोलिए, उसके बाद मैं राशिद गिदवई के पास जाऊंगी। सुधांशु जी,
4: हाँ देखिए, अभी अरुण राजभर जी ने बहुत सारे उदाहरण गिनाए, अमीक जमाई जी ने अपनी सुविधा के अनुसार उदाहरण बताने का प्रयास किया, मगर मैं श्वेता जी, मैं कोई जातिगत वैमनस्य नहीं पैदा करना चाहता हूं, मैं एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। आप ही के ग्रुप के लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में बिहार चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने यह कहा था कि मल्लाह समाज पर अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर करने में समस्या आ रही है। ये उस कन्वर्सेशन में आया था और ये वीडियो कोई अवेलेबल है जाके। अब ये कोई एक स्पेसिफिक एक घटना दो घटना की बात नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है। एक पार्टी जो खुद को बिहार में निषाद समाज की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानती है, और राशिद किदवई जी यहां बैठे हैं, उनको भी और आप भी इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सामाजिक हकीकत है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भारी आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। और रही बात इसकी जो पुलिस की बात करने का प्रयास करते हैं अमीक जमाई जी, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, अरे सपा का शासन काल आएगा तो पुलिस उलिस क्या, फिर तो सीधे दंगा, आतंकवाद, फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी की अदालतों में धमाके और फिर आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने का प्रयास, वो सब हुए थे। अब रही बात आरक्षण वाले विषय पे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक कॉन्क्लेव में थे और उस समय ओम प्रकाश राजभर जी भी बैठे थे। श्वेता जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना वाले विषय के ऊपर ऑफिशियली स्टैंड उस समय ये नहीं कहा था इसका समर्थन, मगर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि हम समर्थन में हैं। और तब उनसे पूछा गया था कि आप एनडीए में होकर क्यों समर्थन में हैं, और अगर किसी के पास वो वीडियो हो जाके देखे, उन्होंने एक सांस
0: वादा किया जातियां गिनाई, बताइए
4: ये ये ये ये बताइए, इस आरक्षण का लाभ सिर्फ के एक दो जातियों को मिलेगा या राजभर जी जो अपने गिनाते हैं कि इनमें से किस किस को कितना मिला? और मैं पीडीए वालों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई जरा पीडीए में बता दो कितनी जातियों के नेताओं को आज तक आपने अपनी पार्टी,
2: अमित जी वो बोल लेते हैं फिर आप अपना अपना जवाब दे दीजिएगा, कंप्लीट कर लेने दीजिए।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष और या सीएम परिवार के बाहर नहीं हुआ, और आज तो यह साबित हो गया कि ट्रस्ट भी परिवार में

0: भी परिवार में नहीं बेटे के ही हाथ में रहेगा। क्या ये लोग सबके साथ लेने की बात करते हैं।
1: ठीक है अमीक जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस राशिद किदवई जी को एक बार हम जोड़ लेते हैं इस चर्चा में, क्योंकि राशिद किदवई जी हमेशा चुनाव जब नजदीक आते हैं तो अगर कुछ नाराजगी कुछ मन मुटाव जो गठबंधन के पार्टनर्स होते हैं छोटे दल होते हैं उनकी तरफ से होता है, तो ये सचमुच में हम समझें इसके पीछे कारण जो संजय निषाद के मन में चल रहा है, या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो जाता है क्योंकि मालूम है कि अब चंद महीने दूर है चुनाव और अभी से सीटों का एक बेस तैयार किया जा सकता है।
2: जी श्वेता, देखिए इन सब चीजों का समावेश होता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और उत्तर प्रदेश में लोग बहुत इस मामले में समझदार हैं राजनीतिक रूप से। देखिए अमित शाह ने जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 2017 में उन्होंने बहुत मेहनत करके एक नए समीकरण बनाया और छोटे छोटे जो जातियों के समुदाय के जो वोट होते थे उन सबको अपनी तरफ कर लिया। पहले इससे पहले भाजपा ने उस तरह की रणनीति व्यापक रणनीति नहीं अपनाई थी और वो बहुत ज्यादा कारगर रही। लेकिन अब 10 साल का समय बीत गया है और हमारे मित्र सुधांशु जी जो भी कहे, देखिए कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है और सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकती और उसमें जो है मुख्यमंत्री का एक मिजाज भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। तो उस तरीके का जिस तरीके का भाजपा को उम्मीद थी कि जो तालमेल और संतुलन बना के चलेंगे वो वहां पर नहीं हुआ है। अब देखिए जो चुनाव होते हैं श्वेता और आप उसको एनालाइज करें, जितने छोटे दल होते हैं उनकी कामयाबी मतलब जो जो विनिंग साइड होता है विनिंग कॉम्बिनेशन उसमें उनका रेशियो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप दिखा रही थी कि 10 में से 6 सीटें मिल गई, हमने बिहार में भी देखा, हम एलजीपी को भी देखते हैं चिराग पासवान का सक्सेस रेट उनका बहुत अच्छा रहता है। तो ये छोटी पार्टियों को पता रहता है और ये दोनों तरफ बार्गेन करते हैं। बस एक बात मैं कहूंगा, ये सारी बातें जो समाजवादी पार्टी के बारे में कही जाती है लेकिन अब अखिलेश जो है वो थोड़े से नए तेवर के साथ में आ रहे हैं और वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे योगी आदित्यनाथ के साथ एक फटीक हो रहा है, वो जो पीडीए का मामला है और वो मुसलमानों को थोड़ा पीछे रख करके रणनीतिक रूप से चल रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है। और सिर्फ जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है वो मायावती का जो 10% 11% जो दलित वोट के ऊपर कब्जा है उसको, वो भाजपा की मेरी नजर में वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको कैसे वो उसकी काट लेके आते हैं ये आने वाला समय बताएगा।
1: तो अखिलेश जी के इस नए फॉर्म को जो आप देख रहे हैं उसमें क्या जो लोहिया ट्रस्ट में अब वो अध्यक्षता करेंगे शिवपाल यादव नहीं, क्या उसको भी उसी में जोड़ रहे हैं आप?
2: श्वेता देखिए ये आप बहुत देखिए आराम से देखिए इसको कि जो जो जो शरद पवार की एनसीपी में हुआ, जो ममता बनर्जी की पार्टी में हुआ तो वो जो है, और जो शिवसेना में हुआ जो उद्धव ठाकरे का, उसको लेकर के राजनीतिक दल बहुत ज्यादा सतर्क है कि कोई अपना ही कोई सेंधमारी ना कर दे। तो मुझे लगता है, मैं किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ बात नहीं कह रहा, लेकिन ये उसी एक उसका ये है कि किसी को इतना महत्वपूर्ण ना बनाए कि वो जो है चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में वो अलग आके खड़ा हो जाए और समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का या धोखा या आप जो भी कहें सरप्राइज मिले।
1: ठीक है अमीक जबे जी, जो जो बातें आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं उसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि निषाद पार्टी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय रही है, अखिलेश जी ही जो बातें करते रहे हैं अभी तक, निषाद को केवल विषाद मिलेगा भाजपा में, मंत्री जो रोते हैं उसमें पश्चाताप के आंसू उसको कहते हैं, तो ये सारी चीजें एक तरफ अगर हम छोड़ दें, अगर मान लीजिए संजय निषाद चाहते हैं कि आज आ जाए समाजवादी पार्टी में, तो आप लोग ओपन है इस नए गठबंधन के लिए वापस?
3: नहीं देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बहुत हिस्टोरिक बात बता रहा हूं। नेताजी ने और माननीय अखिलेश जी ने हमेशा से, आप फूलन देवी से उठाइए और प्रवीण निषाद जो डॉक्टर संजय निषाद जी के बेटे थे गोरखपुर के मठ की लोकसभा से, उनको समाजवादियों ने सांसद बना के भेजा। इतना बड़ा सम्मान निषाद समाज का एक युवा नेता को हमने बना के भेजा। जो भी उनकी मजबूरी थी वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने रास्ता चुना, लेकिन जो आरक्षण का रास्ता था जब नेताजी मुख्यमंत्री थे 2004 में, उन्होंने इस समाज के लिए जो रिकमेंडेशन, जो क्योंकि आरक्षण केंद्र का विषय है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक नोटिंग बना के हमने इस बात को रिकमेंड किया था कि इसको एससी में किया जाए और नेताजी ने कहा कि जब तक नहीं होता है एससी समाज को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं निषाद समाज को मिलनी चाहिए। ये 17 जातियों का मामला था जिसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बाद में मुख्यमंत्री रहते हुए इस बात को आगे बढ़ाया। तो अब सवाल ये है कि आज जब गृहमंत्री जी ने इनको लाए निषाद समाज को, आज समस्या क्या है कि आप इनको समाज को धोखा दे रहे हो? मैं एक इंडिविजुअल डॉक्टर निषाद जी की बात नहीं कर रहा हूं, इसका फैसला इंडिया अलायंस भविष्य में करेगा, क्या होगा कैसे होगा ये मेरा शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन जो पूरा समाज है उत्तर प्रदेश में जिसे गृहमंत्री अमित शाह जी ने धोखा दिया, आज हर कोई, आप श्वेता जी फोन लगाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति या महिला होंगी पुरुष होंगे बुजुर्ग होंगे, भारतीय जनता पार्टी से वो केंद्र से भी खफा है।

0: से भी खफा है, और उनके पास एक ऑप्शन है, देश का सबसे बड़ा मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर अखिलेश यादव जी का चेहरा उनके सामने है, और इसलिए धीरे धीरे जो हमारी पीडीए की ताकत है आज श्वेता जी 2024 के बाद और बड़ी हो गई है। चुनाव आज करवाइए, आप चुनाव आप फरवरी में करवा लीजिए, समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की इंडिया अलायंस की हुकूमत हर कोई अपनी आंखों से निगाहों से सामने देख रहा है। लेकिन निषाद समाज का अपमानित करिएगा आप, राजभर समाज को थाने में आप पीटिएगा, अरुण भाई हमारे कुछ भी कह रहे हो, हमें उतना ही बोलना चाहिए कि कल हो सकता है कि हम आमने सामने खड़े हो जाएं, तो निगाहें मिलाने का एक नरमी तो रहे,
1: अरुण जी निगाहें मिलाने चॉइस कम है यूपी में। अरुण जी कल आपको जरूरत पड़ेगी कि बीजेपी ने सीट नहीं दी है तो आप देखिए आप नाप तोल के बोल नहीं रहे हैं।
2: देखिए समाजवादी पार्टी ने वही सीट मुझे दिया था 2022 में जो सीटें उनको हराना था, और डम्मी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, ये बात वो खुद जानते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये कैंडिडेट हार जाएगा तो आप अड़े हुए हैं उसी को जिताने के लिए कि वो जीत जाएगा, इसका मतलब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और हमें हराने की साजिश रच रहे थे और मुझे हरा भी दिए। लेकिन वह साजिश उत्तर प्रदेश की जनता को बखूबी पता चल गया कि ये देखते कुछ और है और दिखाते कुछ और है, और 17 सीट दे करके 12 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। अब आप समझिए श्वेता जी कि आज ये एनडीए गठबंधन में आज के डेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस देश में हर जाति में गरीब है और हर जाति की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए पूरे देश में। इस बात का विरोध कौन कर रहा है? इस बात का विरोध अगर कोई कर रहा है मजबूती तो समाजवादी पार्टी कर रही। रोहिणी आयोग का गठन हुआ 2016-18 में और आज 2026 में हम बैठे हैं, 2400 जातियां उत्तर प्रदेश और देश में सर्वे हुए, किस जातियों को कितना लाभ मिला रोहिणी आयोग ने बता दिया कि 144 जातियां ही आरक्षण का लाभ ली है, बाकी किसी को नहीं मिला। आखिर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए ये जो फर्जी नाटक कर रहे हैं पीडीए का वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? इसका मतलब उनको पता है कि जो हम मजबूती से कब्जा किए हैं अगर ये छोड़ देंगे तो ये अति पिछड़ों के यहां पहुंच जाएगा, तो वो राजनीति में मजबूत हो जाएगा, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और वो हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। वही हालात है कि जो बात पहले होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री ने 2016-18 के बाद से शुरू किया और आज देश में जाति जनगणना हो रही है, पहले मकानों की गिनती हुई और आज जातियों की गिनती होने की प्रक्रिया चल रही है। अब आप बताइए यह काम आज 10 साल पहले अगर हुआ होता, 20 साल पहले हुआ था तो क्या यह पिछड़े वर्ग के लोग मजबूत नहीं होते? क्या दलित वर्ग के लोग मजबूत नहीं होते? क्या कमजोर वर्ग वंचित वर्ग के लोग मजबूत नहीं होते? इसके पीछे राज यह था कि यह लोग मजबूत करना नहीं चाहते थे, उनको हिस्सा देना नहीं चाहते थे। आज
1: सुधांशु जी बड़ी विकट स्थिति हो जाती है कि एक तरफ उन पार्टियों को साथ रखना होता है जो जाति विशेष से संबंध रखते हैं, जातियों की पार्टियां मानी जाती हैं, और बात यूपी में होती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे।
3: देखिए जातियों को लेकर हमारी सोच और समाजवादी पार्टी की सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम जातियों को, जैसा भी अरुण राजभर जी ने कहा, हम सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान, सभी जातियों का उत्थान और सभी जातियों को समुचित स्थान के द्वारा समाज में समाधान चाहते हैं। यानी हम जातियों में सामंजस्य स्थापित करके समाधान चाहते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जातियों में वैमनस्य पैदा करके घमासान चाहते हैं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ती रहे, ये कभी ये नहीं चाहते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्य हो। अभी अमित जमाई साहब ये बोल रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, ये बताइए इंडिया अलायंस अस्तित्व में है? आप लोग तो 2024 में मिलकर कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, सीटें तय हो गई हैं, आप लोग तो उस समय चंद्रशेखर रावण के साथ भी गठबंधन किए थे, उससे भी फाइनल हो गया है, अरे इतना ही बता दीजिए। और अभी आप जो बहुत अधिक बोल रहे थे कि साहब संजय निषाद जी माता प्रसाद पांडे जी से मिले हैं, यानी आज श्वेता जी आपके लाखों दर्शकों को सुनना चाहिए कि आज ये ऐलानिया कह रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे जी का स्टेटस समाजवादी पार्टी में ऐसा लगता है शिवपाल जी, अखिलेश जी और रामगोपाल जी से बड़ा हो गया, इसलिए अगर किसी की मुलाकात माता प्रसाद पांडे जी से हुई तो उसको इतना महत्व मिल रहा है, इसका मतलब अब माता प्रसाद पांडे जी की महत्ता बढ़ रही है या दूसरी तरफ कुछ घबराहट बढ़ रही है। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, अखिलेश जी ने यदि आज लोहिया ट्रस्ट को अपने साथ में लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अभी समझ में आ रहा होगा, सरकार तो छोड़िए, जैसा कि अभी राशिद किदवई जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हारने के बाद पार्टी भी हाथ से चली जाए, तो पार्टी तो छोड़िए, कम से कम ट्रस्ट को तो अपने हाथ में रख लें। और इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति यह रहेगी कि पीडीए की परिभाषा श्वेता जी, लोग ऐसा बदलते हैं कि एक पुरानी चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इनके लिए कहना चाहिए जाकी रही सियासत जैसी, पीडीए की परिभाषा वैसी, जहां पाते वहीं अपना अपने हिसाब से बदल देते हैं। और अभी एससी समाज में आने वाली बात कह रहे थे तो मैं अमित जमाई जी को याद दिलाना चाहता हूं कि साहब ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने। कैसे खत्म किया था? बैकडेट से, यानी हजारों शेड्यूल कास्ट कर्मचारी जो प्रमोट हुए थे वो डिमोट हो गए थे। इसलिए जातियों की राजनीति की जो आप बात करते हो, फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं श्वेता जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हमने नारा नहीं दिया था,
0: जब से
3: ये दलितों की प्रतिनिधि पार्टी ने नारा दिया था। और किसको गुंडा कहा था ये प्रदेश का हर व्यक्ति समझता है।
1: ठीक है अमित जमे जी, ये पहले तो ये कांग्रेस के साथ वाला स्टेटस लोग आपसे जानना ही चाहते हैं, क्योंकि इमरान मसूद की तरफ से बयान आया, उसके बाद पता नहीं उसका फॉलोअप हुआ क्या, क्या उन चीजों को आप लोग सुलझा कर आगे बढ़ रहे हैं या ये सोचकर कि चुनाव आ जाएंगे पास तब हम सोच लेंगे?
0: श्वेता जी, मैं सुधांशु भाई का एक 10 सेकंड में जवाब देना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब से बात कर लिए, बहुत बात लंबी जाएगी। मंडल कमीशन में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आग लगा रही थी पेट्रोल छिड़क छिड़क कर, तो कौन लोग आरक्षण विरोधी है ये निषाद समाज भी जानता है, राजभर समाज भी जानता है। मैं ये कह रहा हूं हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जी का ट्विटर और फेसबुक हैक हो गया और सूचना विभाग में, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज जो ये पीडीए का कारवां है, सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की पूरे देश में जो सशक्त आवाज कोई बना, एक दूसरा नाम बता दीजिए, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप देखिए मैं आपको गिन दे रहा हूं, पाल प्रजापति 4 सांसद, निषाद बिन कश्यप 3 सांसद, शाकिब मौर कुशवाहा 3 सांसद, कुर्मी 5 सांसद, पूरा कुर्मी बीजेपी आरएसएस से हटकर आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि राजभर समाज को थाने में ना पीटा जाए, मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस जातिवादी मुख्यमंत्री से अरुण राजभर जाके बोले कि हमारे समाज पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, जाके बोले कि बिन दुल्हा हत्याकांड जो जौनपुर में हुआ उस पर न्याय कब होगा, विनोद साहनी के साथ गोंडा में जो कुछ हुआ कब होगा न्याय उनके साथ। मुकेश सहनी की बात सुधांशु भाई बोल रहे हैं, मुकेश सहनी वही बिहार वाले पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के जहां जहां निषाद समाज के साथ अन्याय हो रहा है आवाज उठा रहे हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे पूर्व एमएनसी जाके गोंडा की लड़ाई केजीएमयू तक लड़ रहे हैं, लेकिन यह जातिवादी गिरोह मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, निषाद समाज के साथ डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ माता प्रसाद जी से मिलने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। सुधांशु त्रिवेदी जी यही आपका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और अपने मुख्यमंत्री से कहिए जातिवाद फैलाना बंद करें उत्तर प्रदेश में।
1: अरुण राजभर जी, कुछ आप लोगों को हिम्मत नहीं होती है योगी जी से बोलने की?
2: नहीं नहीं, देखिए जमाई साहब को खुद ही भूलने की आदत है। अभी कुछ दिन पहले श्री शिवपाल यादव जी ने कहा कि निषाद और राजभर ये तुच्छ लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी तो यही हैसियत बता रहे थे जमाई साहब, आप बताइए क्या निषाद की हैसियत नहीं है, क्या राजभर की हैसियत नहीं है, क्या सिर्फ यादव मुसलमान की हैसियत है उत्तर प्रदेश में? आज आपने इनकी हैसियत नापा था, और ये भी कहा ये भर चमार है, आपके ही पार्टी के नेताओं ने कहा ये भर चमार है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, हम जब चाहे इनको पसंद देंगे।
0: सरकार में एक जाति को छोड़कर किसी जाति की कोई हैसियत नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, राजनीति शुक्ला जी ने इसी प्रदेश में बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत
2: नहीं, क्या गलत बात भाई, क्या हमारे यहाँ तो दूसरों का अपमान करेंगे, क्या आप वंचितों का अपमान करेंगे, क्या आप
0: विभाग से ट्विटर अपने पिताजी का हैक करवा दिया है,
2: कभी सम्मान किया नहीं थाने पर भैया, आपने कभी थाने पर सम्मान नहीं किया, अपने कार्यकाल में बता दीजिए कितने थाने पर दरोगा बैठाया था, कितने सिपाही भर्ती किया था, एक नारा होता था कौन बनेगा लेखपाल करेंगे शिवपाल, आप बताइए कौन बनेगा सिपाही तय करेंगे अखिलेश, कौन बनेगा एसडीएम तय करेंगे अखिलेश, ये तो होता था उत्तर प्रदेश में, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के नौकरी बट रही है, बिना रेट का भाव नौकरी बढ़ रही है। 10 लाख 20 लाख का रेट लगा हुआ था 2017 के पहले।

0: आज बिना रेट का उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल रही है नौजवानों को और हर क्षेत्र में मिल रही है। अब वो दौर खत्म हो गया, कौन बनेगा लेखपाल तय करेंगे, शिवपाल रेट जो लिस्ट बनती थी बड़ी बड़ी वो लिस्ट अब नहीं बन रही है। इसीलिए घर में लड़ाई हो रही है कि कब से घर में मिल जाए हमको, अब वो घर भी नहीं मिलने को तैयार है। आप देखिए कि जो लोहिया जी कहते थे इस देश में जाति खत्म होनी चाहिए और आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बताइए कि लोहिया जी ने कहा जाति खत्म होनी चाहिए और आप जाति बढ़ावा दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जिन जातियों को
1: राशन नहीं मिल रही जी, ये कहने के लिए बड़ी सैद्धांतिक बातें हो जाती हैं मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि चुनाव प्रचार भी शुरुआत विकास पर होता है और धीरे धीरे बातें यहां तक आ ही जाती हैं। बाकी तो छोड़े, जब सीटों का बंटवारा इसी मुद्दे पर हो जाएगा पार्टियां यही होंगी। यूपी की राजनीति, बिहार की राजनीति को ब्लेम किया जाता है, लेकिन मैं देश भर के अलग अलग राज्यों में हर राज्य में उसी प्रकार की राजनीति देखती हूं। इस बार भी जो इस समय हम चलता हुआ देख रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या होगा?
2: श्वेता मुझसे पूछ रही हैं?
1: जी जी
2: जी देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश की बहुत बहुत महत्व है, राजनीतिक महत्व है। जो भी उत्तर प्रदेश का अभी जो फरवरी मार्च में रिजल्ट आएगा उससे पूरी 27वें उसमें पूरे देश की राजनीति वो तय करेगी, तो ये तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं सुधांशु जी से एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, वो खुद मुलायम सिंह का जिक्र वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो मुलायम सिंह जी से एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हृदय परिवर्तन का अधिकार केवल महर्षि वाल्मीकि को है? तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी अपने आप को बदल रही है, वो पूरा गठबंधन बदल रही है और परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। इसलिए भाजपा को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये सोच के कि उनको दो बार पिछली बार जनमत बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2007 में पहली बार मायावती ने 5 साल पूरे किए थे, उससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया था और उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरा किया और योगी आदित्यनाथ ने तो 2 टर्म पूरे किए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसमें ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कोई नई रणनीति। ये केवल कहना कि मुसलमानों की बातों को कह के या पुरानी बातों को, दंगों की बातों को कह के या थाने में जो होता था, मुझे लगता है वो सही आकलन नहीं है।
1: सुधांशु जी
3: देखिए, राशिद किदवई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मगर आपसे सर एक फैक्चुअल मिस्टेक हो गई। अखिलेश यादव जी पहले नहीं थे, उससे ठीक पहले मायावती जी 5 साल पूरा कर चुकी थी, 2007 से 12
2: पूरा किया,
3: तो एक लंबे अंतराल के बाद अखिलेश यादव जी दूसरे सीएम थे जो 5 साल पूरा किए थे। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो राशिद जी ने कहा, श्वेता जी समाजवादी पार्टी नहीं बदल रही है, अंदर से तो वही है, सिर्फ मुखौटा बदल रही है। कभी पीडीए की परिभाषा होती है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित आदिवासी, फिर हो जाती है पंडित देगा आशीर्वाद। और असलियत क्या है पीछे का चेहरा, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, पीडीए मतलब पीट देगा अपराधी, मतलब ये फैक्चुअल चेहरा ये है और मुखौटे समय समय बदलते रहते हैं।
1: लेकिन सुधांशु जी एक चीज की चिंता आपको होती है कि आपकी अपनी पार्टी के नेता को, मंत्री को क्यों धरना देना पड़ता है अगर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है? मैं संजय निषाद जी के ही कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूं ये बात कि अगर वो माता प्रसाद पांडे से मिलते हैं, ये गठबंधनों का बनना टूटना अपनी तरफ है, वो चुनाव आते आते क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन क्या चिंता का सबब ये नहीं है कि सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने प्रशासन के खिलाफ यहां पर धरने पर बैठ रहे हैं?
3: देखिए वो बात निश्चित रूप से, अगर किसी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना पड़ा, तो मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार इस विषय पर पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, सारे विषय का संज्ञान लेकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगी।
1: और अमीक जबे जी, क्या ये लोकतंत्र नहीं है कि अपनी पार्टी के नेता मंत्री दे सकते हैं धरना?
4: नहीं, बात लोकतंत्र की नहीं है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। स्वतंत्र देव आप जानती हैं कि बहुत अच्छा, बड़े नेता
1: अभी जब जी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि संजय निषाद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये समझाइए कि आप अपनी ही सरकार के विरुद्ध आप धरने पर बैठ जाते हैं, माता प्रसाद पांडे से आप मिलकर आए हैं, ये क्या आपकी सोच इस समय क्या चल रही है, क्या चल रहा है?
5: देखिए, जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जो उपेक्षित है बेईमान लोगों ने, जिस परिवार के, जिस समाज के लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित

0: जातियां हो, क्रिमिनल ट्राइब स्ट्राइक इंक्वायरी कमेटी अंतर समय नंगार कहता हो कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, ये भूमिहीन है, सभी छीने गए लोग हैं, ये असली राष्ट्रवादी हैं, ये गरीब भले हैं गद्दार पुत्र नहीं है, ये वफादार पुत्र हैं, इनके लोगों को न्याय की भीख मांगना पड़े, इनके लोग दर दर की ठोकर खाना पड़े। 80 करोड़ कौन लोग हैं भाई, कोई जमीन जायदाद ऊपर से थोड़ी लेके आता है, सबकी जमीनें हैं, जिनकी छीनी गई है सम्मान होना चाहिए। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में मेरा जरा धरना सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ तब भी था आज भी हूं, साथ तब भी हूं आज भी हूं कल भी रहूंगा। सरकार के साथ नहीं होता सस्पेंड नहीं होते अधिकारी, सरकार के साथ नहीं होता मुकदमा नहीं होता जेल नहीं जाते, अपराधी की कोई जात नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। लेकिन अधिकारी के खिलाफ ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है, पहले देश अंग्रेजों ने अधिकारी चलाते रहे, लोकतंत्र की स्थापना हुई कि अधिकारी को ठीक करने के लिए नेता को आना पड़ेगा, खाली अकेले मुख्यमंत्री थोड़ी ठीक कर लेंगे, सभी मंत्रियों को आना पड़ेगा, सभी विधायक एमपी एमएलए को आना पड़ेगा, और लोकतंत्र में विधायिका सबसे ऊपर है, कार्यपालिका ऊपर नहीं है, विधायिका कार्यपालिका, कार्यपालिका से नीचे न्यायपालिका। हम कह रहे हैं कि सारे ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन ये पहले बताइए कि वो एक आदमी कहां गया, साइबर क्राइम भाई कहां गई एलआई, अगर वो गलत लिखा था हमारा SC ST प्रोटेक्शन एक्ट नहीं छीना जाता तो शायद आज उसके खिलाफ उतना बड़ा विभत्स घटना नहीं होता। उसको लावारिस छोड़ दिया, एक होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया, वो लाके भर्ती कर दिया, देख लीजिए आज के दिन में। तो अगर समाज पहले है, मंत्री मैं बाद में हूं, और समाज के नाते मंत्री हूं और निषाद पार्टी का मंत्री हूं, हम एक सरकार के सहयोगी दल हैं, हम अपनी समाज के वकील हैं।
1: नहीं तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी बात सुनी
0: का वादा था
1: जी, लेकिन ये समझाइए कि आप जो माता प्रसाद पांडे से मुलाकात करने के लिए गए थे उसके उसके पीछे का कारण क्या था?
0: कह रहा है कि ये अब मान लीजिए उसी दिन नहीं रात में वो डिस्चार्ज होके आए, जब रात में डिस्चार्ज हो, दूसरे दिन डिस्चार्ज होके आए, आज जब मैं आऊंगा तो मिलूंगा ना, मेरे गुरु हैं पहले से हमारे, वो परिचित हैं। आज के दिन में यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग राजनीति में आए तो अभिभावक थे, अब मेरा अभिभावक बीमार रहा है तो राजनीति तो बहुत दूर की चीज है,
1: शिष्टाचार
0: कर्तव्य बनता है कि उनके हालचाल पूछने जाए। अरे शिष्टा भाई कोई भी आइए पहले बताइए, कोई बीमार रहेगा तो मिलने नहीं जाएंगे, हर जगह राजनीति देखेंगे लोग, दो नेता बड़े मिलेंगे तो चर्चा होगी, उसको पूछा जाना चाहिए क्या चर्चा हुआ, अपने से लिख देंगे कि आप भाजपा छोड़ रहे जा रहे हैं, ये तो पूछना चाहिए ना, मैंने लिखा शिष्टाचार, हमारा ID देख लीजिए। आप पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ निषाद जी, वो सहानी वाले में धन्यवाद दिया कि भाई देखो भाई निषाद हमारे मतदान समय बहुत अधिक थे, सब हमारे पास थे, बहुत काम किया, लेकिन निषाद पार्टी आने से आपके सारे निषाद आपके साथ है।
1: संजय निषाद जी, चूंकि आपने ही कहा, आपने ही एक बात कही कि समाजवादी पार्टी का दरवाजा बंद हुआ तो मैं BJP में शामिल हो गया, BJP अगर दरवाजा बंद करेगी तो देखेंगे।
0: जब कोई पत्रकार पूछेगा अरे साहब मैं जान रहा हूँ आप जा रहे हो, पता चला क्या चल रहा है, इसका मायने क्या निकाला जाए, आप बताइए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो ये पहले बताए, अगर चुप रहेंगे तब भी आप चलाएंगे कि लगता है कुछ गोपनीय बातें हो गई, तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि सपा ने दरवाजा बंद किया था तब मैं भाजपा के पास, भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो सोचना पड़ेगा, विचार
1: करना पड़ेगा, कर रहे हैं गठबंधन नहीं छोड़ने वाले,
0: उनका फायदा मैं दे रहा हूँ, नहीं मैं तो खंडन नहीं कर रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ हमारे आने से भाजपा का नुकसान है, समाज का सम्मान है, तो भाजपा का फायदा है कोई नुकसान नहीं है, और हमारे समाज का सम्मान है, जब दोनों का सम्मान है तो काहे हम जाएंगे भाई, क्यों इधर उधर जाएंगे। अब मीडिया के लोग झगड़ा अपने लिख रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ये कह रहे बीमार आदमी पे भी राजनीति कर रहे हैं, कोई लाश है उस पर राजनीति कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि कम से कम एक बार शालीनता से पूछना चाहिए क्या है, फोटो देख लिया कहाँ अरे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, वो बीमार बेचारे उनका कोई चलाए नहीं, शाम को धर्मपाल जी से मिला हमने, एक घंटे वार्ता हुई, उसका भी फोटो है, उसका कोई पूछ ही नहीं रहा है कि धर्मपाल जी से क्या बात हुई, धर्मपाल जी ने पूछा भी निषादों की समस्या सुझाव दीजिए क्या क्या है, क्यों नाराज हैं समाज आपका, मैंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उनके जो है उनके मशुआ विजन में था, उनके घोषणा पत्र में था, योगी जब सांसद थे तो आवाज उठाते थे, हमारे वकील थे कि अनुसूचित के हकदार हैं, कांग्रेस और सपा बेईमान है, अब जब वकील जज हो गए तो उनको फैसला सुनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, RGIN कह दिया केवट मल्ला मजवार है, सामाजिक न्याय मंत्रालय में गृह मंत्री ने निर्देश कराया, तो अब तो सामाजिक न्याय मंत्रालय में बैठक हो जानी चाहिए भाई। 2022 में चर्चा हुई, ऐतिहासिक जीत हुई, 2024 में चर्चा नहीं हुई।

0: भाजपा का नुकसान हो गया 2019 में, 2027 में चर्चा नहीं होगी नुकसान होगा ना, हमें याद दिलाना। हमने कहा वर्ग तीन की जमीन सपा ने बसपा ने छीन लिया, रोजी रोटी अंग्रेजों ने छीना हो, ये तो जन्मजात मार्शल कॉम है
1: हमारे लोग। संजय जी आपकी बात हम समझ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुधांशु जी, ये गठबंधन में रहना बीजेपी का फायदा है, आप मतलब सीधी सरल सपाट बात देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि चुनाव के समय सीटें आपको थोड़ी सी और निकालनी पड़ सकती हैं अपने पाले से?
2: देखिए संजय निषाद जी ने जो कुछ बोला है चित्रा जी, अब इसके बाद बहुत कुछ कहने का स्कोप नहीं रह जाता है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि वो केवल उनसे उनके पूर्व में संबंध थे, बीमारी के कारण गए थे, अब किसी के स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति स्वयं सपा कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी से मिले, एक घंटा बातचीत हुई, तो मानी हुई बात है संगठन मंत्री धर्मपाल जी से मिले होंगे तो इस विषय बात हुई होगी। उन्होंने स्वयं कहा कि सरकार ने उन्होंने जो विषय उठाया था उसको लेकर पूरी संवेदनशीलता दिखाई और संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई भी की, तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि ये जो संबंध है वो आज का नहीं है, ये तो त्रेता युग का संबंध है कि जब भगवान राम, हम लोग तो भगवान राम के भक्त हैं, तो जब भगवान राम गए थे तो निषाद राज और भगवान राम की जो दोस्ती है वो तो भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण में एक मानी जाती है, भगवान राम के राज्याभिषेक के समय प्रतीक्षा की गई थी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी,
5: असली शहद असली स्वाद।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स,
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: एक तो एक
16: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट, जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
6: एक को एक
7: इश्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
6: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
7: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
9: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
10: अब मैं क्या ही बोलूं?
11: परिवार अटूट भरोसा।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
1: Tak, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers. One stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har sheher, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा,
3: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
4: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
5: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
6: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
7: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
2: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: In association with

0: श्रद्धालुओं पर बरसती फूल की पंखुड़ियां, सिर पर कलश उठाए हजारों की संख्या में महिलाएं और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता ऊंचा हार का विशाल पंडाल, जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4-1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ था। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है। ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का है, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस मंच से कोई चुनावी भाषण नहीं हुआ, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का ये हुजूम और कलश यात्रा में उमड़ी महिला शक्ति राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सीधे तौर पर 2027 के साइलेंट वोटर्स को साधने की सोची समझी रणनीति है। दरअसल जिस ऊंचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके।
1: ये एक महाशिव पुराण है, लेकिन भारी संख्या में उमड़ी महिलाएं, कलश यात्रा और सनातन के जरिए सियासी संदेश एक बात साफ करता है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है और विपक्ष को सनातन का पाठ पढ़ाती फिलहाल नजर आ रही है। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस सनातनी पाठ को लेकर पलटवार क्या होता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

शाम के साथ बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया फर्जी।

0: डाक खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, पीएम की यात्रा संकल्प की यात्रा, प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा और सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत, बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम भगवंत मान। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले का मुख्य आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ है हत्या की कोशिश का मामला। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी की चुनावी राजनीति के साथ, क्योंकि यूपी में एनडीए के साथ सरकार में शामिल संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोले दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौका हो, वहां पर उन्होंने धमकी दी, या फिर हत्याकांड को लेकर विरोध की सियासत हो, अब समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे से संजय निषाद की मुलाकात को लेकर तमाम चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं।
1: अखिलेश यादव के खासम खास और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद की मुलाकात हुई तो बात निकली और दूर तलक गई। कहने को तो माता प्रसाद की तबीयत का हाल जानने शिष्टाचार मुलाकात करने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद उनसे मिलने गए थे, लेकिन मिलकर संजय निषाद ने तोल मोल की ऐसी बात की कि मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव से निकाला जाने लगा।
2: भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा। उस पर
3: कहने का ये है कि आप जैसे मुलाकात आपने की है, बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
2: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के नेता भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था।
1: संजय निषाद खुलकर सीटों की मांग तो नहीं कर रहे हैं, मगर इरादा जता रहे हैं कि उन्हें उनके मनमाफिक सीटें चाहिए।
2: हम तो चाहते हैं कि एनडीए भी जीते, जीत के लिए काम करें, जो सीटें हमारी है कुछ सीटें और हमारी हारी हुई दें जिसमें निषाद अधिक है उस पर चर्चा होगी।
1: पिछले हफ्ते ही संजय निषाद गोंडा के बर्तन व्यवसायी विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठे थे। किसी कैबिनेट मंत्री का धरने पर बैठना अपनी ही सरकार के खिलाफ राजनीतिक संदेश दे गया था। माता प्रसाद पांडे से मुलाकात में भी संजय निषाद ने विनोद सहनी हत्याकांड पर बात की है।
2: विनोद सहनी के उस पर हत्या हुई, अगर उनका एससी/एसटी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं छीना गया होता तो आज अनुसूचित जाति आयोग खड़ा होती और आप ही लोगों ने छीना, आप ही लोगों ने वापस किया था 25/12/2016 को।
1: जाहिर है कि संजय निषाद यूपी में केवट बिंद मल्लाह निषाद जैसी जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर किसी और की दावेदारी की संभावना को भी खारिज करना चाहते होंगे, लेकिन 2027 में सीटों के फॉर्मूले से ही उनका पाला तय होगा, ऐसे संकेत साफ हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात यूसीसी पर मचे कोहराम की करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान किया कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा और अब यूपी की राजनीति इस पर गर्मा गई है। आज अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है। अब सूबे की सियासत तेज है।
4: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
5: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
6: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
7: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है। लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
6: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
7: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
5: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
8: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
5: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
9: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
5: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: और यूसीसी पर बिहार में भी घमासान है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज जेडीयू के कई नेता मिलने पहुंचे। इसके पहले जेडीयू ने साफ किया कि यूसीसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, फिर पार्टी की बैठक में तय होगा कि आगे क्या करना है। कुल मिलाकर यूसीसी पर अब एनडीए के घर में ही घमासान छिड़ गया है।
5: उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सियासत गर्म हो गई। तेलंगाना से ओवैसी, दिल्ली से कांग्रेस और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी के संकल्प पर सवाल उठाने लगे। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी के सहयोगी दलों को भी गृहमंत्री के संकल्प पर शंका है।
10: प्रावधानों को देखने के बाद उसके संबंध में सीधे गृह मंत्री जी से चर्चा होगी, श्री अमित शाह जी से, और उसके बाद हम लोग की पार्टी बैठेगी, पार्टी में फिर विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
11: हम लोग लगातार इसके विरोध में नहीं, हमने पहले भी जब ये संसद में पास हो रहा था हमने उसी समय कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं।
5: जेडीयू नहीं, चिराग पासवान भी संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 371A, 371G और दलितों को मिलने वाली छूट का सवाल उठाने लगे। इधर कांग्रेस ने भी यूसीसी के मसले पर मोर्चा खोल रखा है।
12: हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। विचारधारा किसी की कुछ भी हो जाए लेकिन वो संविधान से तो अलग नहीं हो सकती।
5: दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
13: अभी तक तो जितनी भी इन्होंने लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की बात की, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन और रिजर्वेशन, वो तो पार्लियामेंट में लाए नहीं। अब ये वाला भी जो है ये स्टेट्स में लाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में लाइए और देखते हैं अगर आपसे पास हो सकता।
14: यूसीसी को लागू करेंगे ताकि हम अपने रिलीजियस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारें। यूसीसी कोई इक्वालिटी के लिए बीजेपी नहीं कर रही है, सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वो यूसीसी को अपने अपने जहां प्रदेशों में सरकार में यूसीसी लाए हैं।
5: कुल मिलाकर यूसीसी पर भारतीय राजनीति में नई जंग शुरू हो गई है और हर बीतते दिन के साथ ये जंग और बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात पंजाब के संगरूर में हुए सुसाइड मामले की। इसे लेकर आज पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का यह आरोप है कि पंजाब में नशे का बढ़ता कहर हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता ने इस संकट को अधिक गंभीर और भयावह बना दिया है। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए।
1: भगवंत मान सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का आक्रोश है। ये प्रदर्शन है गुलजार सिंह की खुदकुशी के खिलाफ और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन है पंजाब में नशे के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर तलखियां। लेकिन पंजाब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त पानी की बौछार कर दी।
15: वाटर कैनन यहाँ पे चला दिया गया है ताकि ये आगे ना जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग की गई, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई, और जैसे ही अमरिंदर सिंह राजावड़े बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े तो बैरिकेडिंग चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग के जैसे ऊपर चढ़े चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया है। आज संगरूर सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ में।
1: खास बात यह रही कि लंबे समय बाद कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेता एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग सचिन पायलट के दोनों ओर बैठे नजर आए। बता दें कि पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह नाम के शख्स ने पंजाब में नशे की स्थिति पर चिंता जताई थी और पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा से सवाल किए थे। आरोप है कि उसके बाद से ही गुलजार सिंह पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और मान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। असीम बस्ती, चंडीगढ़, आज तक।
0: रबाज उत्तराखंड की, जहां के विकास नगर में शिमला बाईपास के हसनपुर खाले में फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया है। शिवालिक जंगल की तरफ से आए तेज रफ्तार पानी का रौद्र रूप देखते ही देखते सड़क पर फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली चीजों को बहा कर ले गया।
16: पावन सेकेंड का यह वीडियो दिलों में खौफ भर देने वाला है। बावन सेकेंड की वायरल वीडियो में कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लोगों में आसमानी आफत का भय पैदा कर रही हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह अचानक आया तेज रफ्तार सैलाब अपने रास्ते में आने वाली चीजों को जलधारा के साथ बहाता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पल भर में हालात ऐसे बदले कि जहां कुछ देर पहले आवाजाही चल रही थी, वहां पलक झपकते ही सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर में शिमला बाईपास के हसनपुर खाले की हैं, जहां एकाएक फ्लैश फ्लड आया। शिवालिक जंगल की तरफ से आए तेज रफ्तार पानी का रौद्र रूप देखते ही देखते सड़क पर फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली चीजों को बहाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: रबाज शेयर बाजार की, कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 778 अंक टूटकर 74,004 और निफ्टी 280 अंक की गिरावट के साथ 23,119 के स्तर पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई की चिंता से बाजार पर दबाव बना रहा। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले से पहले भी निवेशक सतर्क रहे। घरेलू बॉन्ड डील में तेजी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी बाजार की धारणा कमजोर हुई। आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे कमजोर होकर 95.96 के स्तर पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल और पश्चिम एशिया में जारी तनाव से रुपए पर दबाव रहा। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी रुपए में कमजोरी बढ़ी है। वहीं सराफा बाजार में गिरावट का रुख रहा। सोना 888 रुपए गिरकर 1,51,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,270 रुपए गिरकर 2,27,650 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। IBJA के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन के PM रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अब बात गणेश उत्सव के शुभ मौके की। देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सज रहे हैं। मंदिरों में एक अलग ही रौनक छाई हुई है। कहीं सोने चांदी और हीरों से बप्पा सजे हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति, आस्था और विश्वास का।

0: देश भर में गणपति उत्सव की उमंग है। गणेश चतुर्थी से आने वाले 10 दिनों तक भव्य तौर पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में भी श्री विघ्नहर गणपति का इस महोत्सव के दौरान दिव्य और राजशाही श्रृंगार होता है और ये श्रृंगार साल में केवल 2 बार किया जाता है। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और माघ शुद्ध चतुर्थी के पावन मौके पर ही विघ्नहर बप्पा का ये सुवर्ण रूप भक्तों के दर्शन के लिए सामने आता है। गणपति महोत्सव में सोने चांदी से सजे ऐसे ही गणपति बप्पा देखने के लिए मिले, जहां वो सोने चांदी के ऐतिहासिक आभूषणों और पेशवाकालीन पोशाक में विराजे हुए थे। विघ्नहर्ता का ये अलौकिक स्वरूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आभूषणों की चमक से दमकता बप्पा का ये अलौकिक स्वरूप भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भक्ति और श्रद्धा से अर्पित ये अनमोल भेंट भक्तों के विश्वास की गहराई को बयान करती है। जहाँ भगवान के प्रति आस्था हो, वहाँ समर्पण भी अनमोल हो जाता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, पुणे से समिता रामचंद्र शिंदे और शिरडी से नितिन मिराने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: इस बीच एक बड़ी खबर बलूचिस्तान से, जहां लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 14 से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर दिया है।
0: धमाके की ये तस्वीरें पाकिस्तान की पेशानी पर बल लाने वाली हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ाने की हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब आजादी की राह पर चल पड़ा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 14 से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर दिया है। बीएलए के मुताबिक 3 महीने में पाकिस्तानी फौज के 14 से ज्यादा पोस्ट तबाह किए गए हैं और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। बीएलए के मुताबिक क्वेटा तफ्तान रूट पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बलूचिस्तान ने पिछले एक साल में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ संघर्ष और तेज कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारत अफगानिस्तान के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज दूसरे T20 मैच में भी वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग 11 का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया है।

0: आज T20 सीरीज जीतने की बारी। अब एशियन गेम्स की करो तैयारी। जीत का स्टेज पूरी तरह सेट है। कुछ ही मिनटों में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। पहला मैच टीम इंडिया ने धूम धड़ाके से जीता है। आज ही भारत 3 मैचों की सीरीज जीत जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अब निशाने पर एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, जिसे इसी महीने भारत को जापान जाकर फिर से जीतना है। इसीलिए अफगानिस्तान के खिलाफ बचे हुए दोनों T20 मुकाबले भारत को एशियन गेम्स की तैयारियों के मद्देनजर ही खेलने होंगे। पहले T20 में टीम में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह पावर प्ले में अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को परेशान करेंगे, तो बल्लेबाजी में भारत की आतिशी ओपनिंग जोड़ी पर भी हर किसी की नजर रहेगी। वैसे भी टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तूफानी है, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी की लय बिगाड़ने में माहिर है। ये T20 सीरीज अफगानिस्तान की मेजबानी में खेली जा रही है। उसके खिलाड़ी सीरीज में वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी T20 फॉर्मेट में पासा पलटते देर नहीं लगती, इसीलिए किसी भी तरह की दुर्घटना रोकने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
1: और इस बीच बड़ी खबर आपको UPI ट्रांजैक्शन से जुड़ी दे दें। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर भी अब सरचार्ज नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त। NPCI ने यह ऐलान किया है कि 2000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का भी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। कयास लगाए जा रहे थे कि 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, लेकिन अब इस बात पर सफाई आ गई है। रेलवे ईंधन पर भी 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 5 रुपए का चार्ज लिया जाएगा।

0: अतिशय से ब्रेक का हौसला, आप बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: एक तो एक।
12: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर किधर?
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: पापा,
7: सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ,
9: स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम, लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज, रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसी चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर सारा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी का मंत्र ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत, बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम भगवंत मान। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ था हत्या की कोशिश का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज से तकरीबन 6 साल 3 महीने पहले मुंबई में एक लड़की की मौत हुई थी, नाम था दिशा सालियान। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दिशा की मौत के कुछ ही दिन बाद ही सुशांत की भी मौत की खबर आई, तो दोनों ही मौत को एक साथ जोड़कर देखा गया, खूब हल्ला हंगामा मचा। और अब 6 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत पर एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कोई नामजद आरोपी तो नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा बहुत से एक्टर्स और पुलिस वालों के नाम एफआईआर के अंदर लिखे गए हैं। तो दिशा सालियान के घर वाले अपनी बेटी की मौत से आदित्य ठाकरे को क्यों जोड़ रहे हैं, हमारी पहली रिपोर्ट में यही दिखे।

0: 2288 दिनों के बाद दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया। क्या सीबीआई दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी या हत्या? दिशा सालियान की मौत की एफआईआर में आदित्य ठाकरे, दीनू मोरिया, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम क्यों आया? पूरे के पूरे 6 साल 3 महीने और 5 दिनों के बाद एक बार फिर से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को लेकर हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत का केस सुलझा पाएगी? सीबीआई ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान को आधार बनाकर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिशा के पिता के बयान में जिन भी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वो इसमें दर्ज है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई को जांच करनी है कि दिशा की मौत में इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एफआईआर को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दिशा का परिवार किस तरह की जांच की मांग कर रहा है। पहले पन्ने पर ही लिखा है कि किस तरह के अपराध की आशंका है। इसमें लिखा है आपराधिक साजिश, गैंगरेप, मर्डर, सबूत गायब करना या गलत जानकारी देना। अपराध की तारीख है 8-9 जून 2020 की मध्य रात्रि, और फिर वो पता लिखा है जहां अपराध घटित हुआ, फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। अब सवाल है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा? दिशा के पिता के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, और आरोपी के तौर पर वो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम किस आधार पर और क्यों लगा रहे हैं? अब सीबीआई में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पूरा घटनाक्रम समझिए। सीबीआई में दर्ज दिशा के पिता के बयान के हिसाब से 4 जून 2020 को दिशा सालियान अपने घर से अपने मंगेतर के घर निकली। ये कहा कि उसे कोई विज्ञापन का शूट करना है। पिता के मुताबिक दिशा ने उन्हें 3 लाख रुपए के चेक की फोटो भी दिखाई और कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर, फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई के लिए निकल गई। ये वही एड्रेस है जहां घटना हुई। आगे दिशा के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है 6 जून को दिशा ने अपनी मां को फोन करके बताया कि कोविड की वजह से उसका और उसके एक और दोस्त इंद्रनील का जन्मदिन नहीं मना पाए, इसलिए दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया है। अगले 2 दिन में वो घर आ जाएगी। इस दौरान वो लगातार अपने माता पिता के संपर्क में थी, लेकिन 7 जून 2020 को दिशा के फोन आने बंद हो गए। जब इन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन रोहन रॉय ने उठाया, जिसने बताया कि दिशा काम में व्यस्त है। इसके बाद 9 जून 2020 को सुबह करीब 3:15 बजे दिशा के पिता को मालवाणी थाने से फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने कोई पार्टी अटेंड की थी और वहां कुछ घटना हो गई। दिशा के पिता अपनी पत्नी के साथ सुबह 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दिशा एडमिट थी। वहां उन्होंने दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को देखा। दिशा के दूसरे दोस्त इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा और हिमांशु शिखारे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत हो गई। पूरी एफआईआर 10 पन्नों की है। एफआईआर के 4th पन्ने पर इसके आगे का घटनाक्रम लिखा है, और यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद दिशा के पिता को सुसाइड की थ्योरी पर शक हुआ। दिशा के पिता सतीश सालियान के मुताबिक दिशा के दोस्तों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। वो लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो 11 जून को सुबह करीब 11 बजे उन्हें उनकी बेटी के शव के कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए। फोटो देखने पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने उसकी बॉडी पर कोई खून या ज्यादा चोटें नहीं देखी। उन्होंने दिशा के जबड़े पर गाल के नीचे एक नाखून जैसा निशान देखा, और फिर 11 जून को दिशा का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। दिशा के पिता के मुताबिक शरीर पर खून नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं थी, तो उन्हें सुसाइड की थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त शॉक थे और मानसिक आघात में थे।
1: आपको बता दें कि दिशा सालियान ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से कुछ ही दिन पहले दिशा सालियन की मृत्यु हुई थी, वो 12वीं मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी मलाड इलाके में, और वहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड रोहन राय के साथ रह रही थी। उस शाम दिशा सालियन के घर में एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में रोहन राय मौजूद थे, दिशा सालियन और उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। कुछ बातचीत में विवाद हुआ, उसके बाद दिशा सालियन अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाने के बाद वो बहुत देर तक बाहर नहीं आई। जब वो बाहर नहीं आई तो रोहन राय ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद जो बिल्डिंग का वॉचमैन है उसने आके रोहन राय को इन्फॉर्म किया कि दिशा सालियन नीचे गिरी हुई हैं, और तब वो लोग नीचे गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में ADR दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने जो उस वक्त जाँच की थी उसमें यही कहा था कि कुछ विवाद होने की वजह से, बातचीत में विवाद हुआ था उनके दोस्तों के साथ, और उस वजह से दिशा सालियन अपने रूम में चली गई थी, उन्होंने रूम लॉक कर लिया, बंद कर लिया, और उसके बाद उस वजह से ऐसा शक है कि वो खिड़की से कूद गई। उस कमरे में और कोई भी नहीं था तब जब दिशा सालियन उस कमरे से कूदी या गिर गई, इस बारे में ADR में लिखा गया था।
0: दिशा के पिता को रोहन रॉय और कुछ पुलिस अफसरों ने बताया कि दिशा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, वो नशे में थी तो गलती से वो बिल्डिंग से गिर गई। इसके बाद पुलिस ने बहुत से दस्तावेजों पर दिशा के पिता के दस्तखत करवाए, उन कागजों में क्या लिखा था ये तक नहीं बताया गया, यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौत के कारण का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य डाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोल, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने कम्प्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
3: ये कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, आप CBI के अधिकारी तक पहुंचे, आपने बयान भी दर्ज किया, दिशा को लेकर आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वो शुरू हो गई सही दिशा में, क्या कुछ
2: दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गया दिशा का,
0: यानी अगर दिशा के पिता के माने तो उनकी हत्या हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में दिशा के पिता ने अपने बयान में तफसील से बताया है। उनके मुताबिक उनकी बेटी दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी थी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इसी काम के दौरान दिशा को कथित ड्रग तस्करी, बच्चों के शोषण और बाकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें आदित्य ठाकरे और बाकी लोग शामिल थे। दिशा ने ये जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ साझा की और वो दोनों इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक करना चाहते थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कहा गया कि इन तमाम जानकारियों को सुरक्षित करने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई, और उसी साजिश के तहत पहले दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई, और उसके बाद सबूतों को नष्ट किया गया या उन्हें छुपाया गया, और सुसाइड की फर्जी कहानी गढ़ी गई ताकि आरोपियों के अपराध से पर्दा न हट सके। आगे ये भी लिखा है कि जब सुशांत ने दिशा द्वारा बताई गई जानकारियां रिया चक्रवर्ती को बताई तो रिया आदित्य ठाकरे और दिनू मौर्या के संपर्क में थी, और मेरी जानकारी के मुताबिक रिया ने वो जानकारियां उन्हें बता दी कि दिशा और सुशांत उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं।
4: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे दिनू मौर्या ये गैंग के साथ है, उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया, इसमें ये सभी लोग शामिल है, और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप फिर मर्डर और फिर कवर अप किया, और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में SIT ने दूसरा कवर अप किया, तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: 6 साल पहले जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो वो तब इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन जब कुछ दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद ही दिशा सालियान के केस पर भी बात शुरू हुई, और तब भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी दिशा के पिता के बयान पर दर्ज इस FIR में लिखा है। दिशा के पिता सतीश सालियान के CBI को दिए बयान के मुताबिक जिस दिन दिशा मारी गई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला, वो बहुत ज्यादा डर गए। अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सुशांत ने अपने स्टाफ को डिजिटल एविडेंस मिटाने को कहा, जिसमें मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस का डेटा शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और बाकी डिजिटल मटेरियल को डिलीट करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट बुलाया गया।
4: सुशांत का केस और ये केस आपको याद होगा, जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
5: अब इस केस में महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक ठाकरे परिवार के आदित्य ठाकरे के नाम जुड़ने का मतलब ही यही है कि राजनीति भरपूर है। अभी तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, अभी जांच होगी, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति दिशा सालियान के केस पर गर्म हो गई।
0: दिशा सालियान का केस महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है, क्योंकि अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है और इसमें नाम आया है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। एफआईआर में पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड और पुलिस वालों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें कई जाने माने चेहरे हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, उनके पिता उद्धव ठाकरे, एक्टर रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, एक्टर सूरज पंचोली, डीनो मोरिया, इसके अलावा पुलिस अफसर सचिन वाजे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, इसके अलावा भी कई और नाम शामिल हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सीधे राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है।
6: सीबीआई को आदेश दिया है कि जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वो आरोपी नहीं है और एफआईआर में उसका नाम नहीं आएगा, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ है। लेकिन दो दिन पहले देश के गृहमंत्री महाराष्ट्र में आए, उनके साथ और एक नेता बैठे, आधा घंटा एक घंटा एक साथ गाड़ी में चले गए एशियाटिक लाइब्रेरी में, उनके बाद इस 16 पेजेस एफआईआर में सभी नाम डाले गए। एक राजनीतिक षड्यंत्र है महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय जो घराना है पॉलिटिकल, बाळासाहेब ठाकरे जी का, उनके परिवार को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
0: 2 सितंबर को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी तो साफ कर दिया था कि तब तक सीबीआई किसी को आरोपी करार न दे जब तक कि उसकी जांच में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत न मिल जाए। इसीलिए सीबीआई की तरफ से कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिशा के पिता को इंसाफ की उम्मीद जगी है।
2: उम्मीद तो है 100%, तो उम्मीद से हम 6 साल इंतजार किया ना, आखिर भगवान ने हमको दे दिया। ये बड़े बड़े साहब लोग को मेरे साथ में उनके हाथ के नीचे मेरे को दे दिया। जो उनका कानूनी तरीके से सजा होता है वो सजा होना चाहिए। जैसा मेरे बेटे को उसने इज्जत निकाला वैसे ही उसका इज्जत निकलेगा। उनको होएगा तो उम्र कैद होगा, नहीं तो फांसी हो जाएगा, उसकी उम्मीद है।
0: बीजेपी को फिर से उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। बीजेपी तो पहले दिन से यही आरोप लगाती है। बीजेपी फिर कह रही है कि इस केस में लगातार लीपापोती और बचाव किया गया।
7: जब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बार बार दिशा के पिता, उनका पूरा परिवार कह रहा था कि दिशा को अत्याचारित किया गया है, पीड़ित किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा, उसके अपने पिता कह रहे हैं। पर जानबूझ करके ठाकरे सरकार की कोताही, लीपापोती और सबूतों को मिटाने का दुष्कर्म, ये सारा उसके परिवार ने देखा, परिवार का कहना है। अब अगर ठाकरे सरकार का कोई मंत्री या कोई नेता अगर इसमें शामिल नहीं है, उनको किसी को बचाना नहीं था, तो उसी समय पुलिस से कहते कि पारदर्शिता के साथ मुकदमा दर्ज करो, इसे खंगालो। ऐसा नहीं हुआ।
0: सहयोगी फिलहाल आदित्य ठाकरे के साथ खड़े नजर आते हैं। एनसीपी एसपी तो एक कदम आगे चली गई। वो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री का मतलब ये तो नहीं कि चुनाव जल्द होने वाले हैं।
8: सीबीआई ने लास्ट टाइम सुशांत सिंह राजपूत का जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें आदित्य ठाकरे जी का नाम लिया था, लेकिन बाद में क्लीन चिट वहाँ पे मिली। इस मामले में क्लीन चिट मिलेगी ऐसे हम सबको लगता है। अभी पॉलिटिकली हो या कोई भी और रीजन से हो, जानबूझ के नेताओं का नाम लिया जाता है क्योंकि मीडिया ट्रायल उसमें होती है, लेकिन बाद में जाके कुछ तथ्य न होने के कारण, उसमें रियलिटी न होने के कारण उसमें से कुछ भी नहीं निकालता। लेकिन अगर सीबीआई ने जानबूझ के आदित्य ठाकरे का नाम लिया होगा तो मुझे लगता है फिर जो हमारा इलेक्शन 2029 में होने वाला था वो शायद, क्योंकि जब भी सीबीआई एक्टिव होती है तब राजनीति उसमें आती है, तो शायद अभी इलेक्शन जो 29 में होने वाला था वो प्रीपोन भी हो सकता है। इसके कारण ये सब चीजें उन्होंने चालू की होगी।
5: रुके एक शो से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया है।
11: हाँ
13: टाटा
14: AIG है तो भरोसा है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
5: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया है। ये देखिए सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने। ये देखिए ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, इनको शर्म नहीं आ रहा है। अगवा कर लिया, ये देखिए पंजाब पुलिस ने सीएम को अगवा कर दिया।
4: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया। घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर का भी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी का मंत्र ज्ञान, गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित। पंजाब में ड्रग्स और सुइसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। और आज तक की खबर का असर, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और गिरफ्तारी, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: खबरों से आपको खबरदार करने का। जनता के हर मुद्दे पर हम रोज की तरह खबरदार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई की पेमेंट लिमिट को लेकर मचे नए घमासान की। आखिर इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि मामला हमारी हर पल की खरीदारी से जुड़ा है। दूसरी खबर महंगाई से जुड़ी है, क्या जीडीपी की रफ्तार को खा जाएगी महंगाई। और तीसरी बड़ी खबर राजस्थान निकाय चुनाव से जुड़ी है, जहां क्या यूजीसी को लेकर नाराजगी की वजह से निर्दलियों की चांदी हो गई है, इसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपकी जेब से जुड़ी, उस यूपीआई से जुड़ी जिसके बिना अब रहना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। इसे लेकर एनपीसीआई ने नियम बदल दिए हैं। थोड़ी देर पहले ऐलान किया गया कि 15 अक्टूबर से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर का नया फ्रेमवर्क लागू होगा। यूपीआई से 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगेगा। हर ट्रांजैक्शन पर करीब 300 रुपए तक मैक्सिमम चार्ज देना होगा। 75,000 या उससे अधिक के लेन देन पर एमडीआर अधिकतम 300 प्रति लेन देन होगा। हालांकि 2000 तक पेमेंट करने पर ग्राहक से किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। आवश्यक सेवाओं के लिए फ्लैट एमडीआर रखा गया है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन, कृषि क्षेत्र में 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपए का फ्लैट एमडीआर लगेगा। यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए हर महीने 1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को P2PM श्रेणी में रखा गया है। सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR का लाभ लेते रहेंगे। यूपीआई ऐप देने वाली कंपनियों को कहा गया है कि वो प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मर्चेंट यूपीआई भुगतान का एमडीआर शुल्क ग्राहक से न वसूलें। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02% एमडीआर लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 प्रति लेनदेन होगी। कम शुल्क का उद्देश्य आम लोगों की औपचारिक वित्तीय बाजारों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। हमारे साथ हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस समय जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, अचानक ये 2000 से ज्यादा पेमेंट पर जो शुल्क की बात सामने आ गई है, 15 अक्टूबर तक का हालांकि समय है अभी इसकी बारीकियों को समझने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर इसके सबसे अहम पॉइंट्स अगर मैं कहूं जो लोगों को जानना चाहिए तो वो क्या होंगे?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आप कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करते हैं, मानिए आपने 500 रुपए का कुछ छोटा सा एक सामान खरीदा, आपने यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये सरकार एकदम स्पष्ट कर चुकी है। और जिस तरीके का अमेंडमेंट अभी आया है, अभी समय दिया गया है एक्सपर्ट्स को कि एक बार आप वो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि सरकार देखिए इस चीज के अंदर क्लियर है कि अगर हम बैकएंड की बात करें तो नेशनल कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है, हमने देखा कि जो कई सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि एंड के अंदर कंज्यूमर के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। 2000 तक अभी कोई भी पैसे नहीं लगते। और सरकार के अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये है कि अगर आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस भी करें, अगर आप अपने फैमिली के अंदर देना चाहते हैं किसी को पैसे, अगर आप कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं यूपीआई के तहत, तो उस पर किसी भी तरीके से पैसे, उस पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगना चाहिए। अगर बैकएंड पे कोई चार्ज लग रहा है तो बैंक्स को कहा जाएगा, और जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो बीच वाले लोग जो हैं उनको भी कहा जाएगा, जो गेटवेज हैं उनको भी कहा जाएगा कि अगर चार्ज गवर्नमेंट आपसे ले रही है तो आपको उसको पास ऑन नहीं करना।
0: मतलब ऐश्वर्या, अगर जैसे मान लीजिए कि घर में अब तक जो पॉकेट मनी दी जाती थी बच्चों को, वो अगर यूपीआई के जरिए दी जाती थी, तो मान लीजिए 5,000 की वो रकम है, तो उस पे चार्ज है या नहीं है?
1: नहीं, उसके ऊपर श्वेता कोई भी चार्ज इस समय नहीं है। और सरकार यही मंथन कर रही है कि अगर 2000 से ज्यादा का चार्ज लगता है बैकएंड पर, अगर कंपनी से गवर्नमेंट एज टैक्स या एज फी वो लेती है गेटवेज यूज करने के लिए, तो अब सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि लोगों के ऊपर उसका बर्डन ना पड़े। इस समय कस्टमर से 0 रुपए लिया जाता है, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, चाहे 50,000।
0: तो अगर हम इसको एक दूसरी तरीके से देखें कि मान लीजिए आप बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक दुकान से 10,000 रुपए तक का हो गया, आप 5 अलग अलग ट्रांजेक्शन में अगर वो दे दें,
1: वो भी क्या किया जा सकता है। और सरकार को मालूम है कि कई सारे लोग इस तरीके से करेंगे, तो उसी के लूपहोल्स को फाइंड करने के लिए ये जो एक महीने का समय है ये दिया गया है। लेकिन मर्चेंट टू मर्चेंट अगर है, कंपनी टू कंपनी अगर पेमेंट कहीं ना कहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर चार्ज अभी भी लिया जा रहा है। और सरकार यही मंथन कर रही है कि वो जो चार्ज लिया जा रहा है उसको किस तरह से कम करें, या अगर उसको बढ़ाना है तो एक रूल जो है, यूनिफॉर्म रूल, मर्चेंट टू मर्चेंट के लिए वो उसके ऊपर सरकार इस समय मंथन कर रही है, बट उसके अंदर भी जो एंड गोल होगा वो ये है कि कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज अभी लेवी नहीं होना चाहिए। आप जैसे यूपीआई को इस्तेमाल करते आए हैं इतने सालों से, उसी तरीके से कंज्यूमर आगे भी इस्तेमाल करता रहे, सरकार इसी जद्दोजहद में समय जुड़ी हुई।
0: तो अगर राजनीतिक रूप से हम देखें, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चाह रही है कि पहले जान ले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जो भी आर्थिक फैसले होते हैं उनका चुनावी परिणाम भी निकलता है। बड़े बड़े राज्यों में अभी चुनाव होना है, सबसे बढ़कर उत्तर प्रदेश, पहले ही महंगाई की बात हो रही है क्योंकि मौसम के कारण जिस तरह की दिक्कतें आई और जिसका सीधा असर वॉर, उसका सीधा असर, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसमें अगर एक छोटा सा भी चार्ज इस तरह का जुड़ता है तो वो इंसान जो अपना कैश को छोड़कर यूपीआई को थाम चुका है वो ठगा हुआ खुद को न महसूस करे, क्या ये सरकार की प्राथमिकता में?
1: बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए इसका जो पुश एक आया था जब डिमोनेटाइजेशन कहा किया गया था सरकार ने, तो एक फेक करेंसी की बात करी थी और दूसरा उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ा जाए। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है यूपीए के नेताओं पर उंगली उठाते थे, जो पूर्व के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन पर उन्होंने उंगली उठाई और कहा कि आप तो कभी डिजिटाइजेशन चाहते ही नहीं थे। तो अगर डिजिटल पेमेंट पर मुझे और आपको किसी तरीके का चार्ज देना पड़ेगा तो जरूर जो हिंदुस्तानी है, जो आम हिंदुस्तानी है, जो नागरिक है, उसको लगेगा कि उसको ठग लिया गया। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप कैश का मत इस्तेमाल करिए, आप यूपीआई का इस्तेमाल करिए, और दूसरी तरफ अगर एक साधारण से यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए मुझे और आपको सरचार्ज देना पड़ेगा किसी भी तरीके का, तो बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो वो बनेगा ही। श्रोता, आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ये कहा है कि सरकार ने एक महीने का समय जरूर दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी पैनी नजर बनाए हुए हैं, वो ये देखना चाह रही हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं बैकएंड से कोई ऐसा चार्ज सरकार लगा दे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, अगर किसी तरीके का कोई भी चार्ज मेरे या आपकी जेब पर पड़ता है तो उसका असर आगामी चुनाव खासतौर से पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को जरूर मिलेगा।
0: बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल, हमारी संवाददाता ये जानकारियां दे रही थी। हालांकि अभी जो एक महीने का समय है उसमें बारीकी से इसका अभी पूरा परीक्षण निरीक्षण सब किया जाएगा। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जनता भी डरी हुई है कि दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ कहीं जनता पर न डाल दे, ग्राहकों पर न डाल दे।
2: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात यह कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि 2,000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2,000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
3: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
4: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2,000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन UPI के लेस देन 2,000 रुपीज में होते हैं।
2: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध सब्जी दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना है। यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
5: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
2: एमपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर दो या तीन बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
6: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता, अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहा हो सकता है। पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
2: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
7: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। जो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
8: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: यूपीआई से पेमेंट को लेकर लगातार सरकार की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए हम एक बार फिर आपको बता दें कि आम आदमी को लेकर यूपीआई से पेमेंट को लेकर कुछ बदला नहीं है। यूपीआई को लेकर पहला सवाल यह है कि क्या 2000 रुपए यूपीआई की नई लिमिट है? इसका जवाब है नहीं, 2000 रुपए कोई नई पेमेंट लिमिट नहीं है। यूपीआई से पहले की तरह आप इससे ज्यादा का भी पेमेंट कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर 2000 रुपए से ज्यादा के ही पेमेंट को लेकर नियम क्यों बनाया जा रहा है? तो इसकी बड़ी वजह बड़े कारोबारी पेमेंट्स हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए यूपीआई पेमेंट में केवल करीब 4% ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ज्यादा के थे, लेकिन कुल रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 थी। यानी ऐसे पेमेंट की संख्या कम है लेकिन इनमें काफी बड़ी रकम जाती है। अगला सवाल, क्या 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने पर बैंक खुद से फीस लेना शुरू कर सकते हैं? जवाब है नहीं। सिर्फ इसलिए कि पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा है, बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर मनमाने तरीके से फीस नहीं लगा सकते। एक सवाल यह भी है कि अगर कोई दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को 1000-10000 रुपए भेजता है तो क्या फीस लगेगी? जवाब है नहीं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले यानी P2P पेमेंट मुफ्त रहेंगे। सरकार ने भी कहा है कि आम यूजर से ऐसे पेमेंट के लिए फीस नहीं ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल यूपीआई में 2000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन को MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के दायरे में लाने की आशंका इसलिए जता रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आम लोगों के लिए बैंकिंग महंगी होती जा रही है। आज कमोवेश 10 तरह के चार्ज आम आदमी को बैंकिंग सुविधाओं के इस्तेमाल पर देने पड़ते हैं, जैसे ATM की सालाना फीस आपको 150 से 300 रुपए देनी पड़ती है। दूसरे बैंक के ATM से 5 बार से अधिक लेन देन कर लिया तो 21 से 23 रुपए प्रति लेन देन प्लस GST लगता है। खाते में कम रकम हो और ATM में ज्यादा रकम निकालने की कोशिश की तो 20 से 25 रुपए जुर्माना लग जाता है। अगर आप अपने बैंक ब्रांच चले जाते हैं और महीने में 4 बार से ज्यादा वहां भी लेन देन करते हैं तो 150 रुपए तक चार्ज कट सकता है। निजी बैंकों में तय रकम खाते में नहीं रखी तो भी ग्राहक पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगता है। किसी भी कारण से चेक बाउंस होने पर 150 से 600 रुपए तक जुर्माना है। मोबाइल पर SMS अलर्ट पाने के लिए हर 3 महीने में 15 से 20 रुपए का चार्ज देना होता है। 1 से अधिक चेकबुक भी अगर साल में लेते हैं तो 2 से 5 रुपए प्रति लीफ चार्ज लगता है। बैंक जाकर NEFT, RTGS, IMPS लेन देन करते हैं तो वो भी 2 से 25 रुपए तक चार्जेबल है। यहां तक कि आप अपना बैंक खाता बंद कराने जाते हैं तो भी 200 से 500 रुपए तक चार्ज लगता है। एक और फर्क जो विपक्षी दल बता रहे हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेवाओं में लगने वाले चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले मोबाइल पर SMS अलर्ट के लिए सालाना 10 से 20 रुपए लगते थे जो अब तिमाही यानी चौगुना महंगे हो गए हैं। दूसरे बैंक के ATM से लेन देन भी पहले असीमित था जो अब 3 से 5 बार ही मुफ्त है। पहले खाते में न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना नहीं था, अब निजी बैंक जुर्माना लेते हैं। पहले ब्रांच में जाकर बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल पर चार्ज नहीं था, अब 4 बार से ज्यादा बैंक ब्रांच जाकर लेन देन किया तो वो चार्जेबल है। और पहले डेबिट कार्ड की जो सालाना फीस 50-100 रुपए होती थी वो अब 150 से 300 रुपए हो गई है, उसमें GST भी जोड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच बिचौलियों का जो खेल है वो दुर्भाग्य से हर जगह है। सरकार जनता की भलाई के लिए राहत देती है लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। एक तरफ सरकार का खजाना कम होता है, दूसरी तरफ जनता को छूट नहीं मिल पाती। इंश्योरेंस कंपनियों के खेल से तो सब वाकिफ हैं। सरकार ने पिछले साल निजी बीमा से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक पर GST को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन सरकार ने टैक्स में राहत दी ताकि जनता को पॉलिसी पर कम प्रीमियम चुकाना पड़े। पॉलिसी सस्ती होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें, लेकिन क्या ऐसा हुआ? लोकल सर्वे के अनुसार जिन लोगों ने GST जीरो होने के बाद नई पर्सनल लाइफ और हेल्थ पॉलिसी ली या उसे रिन्यू कराया, उसमें से 48% लोगों ने कहा कि जब उन्होंने पॉलिसी खरीदी या रिन्यू कराई तो उन्हें कम टैक्स का पूरा फायदा मिला। 26% लोगों का कहना था कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि सालाना प्रीमियम बढ़ने के अलावा इंश्योरेंस कंपनियों ने बेस प्राइस भी बढ़ा दिया था। 5% लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ फायदा तो मिला लेकिन बेस प्राइस भी थोड़ा बढ़ा दिया गया था, जबकि 5% लोगों ने कहा कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला और अभी भी 18% GST लगाया गया। यह सर्वे 20,000 लोगों और 301 जिलों में किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियों ने सरकार से आम आदमी को मिली छूट पॉलिसी का बेस प्राइस बढ़ाकर डकार ली, मतलब सरकार ने खजाने पर बोझ डालकर जनता को राहत देने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं हुआ क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने उस फायदे को जनता के बजाय अपनी जेब में डाल लिया। सोचिए, देश की सरकार जनता के लिए कुछ करती है तो उसका फायदा कंपनियां जनता तक पहुंचने नहीं देती। आम आदमी और किसान के बीच आम आदमी आ जाता है और इंश्योरेंस के मामले में आम आदमी और राहत के बीच में इंश्योरेंस कंपनियां आ गई, इसीलिए आम आदमी डरा हुआ है कि इस बार क्या होगा। एक चिंता ईएमआई को लेकर भी है, क्योंकि बैंक वाले भी खूब खेल करते हैं। आरबीआई कर्ज सस्ता कर देती है, फिर भी हम और आपको लोन देने वाली बैंक राहत देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन इस बार जनता को डर ईएमआई के बढ़ने का है, जिस पर बैंक तुरंत लागू कर देंगे। आने वाले महीनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, घर के बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है। एक ओर खुदरा और थोक महंगाई दोनों बढ़ी हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती क्रूड की कीमतें भी डरा रही हैं। ब्रेंट दोबारा $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है।
2: पश्चिम एशिया में हो रही जंग से कच्चे तेल में नए सिरे से उबाल आ गया है और वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है, जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। खबरदार हो गई है कि आने वाले महीनों में घर का बजट दबाव में आ सकता है। अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी ने इसे लेकर तस्वीर भी साफ कर दी है। अगस्त में फुटकर महंगाई 4.82% हो गई, जुलाई में ये 4.45% थी। वही सरकार ने 14 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है।
9: देश भर में महंगाई की मार जो है वो आम लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। घर में जिस तरीके से खाना बनता है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल भी इस वक्त महंगा जो है वो मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। किन किन चीजों के दाम जो है वो बढ़े और किन किन चीजों के कम हो?
10: चीनी वीनी का जैसे दाम है पहले काफी तेज हो गया था, 65-70 रुपए तक हो गया था, लेकिन अब दोबारा से कम होके 50 रुपए तक आ गया। और सरसों तेल में भी कुछ तेजी है इस टाइम।
9: तेजी
10: सरसों तेल में लगभग 2-3 रुपए किलो पर केजी पे तेजी है, और रिफाइंड में भी कुछ ऐसे ही है, 3-4 रुपए किलो पर लीटर पे तेज है।
2: ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही, फिर मई में करीब 4% और फिर जुलाई में 4.45% पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर आरबीआई के तय पैमाने से ज्यादा दर्ज की गई है।
11: महंगाई की मार ना केवल राशन के सामान पर देखने को मिल रही है, सब्जियों पर भी जो अब महंगाई है वो देखने को मिल रही है। चाहे बात की जाए लहसुन अदरक और प्याज टमाटर जैसी सब्जियों की, वो भी अब महंगी हो गई, जिसका असर किचन बजट पर पड़ा है। कौन कौन सी जो सब्जियां महंगी हो गई हैं?
12: इस टाइम प्याज भी महंगा है, अदरक भी महंगा है, लहसुन भी महंगा है। मतलब इन सब के अगर देखा तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर कम से कम 100 रुपए किलो के मार्जिन बढ़ा है करीबन।
13: किचन के बजट में हम लोग पहले सेविंग कर लेते थे अपनी, थोड़ा किचन का पूरा सामान भी ले लिया, कुछ एक्स्ट्रा सामान घर का भी ले लिया, देन उसके बाद भी सेविंग कर लेते थे। अब क्या पोजीशन हो गई है कि पूरा मार्केट में सब्जी ही नहीं हमारी पूरी पड़ रही है, सब्जी दूध में ही हमें मुश्किल हो रहा है, हम घर ही नहीं चला पा रहे हैं।
9: किन किन चीजों पर महंगाई का असर जो है वो आपको पड़ रहा है? आप आम आदमी है, खरीदारी करने के लिए कितना असर?
14: अमूल का बटर लाते हैं, पहले सस्ता था अब बटर महंगा हो गया, पहले के मुकाबले बटर बहुत महंगा है, बढ़ता ही जा रहा है, नीचे नहीं आता। होता है कि कुछ दिन बाद नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस बढ़ता ही चलता है।
9: कितना असर आप लोगों को?
14: पहले रिफाइंड हम लोग लेते थे 750-750 ग्राम का आता था, पहले 900 ग्राम आता था, पर दिन पे दिन माल भी कम कर रहे हैं और रेट भी बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि माल पूरा है तो रेट कम है, अब दोनों चीज बराबर ही चल रहा है, नीचे भी आ रहा है माल कॉस्ट, और मतलब पैसा ज्यादा हो रहा है और माल कम हो रहा है,
9: माल की क्वांटिटी कम हो रही
14: है। हाँ जी।
2: अब ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि सरकार एक तरफ 7.28% की विकास दर का दावा कर रही है, वहीं महंगाई की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहार से पहले तेल रिफाइंड के साथ आलू प्याज अदरक के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
9: कितना महंगाई का असर जो है वो पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर?
15: बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हद से ज्यादा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है महंगाई का असर, सभी लोग परेशान है, जनता सारी परेशान है।
9: क्या क्या महंगा आपको अब जब खरीदारी करनी है, क्या क्या महंगा?
15: चीनी, तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, सब पे असर पड़ रहा है, मक्खन, सब चीज पे असर पड़ रहा है। पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा असर है।
9: कटौती कर रहे हैं?
15: कुछ भी नहीं कर पा रहे इस वक्त तो, कर ही क्या, कर ही नहीं पा रहे कुछ।
2: सरकार का कहना है कि युद्ध के अलावा महंगाई के बढ़ने में कमजोर और अनियमित मॉनसून का भी हाथ है, लेकिन आम आदमी का दिल त्योहार से पहले बैठा जा रहा है। वो देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में नए सिरे से आते उछाल से वो कब तक बचेगा। आज तक ब्यूरो।
0: कुछ दिनों पहले ही जनता इस बात से खुश थी कि इकॉनमी उम्मीद से तेज रफ्तार से दौड़ रही है, इसीलिए कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई की वजह से आशंका ये उठने लगी कि ये राहत भी खत्म ना हो जाए।
16: हमारा इन्फ्लेशन और प्राइसेस बहुत कंट्रोल में थे जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं शुरू हुआ था। जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए और अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी हाई आया है, 4.9 का इन्फ्लेशन है, तो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर्ड विद द अर्लियर मंथ्स। और ऊपर से जो WPI है वो तो लगभग कोई 9.8% का WPI जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इससे ये पता चलता है कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कॉमोडिटी प्राइसेस हैं या इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर है उसकी वजह से WPI में बढ़ोतरी हुई है और जो धीरे धीरे पास ऑन हो रहा है, CPI ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इकोनॉमी है, जैसे हमने 7.8% का ग्रोथ रेट देखा, तो उसके जो सपोर्टिव फैक्टर हैं, जो उसके पिलर्स हैं, उस जिनको हम कहते हैं कि एक डिमांड एक बहुत बड़ा पिलर है, सेकंड जो स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, जो RBI ने बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप्स लिए, स्टेबिलिटी रखा इंटरेस्ट रेट में, रेपो रेट में, उसने बहुत सपोर्ट किया, और थर्डली गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग, जो सरकार ने अपनी पॉलिसीज दी, और इंडस्ट्री एफर्ट्स, इन चारों की वजह से ही हमारा जो GDP है वो 7.8% आया है। तो ये जो इन्फ्लेशन है जो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर की वजह से है, तो मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे ये सबसाइड होगा और नॉर्मल हो जाएगा।
0: अब राजस्थान निकाय चुनाव में BJP के लिए छिपे बड़े संदेश से जुड़ी खबर। राजस्थान के निकाय चुनाव में इस बार मुद्दा जेंजी और CJP का स्कूल न होकर BJP के कोर वोटर में UGC का जाति आधारित प्रस्तावित कानून रहा। नतीजों ने UGC के मुद्दे पर BJP के खिलाफ अगड़ी जातियों के गुस्से को जाहिर कर दिया। BJP के कोर वोटर माने जाने वाले राजपूत समाज ने BJP को वोट देने के बजाय निर्दलीय और नोटा को वोट दिया।
2: राजस्थान के निकाय चुनाव में क्या स्थानीय और विकास के मुद्दों पर भारी रहा UGC का मुद्दा? क्या राजस्थान में UGC को लेकर BJP से नाराजगी का फायदा निर्दलियों को मिला? राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जिन बड़े शहरों और राजपूत बहुल इलाकों में कमल खिलता था, वहां निर्दलियों का शानदार प्रदर्शन BJP के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने की वजह वसुंधरा राजे हैं, जो BJP की बड़ी राजपूत नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, फिर भी वो अपने इलाके झालावाड़ में कांग्रेस को जीतने से नहीं रोक पाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर में मामला बराबरी पर अटक गया है और अब फैसला निर्दलीय के हाथों में है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विद्याधर नगर में BJP के वार्ड 64.3% से घटकर 60% हो गए और निर्दलीय 20% वार्ड जीतने में कामयाब रहे। उद्योग राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाला में BJP के वार्ड 63% से घटकर 53% रह गए हैं, जबकि निर्दलीय 23% वार्ड जीते हैं। BJP के लिए राहत भरी बात ये रही कि उसके वोटरों ने कांग्रेस को वोट देने के बजाय निर्दलीय और नोटा को वोट डाला है। UGC के मसले पर राज्य भर में आंदोलन कर रही करनी सेना का कहना है कि ये चेतावनी है, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो BJP को आगे इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
17: प्रचंड बहुमत, मिठाई या लड्डू बांट रहे, अरे भैया काहे के लड्डू बांट रहे यार, UGC रोल बैक नहीं करके तुम सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल के अगर लड्डू बांट रहे हो तो आने वाले दिनों में कोई चुनाव में लड्डू खाने लायक रहोगे नहीं। बकायदा हम लोग दिखाएंगे, हम लोग हर जगह लड़ाई लड़ने को तैयार है। पॉलिटिकल लड़ाई वो भी लड़ी जाएगी, सोशल स्तर पर लड़ाई वो भी लड़ी जाएगी, और बकायदा अगर ये धरना प्रदर्शन जानते वो हम लोग कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं, कतई रुकने वाले नहीं है। इनके प्रोपेगंडा से हम लोग कतई भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, 70-75% आजकल लोग सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो भी हर जगह जा रहा है कि भैया तुम्हारे बोलने पे हम लोग रुकेंगे नहीं।
2: राजस्थान में BJP के राजपूत नेताओं के बजाय कांग्रेस के राजपूत नेता प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर UGC के जाति आधारित कानून पर बोल रहे हैं। इनके इलाके जयपुर के सिविल लाइंस में कांग्रेस और BJP को 50-50% के बराबर वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय नहीं जीते। BJP के नेता भी चुनाव परिणाम के बाद इस मामले पर खुलकर बोलने लगे हैं।
18: UGC बिना मांगे बीजेपी ने देश पर थोप दी। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट सब यूजीसी के खिलाफ है और इस देश का यूनिवर्सिटी कॉलेज का बच्चा समझता है कि यूजीसी एक धोखा है जिसमें जातियों में टकराव खड़ा करके बीजेपी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इसका रिएक्शन हर जाति में था। एसटी ओबीसी जनरल कास्ट सब ये मानती है कि बीजेपी महंगाई गरीबी भ्रष्टाचार पे तो कोई काम करती नहीं है। लोग यूजीसी नहीं चाहते, आपने यूजीसी दे दी, यूजीसी कोई वर्ग चाहता ही नहीं, उससे मिला क्या, बीजेपी को नुकसान हुआ। तो बीजेपी ऐसे मुद्दों पर चुप रहकर जिनके नेताओं के मुंह में दही जम गया, जिन बीजेपी के नेताओं को, इस बात को नहीं समझ रहे कि यूजीसी जैसे मुद्दे देश का भला नहीं कर सकते, किसी जाति का धर्म का भला नहीं कर सकते, सिर्फ जातियों में टकराव खड़ा कर सकते हैं।
19: यूजीसी अभी न तो कहीं लागू हुआ है, न कोई उसकी चर्चा है, कुछ विषय जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ विषय पे अभी चर्चा और मंथन होना ही बाकी है। तो उसको कहां मान लिया गया है कि उसका असर है या वो चालू हो गया या लागू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है।
2: राजस्थान निकाय चुनाव में पिछली बार बीजेपी को 35.11%, कांग्रेस को 40.30% और निर्दलीय को 24.59% वोट मिले थे। वहीं इस बार बीजेपी को 36.11%, कांग्रेस को 35.14%, निर्दलीय को 27.75% वोट मिले हैं। मतलब बीजेपी के वोट 1% बढ़ गए, कांग्रेस से 5.16% वोट छिटक गए। वहीं निर्दलीय और नोटा के वोट प्रतिशत में 3.16% का इजाफा देखने को मिला। चुनाव से पहले करनी सेना की तरफ से यूजीसी को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब पाली गए थे वहां पर यूजीसी रोल बैक के नारे लगे थे। जयपुर में ही उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के सामने यूजीसी रोल बैक के नारे लगे थे। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी में भी यूजीसी के मामले पर डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। भीलवाड़ा में जैन मुनि पुलक सागर जी ने दावा किया है कि सोमवार को उनसे मिलने आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से इस मामले पर विरोध जताया है तो मोहन भागवत ने इसे लागू नहीं करने का भरोसा दिया।
20: पीड़ा थी जो हिंदुओं को तोड़ा जा रहा, लड़ाया जा रहा यूजीसी को लेकर के, कि किस तरह से सवर्ण और पिछड़े वर्ग को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, पूरा आक्रोश है पूरे देश में, तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि केवल प्रस्ताव आया है, कोई पास नहीं हुआ है, ये कोई कानून बना नहीं और ना बनेगा। इससे हमने कहा कि बड़े घातक परिणाम इसके निकलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कानून पास नहीं होगा।
2: बीजेपी को झटका देने का दावा करते हुए करनी सेना ने पंचायत चुनाव से पहले अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पर यूजीसी के जातीय कानून को लेकर फैसला लेने का दबाव बढ़ सकता है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
21: राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, मगर बीजेपी का झुकाव ओबीसी जातियों की तरफ हुआ तो भावनात्मक रिश्ते भी कमजोर पड़े। इसी बीच यूजीसी का जातीय कानून आया, करनी सेना सड़कों पर उतरी और यूजीसी कानून को लेकर जब बीजेपी के राजपूत नेताओं से सवाल पूछा गया तो भागने लगे, जिसका खामियाजा नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है और कोर वोटर निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब बीजेपी के ऊपर दबाव है कि पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे पर साफ नजर आए। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अब योगी सरकार ने आज 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन प्रस्तावों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक के फैसले शामिल हैं। योगी कैबिनेट में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मिल्कीपुर के लालखां गांव में 65 एकड़ जमीन पर एनएसजी का क्षेत्रीय हब बनाने का फैसला किया गया है। राम मंदिर निर्माण के बाद वीआईपी आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बीच सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। योगी कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और किसानों को सस्ती दर पर लोन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच लगातार सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को साधने के एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बेहद दिलचस्प वाक्य सामने आया जब राज्य के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को अचानक कैबिनेट बैठक में शामिल होने का बुलावा आया। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को लखनऊ बुलाने के लिए सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर भेजा। मनोज पांडे उस समय उचहार में शिव महापुराण कथा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की ओर से हेलीकॉप्टर भेजे जाने के बाद मनोज पांडे उससे लखनऊ पहुंचे और कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने खुद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर इस वक्त परिवार के सदस्यों के बीच अनबन से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से लोहिया ट्रस्ट का कार्यभार क्या वापस लिया, अब चाचा भतीजे में दरार की सियासी चर्चा शुरू हो गई।
1: शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को,
3: तो इंजीनियर हो गए फिर मुख्यमंत्री हो गए।
22: योगी आदित्यनाथ अक्सर अखिलेश को घेरने के लिए शिवपाल यादव का सहारा लेते हैं।
23: आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए।
22: योगी अक्सर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव का सम्मान नहीं करते। इस तरह योगी अखिलेश यादव को निजी तौर पर असहज करते हैं, जनता को संदेश देते हैं कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है, आंतरिक कलह है।
23: मैं जब शिवपाल जी को देखता हूँ, वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है और मैं उनके से कह सकता हूं, और बहुत सहज दृश्य, उनका जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप करना चाहिए।
22: योगी को 2027 के चुनाव से पहले शिवपाल के बहाने अखिलेश पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। इसकी वजह अखिलेश यादव का एक फैसला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवपाल सिंह यादव से कार्यभार वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया गया कि पिछले दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में सभी 8 ट्रस्ट सदस्यों ने अखिलेश यादव को ट्रस्ट का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है। जिस तरह 9 साल से ट्रस्ट का कामकाज देख रहे शिवपाल सिंह यादव को चुनाव से एन पहले हटाया गया, उसे समाजवादी पार्टी में उनके दौर का अंत बताया जाने लगा है।
24: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 3 साल थे, सदन के अंदर अखिलेश जी ने बयान दिया, आप खुद समाजवादी पार्टी से अलग होकर के उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी की सच्चाई को उजागर किया कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन लूटने वाले लोग आ गए हैं और ये इस तरह पार्टी नहीं चलती है। बयान अलग अलग शिवपाल जी के आए तो भरोसा कैसे करेंगे, तो उनको तो खुद किनारे लगाने में लगे हैं, तो इस नाते लोहिया ट्रस्ट ने उनको हटा दिया है कि अब आपकी जरूरत नहीं है।
22: साल 2017 में यूपी चुनाव से पहले परिवार में हुए विवाद के समय मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल को लोहिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी के साथ साथ जनेश्वर ट्रस्ट के बाद अब लोहिया ट्रस्ट की भी पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। साल 2017 में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह के वक्त मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश समर्थक रहे राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। लोहिया ट्रस्ट 1992 में समाजवादी पार्टी के बनने से भी पहले गठित किया गया था। ये ट्रस्ट पार्टी के लिए फंड जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ ही लंबे समय तक समाजवादी राजनीति और लोहियावादी नेताओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण मंच रहा है। इस बदलाव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में शुरू हुई एक नई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भले ही आज एकजुट हों, लेकिन दोनों के बीच हुई अनबन किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए 2027 के चुनाव से एन पहले इस फैसले को बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसी किसी बात से इनकार करती है।
4: इसमें शिफ्टिंग जैसी कोई बात नहीं है। शिवपाल जी, अखिलेश जी दोनों एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, यह तो एक आदर्श की स्थापना का एक संकल्प है, उसी संकल्प पे समाजवादी पक्ष के लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ चुनाव कहाँ आ गया? अरे चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। आपको पता है बीजेपी ने क्या अनर्थ किया है इस देश की समाजवादी आंदोलन के साथ? JPINC बेच दिया, मुझे बेचना ही कहा जाएगा। वो जयप्रकाश नारायण जो आजादी की लड़ाई के नायक थे, 42 की क्रांति की जिन्होंने अगुवाई की थी लोहिया जी के साथ मिलकर, जब बाबा साहब को तत्कालीन सरकार ने चुनाव हराया था तो सिर्फ JP एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने बाबा साहब के लिए खड़े हुए थे। उन JP के नाम पर एक संस्थान बनाया अखिलेश जी ने, यही लक्ष्य था समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, बेच दिया उठाकर पूंजीपतियों के हाथों। दूसरी बात, लोहिया जी का उन्होंने एक फर्जी परिवार खड़ा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच गए। वो तो भला हो आपके चैनल का जिन्होंने सत्य को उजागर कर दिया।
22: लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है, इसीलिए राजनीतिक हलकों में इसे अखिलेश की तरफ से पार्टी और उससे जुड़े ट्रस्ट की पावर को अपने कब्जे में करने जैसा बताया जा रहा है। सवाल ये है, क्या ऐसा करके अखिलेश 2017 से पार्टी को अलग दिखाना चाहते हैं? जहां परिवार के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर टकराव था, लेकिन साल 2026 में तस्वीर काफी अलग हो चुकी है। अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव क्या करेंगे, उनके समर्थकों का अखिलेश के इस कदम पर क्या रोक रहेगा?
5: अब ये लोग इसलिए तो घबरा गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तो घबरा रहे हैं, और इनका जनाधार खिसक चुका है। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, तो इसलिए सब बौखलाए हुए हैं।
22: शिवपाल को जो जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव ने दी, उसे अखिलेश ने क्यों वापस ले लिया? इस सवाल के इर्द गिर्द बीजेपी की कोशिश अखिलेश को घेरने की है, ताकि समाजवादी पार्टी और परिवार में कलह के उसके नैरेटिव को मजबूत किया जा सके। वहीं कई जानकार को लगता है कि अखिलेश इस तरह से पार्टी काडर और समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता का वही केंद्र है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे।
6: फिलहाल विपक्ष अब इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, और ले जा रहा है उस दौर में 2017 में जहां चाचा और भतीजे की तमाम चीजें सबके सामने आई थी। बीजेपी कुल मिलाकर इसे सियासी द्वंद्व बता रही है, और चुनाव से पहले कुल मिलाकर पूरा पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश, जबकि समाजवादी पार्टी जो है इसे एक आंतरिक और सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बता रही है। अब देखना यह है कि चुनाव से कुछ दिन पहले लिया गया ये निर्णय क्या संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ रंग लाता है, या फिर बीजेपी के आरोप कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में और दिलों में घर करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: और अब गुरुग्राम रोड रेज मामले में आपको अपडेट दे दें, अब तक इस पूरे मामले में जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए कड़ियां जुड़ती गई, उसमें पहले तो जो मुख्य आरोपी यानी कि जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस की तरफ से पकड़ा गया। अब गाड़ी में उस समय चालक कल्याण बैसला के साथ जो व्यक्ति था जिसका नाम लवनीश बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पटना में दारोगा परीक्षा और 70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर आज छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र पहले JP गोलंबर के पास जुटे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए।
8: पटना की सड़कों पर हंगामा बरपा है, अभ्यर्थियों का हुजूम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। अभ्यर्थियों का जत्था विधानमंडल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये JP गोलंबर के पास की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, मगर प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं।
10: मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए अलग अलग रास्ते से निकल रहे। देखिए पुलिस के साथ झड़प, पुलिस को फेल दिया अभ्यर्थियों ने, और पुलिस देखिए पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को आगे न जाने दें, लेकिन अभ्यर्थी निकल चुके हैं। पुलिस देखिए अभ्यर्थियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है।
8: बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा 27 मई को हुई थी। इस परीक्षा के जरिए कुल 1799 पद भरे जाने थे। इसी मामले में अब छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में पेपर लीक और धांधली हुई है। छात्रों की मांग है कि यह परीक्षा रद्द की जाए, इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे।
11: छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है, देखिए बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से भारी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के जेपी गोलंबर के पास ये भारी बवाल बचा हुआ है।
8: ये पहली बार नहीं है जब पटना में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया हो। इससे पहले भी तमाम मौकों पर छात्र अपने अधिकारों के लिए पटना की सड़कों पर संघर्ष कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार छात्रों के इस बार के प्रदर्शन को लेकर क्या कदम उठाती है। पटना से सुजीत कुमार और अनिकेत के साथ आज तक ब्यूरो।
7: खबरदार में अब बात एक ऐसी टीचर की जिन्होंने बाढ़ के बीच शिक्षा की लौ को बुझने नहीं दिया। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी, इसमें कटिहार भी शामिल है। इसके रघुनाथपुर में घर, सड़क, स्कूल सब डूब गए। इस निराशा भरे माहौल में भी प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षक मोहम्मद साहब ने बच्चों को पढ़ाने के लिए नया तरीका निकाला और नाव पर ही बच्चों को पढ़ाने लगे। जहां पर स्कूल डूबा उसी से सटे स्थान पर नाव पर ये शिक्षक न सिर्फ पाठशाला चला रहे हैं बल्कि बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ कर आते हैं।
12: तो ये कैसे ख्याल आया कि आपका नाव से पाठशाला हम चलावे?
13: ख्याल इस तरह से आया कि जब कोचिंग में पानी घुस गया, पानी घुसने के 2-3 दिन तक तो हम पढ़ाई ठप कर दिए, लेकिन लगा कि नहीं पढ़ाई रोकने से तो बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इस वजह से हम सोचे कि चलो बच्चों का हम सब नाव में ही ला करके हम लोग क्या करें, शिक्षा ग्रहण कराएं बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी स्किल रहेगा डेवलपमेंट होता रहेगा, और ऐसे रुक जाने से क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं वो भी भूल जाता है बच्चे को। इस वजह से हम लोग क्या किए कि हम खुद सबके घर पे गए, गार्जियन को बोले कि भाई सुरक्षित तरीके से हम लोग को क्या करना है, क्लास करना है बच्चे को। सब गार्जियन सहमत हुआ, प्लस हम लोग घर से लेके आए सबको सुरक्षित तरीके से।
12: अच्छा, ऐसे में कितना ये खतरनाक साबित हो सकता है कि आप पानी में इस छोटे छोटे बच्चे को नाव पे पढ़ाई कराते हैं?
13: देखिए ये बिहार है और बिहार के बच्चों को खतरों से खेलना आता है। हम लोग पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा के लिए। अगर हम लोग को मान लीजिए नाव में है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत, हाँ बहुत ज्यादा पानी कम है।
12: क्यों घर पे या फिर अपने कोचिंग में या फिर अन्य सड़क पे क्यों नहीं आ पा रहा?
13: सड़क पे इसलिए कि क्योंकि सड़क में पानी है, सड़क में पानी है, कोचिंग में पानी है, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। तो सोचे कि चलो नाव में पढ़ाते हैं और शांत जगह भी है यहाँ पे पढ़ाने की, सही है।
12: क्यों नाव पे पढ़ाई करते हो, डर वर नहीं लगता?
14: नहीं, यहाँ कम पानी है और पूरा गांव में पानी हो गया, घर में, रोड में, सड़क में, कोचिंग में, सब जगह पानी हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ सर यहाँ ला के पढ़ाते हैं।
12: तो ऐसे में गार्जियन आने देते हैं?
14: हाँ।
12: क्यों, यहाँ पानी जो है
14: कम है यहाँ पर पानी, इसलिए
12: पानी कम है।
14: हाँ।
12: क्या नाम है तुम्हारा?
14: सत्यम कुमार।
12: किस क्लास में पढ़ते हो?
14: 5
12: में। क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई डर वर लगता है?
14: नहीं, यहाँ पे पानी कम है इसलिए डर नहीं लगता है।
12: तो फिर ऐसे में सर कितना देर पढ़ाई करवाते हैं?
14: 1-1.5 घंटा।
12: पढ़ने में मन लगता है?
14: यस।
12: बाढ़ है, बाढ़ में घर में भी पानी है,
14: है।
12: पढ़ना जरूरी है।
14: हाँ।
7: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद अ कोला स्पा एट होम। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
28: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Haivan on the 11th of September.
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
16: Papa.
17: Sorry yaar, galti ho gayi hai. Ye chhod kharcha
18: warcha. Are last ball pe chhakka bhi tumhara.
17: Chhakka?
18: Sab cashless ho gaya hai.
17: Haan.
19: टाटा
20: AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: चलो
2: मैं
1: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो
3: सखी उड़ ले अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
1: बड़ी जल्दी सीख गई,
2: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
3: स्वाद सपनों का।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of हैवान on the 11th of September.
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
6: Ye pillar kabhi nahi tootega. रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
9: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
10: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
11: मजा नहीं आया,
12: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान।
13: ये लो बस
11: मजा,
14: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
15: In association with
16: Signature Finest Cardamom Seeds,
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नहीं रहेगा? क्या 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांसफर पर अब जेब ढीली करनी पड़ेगी? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अभी यूपीआई भुगतान पर शुल्क के लिए 2000 रुपए की सीमा तय की है और आने वाले दिनों में वो इसे और भी कम कर सकती है, जबकि सरकार का कहना है कि आम ग्राहकों और छोटे दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं होगा और जो बड़े व्यापारी और मर्चेंट्स मुफ्त यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं उन्हीं पर इसका भार आएगा। आखिर इस विवाद का पूरा सच क्या है ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको हूती के उस दावे के बारे में बताएंगे जिसने मिडल ईस्ट में हलचल मचा दी। दावा है कि हूती ने सऊदी अरब में 24 घंटे में 54 हवाई हमले किए हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका और पाकिस्तान जैसे पुराने सहयोगियों ने मदद से हाथ पीछे खींच लिए तो सऊदी अरब को उस इजराइल की ओर देखना पड़ा जिसे वो देश तक नहीं मानता और किसी तरह के राजनयिक संबंध भी नहीं रखता। इसके बाद आपको बताएंगे कि हूती के लड़ाकों के पास ये टोयोटा हाइलक्स कैसे पहुंची। ये गाड़ी सऊदी अरब के खिलाफ युद्ध में हूती के लड़ाकों की सबसे मददगार साथी बन रही है, जो आसानी से हथियार ले जा सकती है और इस पर भारी हथियार फिट भी किए जा सकते हैं।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या अब आपका पसंदीदा और सबसे आसान यूपीआई पेमेंट

क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे की शादी में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी का पैसा खर्च हुआ? दावा है कि एक प्राइवेट आइलैंड पार्टी और आतिशबाजी का लाखों डॉलर का खर्च पुतिन के करीबी अरबपति उमर क्रेमलेव ने उठाया था। हालांकि ट्रंप जूनियर की पत्नी बेटिना ट्रंप ने इसे सिर्फ दोस्तों की तरफ से मिला वेडिंग गिफ्ट बताया, लेकिन इसे लेकर गंभीर कूटनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने ड्रोनाथॉन के जरिए भविष्य के ड्रोन युद्ध का नया रोड मैप तैयार कर दिया है। महंगे लड़ाकू विमानों की जगह कम लागत वाले स्वदेशी ड्रोन जब दुश्मन पर सटीक वार करेंगे तो आधुनिक युद्ध का खाका ही बदल जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब भारत की इस कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर रणनीति की कायल हो रही है। अब आपको ब्रिक्स की उस तस्वीर के बारे में बताएंगे जिसकी अब तक चर्चा हो रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जब भारत आए तो वो ब्रिक्स समिट के बीच किशोर कुमार का गाना गा रहे थे और रील्स में डीडीएलजे का संगीत बजा रहे थे। ये सिर्फ संगीत का शौक नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का सबूत है जिसने बिना किसी हथियार दुनिया का दिल जीत लिया।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी ने एक भावुक दांव चलते हुए चंद्रनाथ रथ की मां को अपना उम्मीदवार बना दिया है। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, जिनकी बंगाल चुनावों के बाद हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम में एक महिला बाइकर कार से टक्कर मारने वाले आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस केस में हत्या के प्रयास यानी बीएनएस की धारा 109 जोड़ दी है। एशियन गेम्स की शुरुआत से ठीक पहले जापान में खिलाड़ियों के ठहरने को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आयोजकों की तरफ से इस बार पारंपरिक एथलीट विलेज न बनाकर होटलों और क्रूज शिप में व्यवस्था की गई है, जिससे कमरों की भारी किल्लत हो गई है। स्थिति यह है कि भारतीय ग्रुप के कई खिलाड़ियों और स्टाफ को होटल में जगह मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। और दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की 2 उड़ानें 24 घंटे से ज्यादा लेट हुई तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। बिना किसी पुख्ता इंतजाम और सही जानकारी के घंटों भटक रहे पैसेंजर्स ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया।

0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या यूपीआई अब फ्री यानी मुफ्त नहीं रहेगा और क्या सरकार ने 2,000 रुपए से ज्यादा के सभी यूपीआई भुगतान पर शुल्क यानी एक तरह की फीस वसूलने का ऐलान किया है। यूपीआई के जरिए भुगतान पर एक निश्चित फीस या शुल्क वसूला जा सकता है। ये खबर पहली बार पिछले महीने उस वक्त आई जब संसद के मॉनसून सत्र में एक कानून पास हुआ और इस कानून का नाम था टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को यूपीआई पर एमडीआर लगाने की कानूनी अनुमति दी। यहां एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो शुल्क होता है जो किसी भी भुगतान पर दुकानदार से वसूला जाता है। अब विवाद इस बात पर है कि अब तक यूपीआई से होने वाले डिजिटल भुगतान पूरी तरह फ्री होते थे और इन पर कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन अब विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स यानी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसा करने की इजाजत दे रही है और ये आरोप इस नोटिफिकेशन के आधार पर लगाया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन कल यानी 14 सितंबर को प्रकाशित हुआ। इसमें यह लिखा है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी सरकार यह कह रही है कि अगर आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजते हैं तो चाहे राशि कितनी भी हो वो पूरी तरह मुफ्त रहेगी। दूसरा, छोटे दुकानदारों, रेड़ी पटरी वालों, ऑटो चालकों और किराना स्टोर्स को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि उनके ज्यादातर लेन देन 2,000 रुपए से कम होते हैं। और तीसरा, सरकार कांग्रेस के इन आरोपों को भी गलत बता रही है कि यूपीआई से पैसा लेने वाले व्यापारियों को हर पेमेंट पर 0.5% का शुल्क देना होगा यानी 0.5% का। अब सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार या व्यापारी को 2,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करता है तो उस पर दुकानदार को 0.4% का शुल्क देना होगा यानी 5,000 रुपए के भुगतान पर 20 रुपए। अगर भुगतान 75,000 या उससे ज्यादा का होता है तो दुकानदार और व्यापारी को अधिकतम 300 रुपए का शुल्क भरना होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाएं जैसे रेलवे, बीमा, ईंधन, कृषि इनपुट में 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर 5 रुपए का शुल्क देना होगा। सरकार यह भी कह रही है कि अगर छोटे दुकानदार और रेड़ी पटरी वाले यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करते हैं और ये पैसे पर्सन टू मर्चेंट श्रेणी में आते हैं तो तब भी सभी लेन देन पर यह शुल्क 0 रहेगा और ये नियम 15 अक्टूबर से लागू होंगे। यहां ये भी देखिए कि इस फैसले का असर कितने व्यापारियों पर पड़ने वाला है। हमारे देश में 29% यूपीआई लेन देन पर्सन टू मर्चेंट की श्रेणी में होते हैं यानी 91,00,000 करोड़ रुपए का यूपीआई भुगतान इसी श्रेणी में होता है और इनमें भी 67% भुगतान 2,000 रुपए से ज्यादा के होते हैं यानी 61,00,000 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन पर अब सीधा सीधा एक शुल्क या चार्ज वसूला जाएगा जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जनता को बिना बताए कानून बदलकर यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। राहुल गांधी का तर्क है कि भले ही सरकार ऐसा कह रही है कि यह शुल्क केवल मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से लिया जाएगा लेकिन व्यावहारिक रूप से व्यापारी या दुकानदार इस अतिरिक्त शुल्क को चीजों के दाम बढ़ाकर ग्राहकों से ही वसूलेंगे और इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगा रही है कि आज सरकार ने 2,000 रुपए की सीमा तय की है लेकिन कल सरकार एक और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और इस सीमा को घटा सकती है या आम लोगों के आपसी लेन देन पर चार्ज लगा सकती है क्योंकि कानून में अब इसके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं बची। ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। यानी यहां आप इन आंकड़ों को भी देखिए, भारत में एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से पैसा भेजता है तो उसे P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर्सन टू पर्सन लेन देन कहते हैं। भारत में अकेले 71% यूपीआई भुगतान इसी श्रेणी में होते हैं और सरकार कहती है कि इस श्रेणी में कभी भी लोगों से यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है पर्सन टू मर्चेंट यानी व्यापारी से व्यक्ति से दुकानदार, उसमें 29% लेन देन होते हैं और ये 0.4% शुल्क के दायरे में आ चुके हैं और विपक्षी दल अभी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे पर्सन टू मर्चेंट लेन देन में 2,000 रुपए से ज्यादा के 4% ही UPI भुगतान होते हैं, लेकिन इनका मूल्य कुल पैसों का 67% होता है। इसी तरह पर्सन टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों के बीच केवल 20% भुगतान 2,000 रुपए से ज्यादा के होते हैं, लेकिन इनका मूल्य 86% होता है। अब सरकार कह रही है कि पर्सन टू पर्सन की श्रेणी में तो कभी कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट में जो लेन देन होता है वो शुल्क के दायरे में आ जाएगा। और सरकार ने ऐसा सोचा क्यों वो भी देखिए। UPI भले ही आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे चलाने के लिए बैक एंड पर एक विशाल नेटवर्क काम करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में UPI और रुपे नेटवर्क को 24 घंटे बिना रुके सुरक्षित रूप से चलाने की सालाना लागत लगभग 20,000 करोड़ बैठती है। इनमें बैंकों के हाई स्पीड सर्वर, इंटरनेट बैंडविड्थ और सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने की टेक्नोलॉजी पर लगातार अपग्रेडेशन का खर्च शामिल होता है। यही नहीं, अब तक इस भारी भरकम खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार बैंकों को खुद सब्सिडी देकर उठा रही थी। जैसे पिछले बजट में इसके लिए 2000 करोड़ की सब्सिडी दी गई और 2021 से 2025 के बीच 8,276 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यानी UPI मुफ्त जरूर मिल रहा है, लेकिन इसकी भी एक कीमत है और अब तक इस कीमत को सरकार ने सब्सिडी देकर चुकाया है। सरकार की सोच यह है कि जब UPI पर हर साल 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पिछले साल 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तब हमेशा के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से इसे मुफ्त रखना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। और इसीलिए सरकार की सोच यह है कि जो कंपनी और व्यापारी इसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं उनसे इसका शुल्क वसूला जाए। यहां कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि डिजिटल पेमेंट से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और नोटों की छपाई का खर्च बचता है, जिससे देश का को सीधा फायदा होता है। इसीलिए जब आम नागरिक पहले से टैक्स दे रहे हों तो इसी टैक्स के पैसे से UPI को मुफ्त रखना एक बेहतर पब्लिक गुड निवेश है, न कि इस पर अतिरिक्त चार्ज लगाना। सरकार अभी 5,000 करोड़ रुपए हर साल नोटों की छपाई पर खर्च कर रही है। हमारे देश में कैश का चलन नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ है। जून 2016 में हमारे देश में 17,33,000 रुपए का कैश बाजार में था, जबकि 30 जून 2026 को हमारे ही देश में 42,94,000 करोड़ रुपए का कैश चलन में है। यहां यह भी समझना होगा कि UPI की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में अकेले UPI की हिस्सेदारी 49% है और अभी UPI के हर दिन 66 करोड़ बार पेमेंट की जाती है। इसके अलावा UPI 11 देशों में मौजूद है, जिनमें UAE है, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव्स शामिल हैं। ऐसे में अगर UPI में बड़े बदलाव होते हैं तो पूरी दुनिया इसे देखेगी और यह भी तब होगा जब UPI की सफलता अब तक अभूतपूर्व रही है। UPI से होने वाले लेन देन 2016 के बाद 13,000 गुना बढ़े हैं और इससे होने वाले भुगतान में 4,000 गुना की वृद्धि हुई है। यहां आप ये भी समझिए कि आप जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान करते हैं तो उस पर भी मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से यह शुल्क लिया जाता है और यही वीजा और मास्टर कार्ड की कहानी जुड़ती है। असल में पहले ज्यादा भुगतान इन्हीं कंपनियों के कार्ड से किए जाते थे और इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब पैसा मिलता था, लेकिन जब मुफ्त UPI से भुगतान आसान हो गया तो इन कंपनियों को कम शुल्क मिलने लगा और इससे ये कंपनियां नाराज होकर UPI के विरोध में अमेरिकी सरकार के पास शिकायत भी लेकर गईं। और अभी विपक्ष यह आरोप भी लगा रहा है कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में UPI लेन देन पर शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खोला। हालांकि सरकार बार बार इन आरोपों को गलत बता रही है।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था। अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहां ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं, ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कोई एडिशनल चार्ज किसी भी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% के अराउंड और उससे ज्यादा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लेस देन 2000 रुपीस होते हैं, और उसके ऊपर में भी कोई चार्ज कस्टमर पर नहीं लगने वाला है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी झूठ न्यूज क्यों फैला रही है? क्योंकि आजकल राहुल गांधी की आदत हो गई है, उनकी टीम उनको सुबह सुबह कहती है कि सर आपको झूठ की गूंज करनी है, कोई ना कोई मुद्दे पे या तो झूठा ट्वीट करिए या झूठा स्टेटमेंट दीजिए।
0: भारत अकेला देश नहीं है जहां डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट्स के लिए एक निश्चित शुल्क लगाया है। अगर चीन की हम यहां पर बात करें तो चीन में यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान पर 0.38% से 0.6% तक शुल्क लगाया जाता है। अमेरिका में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का चलन ज्यादा है, इसीलिए वहां कार्ड से खरीदारी पर व्यापारियों को 1-3% तक कुल शुल्क देना होता है। जापान में भी यही शुल्क कुल राशि का 2-3% तक होता है, और ये देश डिजिटल भुगतान के खर्च के लिए सब्सिडी नहीं देते, लेकिन भारत सरकार को हर साल 2000 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च करने पड़ रहे हैं, और सब्सिडी का ये पैसा टैक्स पेयर्स की ही जेब से जाता है, जबकि सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर्स का पैसा विकास के कामों में लगे, और जो व्यापारी मुफ्त यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं वो यूपीआई लेन देन पर कुछ शुल्क भरे, और ये व्यवस्था सब्सिडी पर ही न चलती रहे। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जिस इसराइल को सऊदी अरब मान्यता तक नहीं देता, उसी सऊदी अरब को हूती के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इसराइल से मदद मांगनी पड़ी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से हूती विद्रोहियों के खतरे के खिलाफ खुफिया सहायता मांगी थी, और यह संपर्क सीधे इसराइल को फोन करके नहीं साधा गया था। इसकी जगह सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम से बात की, और इसके बाद सेंटकॉम ने इसराइल से बात करके सऊदी अरब की मदद कराई और उसे बाबल मंदेब में हूती लड़ाकों से जुड़ी खुफिया जानकारी दी गई। सरल भाषा में कहें तो सऊदी अरब यह जानना चाहता था कि बाबल मंदेब में हूती के लड़ाके क्या कर रहे हैं, कहां छिपे हैं, उनके पास कितने हथियार हो सकते हैं, और यह जानकारी ऐसा दावा है कि इसराइल ने अमेरिका के जरिए सऊदी अरब को दी, और यह भी तब हुआ जब सऊदी अरब इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता तक नहीं देता, और न ही सऊदी अरब के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। 1948 में जब इसराइल का गठन हुआ था उसी वक्त सऊदी अरब ने इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब ने 1948 के पहले अरब इसराइल युद्ध और फिर 1967 के सिक्स डे वॉर में इसराइल के खिलाफ लड़ रहे अरब देशों को आर्थिक और सैन्य मदद भेजी थी। 1973 में जब अरब के मुस्लिम देशों का इसराइल से युद्ध हुआ तब भी सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक देशों ने इसराइल का समर्थन करने वाले देशों को, खासकर अमेरिका को, तेल की सप्लाई रोक दी थी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। लेकिन सोचिए आज तस्वीर इस तरह से बदली है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान ने मक्का समझौते के बावजूद हूती के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की मदद करने से इनकार कर दिया तो सऊदी अरब को अमेरिका के जरिए उसी इसराइल से मदद लेनी पड़ी, और यह भी तब हुआ जब यमन में हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे में 54 हवाई हमले करने का दावा किया है।

अब आपको ये बताते हैं कि अलकायदा से लेकर आईसिस, तालिबान, बोको हरम, हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे आतंकवादी संगठनों के पास टोयोटा की हाइलक्स कार आती कहां से है, और ये गाड़ी आतंकवादियों की मनपसंद गाड़ी कैसे बन गई, और इसे कोड वर्ड में टेक्निकल क्यों कहा जाता है। यमन के हूती विद्रोहियों के कई वीडियो आए, इनमें बड़ी संख्या में पिकअप गाड़ियां दिखाई दी और इन गाड़ियों पर मशीन गन और रॉकेट जैसे हथियार लगाए गए थे, फिटेड थे। दावा है कि हूती इन गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता है, और इनमें भी टोयोटा की हाइलक्स सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली गाड़ियों में से एक है। और कैसे इन सभी गाड़ियों पर हूती के लड़ाके, उसकी मशीन गन को दिखाया गया है, उसे आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं।

हुती पहला ऐसा संगठन नहीं है जिसने इस कार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। 2014 में आइसिस ने भी इराक और सीरिया में सफेद टोयोटा हाइलक्स के विशाल काफिलों का प्रदर्शन कर इस गाड़ी को एक तरह से अपना ब्रांड व्हीकल बना दिया था। उससे पहले 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा करने से लेकर 2021 में दोबारा सत्ता में आने तक तालिबान के लड़ाकों ने भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया और ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी गुटों ने भी अफगानिस्तान और यमन के पहाड़ी इलाकों में इसका जमकर इस्तेमाल किया, जबकि लेबनन के हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही, फिलिस्तीन में हमास और 1970-80 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के कई गुरिल्ला संगठनों ने इस गाड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? मुख्य रूप से इसके पीछे चार वजह है। पहली वजह यह है कि टोयोटा हाइलक्स को गाड़ियों की दुनिया में अमर माना जाता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी हो, बिना सड़कों के पथरीले रास्ते हो, हर तरह के कबाड़ ईंधन पर भी इसका इंजन बिना रुके चलता है। और क्योंकि ज्यादातर आतंकी संगठन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिप कर रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा इस गाड़ी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह यह है कि मिलिट्री ग्रेड के बख्तरबंद वाहनों की तुलना में इसकी मरम्मत बेहद आसान है। इसके स्पेयर पार्ट्स दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि हाइलक्स का पिछला हिस्सा फ्लैट बेड यानी खुला और बहुत मजबूत होता है। इसके कारण इसमें बिना किसी खास बदलाव के भारी कैलिबर के मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर या एंटी एयरक्राफ्ट गन फिट किए जा सकते हैं और इस वजह से भी ये गाड़ी आतंकियों की मनपसंद बताई जाती है। चौथा कारण है रफ्तार और फुर्ती। जहां सेना के भारी टैंक और हमवीज दलदल या रेत में फंस जाते हैं, वहीं हाइलक्स अपनी क्षमता की बदौलत बिजली की रफ्तार से हमला करके गायब हो सकते हैं। और इसकी क्षमता दुनिया ने 1987 के उस युद्ध में देखी जो चाड और लीबिया के बीच लड़ा गया था। उस वक्त फ्रांस ने मुअम्मर गद्दाफी के लीबिया को हराने के लिए चाड को 400 टोयोटा हाइलक्स और लैंड क्रूजर पिकअप दिए और इनके साथ एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दी। इससे इन गाड़ियों ने युद्ध का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। इन गाड़ियों ने लीबिया के भारी भरकम टैंकों को कई बार चकमा दिया और अचानक हमले किए और इसी वजह से इस संघर्ष को बाद में टोयोटा वॉर भी कहा गया था। और यहां यह भी देखिए कि ये गाड़ियां आखिर इन आतंकी संगठनों तक पहुंचती कैसे हैं। अब जापान की टोयोटा कंपनी सीधे तौर पर आतंकी संगठनों को ये गाड़ियां नहीं बेचती है और उसकी इस पर सख्त रोक की नीति भी है, लेकिन आतंकी मुख्य रूप से चार जुगाड़ लगाकर इस टोयोटा हाइलक्स को हासिल कर लेते हैं। इनमें पहला तरीका है दूसरे देशों से इन गाड़ियों की चोरी कराना और उन्हें तस्करी के जरिए लीबिया, इराक, सीरिया और यमन लाना। इनमें भी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से हर साल हजारों टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां चोरी होती। इन्हें संगठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट नेटवर्क के जरिए छुपाकर संघर्ष क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए अकेले ऑस्ट्रेलिया वहां 2000 से ज्यादा, ब्रिटेन में 584, मलेशिया में 370 टोयोटा हाइलक्स चोरी होती हैं और बाद में इन्हें आतंकी संगठनों को बेच दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और दूसरे मानवाधिकार संगठन कई देशों में बड़े पैमाने पर इस टोयोटा हाइलक्स कार का इस्तेमाल करते हैं और आतंकी संगठन अक्सर इन काफिलों पर हमला करके इन गाड़ियों को लूट लेते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश कई बार सीरिया या इराक के स्थानीय विद्रोही गुट या वहां की सरकारी सेना को मदद के रूप में ये गाड़ियां देते हैं और जब वो गुट युद्ध हारते हैं तो ये गाड़ियां सीधे आइसिस या तालिबान के हाथ लग जाती। चौथा, कई बार ये आतंकी संगठन शेल कंपनियां बनाकर इन गाड़ियों को चोरी के रास्ते से खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए आप एक तस्वीर को देखिए, ये साल 2014 की है। उस वक्त सीरिया में लड़ रहे आतंकियों के एक वीडियो में एक टोयोटा जैसा फोर्ड का ट्रक दिखा जिस पर अमेरिका के टेक्सास के एक आम प्लम्बर की दुकान का नाम और फोन नंबर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। जांच हुई तो पता चला कि इस प्लम्बर ने अपनी पुरानी गाड़ी अमेरिका के एक डीलर को बेच दी जो ब्लैक मार्केट के रास्ते घूमते घूमते सीरिया में इन आतंकियों के पास पहुंच गई और हो सकता है कि हूती विद्रोहियों के पास भी इसी तरह तस्करी के जरिए ये टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां पहुंचाई गई।

अब आपको बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर के बारे में बताते हैं। कूटनीति की दुनिया में सॉफ्ट पावर उस ताकत को कहा जाता है जिसमें बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के कोई देश अपनी संस्कृति, मूल्यों और कला के दम पर दुनिया के दूसरे देशों को प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर उसका हॉलीवुड और गूगल जैसी टेक कंपनियां हैं। चीन की सॉफ्ट पावर उसकी उत्पादन क्षमता है। जब मेड इन चाइना सामान दुनिया के बाजारों में पहुंचता है तो इससे चीन की छवि मजबूत होती है। दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर उसका के पॉप यानी कोरियन पॉप कल्चर है। जर्मनी की सॉफ्ट पावर उसकी मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन जैसी लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। और अब भारत के लिए उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर उसकी संस्कृति, बॉलीवुड, संगीत, योग, मसाले, नृत्य, भाषा और परंपराएं बन रही हैं। ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ब्रिक्स समिट के लिए भारत दौरे पर आए तो उनका यह दौरा बॉलीवुड गानों पर एक नई कूटनीति लिख रहा था। उन्होंने ब्रिक्स की बैठक, सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात और ब्रिक्स समिट के बाद भारत से विदाई का अपना जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियोज, उन सब वीडियो में बॉलीवुड के गानों का इस्तेमाल मन भर के किया। इनमें भी गाला डिनर के एक वीडियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक पियानो वादक के साथ मिलकर किशोर कुमार का सदाबहार गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गा रहे थे और जब लोगों ने उनके इस अंदाज को देखा तो दंग रह गए। इसके पीछे कारण यही था कि मलेशिया एक इस्लामिक देश है जहां बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 65% है और खुद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के गानों, भारतीय संस्कृति को लेकर वो इतने सहज दिख रहे थे। उनके व्यवहार से भारत की सॉफ्ट पावर का पता चल रहा था। हम चाहते हैं कि आप एक बार पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों बॉलीवुड को दुनिया इतना मानती है।

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें भी उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक गाने का इस्तेमाल किया है।

0: मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाई और इंडोनेशिया भी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसीलिए यहां इस बात पर बिल्कुल भी मत चौंकिए कि मुस्लिम देशों के शीर्ष नेता और अधिकारी बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति के फैन हैं, क्योंकि यहां बात धर्म की है ही नहीं, यहां बात है भारत की सॉफ्ट पावर की और इस सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड की फिल्मों और गानों ने बड़ी भूमिका निभाई है।
1: बोल चुरिया तेरे संजना आयु मेघनी गिर संजना लच्चा लच्चा सॉरी लच्चा लच्चा थैंक यू।

0: अगर सिर्फ मलेशिया की बात करें तो मलेशिया बॉलीवुड फिल्मों के इतना करीब इसीलिए रहा क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले पारिवारिक मूल्य, माता पिता का सम्मान, परंपराएं, रोमांस, शादियों के रीति रिवाज मलेशिया के मलय समाज की अपनी संस्कृति से काफी मेल खाते हैं और यही कारण है कि हॉलीवुड की तुलना में मलेशिया के लोगों को बॉलीवुड में ज्यादा सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस होता है। इन्हीं कारणों से 2008 में मलेशिया के मलक्का राज्य ने बॉलीवुड के बड़े एक्टर शाहरुख खान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक दातुक की उपाधि से नवाजा था जो ब्रिटेन के सर या नाइटहुड के बराबर होती है। इसके अलावा अगर सिर्फ प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बात करें तो उनका भारत से काफी गहरा जुड़ाव रहा है। 1990 के दशक में अनवर इब्राहिम और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों अपने अपने देशों के वित्त मंत्री थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। ऐसी गहरी दोस्ती कि अनवर इब्राहिम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरे भाई कहकर संबोधित करते थे। जब अनवर इब्राहिम को मलेशिया की आंतरिक राजनीति के कारण जेल जाना पड़ा तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके बच्चों को भारत में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश तक की थी और यही कारण है कि अनवर इब्राहिम भारत और बॉलीवुड के इतने करीब रहे। सच कहें तो जितना प्रचार सॉफ्ट पावर के रूप में अमेरिका ने हॉलीवुड का किया उतना प्रचार भारत ने बॉलीवुड को लेकर नहीं किया, जिसका कई लोग ये मतलब निकालते हैं कि भारत बॉलीवुड को अपनी सफल सॉफ्ट पावर नहीं बना पाया, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। आजादी के ठीक बाद भारत के पास बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी, लेकिन राज कपूर की आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने सोवियत संघ में इतिहास रच दिया था। उस वक्त रूस के लोग राज कपूर के दीवाने थे और रूसी भाषा में डब किया गया गाना सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रूस की गलियों में गूंजा करता था। इसके अलावा उस दौर में राज कपूर और नरगिस की फिल्मों में दिखने वाला समाजवाद, गरीबी से संघर्ष और मानवीय मूल्य सोवियत संघ और चीन के विचारधारा से मेल खाते थे और इसने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान रूस के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों की एक मजबूत जमीन तैयार की थी। आज अगर रूस भारत के इतना करीब है तो इसके पीछे बहुत सारी वजहों में एक छोटी सी वजह बॉलीवुड भी है और यहां बात सिर्फ सोवियत संघ और चीन की भी नहीं है। 1970 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने मिस्र, मोरक्को, नाइजीरिया जैसी अफ्रीकी देशों में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। उस वक्त मिस्र के लोग अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस कदर प्यार करते थे कि जब वो वहां गए तो काहिरा की सड़कें जाम हो गई थी। इन देशों के तानाशाहों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम जनता को अमिताभ बच्चन के किरदारों में व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज दिखती थी और खाड़ी देशों में बॉलीवुड फिल्मों के प्रति दीवानगी ने भारत के लिए वहां तेल व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों के रास्ते आसान किए। जब 1990 का दशक आया तब 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में आई, तब इन बॉलीवुड फिल्मों ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रह रहे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ा था। और आपको याद होगा 2015 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर डायलॉग बोला था और उस वक्त भी बॉलीवुड के प्रभाव की काफी चर्चा हुई थी।
1: सिनोरिता बड़े बड़े देशों में यू नो व्हाट आई मीन सो
0: तो इस पूरी खबर का निचोड़ यह है कि जब भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है तब इसमें हर चीज की अपनी भूमिका है और जो बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर है वो भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ रही है।

0: पिछले करीब 3 से 4 दिनों से केदारनाथ यात्रा रुकी हुई थी और इसकी वजह थी पहाड़ों पर हो रही बारिश, चीरबासा में हुए लैंडस्लाइड। चीरबासा में पिछले 3 से 4 दिनों में एक ही क्षेत्र में कई बार भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। सबसे पहली घटना 11 तारीख को हुई थी, जब भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया था। इस वजह से यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया था। भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर बड़े पत्थर गिर गए थे और यात्रा रोकनी पड़ी। यात्रा मार्ग पर पहाड़ का मलबा आया तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इससे यात्रियों को आगे भेजना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन यात्रा को रोक दिया था।
1: लेकर के पूरे एरिया में पत्थर गिरे हैं।

0: लेकिन इसके बाद इसी क्षेत्र में 14 सितंबर को इसी जगह पर दूसरी बार भूस्खलन हुआ। हालांकि एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात थी, इसीलिए मलबा हटाने का काम बहुत तेजी से किया गया। इससे यात्रा को दोबारा शुरू करने में मदद मिली। हालांकि अब भी इस पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और पत्थरों के दरकने का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक नया नियम बना दिया है। अब से हर यात्री को हेलमेट पहनकर केदारनाथ यात्रा करनी होगी। दरअसल पिछले एक हफ्ते के भीतर पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदला है, पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन चाहता है लोग चोटिल न हो, इसीलिए 100 से 200 के जत्थे में श्रद्धालुओं को केदारनाथ यात्रा पर भेजा जा रहा है और इसके लिए राहत बचाव के लिए पहुंची टीमें यात्रियों की मदद कर रही है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और उसके कई कारणों में से दो मुख्य कारण हैं, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण। इसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं। पिछले एक दशक में उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने जैसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार 2015 से 2024 के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की करीब 12,758 घटनाएं हुई। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा भूस्खलन हुए। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में आता है और इसी साल 9 सितंबर तक रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन की वजह से 56 बार सड़कों को बंद करना पड़ा। इस साल पूरे उत्तराखंड में 1,423 सड़कें भूस्खलन की वजह से बाधित हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तराखंड में हिमालयन रेंज के पहाड़ हैं और ये दुनिया की सबसे युवा पहाड़ी रेंज है। इसी वजह से यहाँ पर भूस्खलन और भूकंप का खतरा अन्य पहाड़ी रेंजेस की तुलना में ज्यादा रहता है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रहा अनियंत्रित निर्माण भी उन्हें कमजोर कर रहा है। अनियंत्रित निर्माण और बड़ी संख्या में लोगों का पहाड़ों पर जाना हर दिन खतरे को बढ़ाता है। जहां तक केदारनाथ यात्रा की बात है तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी ने यात्रियों की तादाद तय करने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश में कहा गया था कि केदारनाथ यात्रा पर हर दिन केवल 5,000 यात्रियों को ही भेजा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने 12,000 से 13,000 यात्रियों की सीमा तय की थी। हालांकि इस बार तो स्थिति यह है कि हर दिन करीब 28,000 से 30,000 यात्री केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और इस साल अब तक 14,92,000 यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अब बात गुरुग्राम हिट एंड रन केस की। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। पलवल के कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दौसा भाग गया था। ये पूरा मामला एक महिला बाइकर शिवानी चौहान को कार से टक्कर मारने से जुड़ा हुआ है। शिवानी रविवार को अपने बाइकर दोस्तों के साथ गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर थी। उसी दौरान कल्याण बैसला अपनी गाड़ी से आया। उसने पहले तो शिवानी को रुकने का इशारा किया, फिर जब शिवानी अपनी बाइक से आगे निकल गई तो उसका पीछा करके जानबूझ के साइड से तेजी से निकलते हुए टक्कर मार दी। इस टक्कर से शिवानी बाइक से गिर गई, उन्हें चोटें भी लगी। टक्कर मारने के बाद आरोपी कल्याण बैसला फरार हो गया था। अब पुलिस ने आरोपी कल्याण बैसला को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक इस केस को एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा रहा था जिसमें आरोपी भाग गया था, लेकिन वीडियो में कल्याण बैसला की हरकतें देखकर इस केस को महिला बाइकर की हत्या के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है और पुलिस ने FIR में इससे जुड़ी BNS की धारा 109 को जोड़ दिया है।
1: देखिए, उसने कुछ कमेंट पास किया है तो वो अभद्र कमेंट है। उसमें आप अब एब्यूजिव कह सकते हैं उसे। ड्रिंक एंड ड्राइव से तो ज़्यादा संज्ञान है इस अपराध में। जो ये धाराएं हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, जो 307 हैं। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की, उन्होंने अटेम्प्ट किया है अपनी तरफ से। मतलब उनकी नीयत जो थी, इंटेंट जो उसके पीछे था, वो उनसे उनको मारने का ही था।
2: इंटेंशन थी
1: जी।
0: इस केस में अब गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित का बयान भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को रिमांड मांगी है। आरोपी की रिमांड ताकि ये पता चल सके कि आरोपी ने किस मकसद से महिला बाइकर को टक्कर मारी। अभी तक इस केस को लेकर पीड़ित शिवानी चौहान सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हमने उनसे बात की है, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया है।
2: मैं जा रही थी बाइकर वन कैफे जिसे हम कहते हैं, और वो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे। मैंने उसको बहुत बाद में नोटिस करा कि वो मेरे आसपास चल रही है। पहला इंसिडेंट था कि जब वो गाड़ी मेरे साइड से बहुत तेज़ी से निकली थी, और तब मैंने इतना नोटिस नहीं करा, मुझे लगा कि कहीं पे भाई कोई गाड़ी होगी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट था, जब वो मेरे साइड में आके जब वो कुछ मतलब एक बार उन्होंने थम्सअप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे। उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा कि वो गाड़ी कितनी तेज़ी से पीछे आ रही है। जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज़ आती है और वो ठोके निकल जाते हैं।
0: पिछले कई दिनों से इस बात पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है कि क्या एआई इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन रहा है, या फिर एआई की रफ्तार रोकने का यह दांव चीन की घेराबंदी का नया पैंतरा है। एआई को लेकर छिड़ी इस बहस का नतीजा शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही एआई के दम पर रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा ग्लोबल मार्केट अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। बाजार में डर इस बात का नहीं था कि तकनीक रुक गई है, बल्कि डर इस बात का था कि तकनीक बनाने वाले खुद इससे डर गए हैं। देखते ही देखते सेमीकंडक्टर, चिप मेकर्स, क्लाउड कंपनियों की वैल्यूएशन में अरबों डॉलर का कट लग गया। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक एनवीडिया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेल जैसी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए। आखिर यह पैनिक फैला कहां से? दरअसल एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने कहा कि एडवांस्ड एआई मॉडल विकसित करने की रफ्तार को धीमा किया जाना चाहिए। इस मांग का समर्थन ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क ने भी कर दिया। इससे पहले एंथ्रोपिक के रिसर्चर जेकब कॉक्सन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि इंसानी वजूद के लिए खतरा है एआई। इसके बाद एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि उसके क्लॉड एआई का इस्तेमाल हथियार बनाने, साइबर हमलों और जासूसी के लिए हो रहा है। खतरे की घंटी बजी तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III ने खुद कमान संभाल ली। इस हफ्ते बकिंगम पैलेस में एनवीडिया, गूगल डीप माइंड, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के हेड को तलब किया ताकि एआई के खतरे से इंसानी वजूद को बचाने के लिए साझा नियम बनाए जा सके। कहानी में असली मोड़ यहीं से आया जिस वक्त पश्चिमी टेक दिग्गज एआई से तबाही का खौफ बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने इस पूरे नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तीखा हमला बोलते हुए लिखा, एआई को धीमा करने की अमोदेई की अपील नाटक है। असल में यह चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने के लिए तैयार की गई कोल्ड वॉर प्लेबुक यानी शीत युद्ध की रणनीति है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी तकनीकी तानाशाही बनाए रखने के लिए डर का माहौल बना रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि टेक्नोलॉजी को रोकने और डर फैलाने के बजाय इसे सबके लिए खुला और समावेशी बनाना होगा। चीन के इस रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी समझा जा सकता है। ट्रंप ने एआई की रफ्तार को धीमा करने की मांगों को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि वो एआई की रेस में सबसे आगे हैं और अब चीन से पिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो एआई की दौड़ जीतेगा वही दुनिया पर राज करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सिलिकॉन वैली के टेक दिग्गज एआई बना रहे हैं, इसके दम पर लाखों करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, अब वही कह रहे हैं कि एआई से खतरा है। सदियों पुरानी एक कहावत है, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन रिश्ते, मां की ममता कभी पैसों से नहीं मिलती। लेकिन 21वीं सदी के इस डिजिटल दौर में बाजार ने इस कहावत को भी बेकार कर दिया है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खबर आई है अमेरिका से, जहां अपने घर से दूर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए छात्रों की देखभाल के लिए अब बाकायदा लोकल मॉम किराए पर मिल रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीमार होने पर दवा खिलाने से लेकर कपड़े धुलवाने तक सब कुछ आर्ली रेट पर एक घंटे के रेट पर उपलब्ध है। एनवाईटी की केस स्टडी के मुताबिक तस्वीरों में दिख रही 56 साल की मिंडी हॉविट्स वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दर्जनों छात्रों के लिए किसी माँ से कम नहीं है। अचानक तबीयत खराब होने पर गर्मा गर्म सूप पहुंचाना हो, आधी रात को अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाना हो, खराब लैपटॉप रिपेयर करवाना हो, हॉस्टल के कमरों की साफ सफाई करनी हो, ये कैंपस मॉम्स हर काम चुटकी में कर देती हैं। पेरेंट्स को इसे एक तरह का भावनात्मक भरोसा मान रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये ऐसा है जैसे शहर में माँ की बेस्ट फ्रेंड रह रही हो, जिन पर पूरा भरोसा तो है लेकिन डांट पड़ने का कोई डर भी नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इस तरह की मॉम्स का ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। दूर दराज शहरों में बैठे पेरेंट्स हजारों डॉलर फीस देकर अलग अलग स्टार्टअप्स के जरिए अपने बच्चों के किराए की मां बुक कर रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर।

0: तो कोई बैट्समैन होता है, और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
2: एक तो एक
3: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: लेके जन्म पहला पहला कदम।
9: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। The E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रुपए का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर जेपी नड्डा बोले पीएम का मंत्र ज्ञान, गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी हंगामा, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर, सीएम मान। और आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और गिरफ्तारी, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक की शुरुआत यूसीसी को लेकर एनडीए में मचे राजनीतिक घमासान। गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 2029 तक एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद टीम एनडीए में हलचल तेज हो गई। बिहार में बीजेपी के दो बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने यूसीसी पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू की टॉप लीडरशिप की महत्वपूर्ण बैठक हुई और यही कारण है कि टीम एनडीए यूसीसी का खुला समर्थन करेगी। इसे लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी यूसीसी पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनेगी और साथ ही चिराग पासवान भी।
1: क्या यूसीसी पर बीजेपी को झटका देंगे नीतीश? क्या टीम एनडीए में यूसीसी पर बड़ा मतभेद है? शाह का ऐलान, एनडीए में छिड़ गया घमासान। क्या यूसीसी है बहाना, 2027 चुनाव निशाना? यूसीसी पर एनडीए में कौन कौन विरोध में है? शाह का यूसीसी वाला दांव, एनडीए में तनाव।
2: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: 2024 में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सहयोगी दलों के सपोर्ट पर मोदी सरकार टिकी हुई है, मतलब गठबंधन के साथ ही बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। भले ही नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़कर बीजेपी को सौंप दी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने 2029 तक सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू होने की उम्मीद जताई, वैसे ही नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। आज यूसीसी पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर पहुंचे। इससे पहले सुबह नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर ललन सिंह गए थे। दोनों के बीच चर्चा हुई और फिर जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया
3: कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया है कि प्रावधानों को देखने के बाद उसके संबंध में सीधे गृह मंत्री जी से चर्चा होगी, श्री अमित शाह जी से, और उसके बाद हम लोग की पार्टी बैठेगी, पार्टी में फिर विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
1: बीजेपी के लिए जेडीयू का संदेश एकदम स्पष्ट है, यूसीसी पर नीतीश कुमार खुला समर्थन देने के मूड में नहीं है। जेडीयू का मानना है कि यूसीसी का मसौदा सामने आने के बाद ही तय होगा कि वो समर्थन में है या विरोध में। सरल शब्दों में समझें तो यूसीसी को लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किसी तरह के दबाव में नहीं है। ठीक ऐसे ही चिराग पासवान ने भी यूसीसी पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चिराग पासवान यूसीसी पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत का सामाजिक ताना बाना विविधता पूर्ण है, हर वर्ग की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं। संविधान ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। 5वीं-6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 371A और 371G और अब तक की हर संहिता में अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट इसका प्रमाण है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समानता और विविधता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रारूप सार्वजनिक हो, सभी हितधारकों के हितों का अवलोकन हो, व्यापक विचार विमर्श हो, तत्पश्चात अवलोकन उपरांत पार्टी अपना मत रखेगी। बिहार में एनडीए के दो अहम सहयोगियों ने यूसीसी पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों के रुख को लेकर भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यूसीसी के बहाने नीतीश और चिराग पर निशाना साधा है।
4: जनता दल यूनाइटेड से पूछिए, उनका क्या स्टैंड है? ये तो उन लोग के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनका क्या स्टैंड है। सरकार के पार्ट तो वो हैं बिहार में, तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना।
1: आरजेडी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। यूसीसी को लेकर आरजेडी का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। बीजेपी यूसीसी को हथियार बनाकर मुस्लिमों के अधिकारों पर डाका डालना चाहती है।
5: यूसीसी लागू नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सब धर्मों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है और संविधान जो बना है संविधान का भी उसमें उल्लेख है।
1: मामला मुस्लिम वोटरों से जुड़ा है, लिहाजा आरजेडी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि यूसीसी का समर्थन एनडीए के सहयोगी दलों को भारी पड़ सकता है।
0: बिहार के सहयोगी दलों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान यूसीसी का ड्राफ्ट देखने के बाद समर्थन या विरोध का निर्णय लेंगे। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी दल यूसीसी को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको यूसीसी पर टीम एनडीए की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने यूसीसी का समर्थन किया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी भी यूसीसी के समर्थन में है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। मतलब टीम एनडीए में यूसीसी को लेकर सभी दल एक पेज पर नहीं है। बीजेपी को यूसीसी को लेकर सभी सहयोगियों को अपने पाले में लाना होगा। दरअसल बीजेपी के सियासी एजेंडे में यूसीसी हमेशा से रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर यूसीसी को देश के लिए जरूरी बता चुके हैं।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे?
2: हमारा मिशन अभी भी जारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है।
0: 1989 के चुनाव में पहली बार कॉमन सिविल कोड को घोषणा पत्र में शामिल किया गया। 2014, 2019 और 2024 में मोदी की अगुवाई में लड़े गए चुनाव में भी यूसीसी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। यूसीसी पर बीजेपी के चुनावी एजेंडे को उस वक्त ताकत मिली जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि देश के लिए यूसीसी जरूरी है। साफ है यूसीसी की राह में बीजेपी को कानूनी बाधा नजर नहीं आती।
3: स्टेट्स को इस बात की छूट है भारत के संविधान में कंकरेंट लिस्ट होने के कारण, तो वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अपेक्षा है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। बाबा विश्वनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, विंध्यवासिनी माँ का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, कसकर होगा और बड़े बुलंदी और विश्वास के साथ होगा, मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी बात की अपेक्षा है जिसको संविधान के निर्माताओं ने कहा था।
0: कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी अपने चुनावी फायदे से जोड़कर देखती है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। मतलब यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसे धर्म के चश्मे से सीधे मुस्लिमों से जोड़कर देखा जाता है।
4: यूसीसी कोई इक्वालिटी के लिए बीजेपी नहीं कर रही, सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए।
5: जब हम तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ।
6: आज हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का अलहदा अलहदा पर्सनल कानून है। आप उन कानूनों को 21 जगह बना देंगे, ये एक जिद है मुसलमानों के खिलाफ।
7: मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई जरूरत नहीं है। ये मुख्तलिफ तहजीबों के, कल्चर के और ट्रेडिशन के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और सब अपने अपने पर्सनल लॉज पर इस मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए अमल करते हैं।
0: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिहाजा यूसीसी का मुद्दा जैसे ही सियासी हलकों में गूंजा, अखिलेश यादव की एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने यूसीसी का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और ही है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। दूसरी तरफ संजय राउत ने यूसीसी को आरएसएस के एजेंडे से जोड़ा, आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है।
8: हम सब लोग मानते हैं कि देश में सबके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन जब आप राजनीति करते हो समान नागरिक कानून के बारे में तो हमारा विरोध रहेगा। आप चुनाव के लिए राजनीति मत करिए, और ये करने के बावजूद भी अमित शाह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने।
0: विपक्ष यूसीसी को लेकर बीजेपी की नीति और नियत को लेकर सवाल उठा रहा है। यूसीसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी टिप्पणी की है।
9: अगर आपके पास नंबर है तो पार्लियामेंट में लाइए, अलग अलग रियासतों से क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी इनके खुद के एनडीए में हर कोई इससे सहमत है नहीं। खबरों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने तो सीधे हाथ ऊपर किए और कहा ये बिहार में लागू नहीं होगा, तो अगर उनके खुद के लोग जो हैं इसके लिए तैयार नहीं हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि ये पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए।
0: कांग्रेस के नेता मानते हैं कि यूसीसी बीजेपी का सियासी हथकंडा है, लेकिन एनडीए में शामिल दल अमित शाह के इस एजेंडे को पूरा नहीं होने देंगे।
10: तो मुझे लगता है ये बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में दिया गया एक ऐसा बयान है जो पूरी तरह एनडीए के आपसी एकता की टूटन को प्रदर्शित करता है।
0: अब देखना यही है कि यूसीसी सिर्फ चुनावी एजेंडा है या फिर धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून और सीएए की तरह मोदी सरकार राष्ट्रव्यापी यूसीसी की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आज तक ब्यूरो।
11: और अब खबर उत्तर प्रदेश की। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में खेला शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे, क्या जातियों के आधार पर गठबंधन भी बदलेगा। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के राजनीतिक मायने दिखने लगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीति यूपी में सरपट दौड़ रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको संजय निषाद ने कैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की, तो कैसे राजनीति के द्वार उनके लिए खुल गए।
0: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है, तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं।
12: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
0: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने यह बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
13: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
12: कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे, या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निडर। शायद 73 में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था। इस युग में
13: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
12: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा, और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
0: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत, और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
14: बीमार है माता प्रसाद जी, आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा, तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे आप।
15: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधान सभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मैं मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
16: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
0: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
11: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है तो अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत भी शुरू हो गई। ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जयंत ने अखिलेश से किनारा कर लिया, गठबंधन टूट गया, साथ छूट गया। तो आज 54 रुपया और पोल खोल देने वाली राजनीति अखिलेश और जयंत के बीच चलने लगी। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का घमासान छिड़ गया। और इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छिन गई। ऐसे अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइड करने का बीजेपी का आरोप कितना दमदार है ये देखिए।
0: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर 54 वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने 54 का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
17: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
18: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था सारी बातें नहीं बताई जाती, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
0: जयंत को अखिलेश का 54 वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
18: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
0: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
14: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
19: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो हम वहाँ, इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम वो खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए। सही कर
0: बीजेपी और एनडीए के सहयोगी अखिलेश को जैन चौधरी के खिलाफ बोलने पर घेर रहे हैं तो अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में लोहिया ट्रस्ट की कमान चाचा शिवपाल से लेकर अपने हाथों में ले ली। तो उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि पिछले दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में सभी 8 ट्रस्ट सदस्यों ने अखिलेश यादव को ट्रस्ट का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है।
20: समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है और समाजवादी पार्टी में आपस में बहुत बड़े स्तर पर आंतरिक मतभेद है, परिवार में टकराव और तनाव है।
19: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 3 साल थे। सदन के अंदर अखिलेश जी ने बयान दिया, आप खुद समाजवादी पार्टी से अलग होकर के उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी की सच्चाई को उजागर किया।
21: इसमें शिफ्टिंग जैसी कोई बात नहीं है। शिवपाल जी, अखिलेश जी दोनों एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं।
0: आपको बता दें कि जबकि 2017 में परिवार में हुए विवाद के दौरान राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी थी, यूपी में एक उठापटक दलित वोट बैंक को लेकर भी चल रही है। जी हां, जब अखिलेश पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच रोहिणी घावरी की एंट्री हुई है। स्विट्जरलैंड से भारत लौटने के बाद रोहिणी घावरी पश्चिमी यूपी में वाल्मीकि समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक तरफ तो वो चंद्रशेखर आजाद पर प्रहार करती हैं, दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर अखिलेश के पीडीए का हिस्सा बनने की बात भी कहती हैं।
22: देखिए अखिलेश जी अभी जिस तरीके से पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं और सभी समाजों को, सर्व समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो सभी को उचित हिस्सेदारी देते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश जी को मौका दिया जाएगा। इस बार, पिछली बार उन्होंने एक भी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया था, इस बार हमारी मांग है कम से कम 10 विधानसभाओं पर वो टिकट दें।
11: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे भारत की ड्रोन शक्ति पाकिस्तान की सांस अटकी। देखते रहिए दस्तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
25: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: एक तो एक
8: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: EU सोच बदलो और बैंक भी।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
6: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
7: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां। इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार, अटूट भरोसा,

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा,
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
7: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।

0: Hey guys, see you this side and please watch this video till end.
1: गुरुग्राम से आई ये तस्वीरें खौफ ज़दा कर देती हैं।
0: Hey guys, see you this side.
1: एक महिला बाइकर को कार सवार पहले धमकाता है, फिर टक्कर मारता है। महिला सड़क पर गिर जाती है। महिला बाइकर अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर निकली थी, तभी कार सवार मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वो महिला बाइकर को चेज करने की कोशिश कर रहा था।
0: वो मुझे स्टार्टिंग से चेज करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक।
1: ये सभी वीडियो बाइकर्स के हेलमेट और अन्य गियर्स में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार बेकाबू रफ्तार से महिला बाइकर की तरफ जाता है और उसे टक्कर मार देता है। हादसे के बाद पीड़िता का दोस्त कार वाले का पीछा करता है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताते हुए मौके से भाग जाता है। इसके बाद महिला बाइकर ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की और आरोपी को बेनकाब करने की कोशिश की।
0: कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ऊपर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया।
1: गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर खुद संज्ञान लिया और सेक्टर 56 थाने में आरोपी कार चालक के खिलाफ पहले केस दर्ज किया और फिर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।
2: इन्होंने बिना देखे, शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो। साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारत की ड्रोन शक्ति से कैसे पाकिस्तान की सांस अटकी है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस आयोजन का नाम ड्रोनाथन 2026 दिया गया। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत में सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। मतलब कम लागत और अधिक असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की शक्ति दुश्मन को दिखा रही है। आइए दिखाते हैं आपको भी।
4: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन, दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है। दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया। जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही है। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
5: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
4: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
6: We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
4: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही है। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
1: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
4: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
7: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेकनाइज फोर्सेस है जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस वेटल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
4: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब खबर सऊदी अरब और हूती के बीच छिड़े युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही अभी हमलों पर ब्रेक लगा है, लेकिन हूती और सऊदी अरब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। हूतियों का दावा है कि बीते कुछ घंटों में सऊदी अरब ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए, तो वहीं सऊदी अरब के कई शहरों को हूती ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी अरब पर हूती के हमलों ने नए युद्ध की घंटी बजा दी। सवाल यही कि क्या युद्ध का एक और मोर्चा दुनिया में अब खुल गया है।

0: सऊदी अरब पर हूती के हमलों से हाहाकार। मक्का तक हूती की मिसाइलों का हाई अलर्ट। सऊदी के 6 शहरों में गूंजा युद्ध का सायरन। यूएन में हूती के हमलों पर इमरजेंसी बैठक। खाड़ी के देशों में हूतियों के हमलों का डर। हूती से सऊदी अरब को बचाएगा इजराइल। मक्का पैक का हवाला देकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब को गच्चा दे दिया। हूती के हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। सऊदी ने तुर्की से मदद मांगी, लेकिन तुर्की ने भी सैन्य मदद से सीधा इनकार कर दिया। यही नहीं, सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रिंस से बात करने से भी इनकार कर दिया। मतलब संकट की घड़ी में पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका ने सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया है। ये तब है जब पिछले महीने पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया था, लेकिन अब ये दोनों देश सऊदी की मदद करने के बजाय बहाने बना रहे हैं। दूसरी तरफ हूती विद्रोही बाब अल मंदेब के करीब यमन के तटीय इलाके पर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर कब्जा जमा चुके हैं। ये पाइपलाइन दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 4% हिस्सा ले जाती है। ऐसे में सऊदी अरब ने अब इसराइल से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड की मध्यस्थता में बातचीत की। इसमें खुफिया मदद के जरिए हूतियों से निपटने की रणनीति बनाई गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी के प्रिंस सलमान ने हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर इसराइल से बातचीत की है। मकसद बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर बनरा रहे हूतियों के खतरे से निपटना है। इसराइल के साथ हुई मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने हूतियों के 54 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। माना जा रहा है कि ये हमले इसराइल से मिली खुफिया जानकारी के बाद सऊदी अरब ने किए हैं। सऊदी अरब का यही कहना है कि हूतियों के हमलों का निर्णायक जवाब देगा, लेकिन सऊदी के हमलों के ठीक बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में 13 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हमलों को देखते हुए सऊदी के खमीस बुशैर, आभा और ताइफ समेत कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। जानबूझकर और बार बार किए जा रहे हमलों की निरंतरता आतंकवादी हूती की चरमपंथी विचारधारा को साबित करती है, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाकर हिंसा फैलाई जा रही है। गठबंधन की संयुक्त सेना कमान अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के सेल्फ डिफेंस के सिद्धांत के मुताबिक राज्य की संप्रभुता और नागरिकों को इन जघन्य हमलों से बचाने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक निपटेगी। मतलब यही है कि हूती रुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि फ्रांस की अपील पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग में हूतियों के हमलों को लेकर चर्चा होनी है। जानकार मानते हैं कि हूतियों के खिलाफ अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को खुफिया जानकारी, सर्विलांस और हथियारों की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अमेरिका सैन्य कार्रवाई में शामिल हुआ तो अमेरिका और ईरान युद्ध कितना लंबा खिंचेगा कहना मुश्किल है।
1: I think the war is going to end immediately after the election.
2: Why?
1: I think the war will end immediately after the election.
2: Because?
1: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: ट्रंप के डर की वजह है ईरान की बारूदी तैयारी। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है, तेहरान किसी भी नए खतरे या युद्ध का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई अमेरिकी अधिकारियों को गलत फहमी थी कि बार बार दी जाने वाली धमकियों से ईरान का संकल्प बदल सकता है या ईरान को डराया जा सकता है। दुश्मन को ये समझना होगा कि ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं। अगर एक और युद्ध छिड़ता है तो ईरान पिछले संघर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत तकनीकी स्थिति से कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रिजाई ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ अब बातचीत नहीं होगी। बातचीत तभी होगी जब ईरान की शर्तें पूरी होंगी। हम अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोधाभासी संकेतों से विचलित नहीं हैं। जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध थोपा था, वो भी शांति वार्ता के दौरान। ईरान का दावा है कि परमाणु हथियारों का बहाना बनाकर ईरान को निशाना बनाया गया है।
3: न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें तो क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता है, और यूरेनियम को लेकर आपका क्या पोजीशन है? क्या वो एक नॉन निगोशियेबल है कि ईरान इनरिचमेंट करेगा?
4: आप जानते हैं कि अमेरिका प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम NPT के सदस्य हैं और इसके नियम साफ हैं। वो ईरान में परमाणु गतिविधियों पर रोजाना कड़ी नजर रखते हैं, उन्होंने आकर निगरानी की, लेकिन हमने सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के दायरे में रहकर किया। अगर हम परमाणु हथियार बनाना चाहते तो हम NPT के सदस्य नहीं बनते। अब वो हमारी जमीन पर हमला करने के लिए बहाने और वजहें ढूंढ रहे हैं। हमारे शहीद नेता, जिनका नेतृत्व और रुतबा बहुत ऊंचा है, और हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी जिनकी बात को अंतिम माना जाता है, उन्होंने कई बार कहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते। फिर भी यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं? उनके पास ऐसे कौन से पक्के दस्तावेज हैं या उन्हें क्या मिला है जिसके आधार पर उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया? ये सब झूठ है, ये ऐसे झूठ हैं जिनका वो प्रचार कर रहे हैं।
0: मतलब यही है कि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने ऐसी गलती की है जिसकी कीमत अमेरिका के साथ साथ खाड़ी के देशों को चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो
5: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Papa!
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
10: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
11: बिना चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पश्चिमी यूपी में इस बार की भी चुनावी सियासत कानून, किसान और मुसलमान के इर्द गिर्द बुनती जा रही है और इसी जंग में चवन्नी से लेकर सिक्के तक की सियासत हो रही है।

0: पश्चिमी यूपी में इस बार की भी चुनावी सियासत कानून, किसान और मुसलमान के इर्द गिर्द बुनती जा रही है और इसी जंग में चवन्नी से लेकर सिक्के तक की सियासत हो रही है।
1: जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश।
0: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है कि मामला अब संगीन होता जा रहा है, हमले तेज होते जा रहे हैं।
1: वो एसपी नहीं, वो पीसी है। पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे। आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
0: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव हैं कि पश्चिमी यूपी में एक रैली तक नहीं कर पा रहे। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी ओर एनडीए ने पश्चिमी यूपी के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है। यूपी के 18% जाट वोटों की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के जिम्मे तो है, लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पश्चिमी यूपी के 71 जिलों के लिए सीएम योगी ने 3 महीने में धुआंधार रैलियां की हैं। मेरठ से लेकर सहारनपुर, बागपत से लेकर बुलंदशहर तक के दौरे किए, सिर्फ 3 जिलों में 2400 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट दिए। रणनीतिक तौर पर पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड के 3500 से 4000 बूथों के लिए माइक्रो प्लान बने हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी का किला जीतने के लिए बीजेपी 3 मोर्चों पर तेजी से काम कर रही है, विकास, कल्याण, हिंदुत्व, जिसमें विकास योजनाओं की झड़ी के अलावा जन कल्याण की योजनाओं की घोषणाएं हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों, पीआरडी जवानों, वकीलों, रसोइयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तमाम मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा है। तो तीसरी तरफ कानून व्यवस्था बुलडोजर से लेकर मथुरा वृंदावन तक हिंदुत्व की राजनीति भी है। पश्चिमी यूपी की अपनी रैलियों कार्यक्रमों में सीएम योगी अक्सर 2017 से पहले के हालात, दंगे, माफिया राज और अपराध को लेकर विपक्ष को निशाने पर लेते रहे हैं। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। 2022 के मुकाबले 2024 में हुए नुकसान को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ. आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

कॉम ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। सेवा संकल्प अभियान पर जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र ज्ञान गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य, 31 बॉल रहते किया हासिल।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में पुलिस को एक ऐसे सवाल के जवाब की तलाश है जो या तो कातिलों की गिनती बढ़ा दे या फिर गिनती 3 पर ही रोक दे। मिनोचा मर्डर केस में पुलिस अब तक उनकी बहू शालू समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें शालू के अलावा 2 सुपारी किलर भी शामिल है, लेकिन एक किरदार अब भी ऐसा है जो पूरी कहानी को बदल सकता है।
1: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत पर शक का फंदा लगातार कसता जा रहा है। फिर चाहे वो विनीत के कत्ल के बाद सुब्रत के व्यवहार की बात हो या फिर 24 घंटे मास्टरमाइंड बीवी के साथ रहकर भी अनजान बने रहने की बात, पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री में बेटे सुब्रत पर शक कुछ ज्यादा ही है। और ऐसे में अब पुलिस सुब्रत की भूमिका का पूरा सच जानने के लिए इस केस के गिरफ्तार आरोपियों यानी सुब्रत की पत्नी शालू और सुपारी किलर विशाल गौतम से अभी और पूछताछ करना चाहती है। सोमवार को कानपुर के कल्याणपुर थाने में सुब्रत से खुद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सुब्रत हर सवाल के जवाब में खुद को बेगुनाह और बेखबर बताता रहा। उधर मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर पुलिस की एक टीम कानपुर सेंट्रल जेल भी पहुंची, जहां उन्होंने शालू और विशाल को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए। सूत्रों की माने तो यहां भी विशाल ने सारा दोष शालू पर डाल दिया और कहा कि उसने ही विनीत मिनोचा के कत्ल की सुपारी दी थी। 6 लाख रुपए और नौकरी के वादे के साथ साथ ये भी कहा था कि इससे उसके 2 लाख रुपए का कर्ज भी उतर जाएगा। हालांकि विशाल ने इस मामले में सुब्रत का हाथ होने की बात से इनकार किया, लेकिन ये तो रही सुपारी किलर और मास्टरमाइंड शालू की बात। पुलिस अब इस मामले में शालू और विशाल के साथ साथ सुब्रत को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि कत्ल के मामले में सुब्रत का रोल साफ हो सके।
2: विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ गया है। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद कानपुर पुलिस ने जेल में बंद हत्या आरोपी विशाल और शालू से पूछताछ की। विशाल ने अपने पुराने बयानों को दोहराते हुए कहा कि उसे हत्या के लिए शालू ने कहा था, जिसके लिए उसे 6 लाख रुपए देने तक का वादा किया गया था। विशाल ने यह भी बताया कि शालू ने उससे कहा था कि इस पैसों से उसका कर्ज माफ हो जाएगा और साथ ही साथ उसे दोबारा नौकरी पर भी रख लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शालू ने इन सभी बयानों को खारिज करते हुए अपने आप को बेगुनाह बताया। पुलिस ने शालू से यह भी पूछा कि आखिरकार हत्या के दिन उसने विशाल से इतनी बार फोन पर बात क्यों की, जिस पर शालू का कहना था कि उसने विशाल से गजरा और ग्लासेस मंगाए थे, जिसे लाने में वह देरी कर रहा था, जिसके चलते उसने कई बार विशाल को फोन किया। वहीं कानपुर पुलिस ने आज कोर्ट में दोनों की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर दी है और जल्द ही दोनों की रिमांड मंजूर होने के बाद सुब्रत के साथ दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ शालू को भी उन जगहों पर ले जाया जाएगा जहां वे हत्या के पहले गई थी, जिसमें घर की चाबी बनाने वाली दुकान भी शामिल है। अब देखना यह है कि तीनों की पूछताछ के बाद कानपुर पुलिस के पास और क्या नए तथ्य सामने आते हैं।
1: विनीत के बेटे सुब्रत पर शक की एक नहीं कई वजहें हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पुलिस को सुब्रत बेकसूर नहीं लगता। सुब्रत के अपने परिवार के पुराने नौकर और कत्ल के सुपारी किलर विशाल गौतम से कत्ल से पहले लगातार बातचीत के सबूत सामने आए हैं। तथ्यों की बात करें तो सुब्रत ने 3 महीने में करीब 309 बार फोन पर विशाल से बात की थी। इसी तरह कत्ल से पहले लगातार 21 दिनों तक उसके और विशाल के बीच कुल 300 कॉल्स हुए, जबकि उसकी पत्नी शालू और विशाल के बीच कुल 30 कॉल। यहां तक कि वारदात के दिन यानी 5 सितंबर को भी सुब्रत ने विशाल से व्हाट्सएप पर 25 बार बातचीत की थी। सुब्रत ने इस वारदात के बाद विशाल के साथ हुई उसकी बातचीत की कॉल हिस्ट्री और कुछ नंबर रहस्यमय तरीके से डिलीट कर दिए। इसे लेकर जब पुलिस ने उससे सवाल पूछे तो उसका कहना था कि चूंकि उसके पिता विनीत मिनोचा विशाल को पसंद नहीं करते थे, तो विशाल से बातचीत करने के बाद वो उसकी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता था। हालांकि पुलिस को शक है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है। विशाल गौतम मिनोचा की दवा दुकान में सालों तक काम कर चुका था। यहां तक कि विनीत मिनोचा के उसे नौकरी से हटा दिए जाने के बावजूद वो सुब्रत और शालू के लिए काम किया करता था। कत्ल से पहले भी वो लगातार सुब्रत के संपर्क में था, बातचीत हो रही थी। इसके बावजूद जब वारदात के बाद उसकी सीसीटीवी फुटेज सुब्रत को दिखाई गई तो उसने विशाल को शुरू में पहचानने से ही इनकार कर दिया। सुब्रत का ये रवैया भी शक के घेरे में है। विनीत मिनोचा करोड़ों के मालिक थे, लेकिन बेटे सुब्रत और शालू को हर महीने कुल जमा 45,000 रुपए ही दिया करते थे। सुब्रत को 35,000 रुपए जबकि शालू को 10,000 रुपए। लेकिन दोनों को ऐशो आराम वाली लाइफ पसंद थी। इसी तरह मिनोचा ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर बेटे बहू की आजाद ख्याल जिंदगी में भी रोक टोक शुरू कर दी थी। मिनोचा के कत्ल के मामले में भी यही शुरुआती वजह सामने आई है और ये मोटिव बहू शालू के साथ साथ बेटे सुब्रत पर भी लागू होता है। पांच अगस्त की रात सुब्रत पार्टी वाली जगह पर न सिर्फ सबसे पहले पहुंच गया था बल्कि शायद सबसे देर तक वहां अपनी बीवी के साथ मौजूद रहा। बाद में पार्टी लाउंज के मैनेजर और डीजे ने बताया कि उस रात पार्टी का वक्त खत्म हो जाने के बाद भी दोनों लगातार गाने और ड्रिंक्स की फरमाइश करते रहे और सुबह होने से कुछ देर पहले ही अपने घर पहुंचे। दोनों के जानबूझकर इतनी देर तक पार्टी वाली जगह पर रुकना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद शालू के साथ साथ सुब्रत भी अपने पिता के कत्ल हो जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो घर पहुंचकर अपना ड्रामा चालू कर सके, यानी उसे पिता के कत्ल का पहले से पता था। अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्यों यानी सरकमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें तो जिस तरह कत्ल से पहले सुब्रत की लगातार सुपारी किलर विशाल गौतम से फोन पर बात हो रही थी, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसे पता ही नहीं था कि विशाल अगले चंद घंटों में उसके पिता की जान लेने जा रहा है। पुलिस को ये बात भी असंभव सी लग रही है। पिता विनीत मिनोचा के कत्ल के बाद से लेकर पत्नी शालू के पकड़े जाने तक सुब्रत का व्यवहार भी काफी अजीबोगरीब रहा। उसे न तो कभी बहुत ज्यादा रोते हुए देखा गया और न ही शालू के गिरफ्त में आने के बाद उस पर गुस्सा होते हुए, जबकि आम तौर पर ऐसे मामलों में इंसान का व्यवहार इम्पल्सिव हो जाता है, लेकिन जिस तरह पत्नी शालू के मास्टरमाइंड के तौर पर पकड़े जाने के बावजूद उसने ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जगह चुप्पी साध ली, उससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। यहां तक कि उसके इस हैरान करने वाले रवैये को लेकर खुद शालू के घर वालों और शालू के वकील ने भी सवाल उठाए।
3: आप लोग सामने आए हैं, परिवार पहली बार कोई अपना बात रख रहा है, लेकिन जो शालू के हस्बैंड हैं, जो आपके ब्रदर इन लॉ हैं, वो अभी तक इस पूरे मामले में ना सामने आए हैं। पुलिस की बात करें तो उनका भी कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से किसी तरीके का रेजिस्टेंस या फिर सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसकी क्या वजह है?
4: वो तो वही वजह जानते होंगे, हम लोग को नहीं पता है। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी बट उतना नहीं हो पा रहा है, पता चला था जो भी है बट नहीं हो पा रहा है और हम
3: बातचीत नहीं हो पा रही है उस पर।
4: नहीं,
3: बट आप लोग क्योंकि परिवार के हैं, उनके हस्बैंड हैं, आपको लगता है उनको आगे आना चाहिए था, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था?
4: अब देखिए, आना तो चाहिए था,
5: आना चाहिए था सर, बिल्कुल आना चाहिए था।
3: वही मैं आपको बताऊं, ऐसा दो स्थिति में होता है, या तो इंसान या तो खुद गलत हो या फिर कहीं ना कोई चीजें छुपा रहा हो या फिर उनके रिश्ते जो हैं वो तीनों कैसे रिश्ते थे आपकी जो बहन है उनसे?
5: बिल्कुल बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी,
4: नॉर्मल रिलेशनशिप।
5: वो तो आप लोग कवर कर रहे हो, एक दिन पहले पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, सब रिश्ते ठीक थे।
3: तो आपको कहीं ना कहीं ये अटपटा नहीं लगा कि इतना सब कुछ हो गया, वाइफ को जेल भेज दिया गया और उनका सामने से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, ना उन्होंने ऐसा कुछ पक्ष रखा है कि नहीं हो सकता, क्या कहेंगे
5: सर?
4: सर हम वेट कर रहे हैं कि चीजें हों, आगे आए, बाकी पुलिस आई एम श्योर वो ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उस पर वर्क कर ही रही होंगी, तो जैसी चीजें होंगी तो आपके साथ साथ हमें भी आंसर मिलेगा।
3: आज जब जेल में मुलाकात हुई, इससे पहले आपकी जो बहन से बातचीत हुई कभी, क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा बताया आपको या फिर अपने ससुर के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे आपके हिसाब से कैसे रिलेशन थे?
4: वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड, जैसा उसने हम लोग को बताया था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, अंकल भी उसे बहुत पसंद करते थे एंड वो भी इट वॉज वेरी गुड, मतलब हम खुद शॉक्ड हैं कि क्या हो गया है या क्या जस्ट स्पीचलेस.
3: पुलिस का कहना है कि जो चाबी थी वो भी बना के बकायदा दी गई. इन सब थ्योरीज पे जो पुलिस के सामने आई हैं, इस पे क्या कहेंगे?
5: जांच चल रही है सर.
4: सर जांच चल रही है, हुआ होगा तो जांच चल रही है, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल.
3: एक रिलेटिव है जो सुब्रत के, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 6 लाख रुपए की जो बात हुई वो कहां से आते हैं. उन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि क्या जो लड़की पक्ष के जो परिवार हैं क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है ये, उस पर भी जांच होनी चाहिए. उस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे
5: सर? स्टेटमेंट यही है कि जांच चल रही है, अपने आप चीजें सामने आ जाएंगी.
3: बट आपको पता नहीं लग रहा कि सुब्रत के परिवार वाले इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पता ब्रदर उनकी तरफ से, जो आप लोग के परिवार की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो?
5: खुद ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है, हम पहली बार सुन रहे हैं. तो उन्होंने दिया क्यों है वो अपने आप इस चीज को
4: पुलिस पता लगा ही लेगी. पुलिस पता लगा लेगी अगर ऐसा कुछ है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है. आई एम श्योर.
3: तो आप लोग को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरा ट्रस्ट है?
4: हाँ, वो जो कर रही है करेगी. हम वी आर होपफुल कि वो साथ देंगे हमारा. अभी तक एक पहलू सामने आया, दूसरे पहलू पे आई एम श्योर दे मस्ट बी वर्किंग एंड दे आर वर्किंग. वी आर वेटिंग फॉर दैट.
1: विनीत मिनोचा की बहू शालू ने कत्ल वाले दिन कातिलों की घर में एंट्री के लिए बाकायदा उन्हें अपने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दी थी. असल में शालू ने नकली चाबी बनाने के लिए घर की असली चाबी ही सुपारी किलर विशाल गौतम के हवाले कर दी थी. तफ्तीश में साफ हुआ है कि जब शालू ने ये चाबी सुपारी किलर विशाल गौतम को सौंपी तब खुद सुब्रत भी अपनी पत्नी शालू के साथ मौजूद था. सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सुब्रत को साजिश का कुछ पता कैसे नहीं चला?
2: कानपुर दवा व्यापारी हत्याकांड में पुलिस की जांच का फोकस अब शालू के पति सुब्रत पर है, जिसे फिलहाल क्लीन चिट नहीं मिली है. सूत्रों के मुताबिक कानपुर पुलिस ने कल 2 घंटा सुब्रत से पूछताछ की और कई सवालों के जवाब लेने की कोशिश भी की. पुलिस का सवाल है कि आखिरकार सुब्रत ने आरोपी विशाल से इतनी बार फोन पर क्या बातचीत की और वे क्या नौबत आई कि उन सभी फोन कॉल्स और चैट्स को उसे डिलीट भी करना पड़ा. पुलिस के मुताबिक शुरुआती दौर पर जब सुब्रत को सीसीटीवी दिखाया गया तो उसने आरोपी विशाल को पहचानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुब्रत पर शक हुआ. इसके बाद सुब्रत उन हर जगह पे मौजूद था जहां पर हत्या के पहले शालू खुद मौजूद थी, जिसमें घर की डुप्लीकेट चाबी बनाने वाली वो दुकान भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक अगर हत्या की मंशा आर्थिक स्वतंत्रता ना होना या फिर ज्यादा रोक टोक होना है तो यही मंशा सुब्रत के पास भी हो सकती है. फिलहाल आरोपियों की पूछताछ के बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या इस घटना में कोई और अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं.
1: इस बीच मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने इस सिलसिले में तीनों लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई है. ये CDR करीब 1000 पन्नों की है. इसमें कत्ल की मास्टरमाइंड यानी विनीत मिनोचा की बहू शालू के 2 मोबाइल नंबर, सुपारी किलर और मिनोचा के नौकर रहे विशाल गौतम के 2 मोबाइल नंबर और शक के घेरे में आए विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत के 3 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल शामिल है. पुलिस कत्ल से पहले अलग अलग दिन इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन और उनकी आपस में हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा समझने की कोशिश कर रही है ताकि विनीत मिनोचा के कत्ल की पूरी साजिश साफ हो सके. तफ्तीश के सिलसिले में अब ये भी पता चला है कि विनीत मिनोचा ने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वसीयत भी तैयार की थी. इसी वसीयत में उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे सुब्रत और बेटी के नाम प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लिखा था. पुलिस ये भी देखने समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस वसीयत से तो विनीत मिनोचा के कत्ल का कोई कनेक्शन नहीं है. सिमर चावला, कानपुर, आज तक.
0: गुवाहाटी में एक घर से बदबू आ रही थी. पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी. पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है. वहां उसे एक आधी अधूरी लाश मिलती है. आधी अधूरी इसलिए क्योंकि लाश का सिर गायब था. इसके बाद पुलिस फ्रिज का दरवाजा खोलती है और अधूरी लाश पूरी हो जाती है. थोड़ी देर बाद कातिल पति को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है. लेकिन अब 7 दिन बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आता है.
1: उस दिन जब असम पुलिस को एक दंपति के अचानक घर से गायब हो जाने की खबर मिली तो पुलिस ने भी ये नहीं सोचा था कि वो जिस मौका वारदात की जांच करने जा रही है वहां उसे कुछ ऐसा दिखेगा जिससे पहले ही नजर में सभी के कदम ठिटक जाएं. पुलिस की टीम रात करीब 9:45 बजे लोगों के बताए पते पर पहुंची। ये एक ट्रिपल स्टोरी फ्लैट था। मकान में ताला लगा था लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी। ऐसे में जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो अंदर जाते ही अफसरों को अनहोनी का एहसास हो गया। मकान के अंदर फर्श पर एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी थी, जबकि खून के छींटे लाश के आसपास से लेकर पास ही रखे फ्रिज के इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस ने फ्रिज की जांच करने का फैसला किया। उसे शक था कि कहीं फ्रिज में ही इस मर्डर केस से जुड़ा कोई और सुराग न छुपा। शक सही निकला। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, अंदर एक और भयानक तस्वीर नजर आई। फ्रिज के अंदर उसी लाश का कटा हुआ सिर एक पॉलिथीन के पैकेट में रखा हुआ था, जो लाश कमरे में पड़ी थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मकान में रहने वाले दंपत्ति में से एक की थी, यानी पत्नी की। नाम था रियाद तालुकदार, जबकि उसका पति रामानुजम गोस्वामी घर से रहस्यमयी तरीके से गायब था। जाहिर है अब शक की सुई महिला के पति रामानुजम की तरफ ही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस रामानुजम तक पहुंचती, उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ न सिर्फ रिया के कत्ल की दहलाने वाली कहानी का सच सामने आ गया, बल्कि रामानुजम के खुलासे ने लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन अभी इस मामले की जांच आगे बढ़ती, उससे पहले ही हफ्ते भर का वक्त गुजरते गुजरते रामानुजम की भी पुलिस हिरासत में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। जी हाँ, रामानुजम ने कथित तौर पर तब पहाड़ी से छलांग लगाकर जान दे दी जब पुलिस उसे आधी रात ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी। फ्रिज से 25 साल की रिया तालुकदार का कटा हुआ सिर बरामद कर पुलिस ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल में भिजवा दिया और इसी के साथ उसके पति रामानुजम की तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच पुलिस ने पति पत्नी के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की शुरुआत कर दी। पुलिस ने देखा कि रिया के हाथों की उंगलियां भी कटी हुई हैं। जब जांच टेक्निकल सर्विलांस की तरफ घूमी तो उसे पता चला कि रिया के साथ साथ रामानुजम का फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है।
6: We received an information that a couple, a married couple, residing at Lokhistapur, Bylane number 4, house number 14, had not been responding calls from their families. Immediately a team from Hatigaon police station was dispatched to the house. On reaching there, they found the wife, Riya Talukdar Goswami, dead. Her head severed from the body. Immediately, experts from the CID, FSL, were called to the spot. They examined the scene of crime, and exhibits, various exhibits have been seized.
1: रिया एक बुटीक में काम करती थी, जबकि उसका पति रामानुजम गोस्वामी कैब ड्राइवर था। दोनों की शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी। पुलिस अब रामानुजम की तलाश तो कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो रामानुजम तक पहुंचती, उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर के साथ ही उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स से अफेयर है, जिसे लेकर उनकी आपस में लड़ाई होती थी।
6: Also surrendered before the police. He disclosed that there had been frequent disputes between the couple over various issues, including his allegation of the involvement of his wife in an extramarital relationship. In one of such altercation on third morning, he lost his temper and killed his wife. A case has been registered in this regard and the investigation is on.
7: So what types of the weapons have been used?
6: Sharp dao.
7: So what is the actual motive behind this?
6: As I said, there were disputes between the couple, particularly regarding their relationships. and his alleged her alleged illicit relationship with somebody, extramarital relationship. That is the main reason.
7: So was he a drug addict? Drug addict.
6: So we got to examine that. Regarding that, we are examining and verifying all the facts and circumstances at this moment. Investigation is on. At this moment, I cannot share further details with you regarding the investigation.
7: So we got also information that he tried to feed a dog her body parts. Is it true?
6: No, you see, it's investigation is on. At this moment, I am not aware of that fact.
1: लेकिन शायद बात इतनी भर नहीं थी। रामानुजम ने पुलिस की पूछताछ से पहले ही मीडिया वालों से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि रिया का कत्ल उसने सिर्फ एक वजह से नहीं किया, बल्कि वो उसे धोखा भी दे रही थी। रामानुजम ने कहा कि रिया के रिश्ते एक बुजुर्ग शख्स से भी थे और वो जेल से बाहर आकर उसके उस शुगर डैडी को भी खत्म कर देगा। लेकिन इस कहानी में ठीक 7 दिन बाद वो चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया, जिसमें पुलिस हिरासत में ही रामानुजम ने पहाड़ी से छलांग लगाकर जान दे दी। गुवाहाटी पुलिस उसे सोमवार की अहले सुबह करीब 3 बजे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और नरकासुर हिल्स नाम की पहाड़ी से सीधे नीचे कूद गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसे घातक चोटें आई और उसकी जान चली गई।
6: यू नो रामानुज गोस्वामी वाज इन पुलिस कस्टडी, ही वाज इन फैक्ट इन पुलिस रिमांड एट हाटीगांव पुलिस स्टेशन फॉर 7 डेज इन कनेक्शन विद द ब्रूटल मर्डर ऑफ हिज वाइफ। दिस मॉर्निंग अराउंड 2 AM he was being taken to GMCH for medical examination. On the way, there was a breakdown of the vehicle. Tire got punctured. It was replaced by the spare tire. Thereafter, when the journey was resumed near the nursing college, he suddenly attacked the escorting constable, inflicted a forceful kick, and opened the rear side of the door of the vehicle, and then jumped out of the moving vehicle. He fell on the road and sustained severe injuries. The police team immediately attended to the accused and rushed him to the Guwahati Medical College Hospital. The doctor declared him brought dead. The family members have also been informed. The investigation is ongoing. And all the legal formalities are being done.
1: पुलिस रामानुजम के मौत की जांच करेगी, जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पूर्ण विकास बोहरा, गुवाहाटी आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: पेमेंट्स पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले 1,500,000 खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लेकर आओ। सेवा संकल्प अभियान पर जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र ज्ञान। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित। आज तक की खबर का बड़ा असर। गुरुराम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज। 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: मनोज रांगे का मुंबई कोच। 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किया गया। मराठा मोर्चा पर बोले एकनाथ शिंदे त्योहार के दिन आंदोलनकारी मुंबई आने के लिए फैसले पर करें पुनर्विचार। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। दिघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट। 90,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। निशा सालयन मामले में मराठी भाषा को लेकर संजय राउत की सरकार पर हमला। राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए। मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे अलग अलग थीम वाले गणपति की सुंदर रंग। इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी किया गया सुंदर प्रदर्शन। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना गणेशोत्सव। पुणे के श्रीमंत दगड़ूसेठ मंदिर में दिखाई दिया विशेष उत्साह। महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ धार्मिक पाठ। करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का अलौकिक श्रृंगार। करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजाया गया। गणेश चतुर्थी पर राम भक्तों की सौगात। फिल्म रामायण का पहला गाना रिलीज। AR रहमान ने दिया है संगीत। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं बोल। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल ने दी है अपनी खूबसूरत आवाज। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब एक और पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में। महावीर जैन फिल्म्स और विशाल चतुर्वेदी ने किया ऐलान। नयनतारा स्टारर मुकुथी अमन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति रिलीज किया गया। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की पूरी झलक। बड़े पर्दे पर सुपर हीरो अवतार में नजर आएंगे आमिर खान। निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ बातचीत जारी है। आर बाल्की करेंगे फिल्म का निर्देशन। 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। मोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार से आईफोन पर लगने वाले जीएसटी 18% घटाकर 5% करने की अपील की है। महंगे आईफोन 18 के आने के बाद मार्केट में आईफोन 13, 14 और 15 की डिमांड बढ़ गई है। चीन और अमेरिका के बढ़ते मुकाबले के बीच AI मॉडल्स की क्षमता तेजी से बढ़ने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम पीछे छूटे। अगले 6 से 12 महीने में AI एजेंट से साइबर अटैक और फ्रॉड का खतरा बढ़ेगा। 91% लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी शुगर, सॉल्ट, फैट की वार्निंग दिखाने का समर्थन किया। FSSAI के प्रस्ताव के मुताबिक ही 89% ने लिस्टिंग और प्रोडक्ट्स पेज दोनों पर जानकारी देने का सुझाव दिया। एक्सपीरियन के सर्वे में शामिल 90% क्रेडिट एक्टिव ग्राहकों ने एक साल की वित्तीय स्थिति सुधरने का भरोसा जताया है। 35% लोगों ने कर्ज के बोझ से तनाव में होने की बात कही। 27% को किस्त चुकाने में दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। आज से करीब 6 साल 3 महीने पहले मुंबई में एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था दिशा सालियान। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की मौत के कुछ ही दिन के बाद सुशांत की भी मौत की खबर आई थी और दोनों की ही मौत एक साथ उसे जोड़कर देखा गया। खूब हल्ला मचा, हंगामा हुआ और अब 6 साल के बाद CBI ने दिशा सालियान की मौत पर FIR दर्ज की है, जिसमें कोई नामजद आरोपी तो नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा बहुत से एक्टर्स और पुलिस वालों के नाम FIR के अंदर लिखे गए हैं। तो दिशा सालियान के घर वाले अपनी बेटी की मौत से आदित्य ठाकरे को क्यों जोड़ रहे हैं, सबके मन में सवाल यही है। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए कि परिवार की तरफ से आखिर क्या लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं।

0: 2288 दिनों के बाद दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया। क्या सीबीआई दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी या हत्या? दिशा सालियान की मौत की एफआईआर में आदित्य ठाकरे, दीनू मोरिया, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम क्यों आया? पूरे के पूरे 6 साल 3 महीने और 5 दिनों के बाद एक बार फिर से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को लेकर हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत का केस सुलझा पाएगी? सीबीआई ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर दी है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान को आधार बनाकर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिशा के पिता के बयान में जिन भी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वो इसमें दर्ज है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई को जांच करनी है कि दिशा की मौत में इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एफआईआर को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि दिशा का परिवार किस तरह की जांच की मांग कर रहा है। पहले पन्ने पर ही लिखा है कि किस तरह के अपराध की आशंका है। इसमें लिखा है आपराधिक साजिश, गैंगरेप, मर्डर, सबूत गायब करना या गलत जानकारी देना। अपराध की तारीख है 8-9 जून 2020 की मध्य रात्रि, और फिर वो पता लिखा है जहाँ अपराध घटित हुआ, फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। अब सवाल है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा? दिशा के पिता के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, और आरोपी के तौर पर वो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम किस आधार पर और क्यों लगा रहे हैं? अब सीबीआई में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पूरा घटनाक्रम समझिए। सीबीआई में दर्ज दिशा के पिता के बयान के हिसाब से 4 जून 2020 को दिशा सालियान अपने घर से अपने मंगेतर के घर निकली। ये कहा कि उसे कोई विज्ञापन का शूट करना है। पिता के मुताबिक दिशा ने उन्हें 3 लाख रुपए के चेक की फोटो भी दिखाई और कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर, फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई के लिए निकल गई। ये वही एड्रेस है जहां घटना हुई। आगे दिशा के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है 6 जून को दिशा ने अपनी मां को फोन करके बताया कि कोविड की वजह से उसका और उसके एक और दोस्त इंद्रनील का जन्मदिन नहीं मना पाए, इसलिए दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया है। अगले 2 दिन में वो घर आ जाएगी। इस दौरान वो लगातार अपने माता पिता के संपर्क में थी, लेकिन 7 जून 2020 को दिशा के फोन आने बंद हो गए। जब इन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन रोहन रॉय ने उठाया, जिसने बताया कि दिशा काम में व्यस्त। इसके बाद 9 जून 2020 को सुबह करीब 3:15 बजे दिशा के पिता को मालवाणी थाने से फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने कोई पार्टी अटेंड की थी और वहां कुछ घटना हो गई। दिशा के पिता अपनी पत्नी के साथ सुबह 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दिशा एडमिट थी। वहां उन्होंने दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को देखा। दिशा के दूसरे दोस्त इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा और हिमांशु शिखारे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत हो गई। पूरी एफआईआर 10 पन्नों की है। एफआईआर के 4th पन्ने पर इसके आगे का घटनाक्रम लिखा है, और यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद दिशा के पिता को सुसाइड की थ्योरी पर शक हुआ। दिशा के पिता सतीश तालियान के मुताबिक दिशा के दोस्तों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। वो लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो 11 जून को सुबह करीब 11 बजे उन्हें उनकी बेटी के शव के कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए। फोटो देखने पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने उसकी बॉडी पर कोई खून या ज्यादा चोटें नहीं देखी। उन्होंने दिशा के जबड़े पर गाल के नीचे एक नाखून जैसा निशान देखा, और फिर 11 जून को दिशा का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। दिशा के पिता के मुताबिक शरीर पर खून नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं थी, तो उन्हें सुसाइड की थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त शॉक थे और मानसिक आघात में थे।
1: और ये एफआईआर सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता, उन्हें ऐसा लगता है या उन्हें उनकी ये कंप्लेंट है कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, पर ये एक हत्या है और उन्हें ऐसा लगता है, सतीश सालियन को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ और उसके बाद तब जो पुलिस ने जांच की थी, तब जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे या पुलिस कमिश्नर थे या जो अन्य पुलिस अफसर वहाँ पर मौजूद थे, सरकार में जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे केस को कवर अप किया था। दिशा सालियन ये पूर्व लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ही दिन मृत्यु के कुछ ही दिन पहले ही दिशा सालियन की मृत्यु हुई। 12वें मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी मलाड के एक बिल्डिंग में। रोहन राय उनके बॉयफ्रेंड के साथ वो उस बिल्डिंग में रह रही थी। उस शाम उनके घर पर पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के दौरान कुछ बातचीत में विवाद हुआ, फिर दिशा सालियन अपने कमरे में चली गई, उन्होंने कमरा बंद कर लिया और उसके बाद कुछ घंटे बाद ये पता चला कि दिशा सालियन खिड़की से गिर कर या उन्होंने कूद कर जान दे दी है।
0: दिशा के पिता को रोहन रॉय और कुछ पुलिस अफसरों ने बताया कि दिशा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, वो नशे में थी तो गलती से वो बिल्डिंग से गिर गई। इसके बाद पुलिस ने बहुत से दस्तावेजों पर दिशा के पिता के दस्तखत करवाए। उन कागजों में क्या लिखा था ये तक नहीं बताया गया, यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौत के कारण का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
3: ये कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, आप सीबीआई के अधिकारी तक पहुंचे, आपने बयान भी दर्ज किया, दिशा को लेकर के आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वो शुरू हो गई, सही दिशा में क्या कुछ
2: दरवाजा खुल गया सर, दरवाजा खुल गया दिशा का,
0: यानी अगर दिशा के पिता के माने तो उनकी हत्या हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में दिशा के पिता ने अपने बयान में तफसील से बताया है। उनके मुताबिक उनकी बेटी दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी थी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इसी काम के दौरान दिशा को कथित ड्रग तस्करी, बच्चों के शोषण और बाकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें आदित्य ठाकरे और बाकी लोग शामिल थे। दिशा ने ये जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ साझा की और वो दोनों इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक करना चाहते थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कहा गया कि इन तमाम जानकारियों को सुरक्षित करने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत पहले दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई और उसके बाद सबूतों को नष्ट किया गया या उन्हें छुपाया गया और सुसाइड की फर्जी कहानी गढ़ी गई ताकि आरोपियों के अपराध से पर्दा न हट सके। आगे ये भी लिखा है कि जब सुशांत ने दिशा द्वारा बताई गई जानकारियां रिया चक्रवर्ती को बताई तो रिया आदित्य ठाकरे और डीनू मौर्या के संपर्क में थी और मेरी जानकारी के मुताबिक रिया ने वो जानकारियां उन्हें बता दी कि दिशा और सुशांत उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं।
4: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, ये गैंग के साथ है। उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए, मर्डर के लिए लाया गया, इसमें ये सभी लोग शामिल है और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप, फिर मर्डर और फिर कवर अप किया, और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में एसआईटी ने दूसरा कवर अप किया, तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: 6 साल पहले जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो वो तब इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन जब कुछ दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद ही दिशा सालियान के केस पर भी बात शुरू हुई और तब भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी दिशा के पिता के बयान पर दर्ज इस एफआईआर में लिखा है। दिशा के पिता सतीश सालियान के सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक जिस दिन दिशा मारी गई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा डर गए। अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सुशांत ने अपने स्टाफ को डिजिटल एविडेंस मिटाने को कहा, जिसमें मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस का डेटा शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और बाकी डिजिटल मटेरियल को डिलीट करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट बुलाया गया।
4: सुशांत का केस और ये केस आपको याद होगा, जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।
5: और अब इस केस में महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक ठाकरे परिवार के आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ने का मतलब यही है कि राजनीति भरपूर है। अभी तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, अभी जांच होगी, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा पूरी तरह से बदली नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर।
0: दिशा सालियान का केस महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है, क्योंकि अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है और इसमें नाम आया है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। एफआईआर में पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड और पुलिस वालों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें कई जाने माने चेहरे हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, उनके पिता उद्धव ठाकरे, एक्टर रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, एक्टर सूरज पंचोली, डीनो मोरिया, इसके अलावा पुलिस अफसर सचिन वाजे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, इसके अलावा भी कई और नाम शामिल हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सीधे राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है।
6: सीबीआई को आदेश दिया है कि जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वो आरोपी नहीं है और एफआईआर में उसका नाम नहीं आएगा, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ है। लेकिन दो दिन पहले देश के गृहमंत्री महाराष्ट्र में आए, उनके साथ और एक नेता बैठे, आधा घंटा एक घंटा एक साथ गाड़ी में चले गए एशियाटिक लाइब्रेरी में, उनके बाद इस 16 पेजेस एफआईआर में सभी नाम डाले गए। एक राजनीतिक षड्यंत्र है महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय जो घराना है पॉलिटिकल, बाळासाहेब ठाकरे जी का, उनके परिवार को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
0: दो सितंबर को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी तो साफ कर दिया था कि तब तक सीबीआई किसी को आरोपी करार न दे जब तक कि उसकी जांच में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत न मिल जाए। इसीलिए सीबीआई की तरफ से कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिशा के पिता को इंसाफ की उम्मीद जगी है।
2: उम्मीद तो है 100%, तो उम्मीद से हम 6 साल इंतजार किया ना, आखिर भगवान ने हमको दे दिया। ये बड़े बड़े साहब लोग को मेरे साथ में उनके हाथ के नीचे मेरे को दे दिया। जो उनका कानूनी तरीके से सजा होता है वो सजा होना चाहिए। जैसा मेरे बेटे को उसने इज्जत निकाला वैसे ही उसका इज्जत निकलेगा। उनको होएगा तो उम्र कैद होएगा, नहीं तो फांसी हो जाएगा, उसके ही उम्मीद है।
0: बीजेपी को फिर से उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। बीजेपी तो पहले दिन से यही आरोप लगाती है। बीजेपी फिर कह रही है कि इस केस में लगातार लीपापोती और बचाव किया गया।
7: जब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बार बार दिशा के पिता, उनका पूरा परिवार कह रहा था कि दिशा को अत्याचारित किया गया है, पीड़ित किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, उसके अपने पिता कह रहे हैं। पर जानबूझ करके ठाकरे सरकार की कोताही, लीपापोती और सबूतों को मिटाने का दुष्कर्म, ये सारा उसके परिवार ने देखा, उस परिवार का कहना है। अब अगर ठाकरे सरकार का कोई मंत्री या कोई नेता अगर इसमें शामिल नहीं है, उनको किसी को बचाना नहीं था, तो उसी समय पुलिस से कहते कि पारदर्शिता के साथ मुकदमा दर्ज करो, इसे खंगालो। ऐसा नहीं हुआ।
0: सहयोगी फिलहाल आदित्य ठाकरे के साथ खड़े नजर आते हैं। एनसीपी एसपी तो एक कदम आगे चली गई, वो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीबीआई के एंट्री का मतलब ये तो नहीं कि चुनाव जल्द होने वाले हैं।
8: सीबीआई ने लास्ट टाइम सुशांत सिंह राजपूत का जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें आदित्य ठाकरे जी का नाम लिया था, लेकिन बाद में क्लीन चिट वहां पे मिली। इस मामले में क्लीन चिट मिलेगी ऐसे हम सबको लगता है। अभी पॉलिटिकली हो या कोई भी और रीजन से हो, जानबूझ के नेताओं का नाम लिया जाता है क्योंकि मीडिया ट्रायल उसमें होती है, लेकिन बाद में जाके कुछ तथ्य न होने के कारण, उसमें रियलिटी न होने के कारण उसमें से कुछ भी नहीं निकालता। लेकिन अगर सीबीआई ने जानबूझ के आदित्य ठाकरे का नाम लिया होगा तो मुझे लगता है फिर जो हमारा इलेक्शन 2029 में होने वाला था वो शायद, क्योंकि जब भी सीबीआई एक्टिव होती है तब राजनीति उसमें आती है, तो शायद अभी इलेक्शन जो 29 में होने वाला था वो प्रीपोन भी हो सकता है। इसके कारण ये सब चीजें उन्होंने चालू की होगी।
0: दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने से हुई थी और पुलिस ने मौत को सुसाइड बताया था। वहीं दिसंबर 2023 में केस दोबारा खोला गया और एसआईटी बनाई गई, इसमें भी आत्महत्या की बात कही गई। लेकिन अब हाईकोर्ट से सीबीआई की जांच का आदेश हुआ है। अब ये तो तय है कि ये केस महाराष्ट्र की राजनीति में हॉट टॉपिक अभी बना रहेगा।
9: ईशा सेलियन का जो केस है इसको आप राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, इसको पोलिटाइज करने की कोई जरूरत नहीं, पोलिटिसाइज मत करो। ये एक पिता 6 साल से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था, जिन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, उनका यही मानना था पहले दिन से कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कोर्ट के दरवाजा खटकाया, मुंबई की हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे। अब सीबीआई ने उनके पिता को बुलाया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, अब स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है। अब मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ इसको कोर्ट ही ज्यादा फैसला करे तो ज्यादा बेहतर है ना। अब सीबीआई अरेस्ट किसको करती है, क्या करती है, इस सब स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखिए, ट्रायल बाय मीडिया या पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।
0: 6 साल से दिशा सालियान के माता पिता बेटी के इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल है कि सीबीआई की जांच से क्या इस केस में कुछ नया मोड़ आएगा। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।
5: और अब बात करेंगे गणेश उत्सव की। गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजे हुए हैं। मंदिरों में एक अलग ही रौनक है, कहीं सोने चांदी और हीरों से सजे हुए बप्पा नजर आ रहे हैं तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव, भक्ति, आस्था और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लाल बाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में तीन अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए है ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके की सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यह मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर पापा को पेशवा कालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े

एयरलाइंस पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को फर्जी बताया। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर ज्यादा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचा फिर लगाया यूसीसी। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव। यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान ठीक हुए। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री की यात्रा संकल्प की यात्रा। प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम है। मोदी सरकार का ज्ञान मंत्र जेपी नड्डा ने समझाया गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का संकल्प। जेपी नड्डा का पोस्ट लिखा डिजिटल भारत में बड़ी छलांग, 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन डीबीटी से 53 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। केशव बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार, अमित शाह की मौजूदगी में यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मसौदे पर दस्तखत किए। पंजाब में ड्रग्स और सुइसाइड केस में भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। चन्नी और गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। लेडी बाइकर्स के बयान के बाद दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का मामला। दिल्ली कैबिनेट ने एएस आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने का फैसला किया। अब दिल्ली की आशा वर्कर्स को 3,000 की जगह 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। योगी सरकार ने 23 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई, इंफ्रा से लेकर शिक्षा और रोजगार तक बड़े फैसले। नेपाल बाढ़ में लापता बिहारवासियों की पहचान के लिए परिजनों का किया जाएगा डीएनए टेस्ट। दिशा सालियान मामले में मराठी भाषा को लेकर संजय राउत का सरकार पर हमला, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में नए सिरे से जांच की मांग, नीरज सिंह बबलू बोले सामने आना चाहिए सच। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने जमीन चिन्हित होने की जानकारी दी। दिल्ली में पीजी और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की तैयारियां, स्ट्रक्चर फायर सेफ्टी समेत सुरक्षा मानकों पर जोर। निर्मला सीतारमण की युवाओं से अपील, देश ने आपके लिए क्या नहीं किया, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचें। अयोध्या में पिता की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनवाएंगे अमिताभ बच्चन, 20 से ज्यादा कमरों का निर्माण होगा। सम्राट कैबिनेट के 17 एजेंडे पर मोहर, मखाना विकास के लिए 79 करोड़ 80 लाख रुपए और विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपए मंजूर। मनोज जरांगे पाटिल का मुंबई कूच, 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किया गया। मराठा मोर्चा पर बोले एकनाथ शिंदे त्योहार के दौरान आंदोलनकारी मुंबई आने के फैसले पर करें पुनर्विचार। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, दिघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट, 90,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पटना में बीपीएससी और बीएसएससी का दरोगा अभ्यर्थियों पर बड़ा प्रदर्शन, जेपी गोलबंदर पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस से नोकझोंक के बाद विधानसभा कूच की कोशिश की गई, कई हिरासत में। नोएडा में करोड़ों की लागत वाला एलिवेटेड रोड अचानक से धसा, 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा देकर हड़कंप। आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलट गई, 6 घायल हुए हैं। सवाल ये कि आखिर एक कार में 9 लोग कैसे सवार थे। अहमदाबाद में एक थाने के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक रूम में पंखे से लटक कर युवक ने सुसाइड किया, मामले की जांच जारी। नागपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ गया था युवक, 4 घंटे की अथक प्रयासों के बाद रेस्क्यू किया जा सका। मांड्या में भीषण सड़क हादसा, दूध टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी के सांसद ने थाने में धरना दिया, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर को गाली देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, तस्वीरें सामने आई। आगर मालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई, जेसीबी से तोड़ी गई दुकानें। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र की घेर कर पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया गया, 3 पर केस दर्ज। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी को घर तोड़ डाला, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया गया। कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली की 50 क्विंटल खेप जब्त की गई, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। धारचूला के दोबाट में पहाड़ी से भारी भूस्खलन, नेशनल हाईवे में आया मलबा, यातायात बंद। चमोली में भारी बारिश के बाद हाईवे पर आया मलबा, गोपेश्वर चोपता मंडल मार्ग बंद। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से जलप्रलय जैसे हालात हैं, ऊना और दीव में घरों में घुस गया है पानी। कच्छ में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले, अंजार में 10 घंटे में 7.5 इंच बारिश। बेगूसराय में 15 दिन के बाद बाढ़ का कहर, घरों से पानी निकला लेकिन सड़कों पर जल जमाव अभी भी।
मुंबई में गणपति उत्सव पर दिखे अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग। इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ ही देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी सुंदर प्रदर्शन। लोगों के लिए बन रहा है आकर्षण का केंद्र। गणेशोत्सव पर पुणे के श्रीमान दगड़ू शेठ मंदिर में दिखा उत्साह। महिलाओं ने किया गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ यह धार्मिक पाठ। करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का हुआ अलौकिक श्रृंगार। करोड़ों रूपये के सोने के गहनों से सजाया गया। बप्पा के रंग में रंगा पुणे। महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत। गणेश चतुर्थी व उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक है। भगवान को लगाया गया 1,25,000 लड्डुओं का महाभोग। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा। 200 साल से जारी है ये शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति। राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवी परिवार में मौजूद राज पुरोहित ने पूजा अर्चना की। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक। नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति। संग्रहालय के विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर होगी चर्चा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने बनाया नौखाई जोहार सैंड एनिमेशन। महज 15 मिनट में तैयार किया है खूबसूरत कलाकृति को। जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान की परंपरा में हुआ देशी विदेशी सैलानियों का वेलकम। तिलक और फूलमालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य के बीच हुआ शाही स्वागत। शाही ट्रेन में सवा 75 सैलानियों में 64 देसी और 11 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। पूरी आस्था और उमंग के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए केदारनाथ धाम की हेली सेवाएं भी दोबारा से शुरू कर दी गई। मानसून के दौरान खराब मौसम के कारण रोक दी गई थी सुविधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लिया गया। पैदल मार्ग पर चिड़बासा में गिर रहे पत्थरों की वजह से चुनौती बनी हुई यात्रा। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से रोकनी पड़ी आवाजाही। बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब दरबार में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। पोखरण में पहली बार वायुसेना का ड्रोनाथॉन। 2026 60 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं कार्यक्रम में हिस्सा। कंपनियां अपने उत्पादों और प्रणालियों का करेंगी लाइव प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस ऑपरेशंस पर है केंद्रित आयोजन। मानव रहित प्रणालियों और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों का फोकस होगा। उद्योग जगत को जोड़ने की कोशिश। वायुसेना के शीर्ष अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हुए। आधुनिक तकनीकों परखने और भविष्य की सैन्य तैयारियों के समाधान को खोजने की कोशिश। 16 सितंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित किया गया। पहला ड्रोनाथॉन 2026 मिशन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना मकसद है। गणेश चतुर्थी पर राम भक्तों को सौगात। फिल्म रामायण का पहला गाना रिलीज किया गया। एआर रहमान ने संगीत दिया है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं बोल। अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल ने दी है अपनी खूबसूरत आवाज। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब एक और पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में है। महावीर जैन फिल्म और विशाल चतुर्वेदी ने किया राम बोला का ऐलान। नयनतारा स्टारर मुक्ति अमन 2 का टीजर रिलीज किया गया। पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की कहानी की झलक। बड़े पर्दे पर सुपर हीरो अवतार में नजर आएंगे आमिर खान। निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ बातचीत जारी है। आर बाल्की करेंगे फिल्म का निर्देशन। मोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार से फोन पर लगने वाले जीएसटी 18 से घटाकर 5% करने की मांग की है। महंगे आईफोन 18 के आने के बाद मार्केट में आईफोन 13, 14 और 15 की डिमांड बढ़ गई है। चीन और अमेरिका के बढ़ते हुए मुकाबले के बीच एआई मॉडल्स की क्षमता तेजी के साथ बढ़ने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम पीछे छूट गए हैं। अगले 6 से 12 महीने में एआई एजेंट से साइबर अटैक और फ्रॉड्स का खतरा बढ़ेगा। 91% लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शुगर सेल्फ फैट की वार्निंग दिखाने का समर्थन किया है। एफएसएसएआई के प्रस्ताव के मुताबिक ही 89% ने लिस्टिंग और प्रोडक्ट्स पेज दोनों पर जानकारी देने का सुझाव दिया। एक्सपीरियंस के सर्वे में शामिल 90% क्रेडिट एक्टिव ग्राहकों ने एक साल में वित्तीय स्थिति सुधरने का भरोसा जताया। 35% लोग कर्ज के बोझ से तनाव में है। 27% को किस्त चुकाने में दिक्कत। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक फेस्टिव सीजन की शुरुआत में भारत की कंज्यूमर डिमांड 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। कार एसी टीवी जूते कपड़े और क्विक कॉमर्स तक कई कैटेगरीज में मजबूत मांग।
दिल्ली एयरपोर्ट पर इटली के 3 यात्री इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किए बिना एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुए। इस लापरवाही पर सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भेजा। सीबीआरई के मुताबिक 70% कंपनियां शहर में ऑफिस स्पेस चुनते समय कम्यूट और कनेक्टिविटी को सबसे जरूरी मानती है। 18% इसके लिए ज्यादा प्रीमियम देने को भी तैयार। चीनी की कीमतों में काबू रखने के लिए इस कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है। 60 रुपए किलो के नीचे लाने की कोशिश कामयाब हुई। त्योहारी मांग की वजह से अभी भी चीनी पर दबाव बरकरार। कच्चे माल की बढ़ती लागत के बावजूद कंपनियां त्योहार में ग्राहकों पर पूरा बोझ डालने से बच रही हैं। लोकल सोर्सिंग और सस्ते मटेरियल अपनाकर लागत घटा रही हैं कंपनियां। ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटे के बाद रूस और यूक्रेन के दूसरे के ऊपर ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन की राजधानी कीव में पेट्रोल पंप पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ तो यूक्रेन ने भी रूस की तेल रिफाइनरी पर भीषण हमला बोला। ट्रंप के प्रस्ताव पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आर्दई हिस्सेहिप का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में संघर्ष विराम के लिए तैयार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन पर बातचीत के दौरान भी जारी रहेगा सैन्य अभियान, वार्ता के दौरान भी जारी रहेगा हमला। लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में घुसे संदिग्ध ड्रोन को नेटो लड़ाकू विमान ने मार गिराया। बेलारूस सीमा के पास हुई घटना से बढ़ी चिंता। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिले अमेरिकी दूत जॉन कोल। राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रतिबंधों की ढील पर चर्चा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ सहयोग बढ़ाने और संबंध गहरा करने का ऐलान किया। किम ने कहा रूस और उत्तर कोरिया के संबंध और मजबूत होंगे। आईएईए सम्मेलन में परमाणु प्रमुख को वीजा न दिए जाने पर ऑस्ट्रिया पर भड़काए ईरान। विदेश मंत्रालय ने कहा ऑस्ट्रिया का फैसला पूरी तरह अनुचित और गलत है। मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मेल बैलेट में बदलाव की अपील को खारिज किया। मिड टर्म इलेक्शन में नहीं लागू होगा मेल इन वोटिंग रूल। दुबई समिट में बोले सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का प्रतिबंध हटने के बाद देश में बढ़ रहा है निवेश। खाड़ी देशों और अमेरिकी कंपनियों के साथ अरबों डॉलर के समझौते हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन। बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हजारों जवान।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या अब आपका पसंदीदा और सबसे आसान यूपीआई पेमेंट मुफ्त नहीं रहेगा? क्या 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांसफर पर अब जेब ढीली करनी पड़ेगी? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अभी यूपीआई भुगतान पर शुल्क के लिए 2000 रुपए की सीमा तय की है और आने वाले दिनों में वो इसे और भी कम कर सकती है, जबकि सरकार का कहना है कि आम ग्राहकों और छोटे दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं होगा और जो बड़े व्यापारी और मर्चेंट्स मुफ्त यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं उन्हीं पर इसका भार आएगा। आखिर इस विवाद का पूरा सच क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको हूती के उस दावे के बारे में बताएंगे जिसने मिडल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दावा है कि हूती ने सऊदी अरब में 24 घंटे में 54 हवाई हमले किए हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका और पाकिस्तान जैसे पुराने सहयोगियों ने मदद से हाथ पीछे खींच लिए, तो सऊदी अरब को उस इजराइल की ओर देखना पड़ा जिसे वो देश तक नहीं मानता और किसी तरह के राजनयिक संबंध भी नहीं रखता। इसके बाद आपको बताएंगे कि हूती के लड़ाकों के पास ये टोयोटा हाइलक्स कैसे पहुंची। ये गाड़ी सऊदी अरब के खिलाफ युद्ध में हूती के लड़ाकों की सबसे मददगार साथी बन रही है, जो आसानी से हथियार ले जा सकती है और इस पर भारी हथियार फिट भी किए जा सकते हैं।

क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे की शादी में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी का पैसा खर्च हुआ? दावा है कि एक प्राइवेट आइलैंड पार्टी और आतिशबाजी का लाखों डॉलर का खर्च पुतिन के करीबी अरबपति उमर क्रेमलेव ने उठाया था। हालांकि ट्रंप जूनियर की पत्नी बेटिना ट्रंप ने इसे सिर्फ दोस्तों की तरफ से मिला वेडिंग गिफ्ट बताया, लेकिन इसे लेकर गंभीर कूटनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने ड्रोनाथॉन के जरिए भविष्य के ड्रोन युद्ध का नया रोड मैप तैयार कर दिया है। महंगे लड़ाकू विमानों की जगह कम लागत वाले स्वदेशी ड्रोन जब दुश्मन पर सटीक वार करेंगे तो आधुनिक युद्ध का खाका ही बदल जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब भारत की इस कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर रणनीति की कायल हो रही है। अब आपको ब्रिक्स की उस तस्वीर के बारे में बताएंगे जिसकी अब तक चर्चा हो रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जब भारत आए तो वो ब्रिक्स समिट के बीच किशोर कुमार का गाना गा रहे थे और रील्स में डीडीएलजे का संगीत बजा रहे थे। ये सिर्फ संगीत का शौक नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का सबूत है जिसने बिना किसी हथियार दुनिया का दिल जीत लिया।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी ने एक भावुक दांव चलते हुए चंद्रनाथ रथ की मां को अपना उम्मीदवार बना दिया है। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, जिनकी बंगाल चुनावों के बाद हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम में एक महिला बाइकर कार से टक्कर मारने वाले आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस केस में हत्या के प्रयास यानी बीएनएस की धारा 109 जोड़ दी है। एशियन गेम्स की शुरुआत से ठीक पहले जापान में खिलाड़ियों के ठहरने को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आयोजकों की तरफ से इस बार पारंपरिक एथलीट विलेज न बनाकर होटलों और क्रूज शिप में व्यवस्था की गई है, जिससे कमरों की भारी किल्लत हो गई है। स्थिति यह है कि भारतीय ग्रुप के कई खिलाड़ियों और स्टाफ को होटल में जगह मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। और दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की दो उड़ानें 24 घंटे से ज्यादा लेट हुई तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। बिना किसी पुख्ता इंतजाम और सही जानकारी के घंटों भटक रहे पैसेंजर्स ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया।

0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या यूपीआई अब फ्री यानी मुफ्त नहीं रहेगा और क्या सरकार ने 2,000 रुपए से ज्यादा के सभी यूपीआई भुगतान पर शुल्क यानी एक तरह की फीस वसूलने का ऐलान किया है। यूपीआई के जरिए भुगतान पर एक निश्चित फीस या शुल्क वसूला जा सकता है। ये खबर पहली बार पिछले महीने उस वक्त आई जब संसद के मॉनसून सत्र में एक कानून पास हुआ और इस कानून का नाम था टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को यूपीआई पर एमडीआर लगाने की कानूनी अनुमति दी। यहां एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो शुल्क होता है जो किसी भी भुगतान पर दुकानदार से वसूला जाता है। अब विवाद इस बात पर है कि अब तक यूपीआई से होने वाले डिजिटल भुगतान पूरी तरह फ्री होते थे और इन पर कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन अब विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स यानी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसा करने की इजाजत दे रही है और ये आरोप इस नोटिफिकेशन के आधार पर लगाया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन कल यानी 14 सितंबर को प्रकाशित हुआ। इसमें यह लिखा है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी सरकार यह कह रही है कि अगर आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजते हैं तो चाहे राशि कितनी भी हो वो पूरी तरह मुफ्त रहेगी। दूसरा, छोटे दुकानदारों, रेड़ी पटरी वालों, ऑटो चालकों और किराना स्टोर्स को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि उनके ज्यादातर लेन देन 2,000 रुपए से कम होते हैं। और तीसरा, सरकार कांग्रेस के इन आरोपों को भी गलत बता रही है कि यूपीआई से पैसा लेने वाले व्यापारियों को हर पेमेंट पर 0.5% का शुल्क देना होगा यानी 0.5% का। अब सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार या व्यापारी को 2,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करता है तो उस पर दुकानदार को 0.4% का शुल्क देना होगा यानी 5,000 रुपए के भुगतान पर 20 रुपए। अगर भुगतान 75,000 या उससे ज्यादा का होता है तो दुकानदार और व्यापारी को अधिकतम 300 रुपए का शुल्क भरना होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाएं जैसे रेलवे, बीमा, ईंधन, कृषि इनपुट में 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर 5 रुपए का शुल्क देना होगा। सरकार ये भी कह रही है कि अगर छोटे दुकानदार और रेड़ी पटरी वाले यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करते हैं और ये पैसे पर्सन टू मर्चेंट श्रेणी में आते हैं तो तब भी सभी लेन देन पर यह शुल्क 0 रहेगा और ये नियम 15 अक्टूबर से लागू होंगे। यहां ये भी देखिए कि इस फैसले का असर कितने व्यापारियों पर पड़ने वाला है। हमारे देश में 29% यूपीआई लेन देन पर्सन टू मर्चेंट की श्रेणी में होते हैं यानी 91,00,000 करोड़ रुपए का यूपीआई भुगतान इसी श्रेणी में होता है और इनमें भी 67% भुगतान 2,000 रुपए से ज्यादा के होते हैं यानी 61,00,000 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन पर अब सीधा सीधा एक शुल्क या चार्ज वसूला जाएगा जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जनता को बिना बताए कानून बदलकर यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। राहुल गांधी का तर्क है कि भले ही सरकार ऐसा कह रही है कि यह शुल्क केवल मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से लिया जाएगा लेकिन व्यावहारिक रूप से व्यापारी या दुकानदार इस अतिरिक्त शुल्क को चीजों के दाम बढ़ाकर ग्राहकों से ही वसूलेंगे और इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगा रही है कि आज सरकार ने 2,000 रुपए की सीमा तय की है लेकिन कल सरकार एक और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और इस सीमा को घटा सकती है या आम लोगों के आपसी लेन देन पर चार्ज लगा सकती है क्योंकि कानून में अब इसके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं बची। ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। यानी यहां आप इन आंकड़ों को भी देखिए, भारत में एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से पैसा भेजता है तो उसे P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर्सन टू पर्सन लेन देन कहते हैं। भारत में अकेले 71% यूपीआई भुगतान इसी श्रेणी में होते हैं और सरकार कहती है कि इस श्रेणी में कभी भी लोगों से यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है पर्सन टू मर्चेंट यानी व्यापारी से व्यक्ति से दुकानदार, उसमें 29% लेन देन होते हैं और ये 0.4% शुल्क के दायरे में आ चुके हैं और विपक्षी दल अभी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे पर्सन टू मर्चेंट लेन देन में 2000 रुपए से ज्यादा के 4% ही यूपीआई भुगतान होते हैं, लेकिन इनका मूल्य कुल पैसों का 67% होता है। इसी तरह पर्सन टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों के बीच केवल 20% भुगतान 2000 रुपए से ज्यादा के होते हैं, लेकिन इनका मूल्य 86% होता है। अब सरकार कह रही है कि पर्सन टू पर्सन की श्रेणी में तो कभी कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट में जो लेन देन होता है वो शुल्क के दायरे में आ जाएगा। और सरकार ने ऐसा सोचा क्यों वो भी देखिए। यूपीआई भले ही आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे चलाने के लिए बैक एंड पर एक विशाल नेटवर्क काम करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में यूपीआई और रुपे नेटवर्क को 24 घंटे बिना रुके सुरक्षित रूप से चलाने की सालाना लागत लगभग 20,000 करोड़ बैठती है। इनमें बैंकों के हाई स्पीड सर्वर, इंटरनेट बैंडविड्थ और सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने की टेक्नोलॉजी पर लगातार अपग्रेडेशन का खर्च शामिल होता है। यही नहीं, अब तक इस भारी भरकम खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार बैंकों को खुद सब्सिडी देकर उठा रही थी। जैसे पिछले बजट में इसके लिए 2000 करोड़ की सब्सिडी दी गई और 2021 से 2025 के बीच 8,276 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यानी यूपीआई मुफ्त जरूर मिल रहा है, लेकिन इसकी भी एक कीमत है और अब तक इस कीमत को सरकार ने सब्सिडी देकर चुकाया है। सरकार की सोच यह है कि जब यूपीआई पर हर साल 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पिछले साल 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तब हमेशा के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से इसे मुफ्त रखना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। और इसीलिए सरकार की सोच यह है कि जो कंपनी और व्यापारी इसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं उनसे इसका शुल्क वसूला जाए। यहां कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि डिजिटल पेमेंट से सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और नोटों की छपाई का खर्च बचता है, जिससे देश का को सीधा फायदा होता है। इसीलिए जब आम नागरिक पहले से टैक्स दे रहे हों तो इसी टैक्स के पैसे से यूपीआई को मुफ्त रखना एक बेहतर पब्लिक गुड निवेश है, न कि इस पर अतिरिक्त चार्ज लगाना। सरकार अभी 5,000 करोड़ रुपए हर साल नोटों की छपाई पर खर्च कर रही है। हमारे देश में कैश का चलन नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ है। जून 2016 में हमारे देश में 17,33,000 रुपए का कैश बाजार में था, जबकि 30 जून 2026 को हमारे ही देश में 42,94,000 करोड़ रुपए का कैश चलन में है। यहां यह भी समझना होगा कि यूपीआई की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में अकेले यूपीआई की हिस्सेदारी 49% है और अभी यूपीआई के हर दिन 66 करोड़ बार पेमेंट की जाती है। इसके अलावा यूपीआई 11 देशों में मौजूद है, जिनमें यूएई है, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव्स शामिल हैं। ऐसे में अगर यूपीआई में बड़े बदलाव होते हैं तो पूरी दुनिया इसे देखेगी और यह भी तब होगा जब यूपीआई की सफलता अब तक अभूतपूर्व रही है। यूपीआई से होने वाले लेन देन 2016 के बाद 13,000 गुना बढ़े हैं और इससे होने वाले भुगतान में 4,000 गुना की वृद्धि हुई है। यहां आप ये भी समझिए कि आप जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान करते हैं तो उस पर भी मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से यह शुल्क लिया जाता है और यही वीजा और मास्टर कार्ड की कहानी जुड़ती है। असल में पहले ज्यादा भुगतान इन्हीं कंपनियों के कार्ड से किए जाते थे और इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब पैसा मिलता था, लेकिन जब मुफ्त यूपीआई से भुगतान आसान हो गया तो इन कंपनियों को कम शुल्क मिलने लगा और इससे ये कंपनियां नाराज होकर यूपीआई के विरोध में अमेरिकी सरकार के पास शिकायत भी लेकर गईं। और अभी विपक्ष यह आरोप भी लगा रहा है कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खोला, हालांकि सरकार बार बार इन आरोपों को गलत बता रही है।
1: क्या आप मुझे बताइए कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके, कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं, ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कोई एडिशनल चार्ज किसी भी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% के अराउंड और उससे ज्यादा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लेस देन 2,000 रुपीज होते हैं, और उसके ऊपर में भी कोई चार्ज कस्टमर पर नहीं लगने वाला है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी झूठ न्यूज क्यों फैला रही है? क्योंकि आजकल राहुल गांधी की आदत हो गई है, उनकी टीम उनको सुबह सुबह कहती है कि सर आपको झूठ की गूंज करनी है, कोई ना कोई मुद्दे पे या तो झूठा ट्वीट करिए या झूठा स्टेटमेंट दीजिए।
0: भारत अकेला देश नहीं है जहां डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट्स के लिए एक निश्चित शुल्क लगाया है। अगर चीन की हम यहां पर बात करें तो चीन में यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान पर 0.38% से 0.6% तक शुल्क लगाया जाता है। अमेरिका में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का चलन ज्यादा है, इसीलिए वहां कार्ड से खरीदारी पर व्यापारियों को 1-3.5% तक कुल शुल्क देना होता है। जापान में भी यही शुल्क कुल राशि का 2% से 3.5% तक होता है, और ये देश डिजिटल भुगतान के खर्च के लिए सब्सिडी नहीं देते, लेकिन भारत सरकार को हर साल 2,000 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च करने पड़ रहे हैं, और सब्सिडी का ये पैसा टैक्स पेयर्स की ही जेब से जाता है, जबकि सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर्स का पैसा विकास के कामों में लगे, और जो व्यापारी मुफ्त यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं वो यूपीआई लेन देन पर कुछ शुल्क भरें, और ये व्यवस्था सब्सिडी पर ही न चलती रहे। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जिस इसराइल को सऊदी अरब मान्यता तक नहीं देता, उसी सऊदी अरब को हूती के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इसराइल से मदद मांगनी पड़ी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से हूती विद्रोहियों के खतरे के खिलाफ खुफिया सहायता मांगी थी, और यह संपर्क सीधे इसराइल को फोन करके नहीं साधा गया था। इसकी जगह सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम से बात की, और इसके बाद सेंटकॉम ने इसराइल से बात करके सऊदी अरब की मदद कराई और उसे बाबल मंदेब में हूती लड़ाकों से जुड़ी खुफिया जानकारी दी गई। सरल भाषा में कहें तो सऊदी अरब यह जानना चाहता था कि बाबल मंदेब में हूती के लड़ाके क्या कर रहे हैं, कहां छिपे हैं, उनके पास कितने हथियार हो सकते हैं, और यह जानकारी ऐसा दावा है कि इसराइल ने अमेरिका के जरिए सऊदी अरब को दी, और यह भी तब हुआ जब सऊदी अरब इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता तक नहीं देता, और न ही सऊदी अरब के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। 1948 में जब इसराइल का गठन हुआ था उसी वक्त सऊदी अरब ने इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब ने 1948 के पहले अरब इसराइल युद्ध और फिर 1967 के सिक्स डे वॉर में इसराइल के खिलाफ लड़ रहे अरब देशों को आर्थिक और सैन्य मदद भेजी थी। 1973 में जब अरब के मुस्लिम देशों का इसराइल से युद्ध हुआ तब भी सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक देशों ने इसराइल का समर्थन करने वाले देशों को, खासकर अमेरिका को, तेल की सप्लाई रोक दी थी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। लेकिन सोचिए आज तस्वीर इस तरह से बदली है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान ने मक्का समझौते के बावजूद हूती के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की मदद करने से इनकार कर दिया तो सऊदी अरब को अमेरिका के जरिए उसी इसराइल से मदद लेनी पड़ी, और यह भी तब हुआ जब यमन में हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे में 54 हवाई हमले करने का दावा किया है।

अब आपको ये बताते हैं कि अलकायदा से लेकर आईसिस, तालिबान, बोको हरम, हिजबुल्ला, हमास और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों के पास टोयोटा की हाइलक्स कार आती कहां से है, और ये गाड़ी आतंकवादियों की मनपसंद गाड़ी कैसे बन गई, और इसे कोडवर्ड में टेक्निकल क्यों कहा जाता है। यमन के हुती विद्रोहियों के कई वीडियो आए, इनमें बड़ी संख्या में पिकअप गाड़ियां दिखाई दी और इन गाड़ियों पर मशीन गन और रॉकेट जैसे हथियार लगाए गए थे, फिटेड थे। दावा है कि हूती इन गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता है, और इनमें भी टोयोटा की हाइलक्स सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली गाड़ियों में से एक है। और कैसे इन सभी गाड़ियों पर हूती के लड़ाके, उसकी मशीन गन को दिखाया गया है, उसे आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं।

हूती पहला ऐसा संगठन नहीं है जिसने इस कार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। 2014 में आइसिस ने भी इराक और सीरिया में सफेद टोयोटा हाइलक्स के विशाल काफिलों का प्रदर्शन कर इस गाड़ी को एक तरह से अपना ब्रांड व्हीकल बना दिया था। उससे पहले 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा करने से लेकर 2021 में दोबारा सत्ता में आने तक तालिबान के लड़ाकों ने भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया और ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी गुटों ने भी अफगानिस्तान और यमन के पहाड़ी इलाकों में इसका जमकर इस्तेमाल किया, जबकि लेबनन के हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही, फिलिस्तीन में हमास और 1970-80 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के कई गुरिल्ला संगठनों ने इस गाड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? मुख्य रूप से इसके पीछे चार वजह है। पहली वजह यह है कि टोयोटा हाइलक्स को गाड़ियों की दुनिया में अमर माना जाता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी हो, बिना सड़कों के पथरीले रास्ते हो, हर तरह के कबाड़ ईंधन पर भी इसका इंजन बिना रुके चलता है। और क्योंकि ज्यादातर आतंकी संगठन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिप कर रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा इस गाड़ी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह यह है कि मिलिट्री ग्रेड के बख्तरबंद वाहनों की तुलना में इसकी मरम्मत बेहद आसान है। इसके स्पेयर पार्ट्स दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि हाइलक्स का पिछला हिस्सा फ्लैट बेड यानी खुला और बहुत मजबूत होता है। इसके कारण इसमें बिना किसी खास बदलाव के भारी कैलिबर के मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर या एंटी एयरक्राफ्ट गन फिट किए जा सकते हैं और इस वजह से भी ये गाड़ी आतंकियों की मनपसंद बताई जाती है। चौथा कारण है रफ्तार और फुर्ती। जहां सेना के भारी टैंक और हमवीज दलदल या रेत में फंस जाते हैं, वहीं हाइलक्स अपनी क्षमता की बदौलत बिजली की रफ्तार से हमला करके गायब हो सकते हैं। और इसकी क्षमता दुनिया ने 1987 के उस युद्ध में देखी जो चाड और लीबिया के बीच लड़ा गया था। उस वक्त फ्रांस ने मुअम्मर गद्दाफी के लीबिया को हराने के लिए चाड को 400 टोयोटा हाइलक्स और लैंड क्रूजर पिकअप दिए और इनके साथ एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दी। इससे इन गाड़ियों ने युद्ध का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। इन गाड़ियों ने लीबिया के भारी भरकम टैंकों को कई बार चकमा दिया और अचानक हमले किए और इसी वजह से इस संघर्ष को बाद में टोयोटा वॉर भी कहा गया था। और यहां यह भी देखिए कि ये गाड़ियां आखिर इन आतंकी संगठनों तक पहुंचती कैसे हैं। अब जापान की टोयोटा कंपनी सीधे तौर पर आतंकी संगठनों को ये गाड़ियां नहीं बेचती है और उसकी इस पर सख्त रोक की नीति भी है, लेकिन आतंकी मुख्य रूप से चार जुगाड़ लगाकर इस टोयोटा हाइलक्स को हासिल कर लेते हैं। इनमें पहला तरीका है दूसरे देशों से इन गाड़ियों की चोरी कराना और उन्हें तस्करी के जरिए लीबिया, इराक, सीरिया और यमन लाना। इनमें भी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से हर साल हजारों टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां चोरी होती हैं। इन्हें संगठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट नेटवर्क के जरिए छुपाकर संघर्ष क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए अकेले ऑस्ट्रेलिया वहां 2000 से ज्यादा, ब्रिटेन में 584, मलेशिया में 370 टोयोटा हाइलक्स चोरी होती हैं और बाद में इन्हें आतंकी संगठनों को बेच दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और दूसरे मानवाधिकार संगठन कई देशों में बड़े पैमाने पर इस टोयोटा हाइलक्स कार का इस्तेमाल करते हैं और आतंकी संगठन अक्सर इन काफिलों पर हमला करके इन गाड़ियों को लूट लेते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश कई बार सीरिया या इराक के स्थानीय विद्रोही गुट या वहां की सरकारी सेना को मदद के रूप में ये गाड़ियां देते हैं और जब वो गुट युद्ध हारते हैं तो ये गाड़ियां सीधे आइसिस या तालिबान के हाथ लग जाती। चौथा, कई बार ये आतंकी संगठन शेल कंपनियां बनाकर इन गाड़ियों को चोरी के रास्ते से खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए आप एक तस्वीर को देखिए, ये साल 2014 की है। उस वक्त सीरिया में लड़ रहे आतंकियों के एक वीडियो में एक टोयोटा जैसा फोर्ड का ट्रक दिखा जिस पर अमेरिका के टेक्सास के एक आम प्लम्बर की दुकान का नाम और फोन नंबर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। जांच हुई तो पता चला कि इस प्लम्बर ने अपनी पुरानी गाड़ी अमेरिका के एक डीलर को बेच दी जो ब्लैक मार्केट के रास्ते घूमते घूमते सीरिया में इन आतंकियों के पास पहुंच गई। और हो सकता है कि हूती विद्रोहियों के पास भी इसी तरह तस्करी के जरिए ये टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां पहुंचाई गई।

अब आपको बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर के बारे में बताते हैं। कूटनीति की दुनिया में सॉफ्ट पावर उस ताकत को कहा जाता है जिसमें बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के कोई देश अपनी संस्कृति, मूल्यों और कला के दम पर दुनिया के दूसरे देशों को प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर उसका हॉलीवुड और गूगल जैसी टेक कंपनियां हैं। चीन की सॉफ्ट पावर उसकी उत्पादन क्षमता है। जब मेड इन चाइना सामान दुनिया के बाजारों में पहुंचता है तो इससे चीन की छवि मजबूत होती है। दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर उसका के पॉप यानी कोरियन पॉप कल्चर है। जर्मनी की सॉफ्ट पावर उसकी मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन जैसी लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। और अब भारत के लिए उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर उसकी संस्कृति, बॉलीवुड, संगीत, योग, मसाले, नृत्य, भाषा और परंपराएं बन रही हैं। ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ब्रिक्स समिट के लिए भारत दौरे पर आए तो उनका यह दौरा बॉलीवुड गानों पर एक नई कूटनीति लिख रहा था। उन्होंने ब्रिक्स की बैठक, सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात और ब्रिक्स समिट के बाद भारत से विदाई का अपना जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियोज, उन सब वीडियो में बॉलीवुड के गानों का इस्तेमाल मन भर के किया। इनमें भी गाला डिनर के एक वीडियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक पियानो वादक के साथ मिलकर किशोर कुमार का सदाबहार गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गा रहे थे और जब लोगों ने उनके इस अंदाज को देखा तो दंग रह गए। इसके पीछे कारण यही था कि मलेशिया एक इस्लामिक देश है जहां बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 65% है और खुद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के गानों, भारतीय संस्कृति को लेकर वो इतने सहज दिख रहे थे, उनके व्यवहार से भारत की सॉफ्ट पावर का पता चल रहा था। हम चाहते हैं कि आप एक बार पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों बॉलीवुड को दुनिया इतना मानती है।

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें भी उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक गाने का इस्तेमाल किया है।

0: मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाई और इंडोनेशिया भी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसीलिए यहां इस बात पर बिल्कुल भी मत चौंकिए कि मुस्लिम देशों के शीर्ष नेता और अधिकारी बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति के फैन हैं, क्योंकि यहां बात धर्म की है ही नहीं, यहां बात है भारत की सॉफ्ट पावर की और इस सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड की फिल्मों और गानों ने बड़ी भूमिका निभाई है।
1: बोल चुरिया तेरे संजना आयु मेघनी तेरे संजना Thank you.

0: अगर सिर्फ मलेशिया की बात करें तो मलेशिया बॉलीवुड फिल्मों के इतना करीब इसीलिए रहा क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले पारिवारिक मूल्य, माता पिता का सम्मान, परंपराएं, रोमांस, शादियों के रीति रिवाज मलेशिया के मलय समाज की अपनी संस्कृति से काफी मेल खाते हैं और यही कारण है कि हॉलीवुड की तुलना में मलेशिया के लोगों को बॉलीवुड में ज्यादा सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस होता है। इन्हीं कारणों से 2008 में मलेशिया के मलक्का राज्य ने बॉलीवुड के बड़े एक्टर शाहरुख खान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक दातुक की उपाधि से नवाजा था जो ब्रिटेन के सर या नाइटहुड के बराबर होती है। इसके अलावा अगर सिर्फ प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बात करें तो उनका भारत से काफी गहरा जुड़ाव रहा है। 1990 के दशक में अनवर इब्राहिम और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों अपने अपने देशों के वित्त मंत्री थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। ऐसी गहरी दोस्ती कि अनवर इब्राहिम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरे भाई कहकर संबोधित करते थे। जब अनवर इब्राहिम को मलेशिया की आंतरिक राजनीति के कारण जेल जाना पड़ा तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके बच्चों को भारत में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश तक की थी और यही कारण है कि अनवर इब्राहिम भारत और बॉलीवुड के इतने करीब रहे। सच कहें तो जितना प्रचार सॉफ्ट पावर के रूप में अमेरिका ने हॉलीवुड का किया उतना प्रचार भारत ने बॉलीवुड को लेकर नहीं किया, जिसका कई लोग ये मतलब निकालते हैं कि भारत बॉलीवुड को अपनी सफल सॉफ्ट पावर नहीं बना पाया, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। आजादी के ठीक बाद भारत के पास बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी लेकिन राज कपूर की आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने सोवियत संघ में इतिहास रच दिया था। उस वक्त रूस के लोग राज कपूर के दीवाने थे और रूसी भाषा में डब किया गया गाना सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रूस की गलियों में गूंजा करता था। इसके अलावा उस दौर में राज कपूर और नरगिस की फिल्मों में दिखने वाला समाजवाद, गरीबी से संघर्ष और मानवीय मूल्य सोवियत संघ और चीन के विचारधारा से मेल खाते थे और इसने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान रूस के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों की एक मजबूत जमीन तैयार की थी। आज अगर रूस भारत के इतना करीब है तो इसके पीछे बहुत सारी वजहों में एक छोटी सी वजह बॉलीवुड भी है और यहां बात सिर्फ सोवियत संघ और चीन की भी नहीं है। 1970 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने मिस्र, मोरक्को, नाइजीरिया जैसी अफ्रीकी देशों में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। उस वक्त मिस्र के लोग अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस कदर प्यार करते थे कि जब वो वहां गए तो काहिरा की सड़कें जाम हो गई थी। इन देशों के तानाशाहों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम जनता को अमिताभ बच्चन के किरदारों में व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज दिखती थी और खाड़ी देशों में बॉलीवुड फिल्मों के प्रति दीवानगी ने भारत के लिए वहां तेल व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों के रास्ते आसान किए। जब 1990 का दशक आया तब 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में आई, तब इन बॉलीवुड फिल्मों ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रह रहे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ा था। और आपको याद होगा 2015 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर डायलॉग बोला था और उस वक्त भी बॉलीवुड के प्रभाव की काफी चर्चा हुई थी।
1: सिनोरिता बड़े बड़े देशों में यू नो व्हाट आई मीन सो
0: तो इस पूरी खबर का निचोड़ यह है कि जब भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है तब इसमें हर चीज की अपनी भूमिका है और जो बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर है वो भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ रही है।

0: पिछले करीब 3 से 4 दिनों से केदारनाथ यात्रा रुकी हुई थी और इसकी वजह थी पहाड़ों पर हो रही बारिश, चीरबासा में हुए लैंडस्लाइड। चीरबासा में पिछले 3 से 4 दिनों में एक ही क्षेत्र में कई बार भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। सबसे पहली घटना 11 तारीख को हुई थी, जब भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया था। इस वजह से यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया था। भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर बड़े पत्थर गिर गए थे और यात्रा रोकनी पड़ी। यात्रा मार्ग पर पहाड़ का मलबा आया तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इससे यात्रियों को आगे भेजना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन यात्रा को रोक दिया था।
1: पचास लेकर के पूरे एरिया में पत्थर गिरे हैं सर।

लेकिन इसके बाद इसी क्षेत्र में 14 सितंबर को इसी जगह पर दूसरी बार भूस्खलन हुआ। हालांकि एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात थी, इसीलिए मलबा हटाने का काम बहुत तेजी से किया गया। इससे यात्रा को दोबारा शुरू करने में मदद मिली। हालांकि अब भी इस पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और पत्थरों के दरकने का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक नया नियम बना दिया है। अब से हर यात्री को हेलमेट पहनकर केदारनाथ यात्रा करनी होगी। दरअसल पिछले एक हफ्ते के भीतर पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदला है, पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन चाहता है लोग चोटिल न हो, इसीलिए 100 से 200 के जत्थे में श्रद्धालुओं को केदारनाथ यात्रा पर भेजा जा रहा है और इसके लिए राहत बचाव के लिए पहुंची टीमें यात्रियों की मदद कर रही है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और उसके कई कारणों में से दो मुख्य कारण हैं, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण। इसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं। पिछले एक दशक में उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने जैसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार 2015 से 2024 के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की करीब 12,758 घटनाएं हुई। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा भूस्खलन हुए। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में आता है और इसी साल 9 सितंबर तक रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन की वजह से 56 बार सड़कों को बंद करना पड़ा। इस साल पूरे उत्तराखंड में 1,423 सड़कें भूस्खलन की वजह से बाधित हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तराखंड में हिमालयन रेंज के पहाड़ हैं और ये दुनिया के सबसे युवा पहाड़ी रेंज है। इसी वजह से यहाँ पर भूस्खलन और भूकंप का खतरा अन्य पहाड़ी रेंजेस की तुलना में ज्यादा रहता है। इसके अलावा उत्तराखंड के

0: जहां तक केदारनाथ यात्रा की बात है तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी ने यात्रियों की तादाद तय करने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश में कहा गया था कि केदारनाथ यात्रा पर हर दिन केवल 5,000 यात्रियों को ही भेजा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने 12,000 से 13,000 यात्रियों की सीमा तय की थी। हालांकि इस बार तो स्थिति यह है कि हर दिन करीब 28,000 से 30,000 यात्री केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और इस साल अब तक 14,92,000 यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अब बात गुरुग्राम हिट एंड रन केस की। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। पलवल के कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दौसा भाग गया था। ये पूरा मामला एक महिला बाइकर शिवानी चौहान को कार से टक्कर मारने से जुड़ा हुआ है। शिवानी रविवार को अपने बाइकर दोस्तों के साथ गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर थी। उसी दौरान कल्याण बैंसला अपनी गाड़ी से आया। उसने पहले तो शिवानी को रुकने का इशारा किया, फिर जब शिवानी अपनी बाइक से आगे निकल गई तो उसका पीछा करके जानबूझ के साइड से तेजी से निकलते हुए टक्कर मार दी। इस टक्कर से शिवानी बाइक से गिर गई, उन्हें चोटें भी लगी। टक्कर मारने के बाद आरोपी कल्याण बैंसला फरार हो गया था। अब पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक इस केस को एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा रहा था जिसमें आरोपी भाग गया था, लेकिन वीडियो में कल्याण बैंसला की हरकतें देखकर इस केस को महिला बाइकर की हत्या के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है और पुलिस ने एफआईआर में इससे जुड़ी बीएनएस की धारा 109 को जोड़ दिया है।
1: देखिए, उसने कुछ कमेंट पास किया है तो वो अभद्र कमेंट है। उसमें आप अब एब्यूजिव कह सकते हैं उसे। ड्रिंक एंड ड्राइव से तो ज़्यादा संज्ञान है इस अपराध में। जो ये धाराएं हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, जो 307 हैं। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की, उन्होंने अटेम्प्ट किया है अपनी तरफ से। मतलब उनकी नीयत जो थी, इंटेंट जो उसके पीछे था, वो उनसे उनको मारने का ही था।
2: इंटेंशन थी
1: जी।
0: इस केस में अब गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित का बयान भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को रिमांड मांगी है, आरोपी की रिमांड, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी ने किस मकसद से महिला बाइकर को टक्कर मारी। अभी तक इस केस को लेकर पीड़ित शिवानी चौहान सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हमने उनसे बात की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया है।
3: मैं जा रही थी बाइकर वन कैफ़े जिसे हम कहते हैं, और वो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे। मैंने उसको बहुत बाद में नोटिस करा कि वो मेरे आसपास चल रही है। पहला इंसिडेंट था कि जब वो गाड़ी मेरे साइड से बहुत तेज़ी से निकली थी और तब मैंने इतना नोटिस नहीं करा। मुझे लगा कि कहीं पे भाई कोई गाड़ी होगी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट था, जब वो मेरे साइड में आके, जब वो कुछ मतलब एक बार उन्होंने थम्सअप करा, फिर बाकी वो इशारे कर रहे थे। उसके साइड में जो एक और बैठा था वो भी कुछ इशारे कर रहा था और वो शायद से रुकने के लिए कह रहे थे। तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं, क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिरा ना दे। इसी चीज़ को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, 3-4 गाड़ियां हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे। पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा है कि वो गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही है। जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं।
0: पिछले कई दिनों से इस बात पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है कि क्या AI इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन रहा है, या फिर AI की रफ्तार रोकने का यह दांव चीन की घेराबंदी का नया पैंतरा है। AI को लेकर छिड़ी इस बहस का नतीजा शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही AI के दम पर रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा ग्लोबल मार्केट अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। बाजार में डर इस बात का नहीं था कि तकनीक रुक गई है, बल्कि डर इस बात का था कि तकनीक बनाने वाले खुद इससे डर गए हैं। देखते ही देखते सेमीकंडक्टर

चिप मेकर्स क्लाउड कंपनियों की वैल्यूएशन में अरबों डॉलर का कट लग गया, एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक। एनवीडिया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेल जैसी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए। आखिर ये पैनिक फैला कहां से? दरअसल एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने कहा कि एडवांस्ड एआई मॉडल विकसित करने की रफ्तार को धीमा किया जाना चाहिए। इस मांग का समर्थन ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने भी कर दिया। इससे पहले एंथ्रोपिक के रिसर्चर जेकब कॉक्सन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि इंसानी वजूद के लिए खतरा है एआई। इसके बाद एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि उसके क्लॉड एआई का इस्तेमाल हथियार बनाने, साइबर हमलों और जासूसी के लिए हो रहा है। खतरे की घंटी बजी तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III ने खुद कमान संभाल ली। इस हफ्ते बकिंगम पैलेस में एनवीडिया, गूगल डीप माइंड, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के हेड को तलब किया ताकि एआई के खतरे से इंसानी वजूद को बचाने के लिए साझा नियम बनाए जा सके। कहानी में असली मोड़ यहीं से आया जिस वक्त पश्चिमी टेक दिग्गज एआई से तबाही का खौफ बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने इस पूरे नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तीखा हमला बोलते हुए लिखा, एआई को धीमा करने की अमोदेई की अपील नाटक है। असल में यह चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने के लिए तैयार की गई कोल्ड वॉर प्लेबुक यानी शीत युद्ध की रणनीति है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी तकनीकी तानाशाही बनाए रखने के लिए डर का माहौल बना रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि टेक्नोलॉजी को रोकने और डर फैलाने के बजाय इसे सबके लिए खुला और समावेशी बनाना होगा। चीन के इस रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी समझा जा सकता है। ट्रंप ने एआई की रफ्तार को धीमा करने की मांगों को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि वो एआई की रेस में सबसे आगे हैं और अब चीन से पिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो एआई की दौड़ जीतेगा वही दुनिया पर राज करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सिलिकॉन वैली के टेक दिग्गज एआई बना रहे हैं, इसके दम पर लाखों करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, अब वही कह रहे हैं कि एआई से खतरा है। सदियों पुरानी एक कहावत है, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन रिश्ते, मां की ममता कभी पैसों से नहीं मिलती। लेकिन 21वीं सदी के इस डिजिटल दौर में बाजार ने इस कहावत को भी बेकार कर दिया है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खबर आई है अमेरिका से, जहां अपने घर से दूर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए छात्रों की देखभाल के लिए अब बाकायदा लोकल मॉम किराए पर मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीमार होने पर दवा खिलाने से लेकर कपड़े धुलवाने तक सब कुछ आर्ली रेट पर, एक घंटे की रेट पर उपलब्ध है। एनवाईटी की केस स्टडी के मुताबिक तस्वीरों में दिख रही 56 साल की मिंडी हॉविट्स वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दर्जनों छात्रों के लिए किसी माँ से कम नहीं है। अचानक तबीयत खराब होने पर गर्मा गर्म सूप पहुंचाना हो, आधी रात को अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाना हो, खराब लैपटॉप रिपेयर करवाना हो, हॉस्टल के कमरों की साफ सफाई करनी हो, ये कैंपस मॉम्स हर काम चुटकी में कर देती हैं। पेरेंट्स को इसे एक तरह का भावनात्मक भरोसा मान रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये ऐसा है जैसे शहर में माँ की बेस्ट फ्रेंड रह रही हो, जिन पर पूरा भरोसा तो है लेकिन डांट पड़ने का कोई डर भी नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इस तरह की मॉम्स का ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। दूर दराज शहरों में बैठे पेरेंट्स हजारों डॉलर फीस देकर अलग अलग स्टार्टअप्स के जरिए अपने बच्चों के किराए की मां बुक कर रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपए डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि 2000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं, जो मुफ्त है। रुपए डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निःशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहा। हो सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5 से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हाँ, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निर्देश भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का ये बंद हो गया तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई वायदे नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें क्या दिक्कत है? आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये, आप बताइए आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे यार।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल है और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए कुशल क्षेम पूछने के लिए मिलने के लिए गए हैं वो, और मैं मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले बात व्यवहार करे हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है, ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था सारी बातें नहीं बताई जाती, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा, अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश।
16: जयंत चौधरी
15: जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है बात अब पर्सनल हो गई है।
15: एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
17: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो। हम इस नाते जयंत जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अकेले जी खड़ा नहीं हो पाए। सही कह रहे।
0: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
18: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
19: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
20: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
21: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
20: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
21: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
19: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
22: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
19: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
23: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
19: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए। मंदिरों में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। कहीं सोने चांदी और हीरो से सजाया गया है बप्पा को, तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति है, आस्था है और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लालबाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में 3 अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बाप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने 4 पिलर्स यहाँ पे दर्शाए है ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यह मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर पापा को पेशवा कालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एयरलाइंस पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए ये कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी ₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI के लेस देन ₹2,000 में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच UPI फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निःशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: MPCI के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत UPI पेमेंट ₹577 था। ये किराने की दुकान पर दो या तीन बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। ₹577 की रकम ₹2,000 के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहां एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहां कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछना नहीं था क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता, अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के लीडर शायद त्रेता में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे यार।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मैं मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है और ये वही जयंत है जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था सारी बातें नहीं बताई जाती, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं रह होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहां ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो, वहाँ इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए। सही कह रहे हैं।
0: यूसीसी पर बिहार में भी घमासान मच गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के कई नेता मिलने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले जेडीयू ने साफ किया था कि यूसीसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी की बैठक में तय होगा कि आगे करना क्या है। कुल मिलाकर यूसीसी पर अब एनडीए के घर में ही घमासान मचा हुआ है।
8: उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सियासत गर्म हो गई। तेलंगाना से वैसी दिल्ली से कांग्रेस और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी के संकल्प पर सवाल उठाने लगे, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी के सहयोगी दलों को भी गृहमंत्री के संकल्प पर शंका है।
17: प्रावधानों को देखने के बाद उसके संबंध में सीधे गृह मंत्री जी से चर्चा होगी, श्री अमित शाह जी से, और उसके बाद हम लोग की पार्टी बैठेगी, पार्टी में फिर विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
18: हम लोग लगातार उसके विरोध में नहीं, हमने पहले भी जब ये संसद में पास हो रहा था हमने उसी समय कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं।
8: जेडीयू नहीं, चिराग पासवान भी संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची अनुच्छेद 371A, 371G और दलितों को मिलने वाली छूट का सवाल उठाने लगे। इधर कांग्रेस ने भी यूसीसी के मसले पर मोर्चा खोल रखा है।
19: हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। विचारधारा किसी की कुछ भी हो जाए लेकिन वो संविधान से तो अलग नहीं हो सकती।
8: दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
20: अभी तक तो जितनी भी इन्होंने लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की बात की, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन और रिजर्वेशन, वो तो पार्लियामेंट में लाए नहीं, अब ये वाला भी जो है ये स्टेट्स में लाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में लाइए और देखते हैं अगर आपसे पास हो सकता है।
21: यूसीसी को लागू करेंगे ताकि हम अपने रिलीजियस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारे। यूसीसी कोई इक्वालिटी के लिए बीजेपी नहीं कर रही है, सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वो यूसीसी को अपने अपने जहां प्रदेशों में सरकार में यूसीसी लाए हैं।
8: कुल मिलाकर यूसीसी पर भारतीय राजनीति में नई जंग शुरू हो गई है और हर बीतते दिन के साथ ये जंग और बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आज से करीब 6 साल 3 महीने पहले मुंबई में एक लड़की की मौत हुई थी और उसका नाम था दिशा सालियान। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की मौत के कुछ ही दिन के बाद सुशांत सिंह की भी मौत की खबर आई और दोनों की मौत को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। खूब हल्ला मचा, हंगामा हुआ, सवाल उठाए गए और अब छह साल के बाद सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत पर एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें कोई नामजद आरोपी तो नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा बहुत से एक्टर्स और पुलिस वालों के नाम एफआईआर के अंदर लिखे गए हैं। तो दिशा सालियान के घर वाले अपनी बेटी की मौत से आदित्य ठाकरे को जोड़ रहे हैं।

0: 2288 दिनों के बाद दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया। क्या सीबीआई दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी या हत्या? दिशा सालियान की मौत की एफआईआर में आदित्य ठाकरे, डीनू मोरिया, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम क्यों आया? पूरे के पूरे 6 साल 3 महीने और 5 दिनों के बाद एक बार फिर से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को लेकर हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत का केस सुलझा पाएगी? सीबीआई ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान को आधार बनाकर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिशा के पिता के बयान में जिन भी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वो इसमें दर्ज है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई को जांच करनी है कि दिशा की मौत में इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एफआईआर को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि दिशा का परिवार किस तरह की जांच की मांग कर रहा है। पहले पन्ने पर ही लिखा है कि किस तरह के अपराध की आशंका है। इसमें लिखा है आपराधिक साजिश, गैंगरेप, मर्डर, सबूत गायब करना या गलत जानकारी देना। अपराध की तारीख है 8-9 जून 2020 की मध्य रात्रि, और फिर वो पता लिखा है जहां अपराध घटित हुआ, फ्लैट नंबर 12-2, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। अब सवाल है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा? दिशा के पिता के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, और आरोपी के तौर पर वो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम किस आधार पर और क्यों लगा रहे हैं? अब सीबीआई में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पूरा घटनाक्रम समझिए। सीबीआई में दर्ज दिशा के पिता के बयान के हिसाब से 4 जून 2020 को दिशा सालियान अपने घर से अपने मंगेतर के घर निकली। ये कहा कि उसे कोई विज्ञापन का शूट करना है। पिता के मुताबिक दिशा ने उन्हें 3 लाख रुपए के चेक की फोटो भी दिखाई और कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर, फ्लैट नंबर 1202, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई के लिए निकल गई। ये वही एड्रेस है जहां घटना हुई। आगे दिशा के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है, 6 जून को दिशा ने अपनी मां को फोन करके बताया कि कोविड की वजह से उसका और उसके एक और दोस्त इंद्रनील का जन्मदिन नहीं मना पाए, इसलिए दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया है। अगले 2 दिन में वो घर आ जाएगी। इस दौरान वो लगातार अपने माता पिता के संपर्क में थी, लेकिन 7 जून 2020 को दिशा के फोन आने बंद हो गए। जब इन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन रोहन रॉय ने उठाया, जिसने बताया कि दिशा काम में व्यस्त है। इसके बाद 9 जून 2020 को सुबह करीब 3:15 बजे दिशा के पिता को मालवाणी थाने से फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने कोई पार्टी अटेंड की थी और वहां कुछ घटना हो गई। दिशा के पिता अपनी पत्नी के साथ सुबह 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दिशा एडमिट थी। वहां उन्होंने दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को देखा। दिशा के दूसरे दोस्त इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा और हिमांशु शिखारे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत हो गई। पूरी एफआईआर 10 पन्नों की है। एफआईआर के 4th पन्ने पर इसके आगे का घटनाक्रम लिखा है, और यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद दिशा के पिता को सुसाइड की थ्योरी पर शक हुआ। दिशा के पिता सतीश तालियान के मुताबिक दिशा के दोस्तों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। वो लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो 11 जून को सुबह करीब 11 बजे उन्हें उनकी बेटी के शव के कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए। फोटो देखने पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने उसकी बॉडी पर कोई खून या ज्यादा चोटें नहीं देखी। उन्होंने दिशा के जबड़े पर गाल के नीचे एक नाखून जैसा निशान देखा, और फिर 11 जून को दिशा का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। दिशा के पिता के मुताबिक शरीर पर खून नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं थी, तो उन्हें सुसाइड की थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त शॉक थे और मानसिक आघात में थे।
1: और ये एफआईआर सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता, उन्हें ऐसा लगता है या उन्हें उनकी ये कंप्लेंट है कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, पर यह एक हत्या है और उन्हें ऐसा लगता है, सतीश सालियन को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ और उसके बाद तब जो पुलिस ने जांच की थी, तब जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे या पुलिस कमिश्नर थे या जो अन्य पुलिस अफसर वहां पे मौजूद थे, सरकार में जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे केस को कवर अप किया था। दिशा सालियन ये पूर्व लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ही दिन मृत्यु के कुछ ही दिन पहले ही दिशा सालियन की मृत्यु हुई। 12वें मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी मलाड के एक बिल्डिंग में। रोहन राय उनके बॉयफ्रेंड के साथ वो उस बिल्डिंग में रह रही थी। उस शाम उनके घर पर पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के दौरान कुछ

0: उन कागजों में क्या लिखा था ये तक नहीं बताया गया। यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौत के कारण का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया।
1: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है जो आदित्य ठाकरे दिनू मौर्या सुरेश पंचोल उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
2: ये कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, आप सीबीआई के अधिकारी तक पहुंचे, आपने बयान भी दर्ज किया, दिशा को लेकर के आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे ये शुरू हो गई सही दिशा में, क्या कुछ
1: दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गया दिशा का?
0: यानी अगर दिशा के पिता के माने तो उनकी हत्या हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में दिशा के पिता ने अपने बयान में तफसील से बताया है। उनके मुताबिक उनकी बेटी दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी थी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इसी काम के दौरान दिशा को कथित ड्रग तस्करी, बच्चों के शोषण और बाकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें आदित्य ठाकरे और बाकी लोग शामिल थे। दिशा ने ये जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ साझा की और वो दोनों इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक करना चाहते थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कहा गया कि इन तमाम जानकारियों को सुरक्षित करने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत पहले दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई और उसके बाद सबूतों को नष्ट किया गया या उन्हें छुपाया गया और सुसाइड की फर्जी कहानी गढ़ी गई ताकि आरोपियों के अपराध से पर्दा न हट सके। आगे ये भी लिखा है कि जब सुशांत ने दिशा द्वारा बताई गई जानकारियां रिया चक्रवर्ती को बताई तो रिया आदित्य ठाकरे और दिनू मौर्या के संपर्क में थी और मेरी जानकारी के मुताबिक रिया ने वो जानकारियां उन्हें बता दी कि दिशा और सुशांत उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं।
3: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे दिनू मौर्या ये गैंग के साथ है, उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया, इसमें ये सभी लोग शामिल है और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप फिर मर्डर और फिर कवर अप किया और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में एसआईटी ने दूसरा कवर अप किया, तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: 6 साल पहले जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो वो तब इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन जब कुछ दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद ही दिशा सालियान के केस पर भी बात शुरू हुई और तब भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी दिशा के पिता के बयान पर दर्ज इस एफआईआर में लिखा है। दिशा के पिता सतीश सालियान के सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक जिस दिन दिशा मारी गई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा डर गए। अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सुशांत ने अपने स्टाफ को डिजिटल एविडेंस मिटाने को कहा, जिसमें मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस का डेटा शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और बाकी डिजिटल मटेरियल को डिलीट करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट बुलाया गया।
3: सुशांत का केस और ये केस आपको याद होगा, जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ट्रेन्स पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीए के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी ₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन ₹2,000 में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट ₹577 था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। ₹577 की रकम ₹2,000 के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है जहाँ MRP पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा जी आप कैश दे रहे हो या UPI पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता, अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या UPI पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता हो पहले 10% देता हो, फिर UPI पे कहेगा कि जी नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा, 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि RBI ने क्रेडिट कार्ड पर MDR कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि UPI के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं CSR दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट MRP पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर MRP से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप UPI से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं MRP पे सेल हो रही है, MRP के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में NDA के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे NDA में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग। अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निडर। शायद 1973 में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था। इस युग में
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का ये बंद हो गया तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें क्या दिक्कत है? आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी आदमी तलाशेंगे।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए। कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है। पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे। आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका होता कुल जानत हूँ वहाँ। इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कह रहे।
0: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
17: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
18: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
19: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
20: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना। लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
19: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
20: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
18: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
21: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
18: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
22: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
18: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और इस आयोजन का नाम रखा गया है ड्रोनथन 2026। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत से सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
2: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
3: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
2: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
4: We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including एयरपोर्ट इन रावलपिंडी इन अदर प्लेसेस।
2: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही है। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
1: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है, बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
2: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
5: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेटनाइज फोर्सेस है जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस वेटल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन है ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
2: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एयरलाइंस पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था। अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी ₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन UPI के लेस देन ₹2,000 में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच UPI फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: NPCI के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत UPI पेमेंट ₹577 था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। ₹577 की रकम ₹2,000 के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता, अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। जो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2,000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8,000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के निर्देश भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई फायदे नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें कैसे आपके बात करते हैं? बीमारी हालत में तो मानवता है ये, आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे यार।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशलक्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मैं मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा, अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश।
16: जयंत चौधरी,
15: जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो हम वहाँ, इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए। सही कह रहे।
0: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
17: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
18: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
19: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
20: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
19: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
20: अब ये तो माने मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
18: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
21: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
18: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
22: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
18: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और इस आयोजन का नाम रखा गया है ड्रोनथन 2026। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत से सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
2: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
3: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
2: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
4: वी ऑन 9th and 10th night वी डिसाइडेड टू respond in a measured fashion to Indian aggression and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
2: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।

0: गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
1: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
2: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेकनाइज फोर्सेज है, जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
1: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ

0: इसे आम आदमी से वसूली बताई गई तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि 2000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा और किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीस में होते हैं।
0: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं, जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
3: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
0: एमपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
4: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
0: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
5: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
6: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
7: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे, क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा। यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के नेता भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत, और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें क्या दिक्कत है? आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी आदमी तलाशेंगे।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल है और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए, और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
7: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
14: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
15: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
16: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
12: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में है। बाकी सरकार को निर्णय करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
16: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
12: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
15: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
17: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
15: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
18: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
15: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, और इस आयोजन का नाम रखा गया है ड्रोनथन 2026। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत से सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
19: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन, दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
20: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेस भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
19: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
21: वी ऑन 9th एंड 10th नाइट वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड इन अ मेजर्ड फैशन to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
19: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं।
1: इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
2: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है, बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
1: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
22: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेकनाइज फोर्सेस है जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस वेटल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
1: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए। मंदिरों में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। कहीं सोने चांदी और हीरों से सजाया गया है बप्पा को, तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति है, आस्था है और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लालबाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में तीन अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए है ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यहां मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहां विघ्नहर पापा को पेशवा कालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि 2,000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2,000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2,000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI के लेस देन 2,000 रुपीज में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2,000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच UPI फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: MPCI के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत UPI पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2,000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जो एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहां कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछना नहीं था क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता, अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग। अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे, या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी? हम उसके फायदे के निर्णय भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा, और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत, और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई वायदे नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए, और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है, और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है, ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती साथ में, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान हो, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहां ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो, वहाँ इस नाते जयंत जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कह रहे।
0: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
17: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
18: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
19: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है, क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड
20: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
19: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
20: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
18: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
21: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
18: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है, कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
22: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
18: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और इस आयोजन का नाम रखा गया है ड्रोनथन 2026। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत से सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
2: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
3: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
2: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
4: वी ऑन 9th एंड 10th नाइट वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड इन अ मेजर्ड फैशन to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
2: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
1: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है, बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के

0: पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
1: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
2: ये टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मिलिटराइज फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशंस चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस वेटल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
1: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पर लगेगा चार्ज। रेलवे टेलीकॉम ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज। 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि 2,000 रुपए के यूपीआई पेमेंट

0: और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है। किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को, कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
0: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
3: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
0: एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
4: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा जी आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। क्योंकि पहले तो पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं, तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
0: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
5: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं, वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों, कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे, जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
6: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
7: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे, क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा। यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है, तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के नरसिंह त्रेता में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था। इस युग में
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा, और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत, और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई वायदे नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें कैसे आपके बात करते हैं, बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी आदमी तलाशेंगे।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए, और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
7: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है, और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा, अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि तो उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो हम वहाँ, इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम वो खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कह रहे हैं।
7: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
17: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
18: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
12: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है। लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
18: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
12: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाईकमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
19: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
0: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
20: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
0: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
7: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और इस आयोजन का नाम रखा गया है ड्रोनथन 2026। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत से सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
21: ड्रोनाथन 2026, भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर पे घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। G20 जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
1: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
21: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
2: वी ऑन 9th एंड 10th नाइट we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers Pakistan armed forces led very ably by our field marshal chief army staff sitting here Sayyid Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
21: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
22: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
21: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
3: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेटलाइज फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
21: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पेमेंट्स पर लगेगा चार्ज, रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी, स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की, 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीए के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी ₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI के लेस देन ₹2,000 में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच UPI फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: MPCI के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत UPI पेमेंट ₹577 था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। ₹577 की रकम ₹2,000 के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहां एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहां कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। क्योंकि पहले तो पूछना नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं, तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे, जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है, तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान, जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के निकल सकते हैं, भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, आपके बात करते हैं बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे आप।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
0: आज से करीब 6 साल 3 महीने पहले मुंबई में एक लड़की की मौत हुई थी और उसका नाम था दिशा सालियान। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की मौत के कुछ ही दिन के बाद सुशांत सिंह की भी मौत की खबर आई और दोनों की मौत को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। खूब हल्ला मचा, हंगामा हुआ, सवाल उठाए गए और अब 6 साल के बाद सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत पर एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें कोई नामजद आरोपी तो नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा बहुत से एक्टर्स और पुलिस वालों के नाम एफआईआर के अंदर लिखे गए हैं। तो दिशा सालियान के घर वाले अपनी बेटी की मौत से आदित्य ठाकरे को जोड़ रहे हैं।

0: 2288 दिनों के बाद दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया है। क्या सीबीआई दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी या हत्या? दिशा सालियान की मौत की एफआईआर में आदित्य ठाकरे, दीनू मोरिया, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम क्यों आया? पूरे के पूरे 6 साल 3 महीने और 5 दिनों के बाद एक बार फिर से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को लेकर हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत का केस सुलझा पाएगी? सीबीआई ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान को आधार बनाकर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिशा के पिता के बयान में जिन भी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वो इसमें दर्ज है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई को जांच करनी है कि दिशा की मौत में इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एफआईआर को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि दिशा का परिवार किस तरह की जांच की मांग कर रहा है। पहले पन्ने पर ही लिखा है कि किस तरह के अपराध की आशंका है। इसमें लिखा है आपराधिक साजिश, गैंगरेप, मर्डर, सबूत गायब करना या गलत जानकारी देना। अपराध की तारीख है 8-9 जून 2020 की मध्यरात्रि, और फिर वो पता लिखा है जहां अपराध घटित हुआ, फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। अब सवाल है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा? दिशा के पिता के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, और आरोपी के तौर पर वो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम किस आधार पर और क्यों लगा रहे हैं? अब सीबीआई में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पूरा घटनाक्रम समझिए। सीबीआई में दर्ज दिशा के पिता के बयान के हिसाब से 4 जून 2020 को दिशा सालियान अपने घर से अपने मंगेतर के घर निकली। ये कहा कि उसे कोई विज्ञापन का शूट करना है। पिता के मुताबिक दिशा ने उन्हें 3 लाख रुपए के चेक की फोटो भी दिखाई और कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई के लिए निकल गई। ये वही एड्रेस है जहां घटना हुई। आगे दिशा के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है 6 जून को दिशा ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि कोविड की वजह से उसका और उसके एक और दोस्त इंद्रनील का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे, इसलिए दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया है। अगले 2 दिन में वो घर आ जाएगी। इस दौरान वो लगातार अपने माता पिता के संपर्क में थी, लेकिन 7 जून 2020 को दिशा के फोन आने बंद हो गए। जब इन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन रोहन रॉय ने उठाया, जिसने बताया कि दिशा काम में व्यस्त है। इसके बाद 9 जून 2020 को सुबह करीब 3:15 बजे दिशा के पिता को मालवाणी थाने से फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने कोई पार्टी अटेंड की थी और वहां कुछ घटना हो गई। दिशा के पिता अपनी पत्नी के साथ सुबह 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दिशा एडमिट थी। वहां उन्होंने दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को देखा। दिशा के दूसरे दोस्त इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा और हिमांशु शिखारे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत हो गई। पूरी एफआईआर 10 पन्नों की है। एफआईआर के 4th पन्ने पर इसके आगे का घटनाक्रम लिखा है, और यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद दिशा के पिता को सुसाइड की थ्योरी पर शक हुआ। दिशा के पिता सतीश सालियान के मुताबिक दिशा के दोस्तों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। वो लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो 11 जून को सुबह करीब 11 बजे उन्हें उनकी बेटी के शव के कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए। फोटो देखने पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने उसकी बॉडी पर कोई खून या ज्यादा चोटें नहीं देखी। उन्होंने दिशा के जबड़े पर गाल के नीचे एक नाखून जैसा निशान देखा, और फिर 11 जून को दिशा का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। दिशा के पिता के मुताबिक शरीर पर खून नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं थी, तो उन्हें सुसाइड की थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त शॉक थे और मानसिक आघात में थे।
1: और ये एफआईआर सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं सतीश सालियन, दिशा सालियन के पिता, उन्हें ऐसा लगता है या उन्हें उनकी ये कंप्लेंट है कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, पर यह एक हत्या है और उन्हें ऐसा लगता है, सतीश सालियन को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ और उसके बाद तब जो पुलिस ने जांच की थी, तब जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे या पुलिस कमिश्नर थे या जो अन्य पुलिस अफसर वहां पे मौजूद थे, सरकार में जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे केस को कवर अप किया था। दिशा सालियन ये पूर्व लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ही दिन मृत्यु के कुछ ही दिन पहले ही दिशा सालियन की मृत्यु हुई। 12वें मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी मलाड़ के एक बिल्डिंग में। रोहन राय उनके बॉयफ्रेंड के साथ वो उस बिल्डिंग में रह रही थी। उस शाम उनके घर पर पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के दौरान कुछ बातचीत में विवाद हुआ, फिर दिशा सालियन अपने कमरे में चली गई, उन्होंने कमरा बंद कर लिया और उसके बाद कुछ घंटे बाद ये पता चला कि दिशा सालियन खिड़की से गिर कर या उन्होंने कूद कर जान दे दी है।
0: दिशा के पिता को रोहन रॉय और कुछ पुलिस अफसरों ने बताया कि दिशा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, वो नशे में थी तो गलती से वो बिल्डिंग से गिर गई। इसके बाद पुलिस ने बहुत से दस्तावेजों पर दिशा के पिता के दस्तखत करवाए। उन कागजों में क्या लिखा था ये तक नहीं बताया गया, यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौत के कारण का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनु मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
3: ये कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, आप सीबीआई के अधिकारी तक पहुंचे, आपने बयान भी दर्ज किया, दिशा को लेकर के आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे ये शुरू हो गई, सही दिशा में क्या कुछ
2: दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया दिशा का।
0: यानी अगर दिशा के पिता के माने तो उनकी हत्या हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में दिशा के पिता ने अपने बयान में तफसील से बताया है। उनके मुताबिक उनकी बेटी दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी थी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इसी काम के दौरान दिशा को कथित ड्रग तस्करी, बच्चों के शोषण और बाकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें आदित्य ठाकरे और बाकी लोग शामिल थे। दिशा ने ये जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ साझा की और वो दोनों इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक करना चाहते थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कहा गया कि इन तमाम जानकारियों को सुरक्षित करने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत पहले दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई और उसके बाद सबूतों को नष्ट किया गया या उन्हें छुपाया गया और सुसाइड की फर्जी कहानी गढ़ी गई ताकि आरोपियों के अपराध से पर्दा न हट सके। आगे ये भी लिखा है कि जब सुशांत ने दिशा द्वारा बताई गई जानकारियां रिया चक्रवर्ती को बताई तो रिया आदित्य ठाकरे और दीनू मौर्या के संपर्क में थी और मेरी जानकारी के मुताबिक रिया ने वो जानकारियां उन्हें बता दी कि दिशा और सुशांत उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं।
4: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या, ये गैंग के साथ है। उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया, इसमें ये सभी लोग शामिल है और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप फिर मर्डर और फिर कवर अप किया, और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में एसआईटी ने दूसरा कवर अप किया, तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: 6 साल पहले जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो वो तब इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन जब कुछ दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद ही दिशा सालियान के केस पर भी बात शुरू हुई और तब भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी दिशा के पिता के बयान पर दर्ज इस एफआईआर में लिखा है। दिशा के पिता सतीश सालियान के सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक जिस दिन दिशा मारी गई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा डर गए अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सुशांत ने अपने स्टाफ को डिजिटल एविडेंस मिटाने को कहा, जिसमें मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस का डेटा शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और बाकी डिजिटल मटेरियल को डिलीट करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट बुलाया गया।
4: सुशांत का केस और ये केस आपको याद होगा, जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
5: गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए। मंदिरों में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। कहीं सोने चांदी और हीरों से सजाया गया है बप्पा को, तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति है, आस्था है और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लाल बाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में तीन अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए हैं ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू

0: एक साथ अथर्व शीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यह मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर पापा को पेशवा कालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: एयरलाइंस पर लगेगा चार्ज, रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 1,500,000 खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी, स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की, 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जनता भी डरी हुई है, दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2,000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस

0: पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है। किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को, कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा और किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
2: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: एमपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
3: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। पहले तो पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
4: ये बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं, वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं, ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे, जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
5: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
6: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे, क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा। यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
7: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
8: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
7: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
9: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
8: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम उसके फायदे के लीडर त्रेता भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
9: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
8: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
7: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
10: बीमार है माता प्रसाद जी, आपके बात करते हैं बीमारी हालत में, तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी आदमी तलाशेंगे।
11: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
12: नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
7: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके।
6: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़न शुरू हो चुकी है और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
7: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
13: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
7: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
14: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था सारी बातें नहीं बताई जाती, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
7: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
14: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
7: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
10: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
15: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हो हम अज वहाँ, इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम वो खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए। सही कह रहे।
6: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
16: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
17: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है, क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड?
18: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
17: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
18: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाईकमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
12: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
1: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
19: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
1: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
6: यूसीसी पर बिहार में भी घमासान मच गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के कई नेता मिलने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले जेडीयू ने साफ किया था कि यूसीसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी की बैठक में तय होगा कि आगे करना क्या है। कुल मिलाकर यूसीसी पर अब एनडीए के घर में ही घमासान मचा हुआ है।
1: उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सियासत गर्म हो गई। तेलंगाना से ओवैसी, दिल्ली से कांग्रेस और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी के संकल्प पर सवाल उठाने लगे। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी के सहयोगी दलों को भी गृहमंत्री के संकल्प पर शंका है।
20: प्रावधानों को देखने के बाद उसके संबंध में सीधे गृह मंत्री जी से चर्चा होगी, श्री अमित शाह जी से, और उसके बाद हम लोग की पार्टी बैठेगी, पार्टी में फिर विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
21: हम लोग लगातार इसके विरोध में नहीं, हमने पहले भी जब ये संसद में पास हो रहा था हमने उसी समय कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था, इसको हम अपने राज्य में लागू नहीं।
1: जेडीयू नहीं, चिराग पासवान भी संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 371A, 371G और दलितों को मिलने वाली छूट का सवाल उठाने लगे। इधर कांग्रेस ने भी यूसीसी के मसले पर मोर्चा खोल रखा है।
22: हमारा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। विचारधारा किसी की कुछ भी हो जाए लेकिन वो संविधान से तो अलग नहीं हो सकती।
1: दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
23: अभी तक तो जितनी भी इन्होंने लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की बात की, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन और रिजर्वेशन, वो तो पार्लियामेंट में लाए नहीं। अब ये वाला भी जो है ये स्टेट्स में लाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में लाइए और देखते हैं अगर आपसे पास हो सकता।
24: यूसीसी को लागू करेंगे ताकि हम अपने रिलीजियस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारें। यूसीसी कोई इक्वालिटी के लिए बीजेपी नहीं कर रही है, सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वो यूसीसी को अपने अपने जहां प्रदेशों में सरकार में यूसीसी लाए हैं।
1: कुल मिलाकर यूसीसी पर भारतीय राजनीति में नई जंग शुरू हो गई है और हर बीतते दिन के साथ ये जंग और बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।
6: गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए। मंदिरों में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। कहीं सोने चांदी और हीरों से सजाया गया है बप्पा को, तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति है, आस्था है और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लाल बाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में तीन अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बाप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए है ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यहां मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर पापा को पेशवा कालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: गणेश की मूर्ति से वास्तु दोष कैसे दूर होगा? भगवान गणेश की कौन सी मूर्ति बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र मुख्य द्वार पर कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाएं भगवान गणेश की प्रतिमा कि वास्तु दोष दूर हो जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: पेमेंट्स पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत, योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को मंजूरी दी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक और की गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल की। 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल। यूपीआई के नए नियमों को लेकर भले ही सरकार कह रही हो कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं जनता भी डरी हुई है। दुकानदार अपने ऊपर पड़ने वाले इस नए भार का बोझ उन्हीं के कंधों पर डालेगा।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10A का जिक्र करते हुए कहा है कि ₹2,000 के यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर